0: फिर जब वो लड़का इब्राहिम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, अब सोच कर बताओ तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने कहा, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनांचे वो अजीब मंजर था जब दोनों ने सर झुकाया और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिराया और हमने उन्हें आवाज़ दी कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह सला देते हैं। यकीनन ये एक खुला हुआ इम्तिहान था और हमने एक अजीम ज़बीहे का फ़िदिया देकर उस बच्चे को बचा लिया।
1: इस वाकये की तफसील में मुफसरीन ने यह भी बताया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में शैतान ने 3 मरतबा इंसान की शक्ल में जाहिर होके उनको इस काम से बाज रखने या दूसरे लफ्जों में अल्लाह का हुक्म ना मानने के लिए वरगलाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा उसको कनकड़ियाँ मार के भगा दिया। इसी की रिवायत में हाजी 3 जगहों पर शैतान को कनकरियाँ मारते हैं। बहरहाल जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी और बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया और छुरी तेज की तो आवाज़ आई, अपना हाथ रोक लें। आपने हाथ रोक कर पट्टी हटाई तो देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर आए हैं कि इसको ज़िबा किया जाए। चनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे की कुर्बानी की और उसकी याद में ना सिर्फ हाजी भी 10 ज़िलहज को जानवरों की कुर्बानी करते हैं बल्कि दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान अपनी इस्तेआत के मुताबिक जानवर ज़िबा करते हैं जो उन पर वाजिब है।
2: हज़रत इस्माइल जब 15 बरस के हुए तो उनकी वालदा हज़रत हाजरा का इंतकाल हो गया और उनकी तदफीन खाना काबा के कुर्ब में की गई। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम चले गए थे मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी जगह पर रहे। यहाँ के लोग हज़रत इस्माइल की नेकी और पारसाई के सबब उनका बेहद एहतराम करते थे। यहाँ एक घराने में हज़रत इस्माइल की शादी हुई मगर जल्द ही अलहदगी हो गई और फिर दूसरी शादी हुई। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से काबा की तामीर नौ का हुक्म हुआ तो बाप बेटे दोनों ने मिलकर इस काम का आगाज किया। हज़रत इस्माइल पत्थर ढूंढ कर लाते थे और हज़रत इब्राहीम इनसे दीवारें खड़ी करते थे। जब ये तामीर ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंची तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद ऊपर तामीर के लिए एक बड़ा पत्थर रखा और इस पर चढ़कर ऊपर के हिस्से में पत्थर लगाए। आपने जिस पत्थर पर चढ़कर ऊपर का हिस्सा तामीर किया, अल्लाह की कुदरत से इस पत्थर पर आपके कदमों का गहरा निशान पड़ गया। ये पत्थर आज भी मकाम इब्राहीम के नाम से इसी जगह महफूज करके रखा गया है, मुजाहिरीन इसकी ज़ियारत करते हैं। मुशाहिदा तो ये है कि अगर कोई इंसान किसी पत्थर पर कितना अरसा भी खड़ा रहे तो इस पर कोई निशान नहीं पड़ता। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान से जो पत्थर मोम की तरह दब गया तो ये भी अल्लाह की कुदरत की एक निशानी और मौजज़ा है। अल्लाह पाक ने कुरान में मकाम इब्राहीम को एक निशानी करार दिया है।
0: सूरह आले इमरान की आयत रकम 97 में अल्लाह सुबहानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं,

0: मेरे नौ का काम शुरू किया, जिसके लिए कबीले के लोगों ने बड़ी रकम जमा की। इस वक्त तक काबा की छत नहीं थी, चुनाचा खजूर की लकड़ियों और टहनियों से काबा की छत बनाई। इस तरह मक्का और दीगर मुमालिक से भी लोग हज के लिए आते रहे और हर साल इनमें इजाफा भी होता गया। इसके अलावा हज के मौके पर मक्का में एक बड़ा मेला भी मुनक्किद होता था, जिसमें पूरे अरब के आजमीन हज के अलावा ताजर और सहिया भी बड़ी दिलचस्पी से शिरकत करते। ये एक तिजारती और मौशरती मेला होता था।
1: यह सूरत हाल देखकर यमन के बादशाह अब्राहा ने कीमती पत्थरों और सोने चांदी से एक बहुत बड़ा गिरजा बनवाया कि लोग पत्थर और ईंटों से बने काबा की जगह संगे मरमर और हाथी दांत से मुजयन गिरजे की तरफ आएंगे। लेकिन उसे ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि एक आदमी भी उसके गिरजे की तरफ नहीं आया। किसी ने उससे कहा कि जब तक काबा मौजूद है इधर कोई नहीं आएगा। चनाचे उसने काबा पे चढ़ाई का फैसला किया। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जिसके आगे हाथी रखे गए। जब ये लश्कर मक्का के मजाफात में पहुंचा तो वहां हमले की तैयारी के खर्च से रुक गया। अहले मक्का बहुत परेशान हुए मगर कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय दुआओं के। चनाचा सब सच्चे दिल से काबा की हिफाजत की दुआएं मांगने लगे।
0: उतने में आसमान पर परिंदों का एक बड़ा गौल नमुदार हुआ, जिनकी चोंचों और पंजों में पत्थरियां थीं। ये गौल अब्राहा के लश्कर की आयन ऊपर पहुंचा तो परिंदों ने कंकड़ियां गिराना शुरू कर दी। ये ऐसी कंकड़ियां थीं जिनसे जानवरों और इंसानों का भरकस निकल गया। देखते ही देखते पूरा का पूरा लश्कर खाए हुए भोसे की तरह पड़ा था। अब्राहा वहां से भागा, लेकिन कंकड़ियां लगने से उसके जिस्म में ऐसा जहर भर गया कि उसके हाथ पांव सब गलकर अलग अलग हो गए। फिर अल्लाह के हुक्म से ऐसी तूफानी बारिश हुई कि उसके पानी से मरे हुए जानवर और इंसान सब कुछ बह गया। इस वाक़े का जिक्र सूरह फील में मिलता है और जिस साल ये वाक़या पेश आया इसको आमल फील कहते हैं। और इस वाक़े के 40 दिन बाद आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हुई।
1: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी तो एक मर्तबा फिर काबा की तामीर नौ शुरू हुई। तामीर मुकम्मल होने के बाद जब हजरे अस्वद के नस्ब करने का वक्त आया तो मक्के के कबीलों में ये तनाजा पैदा हो गया कि हजरे अस्वद कौन नस्ब करेगा। मामला इस हद तक बढ़ गया कि जंग की नौबत आने लगी। बहरहाल इस मौके पर ये तय पाया कि अगली सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में आएगा वो इस बात का फैसला करेगा। सबने इत्तफाक किया। अल्लाह की कुदरत ये कि अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा कि उनसे पहले आने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सबको ये देख के बहुत इत्मीनान हुआ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही सब सादिक और अमीन के लकब से जानते थे। चनाचे ये मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही उम्दा और बेमिसाल फैसला फरमाया। फैसले के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद उठाकर चादर के दरमियान रख दिया और फिर तमाम सरदारों से फरमाया कि सब चादर को पकड़ लें। सरदारों ने एक एक जगह से पकड़ कर चादर उठाई और नस्ब करने की जगह पर ले गए, जहां से एक मर्तबा फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उसके मकाम पर नस्ब कर दिया।

अकबर। और अब आज के प्रोग्राम का खुलासा। अल्लाह की जानिब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कड़ा इम्तिहान, बेटे की कुर्बानी का हुक्म। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइश में पूरे उतरे और एक दुम्बे की कुर्बानी फर्ज की गई, जो हज्जाज के अलावा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खाना काबा की पांचवी बार तामीर। उम्मीद है आप

हमारा खुसूसी शो हज बैतुल्ला अच्छा लगा होगा। इस शो से मैं आरजे मामिश खान, आरजे कबीर, आरजे तलहा और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी के साथ इजाजत चाहूंगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअ الرسول فقد اطاع الله, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन, इस्लाम हमें सिखाता है कि जिंदगी के हर मरहले पर अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक चलना ही कामयाबी है। सामईन, नौ मौलूद बच्चे के हवाले से आज की सुन्नत है तहनीक और दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ मौलूद बच्चों की तहनीक करते थे। तहनीक का मतलब है किसी चीज को चबाकर बच्चे के मुंह में डालना। ये लफ्ज हनक से लिया गया है। हनक अरबी में तालू को कहते हैं, तो तहनीक का मतलब हुआ खजूर वगैरह को चबाकर बच्चे के तालू पर मलना। तहनीक का तरीका यह है कि किसी नेक सालेह बुजुर्ग के मुंह में चबाई हुई खजूर बच्चे के मुंह में डालकर उसके तालू पर मल दी जाए, ताकि लुआब उस बच्चे के पेट में चला जाए और इस तरह उस नेक बुजुर्ग की नेकी के असरात इस बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाए। मुतअद्दिद अहादीस में इस अमल की दलील और सबूत मिलती है। बुखारी में अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मनकूल है, वो कहती हैं, मैं जब मदीना मुनव्वरा आई और कुबा में उतरी, वहाँ मैंने बच्चा जना तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर मंगवाई, उसे चबाया और बच्चे के मुंह में अपना लुआब मुबारक डाल दिया और फिर बरकत की दुआ दी। इसी तरह अबू मूसा अज़लानी से रिवायत है जिसे इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम इब्राहिम रखा, खजूर से तहनीक की और बरकत की दुआ दी। समीन, साथ ही दुआ देना और नौ मौलूद के वालिदैन को मुबारकबाद देना माशरती मोहब्बत व खुवत को मजबूत करता है। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से जिस हदीस का जिक्र हुआ उसमें ये बात ज़रूर आपने सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे के लिए बरकत की दुआ दी थी। समीन, इस्लाम ने हमें यह भी सिखाया कि बेटे और बेटी की पैदाइश दोनों अल्लाह की रहमत है और दोनों की पैदाइश पर बरकत की दुआ देनी चाहिए। तो ये थी समीन आज की सुन्नत, नौ मौलूद बच्चे के लिए तहनीक दुआओं के हवाले से। अल्लाह ताला हमें अपने घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 बजे FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.

स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या?

0: नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से दी से।
1: दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना एक अहम और नोबल काम है, लेकिन आजकल फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्कीम से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ कुछ और हिदायत दी गई हैं, जो आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाने में मदद दे सकती हैं। चैरिटेबल वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें। जब आप ऑनलाइन चैरिटी देने का सोच रहे हो तो इंश्योर करें कि जिस वेबसाइट पर आप चैरिटी दे रहे हैं वो ऑफिशियल और सिक्योर हो। ऐसी वेबसाइट्स पर https.// होने चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ओवर द फोन डोनेशंस। अगर आपको फोन पर चैरिटी देने की दरख्वास्त मिले तो इस पर शक करें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर डायरेक्ट कॉल्स नहीं करती। अगर आपको कॉल आती है तो पहले उनका वेरिफिकेशन करें। तीसरा, सोशल मीडिया रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट को अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मैत्राश ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सुनिए कुरान फॉर किड्स हर बुध शाम 3 बजे से आरजे तलहा के साथ।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
6: Values are values. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज। बड़ा ही कमाल का सेगमेंट है जहां हम बात करते हैं किसी ना किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो आज भी हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और वो है हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी सेविंग्स फंड। कितना कमाल का टॉपिक है, अगर इस पे बात की जाए तो मुझे लगता है मैं घंटों बता सकती हूँ। ज्ञान बांटना बड़ा आसान लगता है, लेकिन हाँ उस पे अमल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज मिलकर इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम और आप मिलकर एक दूसरे को सिखाएं कि किस तरह से हमें इमरजेंसी सेविंग्स फंड जो है उन्हें बिल्ड

करना है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो भाई इमरजेंसी सेविंग्स फंड ऐसा कोई फंड हम जो है ना अपनी लाइफ में क्रिएट करते ही नहीं है, ना बिल्ड करते हैं ना यकीन करते हैं, अल्लाह ना करे किसी को किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो। बट ये वर्ड अपने आप में ना इतना भारी भरकम है, द मोमेंट यू लिसन इमरजेंसी अरे लगता है क्या हॉस्पिटल कोई गया है, ये वाली फीलिंग आ जाती है। और शायद कोई भी नहीं चाहता इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से हम तैयार रखें खुद को, लेकिन हाँ जिंदगी जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल है। जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, कभी अचानक नौकरी का मसला आएगा, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ ही सकती है, या फिर घर का कोई ऐसा जरूरी खर्चा जो निगलेक्ट ही ना किया जाए। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है इमरजेंसी सेविंग्स फंड। देखिए इमरजेंसी सेविंग्स फंड वो पैसे होते हैं जो हम सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए साइड पर रखते हैं। पहले तो ये सवाल उठेगा कि क्या आप ऐसा कोई पैसा साइड पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो आज से अभी से इस आदत को अपना लीजिए। ये फंड जो है वो आपके आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसे तो कम करते ही करता है और हमें बड़े फैसले बड़ी घबराहट से भी बचा लेता है। जी हाँ, अब बात करते हैं कि इमरजेंसी सेविंग्स फंड क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं। पहले तो इसे समझते हैं कि है क्या। तो इमरजेंसी सेविंग फंड्स जो है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को इनकम रुक जाए, अल्लाह ना करे कोई अचानक ऐसा खर्चा बढ़ा जाए जो आपको पुश करे लोन लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए या हो सकता है लोगों से पैसे बोरो करने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो ऐसे में अगर आप गिल्टी महसूस करते हैं तो ये फंड आपको कॉन्फिडेंस देगा। बहुत से लोग इसलिए टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। थोड़ा सा पैसा भी अगर इमरजेंसी के लिए अलग रख लिया जाए तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। ये फंड सिर्फ पैसे नहीं है, मैं कहती हूँ ये पीस ऑफ माइंड है। इमरजेंसी फंड बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए इमरजेंसी फंड बनाने का जो कदम है वो आपका पहला माइंडसेट है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस फंड को ना बनाइए, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए। इमरजेंसी फंड बनाने का पहला और सबसे बड़ा कदम है आपकी नियत और आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ये सोच लेना कि कल से सेविंग शुरू करनी है काफी नहीं होगा दोस्तों। आपको क्लियर डिसीजन लेना होता है कि ये अमाउंट चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन सेविंग मैं जरूर करूंगा या करूंगी। इसके बाद आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का अंदाजा लगाइए। आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में रेंट, खाना, बिल, ट्रांसपोर्ट और जरूरी चीजों पर कितना खर्चा होता है। जनरली सजेशन ये होते हैं कि इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, इसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी रकम भी सेव नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, छोटी सी शुरुआत लेकिन होनी तो चाहिए। बहुत से लोग जो है वो छोटी सेविंग को सेविंग ही नहीं मानते। बहुत से लोग सेविंग इसलिए शुरू नहीं करते कि उन्हें लगता है इतनी छोटी सी रकम का क्या होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग का मतलब कंसिस्टेंसी है, अमाउंट नहीं, क्वांटिटी नहीं। आप 50 रियाल से 100 रियाल से भी शुरुआत कर सकते हैं और जैसे ही सैलरी आए पहले इमरजेंसी फंड के लिए उसे अलग कर दें बिना कुछ खर्च किए। अगर पॉसिबल हो तो इमरजेंसी फंड के लिए अलग बैंक अकाउंट ही खोल लीजिए जहां आसानी से पैसे आप डालें और आप उसको टच भी ना करें। इससे होगा यह कि टेम्पटेशन आपकी कम हो जाएगी और शायद सेविंग डिसिप्लिन डेवलप होगा। इमरजेंसी फंड को सेफ जगह रखना भी जरूरी है। इमरजेंसी सेविंग्स को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां पैसा सेफ हो, जरूरत पर फौरन आपको मिल जाए और किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। इसीलिए इमरजेंसी फंड्स को स्टॉक, क्रिप्टो या कई बार रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाना ठीक नहीं होता। सिंपल सेविंग्स अकाउंट या फिर इजली एक्सेसिबल ऑप्शन बेहतर रहते हैं। हर कुछ महीने में अपने इमरजेंसी फंड्स को रिव्यू करें। रेगुलर रिव्यू डिसिप्लिन लेकर आता है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान रखते हैं कि जी ये बढ़ गए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस तो बढ़ते घटते रहते हैं और मैं घटना क्यों कहती हूँ, बढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी हो सकता है कभी दिक्कत आए, 50 रियाल भी सेव करना मुश्किल हो जाए, तो कोशिश ये करिए कि अगर आपने लिख रखा है ना तो आप कहीं ना कहीं उस गिल्ट का शिकार होंगे और जैसे जहां

0: मौका मिलेगा आप वो 50 टेल खड़ाक से बचा लोगे और फिर आप उसको इमरजेंसी फंड में डाल ही दें। ये आदत बड़ी कमाल की है और इससे आपका जो है वो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी फंड को सिर्फ वाकई इमरजेंसी के लिए ही यूज ना किया जाए, इसको लाइफस्टाइल के लिए यूज ना किया जाए, ये फंड ही आपके लिए बना रहे। देखिए इमरजेंसी फंड बनाना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो इंसान के लिए जरूरी भी है, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम। ये फंड आपको मुश्किल वक्त में सहारा देता है। इसकी शुरुआत आज से कीजिए। याद रखिए कि इमरजेंसी फंड ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है और इसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल सिटी सी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज पर्ल्स ऑफ कुरान में जो आयत मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये है सूरह अल-मारिज की आयत नंबर 5 और इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, बस आप सब्र करें, खूबसूरत सब्र। हम इस आयत को डिटेल के साथ समझेंगे। हम ये समझेंगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई और उसकी अहमियत क्या है, फिर ऐसे कि सब्र जमील का मफहूम होता क्या है।

0: इंसान के अंदर एक इत्मीनान होता है कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के इल्म में है। इंसान लोगों के बजाय अल्लाह से बात करता है, उसी से दुआ मांगता है। मुश्किल के बावजूद उम्मीद ख़त्म नहीं होती। इंसान मुश्किल में भी अल्लाह की नियमतों को याद रखता है। सब्र जमील का एक अहम हिस्सा ज़बान की हिफाजत है। आम तौर पर जब इंसान परेशान होता है तो वो बार बार अपनी तकलीफ़ बयान करता है, दूसरों से शिकायत करता है, कभी कभी अल्लाह से भी शिकवा करने लगता है। लेकिन सब्र जमील में ज़बान से शिकायत नहीं निकलती। इंसान अपनी बात सिर्फ अल्लाह से करता है, दूसरों के सामने मजबूत रहता है। ये चीज़ इंसान की इज्जत और वक़ार को बरकरार रखती है। सब्र जमील सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल में भी अच्छे अखलाक बरकरार रखना, यानी गुस्से में भी नरम रहना, तकलीफ में भी दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ये बहुत आला दर्जे की बात है। क्योंकि आम तौर पर हर इंसान तकलीफ में अपना रवैया खराब कर लेता है।
1: आइए आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सब्र नहीं किया बल्कि सब्र जमील का अमली नमूना पेश किया। चाहे आप ताइफ का वाकया देख लें, आपने बददुआ नहीं की बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ की। फिर कितने साल मक्का में जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन अपने अखलाक नहीं बदले। जब ताकत मिली तो बदला लेने के बजाय माफ कर दिया। ये सब सिर्फ सब्र नहीं है बल्कि सब्र जमील था। आज के दौर में सब्र जमील की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया का दबाव है, दूसरों से कंपैरिजन है, जल्दी कामयाबी की ख्वाहिश है, लोगों की तनकीद है। ये सब चीज़ें हमें बेसब्र बना देती हैं। ऐसे में सब्र जमील हमें सिखाता है कि हर बात पर रिएक्ट नहीं करना है, हर तकलीफ को पब्लिक ना करें, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ें। सब्र जमील कैसे हासिल करें? तो ये एक आला दर्जा है लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले अल्लाह से मजबूत ताल्लुक बनाएं, नमाज, दुआ और कुरान के जरिए। अपनी जबान को कंट्रोल करना सीखें, हर बात हर किसी को ना बताएं, मुस्बत सोच रखें, हर मुश्किल में कोई ना कोई खैर होती है। जल्दबाजी से बचें, हर चीज का वक्त होता है। अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार करें जो आपको सब्र सिखाएं। कुरान में सब्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरियां दी गई हैं। अल्लाह की मदद उनके साथ होती है, उन्हें बेहिसाब अजर मिलता है, वो दुनिया और आखरत में कामयाब होते हैं। खास तौर पर सब्र जमील करने वाला अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। सब्र जमील सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल करैक्टर है। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल में भी खूबसूरत रहना है, गम में भी वक़ार बरकरार रखना है और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना है। यही वो सब्र है जो इंसान को आम से खास बना देता है। सूरह अल-मारिज की आयत फाज़बिर सब्रन जमीला को अगर सही तौर पर समझना है तो हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। यह आयत किसी आम हालत में नाजिल नहीं हुई थी बल्कि एक ऐसे माहौल में नाजिल हुई जहां हक और बातिल के दरमियान शदीद कश्मकश जारी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107. Time check.
1: Assalamualaikum, 6:01, मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड बाहर हो रहा है भाई। बहुत मजेदार मौसम, मौज आ गई। मुझे लगा था आज मैं काला चश्मा जरा लेके चलता हूँ अपना, हो सकता है धूप मिल जाए। आज ही नहीं है, मतलब इतने दिनों में आज जाके जो मौसम है थोड़ा सा काबू में आया है। कुछ तो हुआ ही, ये 2-3 दिनों में मौसम जो है समझ के बाहर हो रहा है। मुझे पता है दोपहर में वापस अपनी पे आ जाएगा, वो बात और है। लेकिन सुबह उठने का जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो यही है कि ये वाला टेम्परेचर सिर्फ सुबह वाले ही देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। 25 डिग्री हो रहा है अभी, 25 डिग्री, कैन यू इमेजिन, ये 25 अभी 50 हो जाएगा तो समझ के बाहर है। ये मैंने कहीं नहीं सुना कि 25 से 50 कुछ घंटों में टेम्परेचर हो जाता है। तो अभी जाएगा टेम्परेचर, आज भी अच्छा खासा 40 तक जाएगा, 41-42, मे बी टचिंग 45 इन सम केसेस और एरियाज, मगर अभी 25 है। तो मिनिमम जो है टेम्परेचर वो 25 होना और मैक्सिमम 45 होना बहुत बड़ा फर्क है। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन सच में ऐसा है। और इतनी वैरायटी मौसम की नहीं सोची थी मैंने, पर आज और कल में मौसम और भी ज़्यादा फर्क आने वाला है मौसम में, उसके बारे में खुल के बात करूँगा। बट कहानी बड़ी मज़ेदार है भाई आज की। ये कहानी ऐसी है, इस कहानी पे देखो क्या होता है, स्टोरीज पे मूवीज बनती है, ठीक है। इस वाली कहानी पे जो आज मैं आपको सुनाऊंगा, इस रियल लाइफ केस पे कॉमिक बनी है भाई, कॉमिक बनी है। तो ये बहुत यूनिक स्टोरी है, इतनी यूनिक स्टोरी तो मैंने कभी आपको नहीं सुनाई, बिकॉज एवरी स्टोरी हैज इधर मूवी, डॉक्यूमेंट्री, कुछ ना कुछ बना होता है। इस पे कॉमिक बनी है भाई, तो अपने आप में कमाल की कहानी है। कुछ देर में ये भी आ जाएगी, मगर बहुत सारी बातें करेंगे उससे पहले 6:03 फॉर नाउ, एंड सुबह के अधिकार दुआ से शुरुआत करेंगे एंड फिर आपसे होगी मुलाकात। बाकी व्हाट्सएप

0: 666-22107 Stay tuned.
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

0: आपके पास कुछ ऐसा जो बहुत ही आपको लगता है कि वैल्यूएबल सॉर्ट है, एटलीस्ट आपके लिए वैल्यूएबल है?
1: अच्छा, मेरे लिए तो पहले ट्राई करने की कोशिश की कि आपको मैं कॉल करूं, और आप माशाल्लाह बार बार आवाज निकाल रहे थे, और एक बहन ने कहा कि संजय दत्त बने हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहां पर ओ पक्का आज बन जाऊं, मैं बोलूं मारो मारो मुझे मारो।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग।
1: अच्छा, तो रही बात यह कि अर्ली मतलब 80s में मुझे ये जो स्टैम्प्स इसको कलेक्ट करने का बड़ा शौक था, और उसके लिए ना मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर आया करते थे जिस पर रिबन हुआ करते थे, और एक लाइन में 8 टिकट आप उसको लगाते थे, जिस तरह फ्रेम में तस्वीर लगती है, बड़ा खूबसूरत। नंबर वन, शायद ही किसी मुल्क की, क्योंकि बाद में वो चीजें खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता, शायद ही किसी मुल्क का ऐसे मतलब टिकट हम जाते थे जीपीओ, वहां पर जाके बकायदा खरीदते थे मुल्कों की टिकट, एक तो वो मेरे पास।
0: अरे,
1: और याशिका का जो कैमरा, वो मेरे वालिद मरहूम ने लिया था, वो आज मेरे घर में कब्र में पड़ा हुआ है, और नीट एंड क्लीन।
0: अरे क्या बात है, ये तो clean. वो तो बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो।
1: हाँ
0: हाँ,
1: और एक जमाने में यहाँ पर रेडियो आया करते थे नेशनल के शुरू में, जो लोग मतलब आज से 60-65 साल पहले यहाँ पर आए थे, उन लोगों के पास वो चीजें थी। और मेरे वालिद को बड़ा शौक था रेडियो का, वो रेडियो आज भी ब्राउन कवर में, ब्राउन एंड मरून कलर में वो मेरे पास अवेलेबल है घर में।
0: अरे वाह,
1: तो मुझे अगर पता होता, मुझे अगर पता होता कि आज का टॉपिक ये है, तो मैंने आपको पूरी इसकी तस्वीर और वीडियो भेजी।
0: मुझे तो मतलब रेडियो की आप कभी भी वक्त मिले तो मुझे जरा भेजिएगा, मैं मतलब आई वुड लव टू सी।
1: और दूसरा जो ग्राम, एक बड़ा रिकॉर्ड वाले काले काले, जिसमें मतलब बड़े गीत चलते थे, बड़ा वो आपने उसकी पेन उठाई तो वो ग्राम चला करता था रिकॉर्ड, मेरे पास आज भी है।
0: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो कमाल की बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो मुझे जब भी मौका मिले ना रेडियो की फोटो जरूर भेजिएगा मुझे, मैं देखना चाहूंगा उसे।
1: हाँ, मैं यार रेडियो, आप यकीन कीजिए कि वो इतना बड़ा डब्बा है वो, और डब्बे के अगर आप खोले तो बिल्कुल जैसे पुरानी गाड़ियां आती थी ना, इंजन बिल्कुल स्मूथ और खुला आदमी अंदर चला जाता था। आज तो खैर बड़ा पैकअप है पूरा इंजन गाड़ियों का, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी। लेकिन वो भी बात की जो वीडियो की आपने बात की, वो सोनी का वीडियो बीटामैक्स और ये बड़े कैसेट वाले और रेड पे वो कैसेट, यार वो अपने एक दौर था, वो अपना एक प्यारा दौर था।
0: पर उनकी वैल्यू देखिए आप जय भाई, आज की तारीख में उनकी वैल्यू देखिए आप, इट इज वर्थ लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अभी देखने जाएंगे किसी एंटीक शॉप पे ना, इंडिया के 50,000 रुपए मिल रहा है वो, क्योंकि मैंने चेक किया, इसलिए बता रहा हूँ, 50,000 रुपए में, 1-1 लाख रुपए में बिक रहा है, तो ये और क्या चाहिए।
1: शौकीन है लोग, मतलब एंटीक चीज लेने के शौकीन है वो लोग, इसलिए वो रखते हैं अपने पास, ताकि वो अभी देखें आप, कई लोग हैं जिनके घर में जो पुराने क्लॉक जो स्टैंड टाइप लंबे लंबे पुराने 6-6 फुट के, वो उन्होंने रखे हुए घर में, और बड़ा खूबसूरत लगता है वो।
0: नहीं, मेरा भी शौक है, और मुझे लगता है कि आज ये शो करने के बाद जो ना वो शौक हद से ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट मुझे प्लीज जब भी आपको मौका मिले पूरे हफ्ते में ना, वो एक फोटो खींच के मुझे जरूर भेजिएगा शो में, आई वुड लव टू सी इट।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली,
0: ठीक है।
1: और एक भाई ने जो भी कहा कि मतलब है कि वो और हमारी बहन, उनके मतलब वो जो उनके पास लेटर्स थे, तो मेरे भाई आपसे बड़ा भी एक मुजरिम है जिसके पास 32 साल से लेटर पड़े हुए।
0: आए होए होए होए मैगा जी, 32 सालों से लेटर, दोनों क्या बात है माशाल्लाह। तो उन्हें मतलब इतनी मोहब्बत से रखने की जो कुछ वजह थी, अपने आप वो कलेक्ट होते गए, फिर आपको लगा नहीं इसको रख लेते हैं, मियां बीवी ने डिसाइड
1: किया। वो बड़ी नहीं, वो बड़ी मियां बीवी ने मतलब है कि ज्यादातर मेरा ही है कि वो एक बड़ी यूनिक चीज, आप जिस वक्त एंगेजमेंट हुई उसके बाद मतलब है कि जब उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, खतों किताबत थी हल्की फुल्की, वो भी बहन भाई के जरिए, यारी इधर पहुंचा देना आपकी बड़ी मेहरबानी होगी,
0: ठीक है।
1: और बड़े अंदाज से मैं डायरी पे और वो लेटर लिखता था, बड़े अंदाज से। तो वो जो मेरे जो कबर्ड पड़ी हुई है, जहाँ पर मेरे कपड़े या जैकेट्स वगैरह सर्दी के, उसी में बड़े वो फोल्डर में रखे हुए हैं, और बड़ी खूबसूरत याद है वो जिंदगी की।
0: तो वो कितने लोगों को पता है घर के अंदर, कितने लोगों का अंदाजा है
1: सारे, मतलब सारे देखें अगर फैमिली वाइज देखे तो जो बच्चे भी मेरे, आई एम देयर फ्रेंड, मैं मतलब एक बाप होने के नाते प्रेफर करता हूँ कि मैं उनका दोस्त रहूँ हमेशा, और वो मुझे छेड़ते भी हैं कि मतलब है कि मामा को इतना लव लेटर दिखा करते थे।
0: मजा आ गया भाई ये किस्सा। ये आज ये दूसरी दूसरे आप जिसने मुझे बताया, ये कमाल की बात है, आप लोगों का फैन।

0: गया मैं सीरियसली.
1: संभाल
0: के रखिएगा आप जब भी भाई. बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच. ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. तो जेबी भाई की तरह ये जो हमारे भाई, इन्होंने मैसेज किया, खत संभाल के रखे भाई 32 सालों से. साजन बलूच भाई कह रहे हैं कि 30 साल से मेरे पास एक चीज़ है और वो मैं खुद बेच सकता. बेच क्या है 30 साल से आपके पास साजन भाई, प्लीज़ लेट मी नो क्या है. क्या एक मैसेज है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बताओ मेरे भाई. बहुत बहुत शुक्रिया अंकल. टुडे इज़ माय लास्ट एग्ज़ाम आईटी का. यस्टरडे एग्ज़ाम सुपर इजी. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो ये आयशा ने मुझे मैसेज किया. आयशा स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने एग्ज़ाम्स के अपडेट दिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आज आईटी का एग्ज़ाम है, लास्ट है ना, बस निपटा दो फिर बढ़िया ट्रीट, फिर उसके बाद ट्रीट. साजन बलूच भाई कह रहे हैं मैं खुद ही हूँ 30 साल का, मुझसे तो पुराना मेरे पास कुछ नहीं है. साजन बलूच भाई मैं भेज रहा हूँ ये मूवर्स एंड पैकर्स वालों को भाई, अच्छे से लपेटना, नहीं मुंह पे भी टेप लगा देना. तो वो आ रहे हैं आपको ऐसे पूरा रोल करके लपेटेंगे ब्राउन उसमें, ठीक है, और ऐसे लेट जाने का सीधा. ज़्यादा शोर शराबा नहीं करने का, शोर शराबा करें तो रख के देना एक, तो आपको आराम से लपेट के म्यूजियम में दे जाएंगे. ठीक है, आ रहे हैं वो कुछ देर में, आप आराम से रहिए, कुर्सी पर बैठे रहिए, हिलना डुलना नहीं. अरे साजन बलूच भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कॉमिक्स राज कॉमिक्स नागराज डोगा सुपर कमांडो ध्रुव. अरे क्या बात है, कलेक्ट करता था और उनके करेक्टर्स के स्टिकर्स, एज यू सेड मेरे भी कलेक्शन आज किधर है मुझे पता नहीं. शारिक भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन था. मुझे पता है वो लोग बड़े पसंद है जो मैन ऑफ कल्चर है. आप मैन ऑफ कल्चर है मेरे भाई शारिक भाई, जिन लोगों ने ये जिन लोगों ने कॉमिक्स वगैरह पढ़ी है ना, वेरी नाइस. वो दौर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एरा ऑफ ऑल टाइम. भाई क्यों खो दिया यार आपने, तलाशो आप. मेरे पास ये जो कलेक्शन है पोकेमोन का आज भी रखा हुआ है, वो तो माने संभाल ले तो रखा हुआ है. साधन बलूच भाई कह रहे हैं आ जाओ. ठीक है भाई, ये साधन बलूच भाई की लोकेशन आई है, 30 साल पुराना सामान है. नहीं वो खुद ही है. हाँ आ रहे साधन बलूच भाई, ठीक है, हिलना डुलना नहीं, उन्हें पैर वैर बांधने देना. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई. एक सेकंड, एक कॉल भी उठा लेता हूँ मैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई,
0: कैसे हैं नदीम भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, बताइए नदीम भाई हुकुम का फरमाए, क्या है आपके पास?
2: तब कबीर भाई आज पुरानी याद ताजा करा रहे
0: भाई. कल मुझे पोकेमोन के कार्ड्स मिले भाई, मुझे पता लगा मेरे पास पोकेमोन के जगह कार्ड्स है. एक्साइटमेंट हो गई अलग सी.
2: अरे उनकी भी बहुत वैल्यू है पता है आपको, बहुत बहुत. अगर कोई रेयर कार्ड होगा ना तो वो तो भाई
0: भाई मेरे पास उस टाइम क्या सारा कलेक्शन होता था ना, वो 40,000 से लेकर हर कोई, तो वो सारे के सारे कलेक्टेड है भाई, एकदम बढ़िया.
2: वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर आप नेट पे चेक करना कभी आजकल तो बहुत वैल्यू है पोकेमोन का.
0: भाई मैं पैसे वाला होने वाला हूँ, बात नहीं करूंगा किसी से, क्या समझ. तो नदीम भाई आपके पास क्या है, कुछ ऐसा है मतलब बहुत पुराना रखा हो?
2: देखो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक के बहुत शौकीन है, तो मेरे पास है ना मेरा E90 पड़ा है.
0: अरे बाप रे, वो तो कब से, क्या बात है.
2: हाँ,
0: बहुत पुराना
2: है. E90 पड़ा है.
0: हाँ,
2: क्योंकि मेरे को कम्युनिकेटर का बहुत शौक था.
0: हाँ हाँ,
2: तो सबसे लेटेस्ट कम्युनिकेटर नोकिया में E90 ही आया था.
0: तो आप बेचने का कोई ऑफर आया आपके पास, मतलब खरीदने का? लोग बोलते हो कि भाई ये दे दो यार.
2: नहीं नहीं, मैं दिखाता ही नहीं किसी को, पड़ा है मेरे पास.
0: मैं पक्का बता रहा हूँ, जिस दिन आपने दिखाया ना लोग भाग के आएंगे.
2: वो नहीं बेच रहा है, वो तो पड़ा है.
0: खास है ना, वो मैं समझ सकता
2: हूँ. चार्ज भी करता हूँ, अभी भी चालू रखता हूँ.
0: अरे अच्छा, हो जाता है ऑन वो अभी भी? अच्छा आप चार्ज करके रख रहे ना, चार्ज करके रख रहे ना उसे.
2: और कॉलेज के टाइम की, कॉलेज मतलब स्कूल या कॉलेज के टाइम की स्लैम बुक पढ़ी है.
0: अरे स्लैम बुक भी पढ़ी है?
2: हाँ स्लैम बुक पढ़ी है, उसमें सारे दोस्तों के भरे हुए हैं सब डिटेल्स.
0: उसमें उसमें क्या भरा था आपने अपनी स्लैम बुक में, क्या भरते थे आप? शुरुआत से ये बनना था आपको कुछ और? स्लैम बुक में बताओ क्या भरा था आपने.
2: स्लैम बुक में बनने के लिए क्या भरते,
0: भरते थे ना कि माय ड्रीम ऑक्यूपेशन,
2: कभी पायलट चेंज होते रहता था, अलग अलग स्लैम बुक में अलग अलग भर के.
0: अच्छा ओके ओके.
2: और यहाँ पे कतर की एक वैल्यूएबल चीज जो पड़ी है वो मेरे पास 2022 का वो नोट पड़ा है, वर्ल्ड कप वाला.
0: अरे
2: आई थिंक कितना 75 का था क्या?
0: हाँ, वो मेरे ख्याल में भाई वो अभी उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जब दो कुछ साल और बीत जाएंगे तो आपके साहबजादे के काम आएगा. वो बहुत महंगी चीज है. वो
2: तीन नोट पड़े मेरे पास, वो मैंने रखे हुए संभाल के.
0: खजाना है भाई, उन्हें संभाल के रखिएगा, उन्हें मत वो साइड वर्ड कीजिएगा.
2: वो मेरे को दिखते, वो इतनी अच्छी उन्होंने बनाई है ना, वो देखने में इतनी प्यारी लगती है, तो वो उसको लिया था मैंने सिर्फ रखने के लिए.
0: हाँ नहीं वो वैल्यूएबल चीज है भाई, वो बहुत

0: Kasie din zodiata.
1: अरे देखो दिक्कत हो सकती है. 666-22107 पर आपके लिए लिए एक और मैसेज
0: है. नहीं है तब तक दिक्कत नहीं होगी, जब सुनेगी तो दिक्कत होगी.
1: नहीं आप कहें तो मैं बता दूं
0: जी.
1: नहीं
0: क्या नहीं नहीं
1: नहीं जी
0: थोड़ी होता है ये सब चीजें. देखो कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, कितने भी वो हो जाओ, भाई बीवी से डर के रहना पड़ता. सामने नहीं बोल सकते.
1: वो तो है. अच्छी बात है कि वो सुन नहीं रही हैं, बट प्लीज मेरा सलाम जरूर कहिएगा. ठीक है.
0: वालेकुम सलाम.
1: ठीक है मेरा भाई. बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई कॉल करने के लिए. ओके भाई, अल्लाह हाफिज. तो नदीम भाई के पास बहुत खजाना है भाई. नदीम भाई के बाद एक और मैसेज आया है. अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू? माय एग्जाम इज स्टिल नॉट फिनिश्ड. लास्ट वीक वाज माय यूनिट एग्जाम. अच्छा यूनिट एग्जाम चल रहे थे एंड दिस वीक इज माय ग्रेडेड सब्जेक्ट. ये कौन सा एच वाई ई ग्रेडेड सब्जेक्ट एग्जाम, ये क्या होता है बेटा? इतना नहीं पता मुझे. देन नेक्स्ट वीक इज माई एच वाई ई क्या है मतलब, प्लीज कैन यू ब्रेक इट डाउन फॉर मी. एग्जाम्स, अरीना ने मैसेज किया. अरीना मुझे पहले बताओ ये HYE क्या है. हाफ ईयरली एग्जाम. मैं बेटे माइक पे अपना सर मार लूं, मैं ये नहीं डीकोड करवाया. हाफ ईयरली एग्जाम. HYE कभी जिंदगी में हाफ ईयरली एग्जाम्स को इस नज़र से देखा नहीं ना मैंने, इसलिए पता नहीं है. एक मैसेज है, आई एम रेडी टू बाय. अरे नदीम भाई बेच ही नहीं रहे. नदीम भाई नहीं बेच रहे भाई. आशीष भाई उन मना कर दे, कह रहे मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बेचूंगा. एक मैसेज, माय पेरेंट्स फाइट बुक इन अर्ली वेडिंग. वेन एवर दे फाइट दे डोंट टॉक अबाउट राइट इन इट एंड कीप इट ऑन द टेबल, रिजॉल्व द मैटर. दे ऑल्सो यूज टू राइट थिंग्स ऑन इट वाइल राइटिंग कॉमेंट्स, और इट इज़ नॉट सिंपल राइटिंग, इट्स लाइक कैलीग्राफी. आर पेरेंट्स स्टिल डोंट हैव इन्फो वी नो अबाउट दिस. ये तो बहुत डेंजरस इन्फॉर्मेशन है आपके पास अयाज भाई, ये बहुत डेंजरस इन्फॉर्मेशन रखी है आपने. एक मैसेज और है. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम, कैसे? तो ये कह रहे हैं कि कबीर भाई मेरे पास एक बहुत पुराना कैमरा है जो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, वो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है. उसकी कीमत पिछले 2 सालों में तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार जब मैं उसे बाहर लेके निकला और मैं मुंबई गया था तो मुंबई में एक ख़रीदार थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस कैमरे के 2 लाख तक दे सकता हूँ. हैं भाई तू बेच दो 2 लाख रुपये कैमरा, अरे बाप रे बाप. अच्छा यादें जुड़ी हुई है ना, हम देसियों का ये भी तो है, इमोशन भी तो है, इमोशन भी तो जुड़ा हुआ है ना. ओके बट 2 लाख रुपए का भाई कौन सा कैमरा, जरा बताना मेरे को कौन सा कैमरा है जितना वैल्यूबल है. फरद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अमीर होने वाले हैं भाई लोग, आज से बात कर लो वरना बाद में किसी को भी नहीं बचा रहे भाई. जिस वक्त तो पोकेमोन वाले कार्ड मैंने बेच दिए फरद भाई, चलते फिरते रॉब दिखाऊंगा मैं, चलते फिरते. ऐसे नहीं सर, रुक के बात नहीं करूँ, रुक के तो सुनाऊंगा अलग, चलते फिरते होगा मामला. खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. क्या है, मैं आपका मैसेज अभी कुछ देर में पढ़ता हूँ. मैसेज और है, गुड मॉर्निंग दिस इज नजरत, आई एम 31 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल आई हैव इज सम मैग्नेट एंड मोटर दैट आई रिमूव फ्रॉम माई टॉयज बट कुडंट फिक्स दैट येट. आप हल्के में ले रहे हैं मेरे भाई इन चीज़ों को. नजरत भाई फ्रॉम बांग्लादेश, आपको पता है वो जो मोटर और मैग्नेट जिसको आप बहुत सस्ते में ले रहे हैं वो भी आज की तारीख में वैल्यूएबल है. जो हम करते थे मैं समझ गया, वो खिलौनों में से मोटर निकाल लेते थे, अरे मजा आता था भाई, मजा आता था उसको करके ना. तो वो आज वैल्यूएबल है नजरत भाई, उसको हल्के मत लीजिए. दैट इज नॉट समथिंग ऑल यू हैव, दैट इज अ लॉट दैट यू हैव. तो अच्छी बात है. एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये कह रहे हैं कि कबीर भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास भी पुराने ख़त पड़े हुए हैं आज भी. उन ख़तों में से एक ख़त बड़ा ख़ास है जो मैंने लेमिनेट करा रखा है, वो मेरी और मेरी वाइफ के मेन प्रपोज़ल को लेकर है, और वो ख़त को फ्रेम करा के हमने रूम में टांग भी रखा है. अरे मेरा भाई, ये तो मुग़ले आज़म से 2 कदम आगे ही चल रहे हैं आज के लोग. क्या बात है, खत को लेमिनेट करा के कमरे में टांग रखा. अरे भाई साहब, राइटिंग कैसी थी आपकी? राइटिंग बुरी हो तो कह देना कैलीग्राफी है, अच्छी हो तो कह देना हाँ बेटे तुम्हारे बाप ने ही लिखा है. बच्चों को ने तो देख लिया होगा अभी तक, तो इतने पुराने खत रखे हुए हैं यार, बहुत बहुत बड़ी बात है. खत

नहीं रखते लोग अभी, ऐसा लोग कहते थे, मगर अब मुझे यकीन हो गया लोगों ने खत रखे हैं इतने पुराने पुराने। एक मैसेज आया मेरे पास, ये मिस्टर आमिर साहब का मैसेज है। आमिर भाई ने लिखा है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरे पास पेजर रखा हुआ है आज भी, और मेरे पास पुरानी फैक्स मशीन भी है। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा सामान हुआ करता था, लेकिन मेरे भाई के पास वो सामान जा चुका है। मेरे पास अभी पेजर है, पुराना MP3 प्लेयर है, और एक आपको याद होगा MP4 प्लेयर आया करता था जिसपे स्क्रीन हुआ करती थी। भाई खजाना लेके बैठे हुए, खजाना क्या बात है यार, मतलब दिस इज अमेजिंग। तो मैं वही तो पूछा था, आपके पास कोई ऐसा बहुत पुराना सामान है या बहुत पुराना सामान जिससे शायद आपकी याद जुड़ी हो, हो सकता है बहुत वैल्यूबल हो सकता है ऐसा हो कि आप बोले मैं ये तो म्यूजियम में रखने वाली चीज़ है। एक मैसेज मेरे पास बहुत ख़ास है, मैं आपको ख़ास क्यों है बता देता हूँ आपको, बिकॉज इन्होंने एक तो पहली मरतबा मैसेज किया है। शी इज़ अ डॉक्टर, एंड उन्होंने जो मैसेज किया है, नाम बोलने से मना किया, ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उनका उन्होंने बताया कि मैं इजिप्ट गई थी, एंड इजिप्ट से मैंने एक स्टोन ख़रीदा था। उस स्टोन पे कैलीग्राफी थी, और उस स्टोन को जब मैंने ख़रीदा था तो वो ज़्यादा नहीं था, कदर के मान लीजिए 55 रियाल का होगा, लेकिन आज की तारीख में उसकी कीमत जो है वो 10,000 से 15,000 रियाल तक की है, बिकॉज वो बहुत ही स्पेशल कैलीग्राफी हुई है, और जिस आर्टिस्ट ने करी है उनका आर्ट अचानक से फेमस हुआ, तो इसीलिए ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्या कैलीग्राफी में है, क्या मतलब लिखा हुआ क्या है ऑन दैट स्टोन, मतलब व्हाट इज, मैं आपकी बात को समझा लेकिन नहीं समझा, समझ रही हैं आप मतलब बहन, प्लीज़ ये बता दे मुझे, क्योंकि आपका नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, बट आप समझ रही, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो व्हाट इज रिटन ऑन द स्टोन, ताकि मेरे को क्लियर हो सके। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास पुराने बहुत सारे फ़ोन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे का मतलब मेरे पास 12 फ़ोन्स हैं। मेरे पास स्लाइडर फ़ोन भी है पुराना वाला, मेरे पास वो वाला फ़ोन भी है जो जो सर पे लगे तो सर फट जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। इनके पास भाई 12 फ़ोन्स हैं पुराने वाले, 12 फ़ोन्स इंक्लूडिंग वन लैंडलाइन जो उस ज़माने में आता था, वो अभी तक है इनके पास। अरे आप लोगों के पास इतना सब कुछ है, ये खजाना, तो इससे कुछ करते क्यों नहीं, मतलब कलेक्टर के तौर पे आपने रखा हुआ है या आपको पता नहीं था। फरज भाई कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, भाई चलेगा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, वो तो पोकेमोन के कार्ड अम्मा ने संभाल के रखे तो है हमारे पास, वरना वैसा कुछ नहीं मेरे पास पुराना। समझेगा नहीं ऐसा, पर ये जो लोग संजोस के रखे हुए इतनी सारी चीजें, ये कमाल की बात है। तो मतलब इन कमिंग बैक टू यू मिस्टर, क्या नाम है इनका, इरफान भाई आपके पास 15 फोन से पुराने, एक लैंडलाइन भी है, ये कलेक्शन के तौर पे आपने चूज किए थे कि क्या चक्कर है ये। अच्छा आगे उन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ बहुत गुस्सा करती है, क्या कचरा भर रखा है, बाहर फेंक दो। तो फेंक दीजिए, मेरा घर का एड्रेस देता हूँ, वहाँ आके फेंक दीजिए, मैं देख लूँगा क्या करना है इनका। आप मेरे घर पर आइए, मैं लोकेशन देता हूँ, सबका सब ड्रॉप करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भाभी भी खुश और मैं बहुत खुश, मैं भेज दूंगा। क्या आप कहते ना कूड़े में डाल दिया। पता नहीं है लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप क्या क्या चीज़ें हैं। एक भाई ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं भी 90s का किड हूँ, मेरा नाम क्या है, निशांत, मैं मेरे पास पुराने ट्रम्प कार्ड हैं जो WWF के आया करते थे, उसमें मेरे पास स्टोन कोल्ड, रॉक और इन सब के कार्ड्स के साथ साथ वो वाले कार्ड्स भी जो स्पेशल कार्ड्स थे, और ट्रम्प कार्ड्स मेरे पास दो किस्म के रखे हुए हैं, पूरी की पूरी गड्डी है। मैं इन्हें बेचने तो वाला नहीं था, लेकिन आपकी बात सुन के मुझे लालच आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि बेच दिया जाए। ट्रम्प कार्ड्स पुराने वाले, पता नहीं कितनी वैल्यू होगी, आई डोंट नो बट ये है कि मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो थोड़े से महंगे हैं। बेटे मेरे पास जो पोकेमोन कार्ड्स हैं ना, आज भी उनकी वैल्यू है। बेचने के बाद बात नहीं करूँगा सीधे मुँह। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, जिस भाई ने लेटर फ्रेम में टांग रखा है, ये भाभी की तरफ से वार्निंग है, अगर शॉपिंग ना करवाई तो लेटर की तरह टांग दूंगी। वो मोहब्बत दिखा रहे हैं जावेद साहब, पर आप देख रहे हैं जावेद भाई, आप वक्त है जावेद भाई, हमारे JB भाई, कि आप भी लेमिनेट कराएं उन लेटर्स में से, पुराने लेटर्स में से एक चूज करें कौन सा सबसे खास है, और फिर उसे टांग दें, और ऐसी जगह टांगें जहां आपको दिखता रहे, एज अ रिमाइंडर।

0: एक मैसेज आया नसीम साहब का, टीवी है 2001 का। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टीवी, जिनके पास टीवी भी पड़ा है इतने पुराने। अरे मैंने सोचा नहीं था इतने सारे लोग निकल के सामने वाले आने वाले इतने पुराने पुराने चीज़ों को लेके। एक मैसेज, मेरे पास फोटोज हैं 90s में खेला करते थे हैदराबाद में मूवी वाले कार्ड्स, भाई क्या क्रेज था। अरे तो फरहत भाई ये तो काम की चीज़ है, तो काम की चीज़ है फरहत भाई, आप कह रहे हैं कुछ नहीं आपके पास है तो सही। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, हमारे घर में पुराना कंपनी का नाम नहीं ले सकता टीवी है जो पूरे क्या ट्रॉली में बंद नहीं आता आता था। अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई इरफान भाई, ये तो टीवी मजेदार होगा, ये जो पुराना वाला ट्रॉली वाला कह रहे हैं ना, आ हा हा हा, ये बहुत अच्छी चीज़ होती थी ये ट्रॉली वाला टीवी। आई डोंट नो, ट्रॉली वाला टीवी एंटिक तो है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है बोली लगवा रहा हूँ मैं। आपके पास क्या है, फ्रिज है क्या? नहीं बिकेगा, जाओ जाओ जाओ। बट ज़रा ज़रा सी चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं जो आपने हल्के में ली, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्राचीन युग से ज़मीन से ज़मीन में खुदाई करके आपने खजाना निकाला, ये वो ख़जाना भी नहीं है, ये लिटरली आप ही की और अपनी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे लोग सामने आए जिन्होंने, जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं, टिकट कलेक्टर्स हैं, एक फवाद भाई हैं, फवाद भाई अगर मुझे सुन रहे हैं अभी, फवाद भाई को मैं जानता हूँ, फवाद भाई के घर पे मतलब जब से वो कतर में रह रहे हैं तब से लेकर हर एक इवेंट का कार्ड है उनके पास, वो आज के बाद बहुत काम आने वाला है या 2000 के करीब होंगे। तो भाई फरहत भाई बड़ी चीज़ है ये। एक मैसेज है फैजान भाई का, लिखते हैं आई हैव क्या कर्मा कर्मा हूँ टी सी की वन सीरीज है इंडिया की, उसका फेस मास्क है मेरे पास। ये क्यों है फेस मास्क आपके पास, पहले मुझे बताइए किस खुशी में ख़रीदा था आपने इंजीनियर मोहम्मद फैजान ये कर्मा कर्मा हूँ का ये फेस मास्क। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपने इसका मास्क ख़रीदा क्यों। कह रहे हीरो बनते थे लगा कर। अरे यार इंजीनियर फैजान भाई क्या चल रहा है मार्केट में। मेरे पास शक्तिमान की ड्रेस है, अम्मा से पूछनी पड़ेगी आज, अगर मिल गई तो मैं अपनी शक्तिमान की ड्रेस और आप ये कर्मा कर्मा का जो आपका मास्क है ये दोनों भाई मिल के बेचेंगे। तला भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, मेरे पास आज भी पुराना वाला फ़ोन है जो चलता है, कभी भी उसकी ना बैटरी चेंज की और ना ही कोई रिपेयर। आज के फ़ोन्स में है भाई ये बिगड़ेलू आदत, पहले वाले फ़ोन्स में नहीं होती थी। पर आपका फ़ोन जो आपके पास है ना वो जैस भाई इतना पुराना भी नहीं है, वो ठीक है, मतलब शुरुआती दौर का तो है। जैस भाई थोड़ा और पुरानी चीज़ ढूंढो आप, मिलेगी कहीं ना कहीं। तो एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: कैसे हैं कमाल भाई? मैं बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल भाई आप सुनाएं
1: भाई, इसको बेचना कैसे? मेरे पास तो जो है ना पुरानी एक नोट जो पुरानी बहुत पुरानी है, 87-89 की करीब होगी, 2 रियाल के 2 रुपया 1 रुपया पुराना, कॉइन भी कलेक्शन का बहुत है।
0: अच्छा कॉइन कलेक्शन का बहुत है, कॉइन है।
1: हाँ
0: अरे बाप रे बाप, तो आपने अभी तक कलेक्ट कर रहे हैं, छोड़ दिया कलेक्ट करना?
1: नहीं तो कलेक्ट करना छोड़ दिया है।
0: अच्छा कलेक्ट करना
1: बेटा रखा हुआ है, दे दिया था बेटे को, रखा हुआ है वैसे पड़ा हुआ है। पुराना एक कैमरा है मालूम, एक चपटा सा कैमरा आता था,
0: समझ गया,
1: फिल्म कलर का, वो मेरे अब्बा का खरीदा हुआ है, फर्स्ट टाइम पे आए थे शायद सऊदी, उस टाइम पे खरीदे थे
0: भाई। खजाना है आपके पास तो कमाल भाई,
1: बेचना कैसे भाई? खजाना तो भाई आप तो बता रहे खजाना है, देखो कैसे?
0: वो मैं आपको ऑनलाइन बता दूंगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा कैसे कर सकते हैं
1: व्हाट्सएप कर देना,
0: वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, लेकिन वैसे तो
1: आप बताइए। लेकिन
0: बहुत वैल्यूएबल चीज है आपके पास माशाल्लाह, ये आपको पता नहीं था इससे पहले?
1: अरे एक दो बार मैंने देखा है फेसबुक पे कि जो है 10 का नोट है तो इतने में बिकेगा, 5 की कॉइन बड़ी वाली है तो इतने में बिकेगा, लेकिन डर लगता है भाई, पता नहीं है या फ्रॉड है क्या है, पता नहीं।
0: नहीं नहीं नहीं, सही जगह पे अगर आप डालेंगे ये चीजें बहुत वैल्यूएबल है भाई, इनकी असल में बहुत अहमियत है। आप हल्के में लेते आ रहे हैं कमाल भाई, क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि आप ये भी टैलेंट है आपका माशाल्लाह। अच्छा
1: पुराना VCR रखा हुआ है,
0: वो भी रखा हुआ है आपके पास?
1: हाँ अभी तो कैसेट भी रखी हुई है भाई उसकी।
0: अरे अरे यार मुझे आप मुझे जलन हो रही है, तो कमाल की बात है, इतनी पुरानी तो बिल्कुल संभाल के रखा है। आर यू श्योर अबाउट इट? आपके पास संभाल के रखा हुआ है?
1: हाँ संभाल के रखा हुआ है।
0: तो भाई अगर आपको उससे कोई दिल लगी नहीं है तो वो बहुत वैल्यूबल है, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कमाल भाई। ये तो मैं आज आपको जगाऊंगा पकड़ के, कमाल भाई होश में आइए, बेचिए इनको,
1: बताइए आप उसको सेल कैसे करना है।
0: ठीक है भाई, मैं आज तो आपसे

0: बात करूंगा इस बारे में, अलग से हम जरा व्हाट्सएप पे बात करते हैं। गॉसिप करना जरूरी है आज अपनी। बाकी आज की कहानी छोटी है कमल भाई, पसंद आएगी लेकिन आपको इंशाल्लाह।
1: चलेगा भाई,
0: ठीक है,
1: छोटी हो बड़ी हो कहानी होनी चाहिए
0: बस,
1: और आपकी जवानी होनी चाहिए।
0: अरे मेरा भाई बहुत प्यार, और मैं आपको अलग से बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है?
1: ठीक है,
0: ओके मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच मेरा
1: भाई,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाई कमाल भाई को खुद ही नहीं पता है कितना कमाल कर रहे हैं वो, समझ रहे हैं आप? आपको लग रहा है वीसीआर होना कोई छोटी मोटी बात है? मार्केट में जाके पुराना वीसीआर का प्राइस देख लेना, ठीक है? एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। अरे रमेश भाई, आए आए आए आए आए, बताइए रमेश भाई।
2: मैं कह रहा हूँ मेरा दिन पूरा नहीं होता जब तक मैं तुम्हें कॉल लगा।
0: यार रमेश भाई, यार इमोशनल मत क्या करो यार, ये गलत बात होती है।
2: भाई ये मतलब ये तो प्यार मोहब्बत है, ये तो चलता ही रहेगा, रेडियो हो ना हो फलाना हो,
0: हाँ
2: ये तो बस प्यार है।
0: नहीं बाबा बहुत प्यार भाई, दिल से प्यार। मैं कहता भी हूँ, घर पे भी कहता हूँ, विलेश भाई जो है सच में जो बेस्टी कहते हैं ना, बेस्टी वाली जो फील है वो विमलेश भाई से ही आती है, ट्रूली।
2: चलो ये मैं मानने को एकदम 100% तैयार,
0: क्योंकि मैं आपको रील भी, मैं आपको रीलें भी भेजता रहता हूँ उस टाइप की।
2: मुझे मतलब ऐसी रील बस एक ही तो लोग भेजते हैं, दोनों दिल्ली वाले हैं, दोनों दिल्ली वाले।
0: हाँ बिल्कुल। तो विमलेश भाई क्या है पुराना आपके पास?
2: भाई मेरे पास ना दो चीजें हैं, लेकिन मेरे पास एक 1963 की कॉइन है, वो भी ये है स्विस फ्रैंक है।
0: 1963 का?
2: हाँ 1963 का स्विस फ्रैंक है, कॉइन है वो।
0: अच्छा,
2: तो मुझे कभी ना, मैं जब मतलब इंडिया में ही था तो मुझे कोई आया था तो उसने मुझे दिखाया था, मैं मतलब मैं रख लूंगा,
0: हाँ।
2: बिलीव नहीं करोगे, वो कतर में भी आज मेरे पास, आज भी है मेरे पास।
0: अरे भाई बहुत वैल्यूएबल चीज लेके बैठे हैं आप तो, मतलब कितने का है वो कॉइन, मतलब क्या करेंसी कितने की है वो?
2: मुझे स्विस फ्रैंक का CHF लिखा हुआ है उसके, मुझे लगता है वो 25 या 50 सेंट बोलते हैं ना उसको।
0: हाँ, शायद पता नहीं
2: है, लेकिन उसके उसके अंदर मुझे यही पसंद आई, 1963 की है तो मैंने रखा हुआ है उसको।
0: अरे बहुत
2: करके रखा हुआ है,
0: बहुत वैल्यूएबल। नहीं वो वैल्यूएबल है मेरे भाई,
2: मेरे नजर में तो है, अब आगे नहीं होता। लेकिन मेरे घर में ना, मेरे घर में जो मेरी बहन है जो दिल्ली में रहती है ना,
0: हाँ।
2: मतलब वो तो एक कहते ना कीड़ा होना आदमी के अंदर की पुरानी चीजों को, डजंट मैटर की कैमरा क्वाइन,
0: हाँ।
2: नहीं ये नहीं, उसके पास बिलीव नहीं करोगे, जब मैं 10th क्लास में था तब उसके पास की कब थी, मतलब 2003,
0: हाँ।
2: वो आज तक है उसके घर में, आज भी।
0: तो ये तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी आपने सुना ना कमाल भाई के पास VCR पड़ा हुआ है, आपको कितने घर पता है जिनके पास VCR पड़ा हुआ है पुराना? बहुत महंगी चीज है,
2: बहुत लोगों को VCR बोल दो तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बातें कर रहा है।
0: है ना? सही है, सही है।
2: हाँ। नहीं मैं वो जो अभी जिन्होंने कॉल किया था ना, मैं सच में कहूंगा VCR रखना, वो चप्पे वाला जो कैमरा बोला उन्होंने, अलग अलग कंपनियों का आता था वो रहना, ये क्वाइन मतलब बहुत टास्क है भाई, वो इतना संभाल संभाल के रखना। मैं बता रहा हूँ एक ना, वो जब मेरी बहन गुजरात से आई थी ना, तो नल की टोटी होती है ना नल का, भाई को गुजरात से लेकर दिल्ली के चार घरों में उसने चेंज किया रेंट वेंट, ठीक है ना, आज भी है, मतलब 2001 से लेकर 2026 तक आज तक रखा है। मैंने बोला क्यों, कह रहा है मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है।
0: बाप रे बाप।
2: और सुनो, वो लड़की है ना, जैसे होता है ना कि दादाजी ने चौथी क्लास में मुझे ये पेन दिया था, मुझे ये याद है, पेन लिखो खत्म करो रखो, या नहीं दादाजी की निशानी में यार। दादाजी की निशानी प्रॉपर्टी होती है
0: भाई, लोगों का ऐसे लोगों ने मजाक उड़ाया उस टाइम पे, कह रहे क्यों कलेक्ट करो, लेकिन आज की तारीख में ना समझ में आ रहा है इनका कलेक्शन बहुत काम का है भाई, उस जमाने के तो आप पेन पेंसिल लेकर हर एक चीज, इट होल्ड सम वैल्यू।
2: लोगों के घर से एल्बम गायब हो चुके हैं, वो जो पुराने तस्वीरों ना पेड़ के किनारे,
0: हाँ, हाँ,
2: पिकनिक मनाते गायब हो गए, हमारे घर में नहीं हुआ है गायब, आज भी है वो,
0: तो
2: वही फोटो संभाल के रखी है उसने, 1997 1998 96 वाली फोटो।
0: यही तो कह रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, लोग वो हल्के में ले लेते हैं, जिनके घरों में ये सब संभाल के रखा हुआ है बहुत अच्छी चीज है,
2: वो आर्टिस्ट है भाई, सैल्यूट करते हैं।
0: नहीं मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूँ आज, मुझे पता लग रहा है कि लोगों ने क्या क्या संभाल के रखा हुआ है, लव लेटर्स तक लोग फ्रेम करा रहे हैं भाई, पुराने पुराने रखे हुए लोगों ने, तो यहाँ तक पहुँचा हुआ है मामला। बट
2: लव लेटर की बात अगर है तो हमने मेल में रखा है, उससे ज्यादा तो नहीं रखा।
0: लेमिनेट करवाइए, हमें भी पढ़वाइए क्या कहते थे आप ऐसा। ठीक है,
2: देखना पड़ेगा, चलो भाई।

ओके मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया विमलेश भाई, चाय का पिला रहे, भाग गए रहो विमलेश भाई, चाय जल्दी पिलाओ भाई विमलेश भाई। और नदीम भाई ने मैसेज किया है, नदीम भाई कह रहे हैं शक्तिमान की ड्रेस से दूर ही रहना, मुकेश खन्ना एक और इंटरव्यू आएगा अगर पहना हुआ देख लिया। नदीम भाई आप मुझे पता कैसा लगता है, वो बचपन में जो दोस्त होते हैं ना, अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे के बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं, वैसी वाली फीलिंग आती है आपसे। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, क्या फिर हमने फिर हम ही ले लो क्या ज़माने के हैं, नहीं नहीं आप सही ज़माने के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज क्या है, गुड मॉर्निंग आई हैव दिस इन कतर, बैक होम वी हैव कॉइंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू। अरे अरे बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ये हैरी पुत्र जी, बहुत कमाल की चीज़ है ये। फराज भाई कह रहे हैं मेरे पास जस्ट मेरी एजुकेशन डिग्री एंड बर्थ सर्टिफिकेट है, वो बेच नहीं सकता। अरे एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास 1994 की अपनी फोर्थ ग्रेड की रिपोर्ट कार्ड है, स्टैम्प्स मेरे पास भी रिपोर्ट कार्ड है एक्चुअली अपनी फोर्थ ग्रेड की, मेरे ख्याल में मेरे पास फर्स्ट क्लास की भी है। स्टैम्प्स कलेक्शन है, पोस्ट कार्ड्स हैं, स्टिकर्स हैं, इसके अलावा ऐसी भी चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम पाकिस्तान गया तो यहाँ लाया था, डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन्स हैं बट वो नहीं लाया। ऑल्सो आई हैव टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसी दौर के जो अब बच्चों को दे दिए हैं। आतिफ, आतिफ भाई आपने तो घर में ही म्यूजियम खोल रखा है, ये तो वेरी इंप्रेसिव बाय द वे, वेरी वेरी इंप्रेसिव। फरद भाई कह रहे हैं बेचना कैसे भाई, काम की बात है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी फरद भाई, ये कमाल भाई की बात कह रहे हैं, सब छोड़ो मुझे बताओ बेचना कैसे, मुझे मत ये ज्ञान दो एंटीक वेंटी, सीधा पॉइंट की बात। समय लिखती है, अस्सलाम वालेकुम, नाइस टॉपिक, मेरे पास ऑटो बुक्स हैं और न्यूज़पेपर कटिंग्स का कलेक्शन है, न्यू ईयर कार्ड्स, बर्थडे गिफ्ट्स विच आर लिटरली फ्रॉम क्लास 3 and 4, माय फर्स्ट फ़ोन फ्रॉम 2010। ऑटो बुक्स से एक नॉस्टैल्जिक चीज़ याद आती है, कुछ सहेलियां दोस्त कहते थे पहले मुझे देना उनको देना फिर फिल करने के लिए, देयर वाज अ काइंड ऑफ सीक्रेट मैसेज फॉर ईच अदर इन एवरीवन्स ऑटो बुक्स। तबस्सुम बहन यह अगर आपने अभी तक संभाल के रखा है ना, इट्स अमेजिंग, ये तो ऐसी चीज़ है कि पुरानी है एंटीक है पर बेची नहीं जा सकती, इट्स वेरी वेरी पर्सनल यू नो, तो उसमें आपको बहुत सारे राज भी मिले होंगे, ये गॉसिप भी तो है आपके पास। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम सलाम मेरे भाई, मैं खैरियत से, मैसेज किया इब्राहिम भाई ने, इनके बाद गुड मॉर्निंग कबीर भाई, माय नेम इज़ नूरुद्दीन, मेरे पास अच्छा रिचार्ज कार्ड्स हैं, पुराने कतर वाले रिचार्ज कार्ड्स हैं भाई के पास। गुलरेज भाई ने मैसेज किया, सलाम कबीर भाई, व्हाट अ टॉपिक यू फ्लोट, ये मार्केट में हिट हो गया ये टॉपिक, यू फ्लोट ये मार्केट, अच्छा ओके। आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ कॉमिक्स, चाचा चौधरी बिल्लू फैंटम की कॉमिक्स, दिस फुल ऑफ बॉक्स मेरे कतर आने के बाद घर वालों ने रद्दी वालों को दे दिया। अरे यार गुलरेज भाई आपको पता है कि रद्दी वाले के पास खजाना चला गया, क्या नेक्स्ट हमारे घर इंडिया में एक एंटीक केरोसिन लैंप है, माय ग्रैंडफादर बॉट इट इन 1940s, इट वाज मेड इन जर्मनी विद ब्लैक सेरेमिक स्टील स्टैंड क्रिस्टल केरोसिन टैंक एंड ब्रेस की चिमनी स्टैंड, अनफॉर्चुनेटली इसकी चिमनी नहीं मिलती, थर्ड मेरे पास टाइम कलेक्शन भी था वो भी कहीं खो गया। गुलरेज भाई कैन आई सेंड यू टू क्राइंग इमोजीज प्लीज, मैं मेरे को बुरा लग गया यार, सेकेंड हैंड आपने मुझे बुरा लगवा दिया। कोई नहीं, एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, फादर के लेटर्स हैं 80s के, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बाकी बहरीन में क्या मौसम बदला है कि नहीं बदला है बहन? आसिम भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, एयर क्या 243 की क्या कहानी है, क्या एयरलाइन 243 की क्या कहानी है, मतलब एयरलाइन 243 की क्या कहानी है? एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड, ये तौकीर अहमद भट्ट साहब का, जानी गुड मॉर्निंग, आई हैव पुरानी बाइक, नाम नहीं ले सकता, विच माय डैड ब्रॉट इन 1960s वाली बाइक है आपके पास, और रहा भाई बहुत कर रही चीज़ है। जानी व्हाट्सएप नेम टू लिसन यू ऑन मोबाइल नेक्स्ट टेक्स्ट मी, एक सेकंड, क्या व्हाट्सएप द ऐप नेम यू लिसन, मैं समझा नहीं तौकीर भट्ट साहब ये क्या बोला आपने। अरसलान भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई हैव 1960 स्पोर्ट्स बाइसिकल, और रे भाई साहब कह रहे मेरे नाना यूएसए से लेकर आए थे, ही वाज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, वेंट देयर फॉर ट्रेनिंग। अरे माशाल्लाह, तो नाना ने तो बहुत इंस्पिरेशन पूरे खानदान में कूट कूट के दी होगी, कह रहे स्टिल इन वर्किंग कंडीशन, इट हैज़ अ हेडलाइट।

which glows once you pedal. I would love to see that, Arslan bhai. So, yahan par hai ki matlab country mein hai rakhi hui. Aisa Shyam bhai keh rahe hain, Assalam Alaikum Kabir bhai, mere paas purana VCR, TV, purana wo save wala phone, currency aur purane phone aur Pentium 2 ka PC bhi hai. To isko इसको म्यूजियम घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? अच्छा भाई, ये सब खजाना लेके बैठे हुए, कोई बेचने का इरादा नहीं है आपका? अब वीसीआर तो मुझे ही बेच दो. इरफान भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई हैव सेम मोबाइल विद बोथ नेटवर्क्स सिंस 2000s. और भाई साहब, सभी भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास दादा की रिंग बहुत खास है, फिर भी पता नहीं कहीं खो गई है. एकदम सैड कर दिया आपने. फिर और ओल्ड पिक्चर्स एल्बम तो अभी तक रखा हुआ है, जिसमें मेरे भी बचपन के फोटोज़ हैं. बचपन में आपका भाई एकदम ऐसा लगता था कि बड़े होकर फुटबॉलर ही बनेगा. एक मैसेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी. हाँ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का विलेज भाई रखा हुआ है उन्होंने, समझ रहे हैं आप. फिर एक कॉइन कलेक्शन ओल्डेस्ट फ्रॉम 1930s. एक सेकेंड भाई रुको, 1930s और 1940s स्टैम्प्स कलेक्शन. माई फादर मैकेनिकल रिस्ट वॉच इज स्टिल वर्किंग दैट ही गेव मी एज लाइक अ वॉच. ऑल ऑफ माई फोन्स लैपटॉप्स फ्रॉम 2004. थिंकिंग ऑफ डॉटर टू ओपन देम एंड मेक देम अ रेजन आर्ट टेबल टॉप विद इट्स पार्ट्स इन इट. माई गॉड, दिस लुक्स इम्प्रेसिव. ताहिर भाई, ताहिर भाई ने तो भाई झंडा ही गाड़ दिया. उन्होंने कहा साइड हटो. आया ताहिर भाई.

0: FM 107, Time Check.
1: सातों घड़ी में हो गए भाई, सातों आप भी सातों दे ही रहे हैं मेरा। इतनी मोहब्बत है ना आप लोगों से। ये जो जनता है ना बहुत खास है भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं इस बात पे थोड़ा सा गुरूर कर सकता हूँ 1% का। अपने शो की जनता भाई अलग ही, तालियां बजाना चाहता हूँ मैं, तालियां। आप लोग जिस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना, सेट हो जाता है भाई। जो सुबह के 3 घंटे ना इतने खास हैं, इसका पूरा क्रेडिट श्रेय और क्या कहते हैं, और कोई वर्ड है क्या, आपको जाता है। थैंक यू सो मच। तो मैं हम बात कर रहे थे भाई, ये जो पुराने सामान होते हैं ना घर पे जो रखे होते हैं, कुछ लोग कलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों के पास इत्तफाकन रह जाते हैं, इनकी वैल्यू होती है मार्केट में भाई, लोगों को पता ही नहीं होता। मुझे भी एहसास कल ही हुआ है, तो मैंने कहा ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, तला भाई फरमान खोल लिखते हैं, मेरे पास तो नहीं है बट हमारी बेगम के पास हैं स्टैम्प्स कॉइंस अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड, बाकी हैं। दोस्त के पास उसके डैड का 1890s के डबल बैरल गन है पाकिस्तान में, जो न्यू ईयर पे निकलती है। 1890s की डबल बैरल रखी हुई है भाई। फोटो चाहिए मुझे, देखना है। मतलब मैं सबूत नहीं मांग रहा, मुझे देखना है, इच्छा जाग उठी है। परवेज भाई वालेकुम सलाम लिखते हैं, आई हैव एम्प्लॉय कार्ड ऑफ ऑल माई प्रीवियस कंपनीज। ये देखो, ये ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद है। ये परवेज भाई संभाल के रखिएगा, उन्हें बहुत काम की चीज़ है ये, अच्छा लगता है उन्हें वापस देख के, काश मैंने भी ऐसा रखा होता। अमन भाई ने मैसेज किया है, घर में 1978 का कलर्ड कैमरा पड़ा हुआ है और उससे खींची फोटोज भी, पापा लाए थे दुबई से। तो अमन भाई उसको संभाल के रखो भाई, बेचने का मन करे तो मुझे याद करना, कहीं भूले ना जाना। एक मैसेज है, कल तो अच्छा था मौसम, ये मैसेज किया आया है मुझे सीधा बहरीन से, और मौसम अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बदला है। यहाँ पे तो बदल गया है बहन, वहाँ का मुझे पता नहीं कब तक बदला रहेगा, गर्मी पड़ रही बहुत ख़तरनाक वाली। कह रहे हस्बैंड और बीबी के साथ गार्डन गए थे, माशाल्लाह। सलाम कहिएगा मेरे भाई को। अच्छा प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। इनके बाद एक मैसेज आया है, क्या लिखा है, मेरे पास सबसे पुरानी चीज़ एक मेरी नानी की रिंग है और मेरे हस्बैंड हैं। सुम्बुल जफर कह रही है, सबसे पुराने तो मेरे हस्बैंड हैं। अब इनका पता नहीं क्या लगेगा मार्केट में, लेकिन नानी की रिंग है साथ। ए जी सुनते हो, फोटो खींचनी है आपकी ये ऑनलाइन डालने के लिए। नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। एक मैसेज है, आई हैव VCR कैसेट एंड ओल्ड टीवी ऑल्सो, द VCR इज स्टिल न्यू कंडीशन यूज्ड वंस। भाई उस्मान भाई जलन हो रही है मुझे, जिसके पास VCR है मुझे जलन है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, माय मदर यूज्ड टू कलेक्ट कॉइंस, शी हैज अ कलेक्शन ऑफ वेरी वेरी ओल्ड कॉइंस एंड पूरा बॉक्स है। देन माय ग्रैंडमदर की शादी की कटलरी। अरे भाई ये बड़ा यूनिक आइटम है, शादी की कटलरी दादी की, विच वॉज हैंडमेड, जो उन्होंने मेरी अम्मी को, अच्छा नानी मेरी अम्मी को दी थी, एंड माई मदर हैज कैप्ट इट आज फॉर नाउ। दिस इज सो वैल्यूएबल, ये तो बहुत खतरनाक किस्म का वैल्यूएबल हो गया समीरा जी, ये तो पैसे संभाल के रखिए आप। एक मैसेज और आया है, ये किन्होंने किया है, सुशील भाई कैसे हैं सुशील भाई। नाजिया बहन वालेकुम अस्सलाम, मैसेज है, भाई सिर्फ क्रेडिट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत कमीशन भी मिलना चाहिए ना। अच्छा जी, ये तो शाम भाई बिजनेस पे उतर आए, बहुत जल्दी पलटी खा गई। एक मैसेज है इमरान भाई का, वालेकुम अस्सलाम। देन मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास 1995 के घर पे पेपर हैं, तो मैं रद्दी वाला बन के आता हूँ, ठीक है, एक्टिंग करूँगा, मुझे दे देना, बदले में मेरे से 2 बर्तन ले लेना। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आई हैव 2004 वाला शार्प ब्रांड टेप रिकॉर्डर। ये मैं बताऊं एहसान उबैद कुरैशी भाई, बहुत बढ़िया ख़जाना है आपके पास, ये जो टेप रिकॉर्डर्स और फैक्स मशीन्स और जो पेजेस रखे हुए लोगों हैं ना, लोगों के पास बहुत काम की चीज़ है ये। तला भाई फरमान खोर लिख रहे हैं, बाय द वे बेगम की नाना की रिंग थी जो मेरी सास ने दी थी, वो हमने पहनी और घुमा दी, बहुत बड़े, शाबाश। ये तला भाई को ज़रा एक गुद्दी पे टैटू दे के आओ। तला भाई कैसे खो गई भाई, ये कोई रिंग खोने वाली चीज़ है। एक मैसेज, आई हैव ऑल द एडमिट कार्ड्स ऑफ माय एग्जाम्स एंड स्कूल डायरी विद ऑल द कंप्लेंट्स फ्रॉम स्कूल टू माय पेरेंट्स। सारी बचपन की यादें जो हैं, जो डायरी में समेटी हुई है, इनकी जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हुई हैं, यू नो व्हाट यू डिड यू जस्ट नाउ, मुझे आपने मेरी डायरी ढूंढने में मजबूर कर दिया. आई एम प्रिटी श्योर मेरी स्कूल की डायरी मुझे मिल जाएगी. उसमें कंप्लेन छोटी मोटी कंप्लेन नहीं है भाई. हो सकता है आपकी कंप्लेन इंग्लिश में लिखी हो, है ना, बुरा नहीं लगेगा. हमारी डायरी में कंप्लेंस उर्दू में लिखी हुई है. वो पढ़ के ही डर लगता था. एक मैसेज है, हस्बैंड प्राइसलेस है, प्राइस का टैग नहीं, कोई भी उठा के ले जाओ, कोई चार्ज नहीं. हाँ, मोटिवेट करो अमन भाई, यही फैलाओ मार्केट में. अस्सलाम वालेकुम भाई. अरे रे रे रे रे, VCR की फ़ोटो वोटो भेजी. कमाल भाई, मैं मुंबई आता हूँ और कवाड़ी आवाज़ लगाते हुए आप मुझे मुंह पे देखे मानना. मुशीर आलम साहब वालेकुम अस्सलाम. वुजू के लिए मस्जिद में उतारी और भूल के आ गए. तला भाई, अगर आपसे कनेक्शन नहीं होता ना तला भाई, आज पक्का झगड़ा था भाई, आज पक्का झगड़ा था. आपके लिए मैं अलखोर आता लड़ने के लिए, पता है आपको. मेरा ऐसा बुद्धि घुमा दी आपने बात बता के. सुना आप लोगों ने क्या कहा इन्होंने, ये कह रहे हैं कि बेगम के नाना की रिंग थी जो मेरे सास ने दी थी, वो पहनी थी, इन्होंने घुमा दी, मस्जिद में उतारी थी, भूल के आ गए. बताइए आप लोग भी चलेंगे, चलेंगे अलखोर? तला भाई से मैंने, तला भाई हम सब आ रहे हैं अलखोर. आप हमें वहीं मिलिए वहाँ के कॉलेज पे. कि आगे लिखते हैं, बेगम से बहुत होने वाला था, मैंने बोला कि मुसीबत आने वाली थी, रिंग गायब हो गई. ये हर आदमी का बहाना है, कुछ भी महंगी चीज टूट जाए. अरे तुम सुनते नहीं हो, ये एक मुसीबत थी जो टल गई. हाँ ये मुसीबत थी, समझ रही हो? ड्रामा मत करो, ड्रामा मत करो, मुसीबत थी ये. वेरी गुड चला भाई, रफ्तार. ड्रामा ड्रामा ड्रामा ड्रामा. मैं दोहा वाला कबीर एफ.

0: 9 बजे के बाद नाश्ता करके ऑन हो जाती है, इसलिए मैं नहीं करवाता हूँ। अच्छा बताइए, 9 बजे
1: क्या क्या डिस्कशन चल रही है?
0: हर किसी घर में कुछ ना कुछ एंटीक, कुछ ना कुछ सामान होता है ना। ऐसे भी लोगों ने बताया उनके पास पुराने VCR, पुराने कैमरास पड़े हुए हैं। कोई कोई कॉइन कलेक्टर्स होता है, किसी के पास पुराने पोस्ट कार्ड्स अभी तक कलेक्शन है, मेरे पास पोकेमोन का कलेक्शन है। हाँ, तो ये सब बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं, पर कई बार पता नहीं होता कि ये मार्केट में इसकी वैल्यू है कि नहीं। तो ये पूछ रहा हूँ मैं, आपके घरों में क्या क्या है?
1: मुझे एक्चुअली डायरी लिखने का शौक था।
0: अच्छा।
1: तो मेरी शादी के टाइम में की भी डायरी जो है ना वो मैंने संभाल के रखी, अपने साथ लेके आई, और अपनी स्टूडेंट लाइफ की पिक्चर्स सारी अम्मी के तरफ से पाकिस्तान जाती हूँ, तो फिर वो सारी ला के उनकी मैं कलेक्शन रखती हूँ। बल्कि ये भी है कि जो कार्ड और जो लेटर्स जो मेरे कजन वगैरह ने लिखे मुझे उस जमाने के, और जो मैंने उनको लिखे, उनकी कलेक्शन संभाल के रखी हुई। और फिर जब कभी मतलब सारी चीजों को मैनेज करते हुए, बातों का शिफ्टिंग करते हुए, चेंज करते हुए, जब वो चीजें मिलती हैं दोबारा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और फिर उसके पिक्चर्स निकाल के ग्रुप में शेयर करके हम लोग
0: वेरी नाइस। यही वो चीज है ना, बताओ, ये वो चीजें जो संभाल के रखने का सिस्टम है ना, ये होना चाहिए। क्योंकि
1: करते हैं अब हम फिर सोशल मीडिया जो हमारे ग्रुप है ना, ग्रुप में ज्यादातर मैंने ही बनाए होते।
0: बट ये सही है, ये शेयर करते रहना, चीजें थोड़ी जिंदा रहती हैं। क्योंकि बताऊं, ये चीजें देखिए वैल्यूबल है, ये चीज आप बेच नहीं सकते। पर घर में और भी जैसे सामान होते हैं ना, कुछ लोगों के पास पुराने पुराने टीवी पड़े हुए हैं, बढ़िया वो एकदम कैबिनेट वाले, बहुत सारी चीजें। तो आपके पास ऐसा भी कुछ कोई सामान है ऐसा कुछ घर में है पुराना?
1: कुछ मत पूछिए, जो घर में एक दो बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है उफ पुरानी चीज ना संभाल के रखनी चाहिए, फिर काम आ जाएगी, उसको रिसाइकल करना चाहिए। और हम उनको समझा रहे होते हैं, जो मैंने सोच के लोग होते हैं ना, वो ये समझा रहे होते हैं इनको संभालते हमारा घर ना क्या खुंटी बन जाएगा, प्लीज इसको निकाल दीजिए।
0: हाँ नहीं, वो लोगों ने इस वजह से सामान बाहर निकाल के फेंक दिया, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि जो पुरानी चीजें थी, मतलब उस टाइम पे तो नहीं थी, पर जिन्होंने संभाल के रखी आज उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ऑनेस्टली। तो मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल हूँ उन लोगों की तरफ जिन्होंने इतना संभाल के रखा है, पुराने पुराने टीवी VCR रखे हुए। तो या हाँ, देखा मैंने बोला ना आपको, VCR मैंने देखा था रिसेंटली, आई रिमेम्बर, एंड वो 8,000 रियाल का बेच रहा था बंदा, वो 8,000 रियाल का, आप सोचिए। यस, तो आप इमेजिन कीजिए,
1: बचपन में अपने देखी थी। और आमतौर पर लोग जो है ना वो अपने घरों को मैनेज करते हुए इनका वो नहीं करते। अगर किसी के पास जगह हो और वो इन चीजों को संभाल के रख सके, तो एक बात में पुराने जमाने की यादगार के तौर पर बेच सकता है, उसको उसका फायदा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर लोगों के पास इतना ज्यादा इतनी फेंस भी नहीं होती, ऐसी जगह भी नहीं होती।
0: हाँ, वो ये देखो, आज सवाल पूछ के पता लग रहा है लोगों के पास कितनी जगहें हैं। सब में बहुत सारे लोग मेरे मिले मुझे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स रखे हुए, आप सोचिए उस टाइम के कॉइन्स है लोगों के पास। यस, हाँ, सो दादा परदादा से पास ऑन होते होते होते
1: उनके पास आए। मैंने ऐसा देखा हुआ है, मैंने ऐसा देखा हुआ है कि बाजुओं को जो शौक होता है ना करेंसी नोट डिफरेंट कंट्रीज के, और कुछ अर्से के बाद करेंसी चेंज हो जाती है, लेकिन जिन लोगों के पास कलेक्शन होती है डिफरेंट कंट्रीज की, उनके साथ कॉइन्स की भी और इसकी भी, नोटों की जो है, मुझे याद है हम लोग वहाँ पे 8 बाजार है फैसलाबाद के, बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे हम जाया करते थे, तो एक दुकान के काउंटर पे मामा चीजें देख रही थी, और हम बहनें जो है ना वहाँ पे खड़े होके उस लड़के से अमीर लोग पूछ रही थी, इतने करेंसी नोट इतने सारे कंट्रीज के, क्या चाइना, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या सारे
0: नोट, ये बिकते भी हैं। हाँ, ये बिकते भी हैं, ये वाले नोट एक्चुअली। एग्जैक्टली। पर मुझे पता है कि आज जो है एंटीक दुकानों के मजे आने वाले हैं, अगर लोग पहुंच गए खरीदने के लिए, ये पक्का होने वाला। पर बहुत बहुत शुक्रिया बहन की आपने कॉल करी, जज़ाकअल्लाह।
1: जी, बाकी ये है कि इस तरह की कोई हॉबी जो है ना वो रखना अच्छी बात है, चीजों की तो रखना अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे ज्यादा जो है ना वो चूंकि पढ़ने लिखने का रुझान है, बुक्स, डायरी, लेटर, इस तरह की चीजें ज्यादा, और जो बुक्स की कलेक्शन है ना, मैं बुक्स की कलेक्शन की बात करूंगी। मेरे जो बाबा है ना वो मदीना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, स्कॉलर है, वो इस्लामिक स्कॉलर है, तो उनके पास जो बुक्स की कलेक्शन है उनके पास, मेरे जो दादा के घर पे उनकी बुक्स की कलेक्शन है, और जो हमारे घर पे जो उनकी अरबिक की बुक्स की कलेक्शन है ना रियली, और वो उन्होंने वो अपने सीएस भी कर जाते हैं कि मेरे बाद जो मेरे स्टूडेंट्स हैं
0: अरे मैं अभी एग्जीबिशन ही चल रही है, लोग अभी भी बहुत पुरानी पुरानी किताबें ढूंढते, नहीं मिलती है क्योंकि ये किताबें ऐसी जो ऑनलाइन

0: कभी डाली नहीं गई थी।
1: आप यकीन कीजिए उनकी कलेक्शन इतनी ज्यादा है कि हम लोगों को उस तरह की लाइब्रेरी घर में बनानी पड़ी है कि जो जिनको हॉल के साथ पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो कमरे में दो होती थी कबर्ड, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना बढ़ती गई और अब जो है ना उनकी लाइब्रेरी उसमें स्टैंडिंग होती है।
0: नहीं बेशक, संभाल संभाल संभाल के रखिए। और बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी, अभी आपके पीछे बहुत सारे कॉल
1: सारे क्या रखना है। उन्होंने कहा हुआ है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना जो अरबी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, उनको इंग्लिश पढ़ना होता है और शुक्र है कि उनके बच्चों में इंग्लिश आती है तो वो दीन जो है ना उनको इंग्लिश में अरबिक पढ़ के इंग्लिश में समझा सकते हैं।
0: नहीं बट वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच आपने कॉल करी बहना, आपके पीछे बहुत सारी कॉल्स हैं तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और इनके बाद एक अगली कॉल जरा उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: मुझे पानी पी लो थोड़ा सा, मशीन में जाना जाएगी। बताओ क्या नाम है आपका?
2: नाम गलत निकल रहा था इसलिए समझ गया।
0: अरे कोई बात नहीं मेरी जान, आपका नाम बताइए, आपका नाम। हेलो,
2: मेरा नाम आरिफ।
0: आरिफ भाई आज स्लो चल रहे हो, सुबह सुबह। आरिफ भाई बताओ क्या कहना चाह रहे हो?
2: मैं तो बस आपको दो फोटो भेजी है, वो जो मेरे पास पुरानी पड़ी है आपने व्हाट्सएप पे क्या नहीं क्या मालूम नहीं है।
0: अच्छा हाँ वो तो मैंने देखी ना। हाँ
2: देखी।
0: हाँ हाँ देखी ना।
2: और वो जो पुराने चीजें की बात चल रही है ना, तो एक भाई ने तो बोल रहे थे कि वो लेटर रखे हैं, आपने बोला सर मैं उसके बाद चला गया काम पर थोड़ा। लेटर के हवाले से एक मेरे को पुराना बात याद आया मेरा।
0: क्या याद आ गया?
2: याद की तीन चार लेटर तो मुझे भी आए थे
0: पर तीन चार लेटर आए थे, शर्मा गए बताते हुए। क्या था लेटर में
2: भाई? वो एक ही लड़की ने दी थी, पर जो लेटर उस टाइम घर पे इतना डर होता था कि वो लेटर पढ़ के जो नाले में बहाया वही याद आ गया।
0: नाले में बहाया? अरे कहीं रख देते यार। अच्छा सिर्फ दो ही लेटर आए आपको?
2: वो घर पे इतना खौफ है कि क्या बताएं आपको, डर था कहीं अगर हाथ लग गया गार्जियन से तो खलास है।
0: और आपने लिखा लेटर, आपने लिख के भेजा नहीं भेजा, उसका जवाब नहीं दिया आपने?
2: मैंने भी लिखे थे, एक या दो लिख के दिया था, उसके बाद तो बस।
0: अच्छा ठीक है। पर ये जो नेपाल के पुराने नोट्स हैं ये कौन से साल के हैं जो आपने मुझे भेजे हैं भैया? बहुत पुराने मेरे
2: साल नहीं लिखा हुआ है तो है, अभी नहीं मिलते हैं जल्दी
0: ये वाले नोट, नहीं मिलते ना यार, लग रहे हैं बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी में रखे हुए आपके पास माशाल्लाह। ये तो नेपाल के पुराने नोट
2: पर्स में रखा हुआ, पर्स फट गया पर वो अभी अच्छे से हैं।
0: आप नहीं भाई संभाल के रखो, इन्हें लेके मत घूमो ऐसे कैजुअली। अच्छी चीज है, कहीं संभाल के रखो इसको। आप इसको भी नाले में मत बांधना ठीक है, ख्याल रखो आरिफ भाई अपना।
2: तो कैसे बांधूंगा?
0: नहीं जो खत का आपने बताया। नहीं
2: आरिफ पास कलेक्शन का तो यही है, और वो एक बात याद है तो बोला थोड़ा याद करके हंस लूं और भाई को भी हंसा दूं।
0: अरे नहीं भाई थैंक यू सो मच भाई, आप अच्छा लगा आपने ये नोट भी भेजा मुझे, बड़े अच्छी कंडीशन में, अच्छा लगा जान के संभाल के रखे हैं आपने। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं एक नेपाली भाई भी कह रहे हैं मुझे भी दिखाओ, मैं उनको दिखा रहा हूँ ठीक है, फॉरवर्ड करता हूँ मैसेज उन्हें भी ठीक है मेरा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरिफ भाई के बाद कुछ और मैसेज में जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ क्योंकि एक वॉइस नोट भी है बीच में जो मैं ऑब्वियसली नहीं सुन पाऊंगा बात करते करते, बट आई एम गोइंग टू रीड इट। एक पुराना वाला जो है ये जमशीर भाई ने भेजा, कीपैड वाला फ़ोन। भाई जो आपने कंपनी का नाम बताया है मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट आई नो दैट फोन इज रियली रियली वैल्यूएबल। एक और मैसेज है, आई हैव टू ऑडियो कैसेट्स, ऑल हिट्स नो वर्ड्स, ऑल सेट ऑफ टू कैसेट्स, 40 सिंगल्स। उनको लिया था 2003 में एट अच्छा ओके चेंबूर मुंबई में। आपके पास जो कलेक्शन है ना मेरे भाई, बहुत अच्छा कलेक्शन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट वोट रखे, सिक्के विक्के, और ये भी वैसे हमारे घर में मेरी दादी जान का जहेज पड़ा है अभी तक, अल्लाह पाक इनकी मगफरत फरमाए आमीन, अभी तक माशाल्लाह। एक और मैसेज है सिद्रा, मैंने किया था, आई स्टिल हैव पर नानी का नेकलेस एंड दादी सास के बैंगल्स। अरे आगे लिखती है, देन माई पर नाना वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल खान बहादुर फ्रॉम ब्रिटिशर्स, दैट कॉइन वी स्टिल हैव नानी के घर में। ऑल्सो माई नाना एंड हिज फ्रेंड्स हंट डाउन अ टाइगर, उसका चमड़ा अभी तक रखा है नानी के घर में। देन माई सास गेव हर कॉइन कलेक्शन टू माई किड्स दैट हैज कॉइन सिंस अर्ली 1900s, एंड फॉर मी आई स्टिल हैव कैप्ट दोज ओल्ड ग्लास मिल्क बॉटल्स जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बहन आपके मुझे आपने मुझे अंदर का लुटेरा जगा दिया है सिद्रा बहन। लूटने के लिए भी मैं मास्क खरीद के आता हूँ कहीं से सीधा आपके घर पे, इतना खतरनाक कलेक्शन है आपके पास माशाल्लाह। एक मैसेज है भाई, 1960s 70s के मेडल्स रखे हैं वो जब वो आर्मी में थे।

0: माशाल्लाह, वेरी नाइस नोमी भाई। एंड एक मैसेज है, प्रिंस भाई कह रहे हैं उन्होंने अपने वालिद साहब की एक पुरानी फोटो भेजी है, थोड़ी फेड हो चुकी है पर अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, हैंडसम। और उसका भैया, दिस इज़ माय कॉइन कलेक्शन, वन ऑफ द कॉइन आई हैव चार मीनार ऑन इट बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, अदर कॉइन्स हैव महात्मा गांधी ऑन इट, इट्स वन रुपी कॉइन। प्रिंस भाई बहुत डेडली कलेक्शन है आपका भी। यहाँ मैंने मैसेज किया है भाई साहब से, क्या भाई सबसे पुराना मैं हूँ घर में, इसके अलावा एक सिटीजन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच क्लासिक 1970 एंड वन डिजिटल रिस्ट वॉच 1970 मेक, और कुछ नहीं। हाँ, वन कॉइन ऑफ सिल्वर क्वार्टर डॉलर 1876, तो है तो सही तरह खतरनाक कनेक्शन। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आपसे बस एक बात करनी थी, 22/11/25 को मैंने क्या किया था, एयरपोर्ट पे आपको देखा था, हाथ मिलाने की कोशिश करी पर आप बहुत जल्दी में थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट, एक सेकंड, 22/11/25 आपने मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश करी एयरपोर्ट पे, जल्दी में था क्या, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलूंगा। मैं नदीम बोल रहा हूँ, अच्छा ओके नदीमा, आई एम रियली सॉरी यार अगर ऐसा हो, मैं मतलब ऐसा मैंने घमंड नहीं दिखाया होगा, आई एम प्रीटी श्योर मैं जेन्युइनली जल्दी में होऊंगा। वैसे कबीर भाई, आई हैव 2016 मॉडल ओल्ड गाड़ी ये तो बहुत नई है, आरिफ भाई चूना लगा रहे हो मार्केट में, कह रहे मेरे पास ना बहुत सालों पहले की 2016 की गाड़ी है अच्छा एक मैं कॉल कर लूँ फिर मैं ज़रा सीधा खबरों की, सॉरी न्यूज़ की तरफ बढ़ूंगा, कहानी की तरफ बढ़ूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो है ना उन्होंने दिमाग घुमा दिया मेरा। एक सेकंड, मैं कॉल कर रहा हूँ आमिर शहजाद भाई को, क्योंकि इन्होंने बोला कॉल करने का, हो भाई ने कॉल करने को बोला करने का तो करने का। फैसल भाई क्या डिलीट किया आपने, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई,
0: कैसे मेरा भाई? भला चंगा भाई, वही हड्डी वही खा ले। अब आप बताइए क्या है पुराना आपके पास?
1: सर आज आपका टॉपिक जो है ना वो बहुत मजेदार है, जबरदस्त।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया लोग खुदाई कर रहे हैं घर के अंदर, कहीं से तो कुछ निकलेगा
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपके पास
1: कल ही मैं ये बात कर रहा था अपने घर में, जो हमारे मेरे एक दादाजी की जो ना एक संदूक है पाकिस्तान में, तो वो कोलकाता ट्रंक बाजार से,
0: अच्छा
1: ठीक, और 1947 से पहले की है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो बहुत हमारे लिए वो अनमोल है।
0: अरे वेरी नाइस, ओके, तो काफी, ये तो काफी प्राचीन युग की चीज है, आजादी से पहले का मामला रखा हुआ है आपके घर पे तो भाई।
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: अच्छा आपने संभाल के रखा हुआ है। तो और कुछ ऐसी है जो आप कोई चीज, और कोई चीज आपने कलेक्ट वगैरह करने की कोशिश करी, ट्राई अटेम्प्ट किया है कभी कुछ चीज कलेक्ट करने का? नहीं
1: सर, एक और चीज है जो की जब आप बहुत जो है क्या कहते हैं, जब मैं शोला जवान हुआ करता था,
0: शोला जवान, अच्छा तब क्या किया?
1: तब ये हुआ कि एक कहीं से लेटर आते थे और कहीं हम लेटर बेचते थे, एक घर में जो वो ड्रम पड़ा हुआ था,
0: अच्छा।
1: तो ड्रम के ऊपर जो है वो उसका जो ढक्कन होता है ना वो बंद था, सिर्फ ऑयल ऑयल का जो बड़ा ड्रम है, तो मैं उसमें लेटर डालता क्योंकि सबसे सेफ जगह वही लगती थी। तो एक दिन मैं कॉलेज से आया, घर आया तो घर में रंग रोगन हो रहा था,
0: अच्छा
1: अच्छा, जैसे मैंने देखा वाले साहब भी वही, और देखे तो वो ड्रम जो आधा कटा हुआ था, तो तब जो मेरी दुर्गत बनी ना वो सारी जिंदगी याद रही।
0: तो वो खत कहाँ गए जो उसमें गिरा रहे थे आप?
1: जी जी जी, खत सबसे जो मेरा वो सेफ एरिया था वही था।
0: तो वो सेफ एरिया में जो गिरे वो खत के सारे खत चले गए, गायब हो गए, अब नहीं है वहाँ पे, मतलब
1: खत तो देखे वो तो गायब होने ही थे। उसके बाद जो हमारी दुर्गत बनी ना कि ये लेटर आप लिख रहे हैं, जवान हो गए हैं आप, तो वो तो बस वो तो सोचने की बात है।
0: अरे
1: वो मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ कहाँ लगे हमें
0: वो तो वो दर्द पुराना है, वो दर्द है एंटीक अच्छा ठीक है, वेरी वेल स्टेटेड मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारा प्यार आपको, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, थैंक यू सो मच, ख्याल
1: रखना,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और आमिर शहजाद भाई के बाद एक मैसेज है, सर मेरे पास ये नोट है 786 का है, 50 वाला नोट है, ये भी बहुत कम दिखते हैं इंडिया में, और ये वाला तो नोट अब मिलेगा भी नहीं मेरे भाई, ये वाला नोट नहीं मिलेगा, पर आपको मुझसे मिलने की तारीख याद है, मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूँ चीज़ से, आई एम रियली सॉरी, आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने जल्दी में होऊंगा, मैं हो सकता है, पर मुझे बुरा लग रहा है यार ऐसे कैसे किया मैंने, तो बस हमें लिखते हैं द भाई रिमेम्बरिंग डेट व्हेन ही सॉ यू।

The airport is a true also treasure, remembering dates and timing is an amazing habit just like mine. बहन ये जो आप लोगों में आदत है ना तारीख और वक्त याद रखने की, ये बहुत खतरनाक आदत है ये. ब्लेसिंग तो होगी आपके लिए, हमारे लिए दिक्कत हो जाती है. क्या है, हेलो चक्को जी, अपने हाथ नहीं मिलाया, हम तो मिल के आ गए. प्राइसलेस मोमेंट. अमन भाई थैंक यू सो मच भाई, दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू. आप लोग ना, आप लोगों की वजह से उस दिन वो बहन कह रही थी ना कि आपके शो में तो भाईचारा चलता रहता, बहन चारा भी है, तबस्सुम बहन भी है हमारी. एक मैसेज है, भाई इसलिए मैंने नाले में बहा दिया. कह रहे लेटर की वजह से पिटाई ना हो, इसलिए आरिफ भाई कह रहे मैंने तो सारे लेटर नाले में बहा दिए. वेरी गुड बेटे, बहुत आगे जाओगे आप. आप भी जब भाग रहे होगे आगे तो पीछे धूल उड़ाई होगी. एक सारा आज के किस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ. बिफोर आई नरेट दिस स्टोरी, दो चीज़ें वेरी वेरी सिंपल. पहली चीज़, कहानी छोटी है ना, तो आप गुस्सा नहीं करना मेरे पे, क्योंकि मैं इस कहानी को इग्नोर करना चाहता था. पर मैं सिर्फ इसलिए आपको ये किस्सा सुना रहा हूँ बिकॉज ये वाला जो केस है इसके ऊपर मॉडर्न ज़माने में भी कॉमिक्स बनी, हालांकि हमारी लैंग्वेज में नहीं है तो वो हम पढ़ नहीं पाएंगे, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, बिकॉज इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, बट कॉमिक बनी है इसके ऊपर, कॉमिक बुक्स लिटरली. सो ये केस बड़ा ही ख़ास है इन दैट वे. तो तैयार हो जाइए वाला सुनने के लिए, अगर आप लाइव सुनने वाले हैं तो प्लीज़ लेट मी नो. 666-22107 नंबर है, 666-22107. और सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसी ढीठ हूं मैं, ऐसी ढीठ पीछे पीछे आ रही हूं देव ने. एकदम ढीठ सा गाना है, सात समंदर पार तुम्हारे पीछे पीछे आ गई, निकिता गांधी और एमसी देव ने. आदमी को जिंदगी में ऐसे ही मोटिवेशन होना चाहिए जो गाना आपको दे रहा है. 7:31 नाम को बस तेरे हशा. इस गाने के बाद कहानी है तीन.

इस गाने के मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, FM107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा एकदम असली है, प्योर देसी की है भाई आज का किस्सा। ठीक है जी, शुरू कर दें। चलो मैं दुहा वाला कबीर FM107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं जरा 30 साल पीछे ले चलता हूं आपको। ठीक है, आज का किस्सा सुनाने के लिए चलते हैं 1996 में। लगाना झटका, 30 साल हो गए इस बात को। ओके, 1996, 9th of October, 9 अक्टूबर 1996, रात के तकरीबन 8 बज रहे थे, और 31 साल का एक आदमी जिसका नाम था एंथनी अर्विन जो था वो एक बहुत अंधेर गली से होता हुआ जा रहा था। ये जो अंधेर गली थी ये फिलाडेल्फिया की गली थी, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया। वो धीरे धीरे एक ग्रोसरी स्टोर की तरफ बढ़ रहा था। हवा बहुत तेज थी, ठंड यूं कहें ठीक ठाक थी, लेकिन हवा की वजह से ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही थी, अंधेरा काफी था, और एंथनी ने एक बहुत ही लाइट सी जैकेट पहनी हुई थी, तो वो ठिठुर रहा था, अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो जैकेट को पूरी तरह से दोनों हाथों से खींच के बिल्कुल गर्दन तक अपने आप को हक करते हुए वो चलने की कोशिश कर रहा था। वो बस चाहता था जल्दी से काम करूं और जल्दी घर पहुंचूं, आराम करूं, पर वो जल्दी से घर पहुंच नहीं सकता, उसे उसे कमाना है, उसे पैसे चाहिए। तो वो बिना रकम के, बिना डॉलर्स के घर नहीं जा सकता, डॉलर्स उसे कमा के घर जाना ही पड़ेगा। और एंथनी की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एंथनी जो था वो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कोशिश कर रहा है और हार रहा है, नहीं, एंथनी अपना ही दुश्मन था। एंथनी अर्विन वो एक किस्म का करियर क्रिमिनल था, मतलब कोई रेगुलर जॉब करने का ना उसका मन था, ना सालों से उसने कोई रेगुलर जॉब करी थी। जो डॉलर्स का मामला था वो ऐसा था कि जब जरूरत पड़ेगी अरे जाके चोरी वोरी कर लेंगे, लोकल बिजनेस है, इतने सारे लोग हैं, अंधेर गली में चलते हैं, लूट लूंगा, क्या जाएगा। तो 8 सालों से उसका ये क्रिमिनल करियर चल रहा था। इस बीच वो 8 से 9 बार पकड़ा भी गया, 8 से 9 बार इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें 8 बार मुझे दिख गया है, 9 बार एक स्टेटमेंट में स्पेशली, बट आई डोंट नो इफ दैट हैपन्ड, मगर 8 से 9 बार वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है या चोरी की रिपोर्ट में पकड़ा गया है और असॉल्ट की वजह से पकड़ा गया है। आसपास के लोग जो थे वो जो उसको जानते थे, इस मोहल्ले में रहता था, उनके लिए वो जहर हो चुका था। मतलब अगर एंथनी लोगों को दिख जाए तो वो अपने किवाड़ खिड़की बंद कर लेते थे कि अंदर बैठ जाते थे कि बस एंथनी हमारे सामने नहीं आना चाहिए। दे लिटरली हेटेड ऑन हिम, और उनकी गलती भी नहीं थी, एंथनी काम ही ऐसे करता था। उसे कुछ लोगों ने कोशिश करी और बताने की भी कि भाई देखो हम तुम्हें जानते तो नहीं है पर तुम हमारे नेबरहुड में रहते हो तो इसलिए तुम्हारे लिए नौकरी है, जाके कर लो ना नौकरी, क्या दिक्कत है। पर एंथनी क्या था, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, ही वाज नॉट के पढ़ा लिखा नहीं है तो काम नहीं मिल रहा, नहीं नहीं नहीं, एंथनी काम कर सकता है पर एंथनी करना नहीं चाहता है, वो वाला सीन है। तो लोग उसे कहते थे भाई काम कर ले यार, नहीं काम नहीं करेगा। वो जो उसकी लाइफ चल रही थी ना एज अ करियर क्रिमिनल, वो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही थी। लोग बुरा भी फील करते थे उसको लेकर कि यार बेचारा प्रॉब्लम में है, पर साथ में गुस्सा भी आता था कि ये कैसी मजबूरी है, मतलब जानबूझ के मजबूरी में है। और उसके क्राइम जो होते थे क्योंकि वो छोटे छोटे होते थे, ऐसा भी नहीं कि वो जाके बैंक लूट रहा है ना, क्राइम बहुत छोटे छोटे, कोई सड़क पर जा रहा है रोक लिया, बटवा निकालो, उसने जितने डॉलर्स जेब में थे दे दिए, तो 40, 50, 100, 1000 डॉलर चोरी कर लिए। हालांकि $1000 बहुत होते हैं, बट ये बहुत कम ही होता था उसके साथ कि $1000 कोई दे दे, और हर कोई रिपोर्ट भी नहीं करता था, तो छोटी छोटी उसकी रिपोर्ट होती थी तो ज्यादा सजा भी नहीं मिलती थी, बाहर आ जाता था वो। तो उसने इसको खेल बना लिया था कि ठीक है थोड़ी सी चोरी करूंगा, थोड़ी देर के लिए अंदर जाऊंगा और जेल में जाऊंगा तो खाना भी बढ़िया मिलेगा, और एक दो अगर थप्पड़ पड़ भी गए तो क्या टेंशन है, खाना तो मिलेगा। तो वो इस तरीके से जिंदगी को देख रहा था।

एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था भाई अपनी जिंदगी में, तो वो उसको ये जम गया था पैटर्न, तो उसने कहा ऐसे ही चलते रहना चाहिए। उसने इस रात भी, जो मैंने बताया ना अक्टूबर की इस रात जब वो जा रहा था ग्रोसरी स्टोर की तरफ, तो उसका प्लान अभी भी यही था। वो सोच रहा था यार एक तो मौसम हो रहा है खराब, कोई बाहर निकल नहीं रहा, लूटने के लिए कोई है नहीं, करूं तो मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, ठिठुरता हुआ बिल्कुल जा रहा था ग्रोसरी स्टोर पे, अंदर जाऊंगा कोई आने वाला तो है नहीं, इसको लूटूंगा, कैश रजिस्टर से निकालूंगा और मैं भाग लूंगा। ये प्लान था साफ एंथनी का, एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर माइंड, मगर अलग तरीके से क्रिस्टल क्लियर। बहरहाल अब वो जा रहा था ग्रोसरी स्टोर, बहुत करीब आ चुका था, उसके अंदर वो एंटर करने ही जा रहा था कि उसकी नजर राइट हैंड साइड पे साइड वॉक की पड़ी, जो फुटपाथ था उस पे उसे एक शख्स आता हुआ दिखा। उसने पहले उस शख्स को देखा तो इधर उधर देखा, साइड में कोई है तो नहीं इसके आसपास, कोई पीछे तो नहीं आ रहा, एंड कोई भी नहीं आ रहा था। सब मौसम खराब होने की वजह से, बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी तो सब घर में थे, मगर ये बंदा चलता हुआ आ रहा था सामने से। एंड जब उसने देखा कि ये फुटपाथ पे जो बंदा चलता हुआ आ रहा है, ये एक यंग आदमी है, यंग है, इनफैक्ट समझ में आ रहा है इसे लूटना आसान भी होगा, अकेला भी है, तो एंथनी बड़ा खुश हो गया कि अरे भाई साहब लग गई लॉटरी, अब आएगा मजा, परफेक्ट, इसको लूट लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। एंथनी बढ़ने लगा ग्रोसरी स्टोर की जगह इस शख्स की तरफ जो उसके सीधे हाथ पे फुटपाथ पे चल रहा था। पास आते हुए जैसे जैसे वो करीब आ रहा था इस बंदे के, उसे समझ में आया कि अरे इसको तो मैं जानता हूं, और ये तो मेरा पड़ोसी है, अरे ये तो हैरी है। हैरी जो था वो एंथनी का पड़ोसी था, और वो आ रहा था चलता हुआ, यंग था। अब एंथनी का कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ गया, वो जानता था एक तो ये मासूम है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ईजी टारगेट है, और अपने आप से बात कर रहा था, हाँ ठीक है गलत बात है अपने पड़ोसी को लूटना, मगर क्या करूं, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, अब पड़ोसी को लूट रहा है लूट लेंगे। तो एंथनी की हिम्मत तो ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, और वो हिम्मत जो है वो दिखाता हुआ आगे बढ़ा, जाके हैरी के सामने, उसका पड़ोसी है, उसके आगे जाके खड़ा हो गया, और फिर वही डायलॉग बाजी जो वो करता था। वो क्या करता था, अपनी जैकेट में हाथ डालता था और उंगलियों इस तरीके से फोल्ड करता था कि लगे जैकेट के अंदर एक गन है। दिस इज हाउ यूज टू रॉब एवरीबडी, ऐसी सबको चोरी करता था वो। तो उसने वही किया, जैसे ही उसके सामने हैरी आया उसने बोला ठहराओ हिलना मत, और अपनी जो है हाथ डाला जैकेट में और इशारा करने लगा गन का, बोला ए कहाँ जा रहे हो, जितना भी तुम्हारे पास माल है सब निकालो। डायलॉग बाजी जो हमेशा वो करता वो उसने कर ली। चंद मिनटों के बाद क्या हुआ कि एक डिटेक्टिव साहब जो है फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट के, उनका नाम था कैली, कैली जो थे अपनी क्रूजर गाड़ी में बैठ के मौका वारदात पर पहुंचे, क्योंकि उनको किसी ने बताया कि सर यहाँ पे चोरी चकारी हो रही है, और बताने वाला जो बंदा था वो ग्रोसरी स्टोर वाला था, उसने देख लिया था कि भाई शोर शराबा कहाँ से हो रहा है, क्योंकि अंधेरा है और बड़े ही आइसोलेटेड एरिया हो चुका था ये, ऐसा लग रहा था डेसोलेटेड था, कोई आ नहीं रहा कोई चल नहीं रहा, तो ईजिली पता लग रहा था किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ है। सो ही रिपोर्टेड, और कैली साहब जो थे ऑफिसर कैली वो अपने गाड़ी में आ रहे थे मौका वारदात की तरफ। उन्हें बताया गया कि सर चोरी वोरी हुई है और बाकी कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने एड्रेस जो था वो फॉलो करते हुए पहुंच गए। अब उनका ये था कि भाई पता लग गया है अब ढूंढूंगा पकड़ूंगा, पर जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने देखा अरे रे रे रे रे, फुटपाथ पे जो है एक बंदा जमीन पे गिरा हुआ है और एक बंदा खड़ा हुआ है। उसने कहा वाह पकड़ा गया चोर, वेरी गुड, ये ग्रोसरी स्टोर वाले ने हिम्मत दिखा के मतलब चोर को पकड़ लिया है। उन्होंने देखा वो बंदा जो है वो उसके ऊपर ही बैठ गया जो बंदा नीचे गिरा हुआ था। कैली तो ऑफिसर कैली वॉज लाइक परफेक्ट, पकड़ा गया। वो अपनी गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतर के जैसे ही इस अंधेरी रात में जब बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स भी डिम थी और इनफैक्ट थी भी नहीं उस जगह पे, वो पहुंचे, जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला सीन था। मतलब इतना स्ट्रेंज थी, उन्होंने कहा कि मेरे 25 साल के लंबे करियर में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या हुआ, ये सुनिए गौर से।

मिस्त्री जो कि चोरी चकारी करता रहता था और मोहल्ले में बहुत बदनाम था, वो पॉकेट मारने के लिए निकला। ठीक है, इस बार भी उसने वही किया जो वो करता आता था। वो जो अपनी जैकेट में, हुडी में, साइड पॉकेट्स में हाथ डालता था और गन का ऐसा पोजीशन करता था कि गन है कि नहीं। सामने वाले को नहीं पता लगेगा गन है कि नहीं, पर आपको लगेगा सामने से देख रहे हैं तो कि भाई जैकेट में गन है। और वो लोगों को लूट लेता था और लोग शोर होते भी नहीं थे गन है कि नहीं है। वो बोलता था गन मेरे पास गन है, निकालो सब कुछ। तो लोग पूछा बाछी नहीं करते थे, लोग डर जाते थे। तो लोग क्या करते थे, दे देते थे, भाई नक्की करो उसे देखे, कौन रिस्क ले जान का कि पता चला असली गन हुई तो सबके सब वॉलेट वगैरह दे देते थे और ये ट्रिक काम कर जाती थी। इस बार क्या हुआ था, इस रात हैरी ने जो है, हैरी को देखा था एंथनी ने, तो एंथनी पहुंच गया। अपना पड़ोसी हैरी लूटने के लिए आसान टारगेट है, यंग है, तो उन्होंने कहा ठीक है हैरी को लूटूंगा। वो गया उसके पास, उसने वही सेम ट्रिक करी, अपनी जेब में हाथ डाला और कहा मेरे पास गन है, जो भी तुम्हारे पास है निकालो सब कुछ। हैरी नहीं बता सकता था कि उसकी पॉकेट में गन है कि नहीं, बाकियों की तरह ही। और हैरी के लिए ये और भी मुश्किल था क्योंकि हैरी बेचारा ब्लाइंड है, हैरी लिटरली ब्लाइंड था, वो नहीं देख सकता था। और एंथनी को ये पता था कि मेरा पड़ोसी तो ब्लाइंड है, इसको तो वैसे ही कुछ नहीं दिखेगा, इजी टारगेट है। मगर एंथनी को एक बात नहीं पता थी हैरी के बारे में, हैरी ठीक है अंधा था, नहीं देख सकता था, मगर हैरी एक कराटे मास्टर था, एक रेसलर था। जब उसे बोला एंथनी ने सामने आके कि मेरे पास गन है और मैं गोली मार दूंगा, सब कुछ निकालो, तो इंस्टिंक्ट, वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट उसने मार्शल आर्ट्स और इन सबसे सीखी थी कराटे में, वो किक इन हुई और जो उसे सिखाया गया था वही एक्शन में आया। हैरी ने लिटरली, ही कुड नॉट सी बट अंडरस्टैंड, के सामने खड़ा हुआ एंथनी, उसे पकड़ा और पकड़ के उछाला अपने ऊपर से पीछे, पटखा जमीन पर, और इतनी बुरी तरह पटखा कि एंथनी की गर्दन टूट गई और फिर हैरी चुपचाप उसके ऊपर बैठ गया और इंतजार किया कि पुलिस कब आएगी। ग्रोसरी स्टोर वाला भागता हुआ बाहर आया जब उसने शोर शराबे की आवाज़ सुनी, क्योंकि हैरी जो था वो समझ नहीं पा रहा था उसे किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में हैरी ग्रोसरी स्टोर है, और वो चिल्ला रहा था कोई है, कोई पुलिस को कॉल कर सकता है, और ये वो लगातार चिल्ला रहा था। जब ग्रोसरी स्टोर वाले को पता लगा वो बाहर आया, वो बड़ा हैरान था है कि एक ब्लाइंड आदमी इसके ऊपर क्यों बैठा हुआ है, ये क्या चक्कर है। फिर इसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हैरी को अभी तक नहीं पता था कि उसका पड़ोसी उसे लूटने आया था, ही डिड नॉट नो। जब ऑफिसर कैली वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस चीज को इंस्पेक्ट किया, उन्होंने हैरी को सबसे पहले तो उठाया, बोला कि आई डोंट नो कि तुम्हें अरेस्ट करूं कि ना करूं, पर ले गए। जब कोर्ट में ट्रायल उसी दिन हुआ, अगले दिन हुआ, तो कोई चार्ज नहीं लगा हैरी पे और कहा गया कि ही एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस, तो उसको माफी है। मीडिया ने बहुत सारे वर्ड यूज किए, द ब्लाइंड मैन, और हीरो बना दिया उसको। बट हैरी को पता लगा कि उसने जाने अनजाने में अपने पड़ोसी की जान ले ली है, एंड उसे बहुत बुरा लगा। तो बोला मुझे पता होता कि वह एंथनी है जो चोरी करने के लिए निकला है तो शायद मैं उसे कुछ नहीं करता, मगर दिस इज़ अ ट्रेजेडी, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। क्योंकि लोगों को हजम ही नहीं हुआ कि इसको दिख नहीं रहा और इसने उसकी गर्दन तोड़ दी। एंड ये केस कहने में बहुत छोटा था उस टाइम के लिए भी, बट इट बिकेम अ कॉमिक्स। एंड जहां पे हुआ, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में, वहां पे किसी को कोई मतलब नहीं था इस केस से, लोगों ने छोटा केस समझ के इसे खत्म कर दिया। बट इस केस को फॉरेन फिल्म मेकर्स एंड कॉमिक बुक जो निकले वाले लोग हैं उन्होंने उठाया एंड इसको अडेप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स। एक्चुअली में एक ब्लाइंड मैन एज अ सुपर हीरो क्रिएट किया गया इन चाइना और देन वो सेम कैरेक्टर बनाया गया इन जापान। वो हम पढ़ भी नहीं सकते, वो उन्हीं की भाषा में है, बनंदलेस। और इतना ही नहीं, जब ये कॉमिक रिलीज हुई, रिलीज इन जापान एंड चाइना, तो उन लोगों ने बाकायदा कॉन्टेक्ट किया हैरी से एंड दे टोल्ड हिम कि भाई हमने तुम्हारे ऊपर

हमारे तुम्हें देखते हुए ये कैरेक्टर बनाए एंड वी वॉन्ट टू पे यू यार, मतलब रॉयल्टी बनती है आपकी. वो तरस खा के होता नहीं कि यार बेचारा एक तो देख नहीं सकता है तो हम इसके इस चीज़ का फायदा भी उठा रहे हैं, तो वाई नॉट पे हिम ऑल्सो. मगर हैनी ने मना कर दिया, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट अ हीरो. एंड वो कॉमिक रिलीज हुई, इट वॉज अ हिट इन द मार्केट एंड लोगों ने पहली मरतबा एक सुपर हीरो जो देख नहीं सकता इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया. सो या दिस इज द स्टोरी ऑफ हैरी. आई डोंट नो आपको कैसे लगी इस स्टोरी ने, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको ये सुनाऊँ. बाकी आपके ऊपर, आपको कैसे लगा ये किस्सा. 666-22-107 नंबर है, 666-22-107. आई नो आज आपको छोटा किस्सा सुनाया है मैंने, पर जानबूझ के ऐसा किया है. सो बता दीजिएगा, बिकॉज आई विल बी वेटिंग फॉर यू. 666-22-107. क्या बोलती पब्लिक, बचाएंगे या नहीं? अभी डिवाइन चलाएंगे या? तो मेरी गली में आइए, व्हाट्सएप 666-22-107. किधर हो भाई, मैसेज करो ना भाई 666-22-107 पे. क्या अमन बाता चीता करेंगे या बाता चीता तो अलग हो गया, सॉरी मुंबई वालों माफी, हैदराबादी बिलाती बेटर आई स्पीक इन हरियाणवी ओनली. हाँ भाई

0: मेरे गली में.
1: आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
2: ये आज जो एंथनी की गाने सुनाई है उसके लिए गाना है, डेडिकेट करना चाहूंगा एंथनी भाई को. इसके बाद मिलते हैं. एंड डू लेट मी नो आपको किस्सा कैसा लगा. एंथनी अरविंद के लिए ये गाना स्पेशल है.
3: तेरी मम्मी की जय.

0: गुड मॉर्निंग, ये एंथनी के लिए गाना है, बस वो जेंडर चेंज कर लीजिएगा गाने के हिसाब से। हाँ जी, 7:55 बाय द क्लॉक, एक कॉल जरूर लेंगे। 666-22107 पर, एंड एक सेकंड, मेरे पास एक कॉल भी आएगी तो मैं उठा ही लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम वालेकुम, मतलब गुड मॉर्निंग कह रहे हैं भाई मुझे, खैरियत?
0: गलती हो गई, मैंने नंबर बाद में देखा, आई एम रियली सॉरी, ऐसा क्यों किया मैंने? दिस वाज सो क्रिंज, बहुत, एक सेकंड मुझे रोने दो, बहुत क्रिंज था ये
1: भाई, दिल घबरा गया मेरा।
0: मैं तो
1: क्या बात कर रहा है, गुड मॉर्निंग,
0: मैंने बाद में नंबर, मैंने बाद में नंबर देखा।
1: ओ भाई, ओ हेलो, आइंदा कॉल नहीं करूंगा मैं।
0: नहीं नहीं, अब आपसे गुड मॉर्निंग पक्का, पक्का नहीं बोलूंगा, पक्का प्रॉमिस, आई शपथ। बताओ कहानी सुनी तला भाई?
1: अंदर से भी मरवा दिया, मतलब शर्म है बंदा मान रहा है, बस मकसद बदना मानना भाई।
0: सोचो भाई के, भाई के साथ ट्रेजेडी, सोचो कितनी यूनिक किस्म की ट्रेजेडी हुई।
1: भाई पोपट हो गया, धप्पा हो गया उसका।
0: उसने सोचा भी नहीं होगा कि कहां जाके उसने चोट खाई है, दुनिया जहां को लूटने के बाद।
1: भाई उसने ये भी नहीं सोचा होगा कि मेरे मरने के बाद जी भी ना मेरी भक्त जो है ना रेडियो पे उड़ेगी, वो भी कबीर के हाथ से। ये अरे कमबख्त मारे, तू मारा भी तो अंदर से।
0: इंटरनेशनली मजाक बनना पड़ेगा एंथनी भाई का,
1: इंटरनेशनल यार, मतलब एंथनी ने तो नाटक करवा दी। मैं तो एक दो ऑफिस में, मेरे पास एंथनी है, मैं उनको, मेरे मुझे भेजना है स्टोरी, भेजूंगा उनको। मैंने कहा भाई नाम बदल लो या तुम्हारी हरकतें बदल लो, तुमके लिए अंधे आधा मारे जाओगे और कुछ नहीं है।
0: नहीं मैं सोच रहा हूँ कि लोग कितने दिन फायदा भी उठाते, फॉरन कॉमिक बुक छाप दी भाई भाई की, उसके कि एक अंधा सुपर हीरो कोई बात होती है
1: वो कबीर ही होगा, वो तुम्हारी जैसा ही होगा बेटा।
0: मुझे ऐसी लग रहा है, मुझे ऐसी लग रहा है क्योंकि आइडिया
1: मुझे लग रही ना, मुझे कंफर्म है भाई, मैं तो चेकिंग करूंगा कौन था ये, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जैसा ही होगा बेटा, कुछ मुफाद परस्त इंसान।
0: ये देखिए, इसे क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है, ये क्रिएटिविटी की निशानी है।
1: कद्दू दूसरों की मौत का फायदा उठाने वाला इंसान है वो।
0: उसकी मौत नहीं, उसकी मार्शल आर्ट्स का फायदा उठाया है मैंने, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। इसको दो तरीके से
1: मार्शल आर्ट किया, बंदा मरा है ना भाई मेरे, इन द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी बंदा मर गया भाई। भाई काम करा करो ना,
0: बताओ
1: तुम जो लास्ट में बताते मोरल ऑफ द स्टोरी करके, शुरू में बता दिया बंदा मारो, शुरू में बता दिया करो।
0: मैं किस दिन पता क्या करूंगा, पूरी स्टोरी में लगा रहूंगा, कोई ना कोई जाने वाला टपकने वाला, फिर बचा लूंगा मैं एंड में।
1: अबे कसम से यार, ऐसा कुछ कर ले भाई,
0: ऐसा कुछ कर ले, ऐसा
1: कुछ कसम से, मैं गुड मॉर्निंग कह दूंगा तुझे,
0: ठीक है? चल जब मैं आपसे गुड मॉर्निंग लेकर रहूंगा, डन हो गया।
1: मैं यकीन करो, मैं बस छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भेजूंगा, वो दूंगा मैं तुम्हें,
0: भेजो भेजो
1: पर्सनली,
0: भेजो भेजो भेजो, ठीक है
1: बस,
0: ठीक है।
1: लेकिन तुम सही बंदे नहीं हो, तुम जो है ना रोज सुबह जो है ना हमें इनल्ला से पढ़ा देते, फिर एक बार गया, अरे दो बार, अरे तीन बार भी।
0: एक मुझे मैसेज आता है, कह रहा है पूरे पूरे जहाज के तो लोग तुमने बचा लिए है, 300 लोग बच गए, लेकिन बीच में तुम कहीं ना कहीं टपका देते लोग को, ये क्या सिस्टम है
1: यार? सारी वो मतलब थोड़ा सा नरम नरम गोशा भी तो रखता है ना ये। मतलब ये इंसानियत से प्यार भी तो करता है, क्या करूं।
0: एक सवाल आया है आपके लिए भाई, तला भाई से पूछो कराची में कहाँ से हैं, सीम्स लाइक ही इज फ्रॉम गुलशन इकबाल। भाई ये उस दिन ही बात हुई थी, गुलशन इकबाल से,
1: गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 पार्टी, गुलशन इकबाल
0: ब्लॉक 2
1: चपाकर,
0: ब्लॉक 2 जहाँ पे
1: ब्लॉक 2 है अपन, ब्लॉक 2,
0: ब्लॉक 2 से है भाई ये, तशाम भाई पूछ रहे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या लिया, कह रहा
1: है
0: पार्टी अपने बंदे
1: ना, आपको भाई हाथ ला देगा पार्टी, बस अपन फुल छपाकर, टेंशन नहीं लो तुम।
0: ये ब्लॉक 5 के भाई, जिन्होंने बताया आपको, ये ब्लॉक 5 के
1: बस बस बस बस बस पटका का मसला।

0: नहीं पा रहा भाई फायर वाले को।
1: ठीक है चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत प्यार मुझे भेजना।
0: आओ ना कभी खुशबू लगा के कराची आओ ना कभी।
1: नहीं मैं अभी गुलशन इकबाल के बारे में पढ़ा मैंने, अभी थोड़ा सा टाइम लूंगा, सोच विचार करो फिर मिलता हूँ।
0: आओ ना गुलशन की दो तीन कहानियां गुलशन की बोलो तो सुनते बताए तुम्हें।
1: आज मैं ढूंढूंगा कहानी कराची से, कुछ ना कुछ निकालता हूँ मैं, मिलेगी मुझे।
0: भाई किसी लोकल की भी सुना दे यार, अल्लाह के बंदे ही अंग्रेजों की सुना सुना के हमारा तूने मुंह केड़ा हो गया नाम ले लेके यार, इनका हैंड फॉलो है ये वो क्रिकेटर।
1: उसकी वजह
0: क्या मुसीबत है
1: उसकी, उसकी वजह ये कि ज्यादा मिर्च मसाला जो है ना वो बाहर वाले में मिलता है मुझको, पर ठीक है मैं यहाँ वाले भी सुनाऊंगा, मैं देखता हूँ।
0: अब तुम और मिर्च मसाला की कर
1: नहीं मैं ढूंढूंगा।
0: अबे चलते फिरते मिर्च मसाले की दुकान।
1: थैंक यू सो मच।
0: आप तू किसी की मौत में मिर्च मसाला लगा दे जैसे भी लगा, तू बात कर रहा है मिर्च मसाला लाहौल वाला वो।
1: अरे भाई पर मुझे कराची की कहानी भेजो भाई, जितने कराची के लोग हैं बहुत हाई डिमांड में आ रहा है कराची का एरिया।
0: तुम मेरे इतने करीब मत आओ मैं बर्बाद कर दूंगा।
1: अच्छा ऐसा, आज तो ढूंढूंगा मैं, आज कराची की ही गाड़ी ढूंढूंगा मैं, डन हो गया। ठीक है ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और कई सारे मैसेजेस भी हैं वो पढ़ेंगे, पहले हम चलाएंगे हमारा प्यारा सा जिंगल।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check.
2: Assalamu alaikum. 8:03 में दो हवाला कबीर FM 107 पे and good morning. तो आज की स्टोरी पर बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत कमाल के मैसेजेस हैं। एक भाई ने मैसेज किया है, एक बात और स्टोरी ऐसी भी लाओ जिससे प्योर देसी ड्रामेटिक कॉमेडी टाइप। भाई मैं फिक्शन नहीं लेके आ रहा ना आरिफ भाई, फिक्शन स्टोरी में नहीं सुना रहा। अगर फिक्शन सुना रहा तो मैं ज़रूर, बट दैट इज़ नॉट माई फील्ड ब्रो, समझ रहे हो। मैं ड्रामेटिक स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा, सुना भी लूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो। अच्छा अब मैसेज शुरू करते हैं। तो एक मैसेज आया है जकी भाई का। जकी भाई कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखते हैं भाई, बोथ स्टोरीज वर ऑसम स्पेशली ताकि जो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्राई तो करो। नहीं नहीं वो भाई अपनी वो फील्ड नहीं है, पर समझ लो जॉनरा बदल जाएगा तो मैं इसलिए उसमें हाथ डालने नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं इसको सोशल मीडिया पर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर ड्रामेटिक करूँगा तो हजम नहीं होगी। लोगों को चाहिए मसाला, समझ रहे हैं। यू वॉन्ट फाइंड के लोग कॉमेडी स्टोरी सुना रहे हैं, दैट डजेंट एग्जिस्ट मच। एक जरा कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप ही का मैसेज पढ़ने जा रहा था प्रिंस भाई, कैसे हैं?
3: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
2: मैं आपका मैसेज पढ़ा, मैंने कहा अंदर से एकदम हरियाणा में जाकर करा मोर बना दिया। तो प्रिंस भाई कैसे, सबसे पहले बताएं आप, सब बढ़िया चल रहा है?
3: बस बढ़िया भाई, दो दिन बहुत ही बिजी गए।
2: हाँ वो मैं समझ लेता हूँ, मैसेज लेट आए थे और एक बार आई भी नहीं थे तो मुझे पता लग गया था कि प्रिंस भाई बिजी चल रहे हैं।
3: हाँ यार भाई वो हो जाता है कभी शेड्यूल थोड़ा सा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: शेड्यूल का मसला ऐसा है, जब बचपन छोटे थे तब शेड्यूल शेड्यूल पढ़ते थे, अब शेड्यूल होगा आगे जाके पता नहीं वो क्या होगा।
2: टाइम टेबल से शेड्यूल सब हो गया है, टाइम टेबल।

0: बहुत सारे वर्ड
1: जैसे
0: हो गए हैं, बताओ क्या बताएं।
1: पर आपको कहानी कैसे लगी प्रिंस भाई ओवरऑल?
0: अरे माशाल्लाह बढ़िया कहानी थी। कहानियां तो आप अक्सर अच्छी देकर ही आते हैं, लेकिन इस बार की कहानी स्वीट एंड शॉर्ट थी माशाल्लाह।
1: हाँ मैं वही सोच रहा था
0: जब आप में प्रिडिक्ट करने लगा हूँ।
1: हाँ अच्छा प्रिडिक्ट करने लगे।
0: हाँ
1: आज की तो इजी थी ना प्रिडिक्ट करना, आज की तो बहुत इजी थी प्रिडिक्ट करना।
0: चलो भाई खड्डा खुदवा देते हैं।
1: पर आप सोच, मुझे हैरानी इस बात की है कि जैपनीज और ये चाइनीज कोई मौका नहीं छोड़ते, उन्होंने इसका भी, उन्होंने कहा इसकी फर्स्ट कॉपी बनाओ। इसको सुपर हीरो बना के मार्केट में उतारो। कुछ करना पड़ेगा, पोटेंशियल है, बड़ी तेज मार्केट है।
0: जब भाई जब वो खाने में कोई चीज नहीं छोड़ते ये तो इंसान ने कहां से छोड़ेंगे।
1: बात तो सही है, बात तो सही है। ये थोड़ी डार्क कॉमेडी हो गई, बढ़िया, अच्छा लगा, अच्छा पंचता।
0: थैंक यू।
1: और प्रिंस भाई क्या चल रहा है बाकी मार्केट? अभी कुर्बानियां कैसे नहीं यहाँ पे कराते हैं, मुल्क में कराते हैं
0: भाई? यही अपना मुल्क है, हमारी कुर्बानी यही होती है।
1: अच्छा
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह
1: हो गया, इंतजाम हो गया, सब कुछ तैयारी सेट है।
0: वालदा जो है वो इंडिया से है।
1: अच्छा ओके, तो सारा मामला सेट हो गया। अभी जानवर वानवर देखिए।
0: हाँ भाई देखिए एक जगह, मतलब अब नाम तो नहीं ले सकता, कुछ लोगों ने अपने अपने ऑफर डाले हुए हैं कि फला इतना तो अब है भाई, किसी ने ऑफर डाले हुए हैं।
1: अच्छा
0: तो अब वक्त बचाना है।
1: ठीक है ठीक है ओके।
0: तो प्री बुकिंग इज द बेस्ट थिंग।
1: हाँ नहीं वो बेस्ट है भाई, बाद में मामला खराब होता है। प्री बुकिंग इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, ये मैंने अब सीख लिया है इस साल से, मैं शुरू कर दिया मैंने भी,
0: क्योंकि लोग लूटना शुरू कर देते हैं।
1: हाँ एग्जैक्टली, फिर वो फायदा उठाते हैं, लूटते हैं और फायदा उठा के लूटते हैं बाकायदा।
0: हाँ, तो एक्चुअल इस्लाम में मोल भाव जिसे कहते हैं यूजुअली हिंदी में, वो करना नहीं है तो क्या नेगोशिएशन करेंगे।
1: हाँ मनी वो
0: मैं भी बोलता हूँ चल भाई तू यहाँ तो ले ले, वहां पकड़ लेंगे, वहां कहाँ जाएगा।
1: वहां तो मैं करेगा और मैं मिलूंगा तुझे।
0: वहां तो नेकियों की कमी होगी तो अपन एडजस्ट कर लेंगे
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: कैसे लगे कॉइन आपको?
1: अरे मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनफैक्ट कि आपने इस तरीके से संभाल के रखे हैं जिसकी हद नहीं। वो चार मिनर वाला कॉइन तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, जो आपने मुझे
0: 1322।
1: हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कॉइन वो, एंड आई थिंक उसकी आई नो आप उसके मार्केट में तो नहीं निकालेंगे पर बहुत वैल्यू जरूर होगी उसकी।
0: नहीं भाई ये कलेक्शन है।
1: हाँ भाई मतलब ये कलेक्शन आपने पास ऑन करने का सोचा है अपने खानदान में किसी को, मतलब कोई है उसका ख्याल रखेगा आपके साथ साथ?
0: हाँ मेरा जो सेकंड लड़का है मैंने सोचा है कि अगर उस काबिल मुझे लगे पहले कि किसी में उतनी काबिलियत हो तो फिर मैं पास ऑन करूँ। ऐसा ना हो कि मेरा कलेक्शन फिर,
1: क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है ये, बहुत जिम्मेदारी का काम है कलेक्शन को संभाल के रखना, आसान नहीं है।
0: अब जानते हैं अक्सर ये चीजें ग्रे मार्केट चली जाती हैं।
1: हाँ इसीलिए तो इससे पहले चीजें मार्केट में उतरे जिम्मेदारी किसी के कंधों पे थोड़ी शेयर करनी पड़ेगी आपको।
0: बाबा ने कौन सा कवर से आके देखना है?
1: अरे वो
0: पैसा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, निकाल दिया लड़कों।
1: हाँ एग्जैक्टली माय पॉइंट, बट प्लीज क्योंकि ये बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके पास, मुझे सच में अच्छा लगा। तो
0: वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज के हैं लेकिन ये बहुत कुछ रेयरेस्ट कॉइन है जो मेरे पास में एक्चुअल है।
1: वही मैं कह रहा हूँ मेरे जहन में आपको वो चार मीनार वाला जो कॉइन है ना वो एकदम ऐसे अटक सा गया। मैंने कहा बाकी कॉइन्स तो ठीक है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, वो सच में जेन्युइनली बहुत बढ़िया है, एंड आई थिंक वो है वो मार्केट वैल्यू वाला, बड़ा इन्होंने निकालिया नहीं
0: इसलिए। नहीं
1: मेरा कोई ऑफर ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि औकात से बाहर है।
0: रेयरेस्ट है।
1: मैंने नहीं देखा, पता नहीं जो हैदराबाद के शायद उन्होंने देखा हो किसी जमाने में, शायद उनको किसी ने दिया हो, मुश्किल है ना अभी। हाँ ओके
0: बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने ऐसे घर में नॉर्मली फ्रेंडली एग्जीबिशन की थी।
1: अच्छा
0: तो मेरा एक कॉइन हो गया गायब।
1: अच्छा
0: उसके बाद से मैंने उसे उठा के रख दिया।
1: अरे
0: वो कॉइन हैंडमेड था, पीतल का बना हुआ था, हैंडमेड था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कमलेस। जब बिल्कुल जो दमड़ी वगैरह अशर्फी चलती थी ना उस टाइम का था।
1: अरे कितना प्राचीन, अरे बाप रे, तो एक्सकेवेशन में निकलने वाली चीजों की बात कर रहे हैं हम।
0: अरे भाई चोरी कर लिया ना लोगों ने, फायदा क्या हुआ।
1: प्लीज संभाल के रखे प्रिंस भाई, आपको तो नाम में ही प्रिंस है भाई, आपको तो और संभाल के रखना पड़ेगा।
0: जरूरी है मेरे भाई।
1: नहीं, ठीक है, सवाल के रखिए
0: भाई आपकी इतनी

0: study research or jitni aap mehnat karte hain wallahi sari fi qabil hai mashallah
1: thank you so much bahut bahut shukriya
0: agli morning log har ek matlab alag alag cheezon ka intezar karte hain
1: jazakallah
0: aur ye month ending mein salary ka intezar karte hain lekin hum log in the sense mein aaj to sab ki awaaz sunne ka intezar karta hu ki bhai kab mera bhai आए ऑन एयर और कब हम थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए दुनियादारी छोड़े या दुनियादारी छोड़ के थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करें रिफ्रेशिंग डोज फॉर अस ब्रो
1: थैंक यू सो मच प्रिंस भाई मींस अ लॉट टू मी मेरा दिन सेट कर दिया आपने थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस टू मी
0: भाई थैंक यू ब्रो थैंक यू थैंक्स फॉर योर टाइम एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ
1: आप भी मेरा भाई ख्याल रखिए अपना वालेकुम सलाम प्रिंस भाई ने इतनी मोहब्बत जो लुटाई है प्रिंस भाई थैंक यू सो मच अब और मैसेजेस हैं जो स्टोरी को लिखे आए थे एक तबस्सुम मैंने मैसेज किया लिखती है वाओ कबीर भाई क्या स्टोरी थी वो इंसान जितना कॉन्फिडेंट था उतना ही बुरी तरह पटक दिया गया ब्लाइंड आदमी की तरफ से बहुत अच्छी लगी स्टोरी थैंक यू सो मच कमाल भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम
2: अस्सलाम
1: जी भाई कमाल भाई कैसी लगी कहानी आंधी आ गई आंधी
2: आंधी भाई हाँ जिसको अभी बोलते हो किसी दिन आप बगैर हाथ वाले बगैर पैर वाले आदमी से ही मरवा दोगे कोई भरोसा नहीं है भाई
1: ये पता है मैं जब
2: दांतों में चाकू पकड़ के उसने जो है कत्ल कर दिया
1: एक्चुअली बताऊँ ऐसी स्टोरी है आपको पता है ऐसी स्टोरी है हाँ वो आएगी देखना क्योंकि वो ना उसके बारे में मैंने तैयार करके रखा हुआ है बट पूरी एक्सपेंड नहीं करी ऐसी स्टोरी एक्चुअली में है
2: Yes. सुना दीजिए वो भी कल
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्दी आएगी वाली कहानी वो एक सोल्जर की कहानी है इंशाल्लाह वो भी सुना दूंगा मैं आपको
2: मैं अभी की बात बता रहा हूँ कि एक हफ्ता पहले मैंने एक दोस्त को फोन लगाया
1: अच्छा
2: एक आध महीने से बात नहीं किया था उसे
1: ठीक है
2: मैंने उसको फोन लगाया मतलब भाई क्या हाल है बोलते हाँ ठीक है मतलब जिंदा हो बोलते हाँ भाई बोला नहीं भाई एक दिन ऐसी हुआ कि एक साल के बाद मैंने एक दोस्त को फोन लगाया तो लगा नहीं फोन तो फेसबुक से उसका नंबर निकाला निकाल के उसको फोन लगाया तो मालूम पड़ा अल्लाह को प्यारे हो गए
1: अरे रे रे रे फिर
2: एक दोस्त ऐसी करके उनको तीन दोस्तों की कहानी सुनाए तीनों अल्लाह को प्यारे हो गए बोले भाई मैं जिंदा हूँ जिस दिन प्यारा हो जाऊंगा आपको पता चले फोन तो कर लिया करो जिंदा
1: भाई ये ट्रेजेडी में आपने कॉमेडी निकाल लिया हर हफ्ते क्या
2: हर हफ्ते जो है हाँ हर हफ्ते वो मतलब एक बार फोन आता है हाँ भाई क्या हाल है बोला हाँ अब सही है
1: ये तो आपने खौफ पैदा कर दिया भाई क्या है अच्छा नहीं नहीं भाई ऐसा कॉल वॉल करते रहना चाहिए आदमी करेक्शन में रहे
2: हाँ भाई जब आदमी जो है एकदम ही गायब हो जाए अभी देखिए कैसा है ना कि अभी यहाँ से छोड़ दिया कहीं और चले गए तो यहाँ के दोस्त जो है भूल जाने लगते धीरे धीरे
1: हाँ।
2: तो उनको याद दिलाने के लिए जो खास होते हैं उनको याद दिलाने के लिए
1: भाई टाइम पे याद दिलाते रहो कि हम अभी जिंदा है जरूरी है जरूरी है पर कमाल भाई
2: जबरदस्त भाई
1: कहानी जो है छोटी होती तो मुझे लगता है कि नहीं अच्छी लगी पर अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छी
2: नहीं बहुत अच्छी कहानी थी भाई
1: थैंक यू सो मच अच्छी कहानी थी
2: एक सबक था कि भाई जैसे अंधे लोग हैं या कुछ भी है एक मूवी में भी आता है कि कुछ सीखिए
1: और कमाल भाई के बाद जो है मैसेज किया है नाइस स्टोरी भाई ने लिखा है नाइस स्टोरी थैंक यू सो मच ये अब्दुल जवाद भाई ने मैसेज किया है खादिर अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया रमेश यादव भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई नाइस स्टोरी सलाम ये अबू साद भाई ने मैसेज किया है देन एक ऑडियो मुझे भेजा गया है सुपर्ब स्टोरी डेयर डेविल थैंक यू सो मच ये मैसेज किया है मुझे मोहम्मद मोइद अहमद साहब ने ओके इट वॉज गुड थैंक यू सो मच लेस देन 10 मिनट्स नहीं लेस देन 15 मिनट की स्टोरी है अमन भाई मैथ्स आपकी मेरी जैसी ख़राब है मुझे लग रहा है माशाल्लाह गुड स्टोरी ये मैसेज है अमजद भाई का अमजद भाई थैंक यू देन एक मैसेज है आई हैव अ 15-year-old परफ्यूम 15 साल पुराना परफ्यूम है कह रहे हैं जस्ट वन मैनी नॉट जस्ट वन बट मैनी और उनकी फ्रेगरेंस आज भी जिंदा है ये तो बड़ी बात है वो आके भाई एक मैसेज है लाइक द लेवल ऑफ हिज फ्रेगरेंस विद यू लाइक द कॉलर तलहा भाई शपेटर ये कराची का वर्ड नहीं है शपेटर आई कैन विजुलाइज हाउ ही मे हैव टेकन द रिवर्स किक्ड क्या बोल दी पब्लिक वाला गाना ठीक है लगाते हैं प्रिंस भाई ने मैसेज सॉरी सादिक भाई ने मैसेज किया है प्रिंस भाई को पहले बेटे पे भरोसा नहीं है कह रहे देसी कहानी तो क्राइम पेट्रोल में आ गई सारी इसलिए मैं नहीं सुनाता यार वो मज़ा नहीं है पता है वो भी तो चाहिए ना मुझे भी आपको सुनाने से पहले मुझे भी मज़ा आना चाहिए अच्छा फरहत भाई कह रहे हैं निकल जाएंगे

0: यूटी ड्यूसर आजम भाई बहुत प्यारी वीडियो भेजता है मुझे और कह रहे हैं कि आखिर कब आने वाला है सोशल मीडिया पर भाई कबीर सुन सुनकर नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अब ख्वाब हकीकत में बनने वाला है क्यों फो निज़ाम की टाइम की कॉइन से भाई के पास तो वो है बहुत पुराना है वो तो है ना बहुत पुराने कॉइन्स ही हैदराबाद चार मीनार वाली। एक मैसेज है फराज भाई का आज की स्टोरी मिस हो गई कह रहे फिलहाल तो एआई हमारे लिए एंटीक जमा कर रहा है बहुत सारे एंटीक जमा कर रहा है। एक मैसेज है नाइस स्टोरी बट संडे स्टोरी वॉज वेरी फैसिनेटिंग एंड आई लाइक इट अ लॉट थैंक यू सो मच बहन वो तो बहुत लंबी कहानी थी। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम मैडम गाड़ी में थी इसलिए नहीं सुना कोई गाल नहीं मैं भेजता कहानी कोई ऐसी टेंशन मत लो आप कोई लोड नहीं है। आरिफ भाई ने मैसेज किया भाई मैं अभी रियलिस्टिक स्टोरी बोल रहा हूँ थोड़ा ढूंढो मज़ा तो रियलिस्टिक में हाँ रियलिस्टिक कहानी पर रियलिस्टिक क्या है ना ब्रो कॉमेडी कहानी सुनने के लिए कोई रियलिस्टिक कहानी कैसे समझाऊँ लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ क्या है कि कॉमेडी सुनने के लिए कोई किसी स्टोरी टेलर को नहीं ढूंढता समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ है कॉमेडी वाली स्टोरी भी बट वो ऐसी ज्यादा नहीं है इफ दैट मेक सेंस। तो क्या है लोग हॉरर थ्रिलर की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो एक किक मिलती है उससे एंड ये फैक्ट है इसको आप मना नहीं कर सकते है ना तो दैट इज वाई बाकी सुनाता रहूंगा मेरे पास मैंने एक स्टोरी कॉमिकल भी सुनाई है मैंने काफी ज्यादा सुनाई है जिसमें कॉमेडी भी काफी रही है मगर ज्यादातर ऐसी है स्टोरी तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बोलती पब्लिक 8:16 में जी तो हवाड़ा कबीर मचाएंगे मैसेज मुझसे आते रहे 666-2107 पर मैं जी आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड लेट गार्ड के यहीं पे इंतजार कर रहा हूं और कहानी भेजता मैं बाजी टेंशन नहीं लो
1: बंटा है मालूम
0: है ना
1: मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे Let's do it.

भाई मुझे ये स्नैपचैट वालों से मतलब थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ी सी कर सकता हूँ, इतना तो मेरा मतलब हक होना चाहिए। ये बताओ ये मिलता क्या ये स्ट्रीक मेंटेन करने से है? मैं पता इसलिए भग लिया भाई, मैं वहाँ पे इतने लोग स्ट्रीक बनाने के चक्कर में पैर के नाखून डाल रहे हैं, घर के पर्दे डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, स्ट्रीक जिंदा रहनी चाहिए। बड़े डेंजरस लोग हैं वो उस तरफ। मैं तो जाते नहीं, डिलीट मार दिया मैंने भाई, हिम्मत ही नहीं वापस डाउनलोड करने की। तो जो लोग ये स्नैपचैट वाली स्ट्रीक्स बना के रखे हुए हैं, तालियां आपको, लेकिन दूर से। डोंट बी माई फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। एक मैसेज है दोहा वाले कबीर को, आसिफ भाई का सलाम, आसिफ भाई को वालेकुम अस्सलाम। क्या एक मैसेज है, ये सच में आई डिडंट प्रिजर्व देम केयरफुली, दे वर स्टोर्ड एक्सीडेंटली। तो ये अब आके भाई ने जो है 15 साल से परफ्यूम्स रखे हैं, बहुत सारे, ये करीब बहुत सारे, और कह रहे हैं मैंने कोई जानबूझ के उन्हें प्रिजर्व नहीं किया, मतलब स्टोर्ड हो गए वो एक्सीडेंटली पुराने घर में। और आगे लिखा है वी आर वी हैवंट गॉन फॉर सो मेनी इयर्स, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल इन परफेक्ट कंडीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ टुडेज टॉपिक आई रिमेंबर्ड एंड आई स्टिल हैव देम। अब बाकी भाई, अब उस पुराने घर से उसको निकालने का जो वक्त है वो आ गया है, बहुत जरूरी है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि सरवर भाई, और सरवर भाई क्या, अच्छा वो मैं अभी बता नहीं सकता अभी, वो एक्चुअली मैं सामने से सुनना ली, मुझे शीशे के उस तरफ ही है, तो ये हम गॉसिप कल करेंगे। अच्छा एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? मैं बढ़िया, मैं बताता हूँ आज के सबसे पहले दिन कौन कौन से। इंटरनेशनली बहुत अलग तरंग किस्म के जो है दिन मनाए जाते हैं। एक आज दिन पता क्या है, आज है प्लांट समथिंग डे। आप कहीं पे बीज बो दीजिए आज, किसी की जिंदगी में धनिया बो दीजिए, या तो आप लिटरल पेड़ उगा दीजिए, ये आपके ऊपर है, इट डिपेंड्स। तो आप आज प्लांट समथिंग डे है, तो आप किसी की जिंदगी में धनिया बोना चाहें बो दीजिए, और आपको पेड़ लगाना तो पेड़ लगाइए। इसके अलावा आज है वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे। ऑल ऑफ यू, आई डोंट नो जो यहाँ पे रहते हैं उन फैमिली डॉक्टर, उनका वो सिस्टम रहा है कि नहीं रहा है, लेकिन देसी लोग रिलेट करवाएंगे फैमिली डॉक्टर वाले जो सीन होता। और मैं अपने फैमिली डॉक्टर के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, जिया नाम है उनका, ठीक है, दिल्ली बटला हाउस में भाई अपना, उनकी क्लिनिक जरा सी, मतलब आप जहाँ बैठे हैं अपनी बीमारी बताने के लिए, साथ में सारे के सारे कस्टमर्स आपकी बीमारी को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आपसे जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो भी सुन सकते हैं, तो मोहल्ले में आपका नाम खराब हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर साहब बातें ही ऐसी करते हैं स्टूल पर बिठा के, और इतने पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं कि बाकी सब पेशेंट्स को शर्म आ जाए, मगर फैमिली डॉक्टर है, क्या करें। तो आज वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे है, तो जिनको अपने फैमिली डॉक्टर्स याद आ रहे हैं और ये सारी बातें याद आ रही हैं,

0: को उनके लिए दिन है। इनके बाद है बार्बर मेंटल हेल्थ डे, बड़ा ज़रूरी है भाई। जितने भी मर्द हजरात सुन रहे हैं, हमारे जो बार्बर वाले भाई हैं, हमारे सैलून, हम तो हमारे सैलून कहते हैं सैलून तो हमारे सैलून वाले जो भाई हैं उनकी मेंटल हेल्थ का दिन है इस बात पे। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम, इरफान भाई को बहुत सारा प्यार क्या। इसके अलावा आज है वर्ल्ड फेयर प्ले डे, ईमानदारी से खेलना, तो ईमानदारी से खेला करो। इसके बाद है मैकेनिकल ड्राई आई डे, ये क्यों है, मैंने लिखा ही क्यों ये ठीक है। इसके अलावा है स्टॉप नोजिया डे, तो मैंने सरोवर भाई से बोला, मैंने कहा ये जो नोजिया है आप अपने शो में यूज़ कर सकते हैं, नोजिया और नाजिया पे कुछ खेल सकते हैं। ये मैंने नहीं बोला है, सरोवर भाई ने बोला है, मेरी तरफ से मत बोलना हुआ जाके, ठीक है। हाँ कभी बोल दो, दोनों के दोनों मुझे ही पीट रहे हैं एक मैसेज, इंडिया के हेड डॉक्टर का यही हाल है ना भाई, ये अफजल भाई यही तो परेशानी है। एक और मैसेज है, थोड़ा बिजी होते हुए भी सुन ले रहा हूँ, बड़े दिन सुनी, थैंक यू सो मच अहमद भाई, कोई बात नहीं भाई, जिंदगी में बिजी रहना एक किस्म की ब्लेसिंग ही है। और एक भाई कह रहे हैं कॉल मी, ठीक है जी मैं थोनू कॉल कर रहा, एक सेकंड, ये मैंने कॉल मिला दी है, कॉल जा रही है। और सलाम भेजा एक भाई ने, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मिस्टर इशाक, अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम भाई,
0: क्या बनता है, क्या चल रहा है
1: आज, कौन कौन सा डे भाई?
0: भाई आज तो है सबसे पहले प्लांट समथिंग डे, मतलब आज की जिंदगी में क्या, बीज बो देने का, धनिया बो देने का या फिर पेड़ उगाने का और आज है वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे।
1: नहीं यही वो डे था, मैं भूल गया, हाँ ये डे सुन देखा था मैं, क्या ये बोल, बीज बो देने का,
0: बीज बो देने का है भाई, बीज बो देने का दिन है आज। हाँ बिल्कुल,
1: एकदम अक्षय कुमार की याद आ गई
0: हाँ बीज बोने का दिन है, हराना पेड़ तो ये हाँ जी, जी
1: क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे?
0: बढ़िया भाई एकदम
1: भाई, काई के लिए तुम सुबह सुबह मॉर्निंग आ गए,
0: क्यों
1: मतलब पब्लिक को इतना मतलब इतना कोई करता है क्या भाई हैप्पी?
0: अरे भाई तो अभी शाम में करेंगे ना हैप्पी भाई, फिर सुबह की पब्लिक ये मैंने सामान बेच दिया है, अब मार्केट शाम में लगेगी
1: अब मार्केट शाम में लगेगी,
0: हाँ तो
1: 12 के भाव में पब्लिक सब दिखेगी
0: नहीं वो 1 जून से भाई, अभी से नहीं, अभी बता दे रहा पब्लिक जो है छोड़ के चलेगी, कह रहे वो तो शाम में आएंगे, कह रहे एक तारीख से अभी से नहीं, एक
1: नहीं तो पब्लिक क्या करेगी मालूम भाई?
0: क्या भाई?
1: अपने अपने काम का ना वक्त चेंज कर देंगे, नहीं बोले भाई हमारे कबीर भाई बोले शाम में आएंगे तो हम भी काम पे भी शाम को ही जाएंगे
0: जाना ही नहीं है, आखिरी पकड़नी है दादर की लास्ट लोकल
1: दादर की लास्ट लोकल पकड़नी है, चर्च जाके वापस जाके बैठना है सुबह सुबह
0: बिल्कुल। और भाई आसिफ भाई आज कैसे दिन जा रहा है, कैसे शुरुआत हुई आज की? बढ़िया,
1: मैं आज तो मैं सच्ची बताऊं भाई, सुबह उठने के बाद मैं कबीर भाई का जैसे शो लगाया ना तो एंथोनी भाई का कुछ सुनाई दिया मेरे को, एंथोनी भाई
0: बहुत चालू थे भाई, बहुत चालू थे,
1: हाँ तो ऐसे ही जैसे ही लगाया तो वैसे फिर वहां से हमारे उसका फोन आ गया, सगल सैयार आया बाबा सगल सैयार बोलते एकदम मेरे एकदम अंदर से खून खोल गया, मैं बोला ये क्या करूं मैं इसका भी,
0: आप जो है मैं भेजूंगा कहानी आज सरोवर भाई को, आपको एंथनी बोलना है, सरोवर भाई पूछे कि नाम पूछे वगैरह सलाम वालेकुम एंथनी भाई कैसे, तो आज सरोवर भाई का नाम एंथनी है, ठीक है उनके शो में बोलना
1: सरोवर भाई का नाम एंथनी एंथनी भाई सरोवर भाई सुन रहे हैं लगता है शो बोलेंगे आज तू मेरे शो में, तेरे को बताता हूँ मैं आज
0: आज सर
1: फोन तो बोले तू करेगा ही, बोले बोल रहे फोन तो तू करेगा ही करेगा, तो मालूम है बोले
0: हाँ तो
1: बोले तू अभी
0: आज यही करने का भाई, आज जितने भी लोग पब्लिक सुन रहे लिए सब सरोवर भाई को कॉल करके एंथनी बोलेगा आज, आज हमको एंथनी आएगा कह रहे एंथनी भाई मस्त रॉब किए ले भाई, एकदम मस्त रॉबिंग मोबिंग किया
1: अच्छा भाई एक बात बताओ भाई, अगर मतलब जैसा सरोवर भाई अगर जैसा बम्बई मतलब भाई आए होंगे रास्ता मेरे ख्याल से, आए भी होंगे घूमे भी होंगे फिरे भी होंगे, उन लोकल में अगर सरोवर भाई को लेके चले गए
0: बाय चांस है ही नहीं, देर इज नो चांस ओनली ब्रो, क्या
1: मैं बोलूंगा सरवर भाई वहां भी बोलेंगे सबको एक एक गाना देंगे, बोलेंगे ये गाना गाने का है और आखिर के एंड में बोलने का सरवर भाई बहुत अच्छे क्या बोलेंगे सब्जी मंडी
0: नहीं वो नहीं भाई, लोकल में नहीं लिया भाई, प्यारे से तो छेड़ने का है ना उनको, आज एंथनी बोलने का, मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा
1: आज मैं तुम्हारे लिए आज मैं पंगा

0: इनिंग लिए तैयार हूँ भाई।
1: डन है भाई, डन है भाई, सुनूंगा मैं।
0: आज चाहे मेरे को दफना से घर जाना पड़े या नहीं आना पड़े, बाकी मैं पंगा लूंगा ही लूंगा।
1: डन है, डन है आजू भाई, जरूर जरूर।
0: डन डन
1: जी भाई,
0: बजा दो फिर कोई अच्छा दिल
1: सा। बढ़िया बढ़िया भाई, चलाते हैं। अरे वो जो कल गाना बोला था ना, वो मैंने डलवाया, वो गाना एक्चुअली मैंने सुना था और 5 साल पुराना गाना है ना वो। तो हाँ, तो मुझे कल पता लगा, मैंने कहा यार ये गाना तो डलवाना पड़ेगा।
0: ये गाना वाला मेरे को कैसा पसंद है मालूम भाई?
1: कैसे?
0: ये बहुत हिस्टोरी, मतलब कैसा है, कोई लड़की हम लोग को बोल देवे ना
1: हाँ
0: मतलब छपरी है ऐसा, हम लोग को बोल दे तो हम लोग ये गाना गाने का, अरे देसी देसी ना बोला, ये गाना हम लोग अपने पर लेके चल दिए भाई।
1: नहीं नहीं सही है, मैं समझ गया था।
0: समझ गए ना भाई, लड़की लोग को हम लोग छेड़म छाड़ी कर देगा पहले टाइम पे। तो लड़की हम लोग बोलते क्या रे कचरे, बोले पागल, बोले चल निकल, बोले ऐसा वैसा। तो हम लोग बोले अच्छा बेटा इंसल्ट कर दी तूने मेरी, बोले अब मैं जगह गाना गाऊंगा तेरे लिए।
1: डन है, डन है। वो मैं आज वो गाना वैसे अपलोड कराने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो जरूर मिल जाएगा मेरे भाई आपको, टेंशन ना लो।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई,
1: ठीक है मेरा भाई, ओके डन, ओके भाई,
0: अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और पब्लिक क्या है कि आज जो अपने जिन्होंने भी एंथनी की कहानी सुनी है, आज सरवर भाई और नाजिया के शो में सरवर भाई को एंथनी बोलने का, ठीक है? लेट्स प्ले दिस गेम, आज कुछ तूफानी करती हैं, ठीक है? और ये गाना वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, एंड आई थिंक इससे बढ़िया हरियाणवी में शायरी तो ना हो सके भाई। हिब्बत तो यही चलेगा गाना। 8:31 हो रहा है भाई साहब, और आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड इधर ही है। बढ़िया मौज करानी है और ये टेम्परेचर की तरह वॉल्यूम बढ़ा के रखनी है, ठीक है? चला भाई,

तो मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि अभी भाई ने एक मैसेज किया, कह रहे भाई मैं ये गाना रोज 3 से 4 बार सुनता हूँ, ये फैसल भाई कह रहे हैं, और आगे लिखते हैं उनके साथ जो है नेपाल से लोग हैं, तो वो कह रहे हैं सॉन्ग चेंज करो, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा मत बोलो यार, तुम लोगों के सॉन्ग के चक्कर में 500 रियाल ओवर स्पीडिंग फाइन आया है। वो लोग बोले हम लोग मिला के फाइन कर देंगे। वाह वाह वाह वाह वाह, नेपाल से इतने लोग हैं, उनको हरियाणवी भी सिखा देंगे, क्या टेंशन है भाई। कह रहे भाई मजा आ गया सॉन्ग सुन के, थैंक यू भाई बहुत बढ़िया। अरे भाई सब चीजें मजा आना चाहिए, स्टोरी हो सॉन्ग हो, आपके भाई की बातें हो, सब में मौज आनी चाहिए, घना कसुत्ता लगना चाहिए शो आपको। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी ट्यूसडे लिख रहे हैं, थैंक यू भाई, हैप्पी ट्यूसडे आपको भी। अच्छा क्या कह रहा था मैं सबसे पहले जो खबरें उनके पर आ जाता हूँ। सबसे पहले खबर जो है वो आज है कतर एयरवेज की, जिन्होंने फिलीपीन एयरलाइंस के साथ जो है एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप करी है, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, जो कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएगी दोनों एयरलाइंस के बीच में, और ये 1 जून से ये पार्टनरशिप का असर आपको देखने को मिलेगा 1 जून 2026। फिलीपीन एयरलाइंस अपना PR कोड जो है वो कतर एयरवेज की फ्लाइट्स में भी रखेगी, फ्रॉम मनीला किबू क्लार्क एंड दवाओ टू दोहा, और कनेक्ट करेगी 20 मेजर यूरोपियन सिटीज को, इसमें पेरिस है, रोम है, फ्रैंकफर्ट है, और साथ में ये सब जो कनेक्ट हो रहे हैं ये वाया हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। और कतर एयरवेज ऑल्सो अपना जो QR कोड है वो फिलीपीन एयरलाइंस की डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे जरूर चिपकाएगा, क्योंकि ये इससे ट्रेवलर्स को फायदा होगा जो मनीला में अराइव होंगे या किबू या सीबू जो उसको कहते हैं, इंजॉय करने के लिए जाएंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो जिनके घर वाले आजकल तो माशाल्लाह काफ़ी डाइवर्सिफाइड शादियां भी हो रही हैं, तो जितने लोग फिलीपींस जाना चाहें दिस इज़ वन थिंग मेजर कमिंग अप। इसके अलावा हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी एंड साइंस है, लेबोरेटरी मेडिसिन पैथोलॉजी है, उन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया है एक और अवार्ड, साइमल्टेनियसली रीअक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज, और ये जो अवार्ड है इट इज़ बाय बोथ कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट और एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ब्लड एंड बायोथेरेपिस्ट। इसके अलावा अगली खबर जो है वो पूरी कतर की कौन कौन सी एप्स जरूरी हैं उस पर है, सो इन केस यू हैव मिस्ड फ्यू एप्स, वो कौन कौन सी जरूरी एप्स हैं इस पे भी हम इंशाल्लाह प्रॉपर शो करेंगे, बट मित्राश इज वन ऑफ देम जो आपको रखनी ही चाहिए। उवैस भाई वालेकुम अस्सलाम, सवाल खैर, कहीं पर ट्रैफिक लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा 666-22107 पर, 666-22107 पर आपके मैसेज के इंतजार में मैं दोहा वाला कभी एंड एंड एंड गाने की वैरायटी देख रहे हैं आप, हरियाणवी के बाद सीधा अरेबिक।

0: आज FM 107 कतर दिल से देसी
1: मोबाइल हाथ में है लेकिन फैमिली पास होकर भी दूर हो चुकी है क्या आप भी चाहते हैं कि घर के रिश्ते फिर से मजबूत हों और फैमिली के साथ गुजारा वक्त फिर से कीमती लगे तो सुनिए फैमिली ओरिएंटेड शो जो दिलों को करीब लाता है संडे से थर्सडे शाम 4 से 5 बजे आरजे महविश खान के साथ डियर फैमिली शो जो रिश्तों को जिंदा रखता है
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: हेलो बच्चों तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स कहानियां और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे अपने फेवरेट कैरेक्टर्स से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए सब कुछ एक ही शो में तो स्नैक्स ले आइए दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
4: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी

0: नजर न लग जाए अभी, बस संभाल के रहो। 8:45 में धुआं वाला कबीर FM 107 पे। आज भाई कल से ज्यादा पब्लिक है भाई मार्केट में। आज इस्तकाल स्ट्रीट जो है ये वादी अल सेल हमारे ऑफिस के पास में ही, अगर हम यहाँ से कतर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ जा रहे हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक है। मरकिया स्ट्रीट की तरफ तो खैर इंटरसेक्शन पर ये कॉल आ रही है, बीच में उठा लेते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम कुतुर इमान है और एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी रेडियो 107
0: जी। बोलिए।
1: ये जो रमजान का कोर्स है वो मिल गया हुआ है कि नहीं, अभी डिवाइड हुआ
0: वो? आप कौन से महीने में जीते थे, कौन से शो में जीते थे?
1: रमजान में जो नाइट को
0: नहीं, वो मिलना भी शुरू हो चुके हैं। आपका भी कॉल आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मिलना शुरू हो चुके हैं।
1: आई बैन वगैरह इन्होंने मंगवाया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ।
0: नहीं, अब हो जाएगा क्योंकि लेट हुआ था वो, सबको मिलना शुरू हो गया था, तो आपको भी मिल जाएगा, डोंट वरी।
1: चलो ठीक है,
0: ठीक है, ओके जी। तो अब जरा बैक टू द ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन, म्यूजिक वापस बढ़ाई जाए तो अल मरखिया स्ट्रीट की तरफ, एंड देन अल ये मजलिस अल तवल स्ट्रीट से अगर कॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक मिलेगा आपको इधर। आज कल पब्लिक नहीं थी, आज बड़ी पब्लिक है भाई। जैस भाई उठ गए, जैस भाई उठ गए, जैस भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: अरे भाई शेरों की मुंह थोड़ी धुलते हैं भाई। क्या चल रहा है मेरा भाई?
2: कुछ नहीं भाई,
0: नाश्ता वाश्ता
2: करके आगे बैठे, मैंने
0: देखे भाई हैं, चले गए कि हाजिरी लगाना है। अरे भाई कैसी बात कर दी भाई, आपकी
2: खिदमत में
0: सदैव तत्पर। बताइए क्या चल रहा है भाई?
2: आपकी मोहब्बत, मोहब्बत ही तो है सब कुछ। इंसान कितना भी बिजी हो ना,
0: उसे खींची
2: लाएगी।
0: अरे जी, सुबह सुबह इतनी प्यारी बातें, क्या हुआ, अच्छी कॉल वॉल की है आपने, मुझे लग रहा है कहीं पे।
2: अरे नहीं यार, सुबह मैंने पहले भी स्टोरी से पहले कॉल लगाई थी, मगर उस टाइम पर दिन चल रहा था, मैंने चलो बाद में लगाया।
0: चलो अच्छी बात है, कॉल लगी तो आज जल्दी आँख खुल गई माशाल्लाह है। कहानी सुनी थी जैस भाई, आज नहीं सुन पाए?
2: नहीं।
0: अरे रे रे रे, चलो कोई नहीं, मैं
2: कर देना भाई, इंशाल्लाह सुनेंगे जरूर।
0: डन डन डन, सुननी चाहिए आपको अच्छी कहानी।
2: हाँ, आज तो आपने भाई बाबा आजम के गड़े, उस जमाने के गड़े खजाने खुदवा दिए
0: भाई। घरों में खुदाइयां शुरू हो चुकी हैं, लोग फावड़ा लेके लगे हुए। निकालो, यही है सोना, मुझे पता है, मेरे दादा ने बताया था यही है।
2: सारे के सारे उखड़वा दिए तुमने खजाने।
0: तो भाई यही तो मैं चाह रहा था, आपके पास है वो ऐसे कुछ पुराना कुछ पड़ा है जैसे भाई?
2: नहीं भाई, इतना पुराना नहीं है, शायद होगा तो पापा के पास होगा, हमें तो पता नहीं।
0: हमें तो पता नहीं, हो गया वो कह रहे थे ना, सबसे पुराना तो मैं ही हूँ भाई घर में। कह रहा मैं ही हूँ,
2: मैंने तो लिखा था गिद्धों के जमाने का मैं हूँ। तो
0: हाँ, तो वही तो ठीक है, फिर मैं लोग भेज देता हूँ आपको, पैकेज करवा देता हूँ आपका, और फिर आपको कहीं म्यूजियम में दे के आते हैं, वैसे भी आपको पढ़े ही रहना है।
2: मैं अभी पीछे गया था यार, नेशनल कतर नेशनल म्यूजियम में गया था, वो बोल रहा है यार सर आपके जो आपके लिए अभी स्पेस नहीं है, क्रिएट करेंगे बनाएंगे उसके बाद में आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक।
0: वो मुन्ना MBBS में पूछते ना, हाउ लॉन्ग साइज वाइज पूछ के बनाएंगे वो। नहीं दोबारा ट्राई करना, मेरे साथ चलना, मैं अलग से उन्हें बताऊंगा, उन्हें लग रहा है कि जगह नहीं है, मैं बताऊंगा जगह कैसे बनेगी। कहानी भेजूंगा और सुन लेना मेरे भाई।
2: बिल्कुल
0: तो जैस भाई के बाद एक दो और मैसेज है, बट बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द मैसेजेस, मैं कहां था भाई, मैं हमेशा ट्रैफिक बताते बताते बीच में रुक जाता हूँ। अच्छा, तो कॉन्फ्रेंस सेंटर के पास, इनफैक्ट DCC के पास अगर आप जा रहे हैं तो हल्का फुल्का जाम लगा हुआ है। ये दफना स्ट्रीट से अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे, दफना स्ट्रीट से होते हुए आएंगे तो अभी मामला ठीक है, बट आई कैन सी कि ट्रैफिक पीछे से होता हुआ आ रहा है, कौन सी तरफ पीछे से एकदम। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह।
3: लास्ट वीक में फोन करा, उसके एक बार कॉल करा उसके
0: भाई। आप लास्ट वीक में नहीं, आप बिल्कुल लास्ट में कॉल करते हैं, लास्ट वीक की भी बात नहीं है, बिल्कुल
3: लास्ट में इसलिए याद करते हैं ताकि आपको जो है ना थोड़ा दिल में ये मोहब्बत डाल देने के लिए, ताकि हम भी इधर है आपके चाहने वालों में।
0: वाह वाह वाह, मतलब ये वो होता है ना, वो घंटी बजा के बच्चे भाग जाते हैं, वाली हरकत है। घंटी बजा के भाग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार, आप सुनाए क्या बात है मेरे भाई।
3: लाख लाख शुक्र है, सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। वो माला लास्ट माला टाइम भी कम है, माला भाई से अभी थोड़ी देर पहले कोई कॉल लास्ट कॉल भी बात हुई तुम्हारा, मैं भी एक सलाम दुआ कर लेंगे भाई को बोल के।
0: नहीं भाई जी सर, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसा चल रहा है सब लाइफ में सेट?
3: एकदम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कबीर भाई, जैसे भी है जिस हाल में भी अल्लाह जिंदगी बख्श रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।

0: अल्लाह का करोड़ों शुक्र है जिस हाल में भी जिंदगी दे रहा हमें, शुक्र मनाते हुए जिंदगी गुजारना है और गुजारेंगे इंशाल्लाह।
1: बेशक बेशक मेरे भाई बेशक, मजे
0: अल्लाह से यही दुआ है सबके लिए। अल्लाह जो ना जो भी बीमार है उन सबको अल्लाह शिफा दे,
1: आमीन।
0: परेशानी हालातों में है अल्लाह उन सबको परेशानियों से महफूज रखे,
1: आमीन।
0: अल्लाह हर किसी को जो है ना मुस्तकबिल का रास्ता आसान करे और अल्लाह हर किसी को नेक और सालेह रास्तों पे चलने की तौफीक दे अल्लाह रब्बुल इज्जत,
1: आमीन आमीन। ठीक है मेरे भाई, इन तमाम दुआओं के बाद जो है बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे भी इजाजत देने का वक्त आ गया, तो पुलिस को तो कुछ मौका ही वारदात है, पुलिस पहुंचे कुछ मिला नहीं, सब भाग चुके। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिए,
0: कोई बात नहीं, अल्लाह आपको हमेशा ऐसी सदा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
1: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो भाई हमेशा की तरह एकदम लास्ट में आए हैं, जो मैदान सपाट हो चुका है, तो मेरे भी आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। एंड ऑल्सो क्या कुछ तो मैं कहने वाला था, भूल गया मैं, खैर कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, मैं कल बता दूंगा इंशाल्लाह। कल सवेरे वापस मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ। एंड आपको एडवांस में बहुत सारी ऑल द बेस्ट, क्योंकि लोग अभी जो यहाँ पे कुर्बानी कराने वाले हैं, जो जानवरों के सिलेक्शन के लिए जाएंगे, ऑल द बेस्ट भाई। देख लो अभी भी मार्केट है, पर शाम में भी जा सकते हैं आप, दोपहर में अपना खून जलाने की जरूरत नहीं है, बहुत गर्मी है बाहर, और जा भी रहे तो प्लीज़ कीप वाटर इन योर कार, प्लीज़ प्लीज़, वाटर बॉटल बढ़ जरूरी है, वाटर। 9 बजे सुनिए न्यूज़ बुलेटिन, दिस इज दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकालकर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: ये कौन सा नया स्मार्ट टूल है?
3: इतने कैची हुक्स कहाँ से लेके आऊँ?
2: आई नो दिस AI, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूं?
4: और कौन सी ऐप है जो बेस्ट है?
5: इन सारे सवालों का एक ही जवाब, AI Unlocked।
6: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked
7: With RGV।
6: Every Sunday शाम 7:15 बजे, only on FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दोस्तों, दुनिया की सल्तनतें महदूद हैं मगर असल बादशाही अल्लाह की है। वो जमीनों का भी मालिक है, दिलों का भी मालिक, हालात का भी मालिक है। जब बंदा ये मानता है तो उसके दिल से मखलूक का खौफ कम हो जाता है। गोया वो इस दुआ का कायल है, ऐ हमारे रब, रब्बना या मालिक अल-मुल्क वल-मलकूत, ऐ बादशाहत और पूरी कायनात के मालिक, नऊज़ु बिका मिन अल-किब्र वल-मुतकब्बिरीन, ऐ अल्लाह हम तकब्बुर से भी तेरी पनाह चाहते हैं और मुतकब्बिर लोगों के शर से भी। आप जानते हैं सामिन किराम, किब्र वो बीमारी है जिसमें इंसान खुद को बड़ा समझे और दूसरों को हकीर जाने, और इस कबीह वस्फ से मुत्तसिफ जो शख्स है उसे मुतकब्बिर कहते हैं। तो मुतकब्बिर इंसान दूसरों को तकलीफ देता है, इसलिए दुआ है या अल्लाह हमारे दिल से तकब्बुर निकाल दे। इजअलना मिन असहलिल मुमिनीन अत्तैबीन, हमें नरम खो, आसान, भले और पाकीज़ा मोमिन बना दे। ऐसा मोमिन जो लोगों के लिए आसान हो, मुश्किल ना हो, जिसके पास बैठकर सुकून मिले, परेशानी नहीं। या रब, ऐ हमारे रब, इहदी नुफूसना वकीना शर्रहा, ऐ रब हमारे नफ्स को हिदायत दे और उसके शर से हमें बचा ले। और नफ्स के शर से बचाने का मतलब हम बार बार कहते आए हैं, और वो ये कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ही होता है और वो है नफ्स अम्मारा। ये ख्वाहिश, गुरूर, हसद, गुस्सा, लालच सब उस नफ्स अम्मारा के हमले हैं। इसलिए ये दुआ की जा रही है, اجعلنا اهدي نفوسنا وقنا شرها, پھر آگے بندہ یوں کہتا ہے, اصلح نوايانا واعمالنا, ہماری نیتیں بھی درست کر دے اور اعمال بھی, کیونکہ بعض اوقات عمل تو اچھا ہوتا ہے, نیت خراب ہوتی ہے, کبھی نیت اچھی ہوتی ہے مگر عمل کمزور ہوتا ہے۔ مومن کو تو دونوں چاہیے, नेक नीयत भी, नेक अमल भी। और इस वजह से मोमिन हर वक्त इस बात पर परेशान रहता है कि कहीं शो ऑफ और दिखावा का काम तो मुझसे सादर नहीं हो रहा। नऊज़ु बिका मिन मज़ाहिरिर रिया वस्सुमअ, दिखावे और लोगों में नाम कमाने की ख्वाहिश से पनाह चाहते हैं। रिया यानी इबादत लोगों को दिखाने के लिए करना, और सुमा इसका मतलब है अच्छे काम इसलिए करना कि लोग सुने और तारीफ करें, और ये दिल की खतरनाक बीमारियां हैं। फिर रिया और सुमा से पनाह मांगते हुए बंदा मजीद आगे बढ़ता है, कहता है, ए अल्लाह, तेरी इबादत मेरे लिए मजा और खुशी का सबब बना दे, यानी नमाज बोझ न लगे, कुरान भारी न लगे, दुआ मुश्किल ना हो, बल्कि ये सब आमाल दिल को राहत देने वाले बने। वल उन्स वर रिदा बिमर्दातिक, अपने रिजा वाले कामों में دل کا سکون اور خوشی عطا فرما, یعنی جو اللہ

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: FM 107 presents
5: Your Health Matters.
4: Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी ऐसा लगता है कि लाइफ एक तरह से बिल्कुल सॉर्टेड है पर दूसरी तरफ से पूरी ही उलझी है. काम ठीक चल रहा है पर नींद कंप्लीट नहीं हो रही. फूड कंट्रोल में है पर स्ट्रेस कंट्रोल के बाहर है. सोशल लाइफ एक्टिव है पर मी टाइम एकदम जीरो है. वेल, आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बेसिक के बारे में. सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं. बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का मतलब परफेक्ट रूटीन नहीं होता कि परफेक्ट टाइम पे आपको उठना है, परफेक्ट डाइट लेना है, परफेक्ट वर्कआउट होना चाहिए. ये सब सिर्फ प्लानर्स और रील्स में ही अच्छा लगता है. रियल लाइफ में बैलेंस का मतलब होता है एडजस्टमेंट. एंड दैट इज कभी काम ज्यादा, कभी रेस्ट ज्यादा, कभी सैलेड ज्यादा, कभी घर का कंफर्ट फूड ज्यादा, कभी हसल ज्यादा और कभी स्लो डाउन होना थोड़ा ज्यादा. प्रॉब्लम तब होती है जब लाइफ एक ही साइड झुकी हुई हो. अगर सिर्फ काम ही काम है और रेस्ट नहीं तो बॉडी थक जाती है. अगर सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट है और मूवमेंट नहीं तो एनर्जी लो हो जाती है. माइंड और बॉडी दोनों रिदम पर काम करते हैं. जब रिदम बिगड़ती है तो हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है. और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का बेस होता है तीन सिंपल चीजें, दैट इज मूवमेंट, नरिशमेंट और पॉज. मूवमेंट का मतलब जिम मेंबरशिप भी नहीं है. मूवमेंट का मतलब है बॉडी को दिन में थोड़ा सा हिलाना, दैट इज स्टेयर्स लेना, थोड़ा वॉक करना, स्ट्रेच करना, बस इतना काफी होता है. नरिशमेंट का मतलब अगेन क्रैश डाइट नहीं है. इसका मतलब है ऐसा खाना जो आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी दे, ना ही सिर्फ कैलोरीज दे. और पॉज होना मतलब सबसे अंडररेटेड चीज है. पॉज का मतलब है बीच बीच में रुक कर सांस लेना. एक बार मेरे साथ सांस लो.

0: अच्छा महसूस कर रहे हो ना, ऐसे किया करो, फोन को साइड में रख के थोड़ा सा रुक के सांस लो और खुद से पूछो कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये है स्लीप और स्ट्रेस का बैलेंस। अगर आप सोने का टाइम काम के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो और काम का टाइम नींद के हिसाब से नहीं, तो इम्बैलेंस शुरू हो चुका है। और स्ट्रेस तब डेंजरस होता है जब वो नॉर्मल लगने लगे, जब इरिटेशन पर्सनालिटी बन जाए, जब थकान डेली कंपेनियन हो, जब साइलेंस अनकंफर्टेबल लगे। ये सब साइंस होते हैं कि लाइफस्टाइल थोड़ा रीबैलेंस मांग रही है। बैलेंस लाइफस्टाइल का मतलब जिंदगी को स्लो करना नहीं, उसे सस्टेनेबल बनाना है, ताकि आप आज भी काम कर पाओ और कल भी थके हुए ना हो, ताकि आप सिर्फ सरवाइव ना करो बल्कि थोड़ा एंजॉय भी करो, ताकि आज का एक जेंटल थॉट, अपनी लाइफ को जज मत कीजिए, बस थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा रहे किस चीज की कमी है, रेस्ट की, मूवमेंट की, कनेक्शन की, जिस चीज की कमी हो वही आपका नेक्स्ट स्टेप है। क्योंकि जब लाइफस्टाइल बैलेंस होती है ना, तो हेल्थ को फोर्स नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली फॉलो करता है। और जब हेल्थ साथ होती है तो जिंदगी भी थोड़ी लाइट लगती है, थोड़ी मैनेजेबल और काफी ज्यादा सुकून वाली। इसलिए याद रखिए, बैलेंस परफेक्शन नहीं, बैलेंस अवेयरनेस है, एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: Qatar ka pehla desi radio station FM 107. Dil se desi.

मैं आप सभी का इस्तकबाल है, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे जर्मनी के एक मशहूर फुटबॉलर जिनका नाम है रूडी वॉयलर। यहाँ दोस्तों रूडी वॉयलर जर्मनी के फुटबॉल की तारीख के सबसे मशहूर खिलाड़ियों और कोचेस में से एक हैं। उन्होंने अपनी शानदार स्ट्राइक स्किल्स की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल की। रूडी वॉयलर ने जर्मन नेशनल टीम के लिए बहुत अहम गोल स्कोर किए हैं और 1990 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की कामयाबी में बड़ा किरदार अदा किया। इटली में हुए उस वर्ल्ड कप में जर्मनी ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर ट्रॉफी जीती थी और वॉयलर टीम के सबसे भरोसेमंद फॉरवर्ड्स में से शामिल थे। उनकी स्पीड, फिनिशिंग और फील्ड पर लीडरशिप की वजह से फैंस उनको बहुत पसंद करते थे। दोस्तों प्लेयर के तौर पर रिटायरमेंट के बाद भी उनका फुटबॉल से रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। वो जर्मनी के हेड कोच बने और 2002 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मन टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जहां ब्राजील के हाथों उनको शिकस्त मिली, यानी जर्मन टीम को शिकस्त मिली। बहुत कम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जर्मनी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वॉयलर की कोचिंग और टीम मैनेजमेंट ने सबको मुतासिर किया। रूडी वॉयलर को जर्मन फुटबॉल का एक लेजेंड माना जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन सिर्फ गोल्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने जर्मनी के फुटबॉल कल्चर को भी मजबूत बनाया। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट्स पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: आपको फोन आती है, सर ये बच्चे कैंसर से लड़ रहे हैं, कई सालों से हम इनकी मदद कर रहे हैं, इस मदद में आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं, ऐसे इमोशनल मैसेजेस आपको आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस, मेरा नाम है वेद। फेक एनजीओस, फेक डिजास्टर रिलीफ, फेक क्राउड फंडिंग, स्कैमर्स इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, फ्लड, वॉर, इलनेस, ट्रेजेडी, सब बताते हैं, सब दिखाते हैं, इतना डीप दिखाते हैं कि आप उनके झांसे में फंस के इमोशनल हो जाते हैं और मदद के नाम पे अपने पैसे उन्हें दे देते हैं। तो अगर आपको डोनेशन ही करना है तो डोनेट सिर्फ वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स पर करें। इमोशनल प्रेशर अगर कोई बना रहा है, बहुत ज्यादा बोले जा रहा है कि सर अभी मदद कर दीजिए, ये बच्चा भूखा बैठा है, एकदम प्रेशर बना रहा है, वहीं आपको रुक जाना है, संभल जाना है, फोन काट देना है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। QR UPI रैंडम लिंक्स अगर कोई भेज रहा है उससे हमें बचना है। दोस्तों याद रखिए, मदद दिल से करें पर अकल के साथ।
3: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कदर और मैं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान लेकर आ गए हम आपके लिए एक और एपिसोड ऑफ पेरेंटिंग जर्नी। और आज हम जो बात करेंगे पेरेंटिंग जर्नी में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो टीनएजर्स होते हैं ना, उनमें हमने हमदर्दी और जो काइंडनेस है उसका जज्बा पैदा करना है। ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज पूरी एपिसोड में अच्छी तरीके से इसको जानेंगे। एक तो वही रवैया जो हमारा है, वो बच्चों को शुरू से ही हम उनके साथ रहम करके उनको दूसरों पर रहम करना सिखाते हैं। ये आदत वैसे तो बचपन से ही डाली जाती है, लेकिन ये कि टीन्स में इसकी कुछ खास अहमियत होती है और वो क्यों होती है, ये आज के एपिसोड में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड बाकायदा तौर पर। टीनेज जिंदगी का वो मरहला है जहाँ सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि सोच, जज्बात और शख्सियत भी तेजी से बदल रही होती है। इसी दौर में जो वैल्यूज बच्चों के अंदर मजबूत होती हैं, वो अक्सर पूरी जिंदगी साथ रहती हैं। उन्हीं बुनियादी वैल्यूज में से एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर वैल्यू है काइंडनेस, यानी मेहरबानी। अक्सर हम काइंडनेस को सिर्फ अच्छा अच्छा बनना या फिर सबसे प्यार से बात करना समझ लेते हैं, लेकिन असल में काइंडनेस इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। एक रवैया है, एक सोच है, एक तरीके जिंदगी है। इसका मतलब सिर्फ दूसरों से नरमी से बात करना नहीं बल्कि उनके जज्बात को समझना, उनकी फिक्र करना और छोटी छोटी बातों में उनके लिए आसानी पैदा करना है। आज के दौर में जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया कंपैरिजंस हैं, प्रेशर्स हैं और हर तरफ अपनी पहचान बनाने की एक दौड़ लगी हुई है, काइंडनेस और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। हम अक्सर टीन्स को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन काइंडनेस वो क्वालिटी है जो इन सबको खूबसूरती देती है। एक इंटेलिजेंट इंसान अगर मेहरबान ना हो तो लोग उससे मुतासर तो हो सकते हैं लेकिन दिल से जुड़ते नहीं, लेकिन एक काइंड इंसान अपने रवैये से दिल जीत लेता है। नौजवानी में काइंडनेस सिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी एज में दोस्तियां बनती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और बच्चे सीखते हैं कि लोगों के साथ डील कैसे करना है। अगर इस स्टेज पर एम्पैथी और कंपैशन डेवलप हो जाए तो ये उनकी पूरी सोशल लाइफ को बेहतर बना देता है। काइंडनेस सिर्फ दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं होता, ये टीन के अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। रिसर्च भी ये बताती है कि जो लोग मेहरबानी के छोटे छोटे काम करते हैं उनमें स्ट्रेस कम होता है, सेल्फ एस्टीम बेहतर होती है और उनमें बिलोंगिंग का एहसास मजबूत होता है। यानी काइंडनेस सिर्फ दूसरों को खुश करना नहीं, ये अपने अंदर भी सुकून पैदा करती है। सोचिए

स्कूल में एक नए स्टूडेंट को इंक्लूड करता है जो अकेला महसूस कर रहा है. ये सिर्फ एक काइंड एक्ट नहीं, ये लीडरशिप है, एम्पैथी है, सोशल करेज है. या आपका बेटा घर में अपने माँ बाप में से किसी का या किसी बड़े का उसकी थकन महसूस करता है, खुद से किचन में हेल्प कर देता है, तो ये सिर्फ तमीज नहीं है, ये काइंडनेस की ट्रेनिंग है. इसी तरह जब एक टीम अपने दोस्त की परेशानी सुनता है बिना मजाक उड़ाए, तो इमोशनल सपोर्ट दे रहा होता है, ये भी काइंडनेस है. हम अक्सर समझते हैं काइंडनेस कोई बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, लेकिन असल में ये अक्सर छोटी छोटी सी जो सूरत है उसमें जाहिर होती है. कभी मुस्कुराहट, शुक्रिया कहना, किसी को साथ में इंक्लूड करना, किसी को इंटरप्ट ना करना, किसी के लिए दुआ करना, किसी उदास दोस्त का हाल पूछना. ये छोटी मेहरबानियां स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती हैं. और कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, कैरेक्टर रोज की छोटी छोटी चॉइसेस से बनता है. काइंडनेस इसी कैरेक्टर बिल्डिंग का सेंट्रल हिस्सा है. टीन इयर्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन. इस एज में बच्चे ये समझने की कोशिश करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं किस किस्म का इंसान बनना चाहता हूँ. ऐसे में अगर पेरेंट्स उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा काइंडनेस को बनाए, तुम मेहरबान हो, तुम केयरिंग हो, तुम दूसरों का ख्याल रखते हो, तो ये लेबल उनकी शख्सियत का हिस्सा बन सकते हैं. जिस बच्चे को रिपीटेडली ये फील करवाया जाए कि काइंडनेस स्ट्रेंथ है, वो इस वैल्यू को अपनाने लगता है. बहुत लोग काइंडनेस को वीकनेस समझ लेते हैं. वो सोचते हैं कि मेहरबान लोगों को तो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं. ऐसा है भी, लेकिन असल में काइंडनेस वीकनेस नहीं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. रूड होना आसान होता है, रिएक्ट करना आसान होता है, लेकिन नरमी, सबर और मेहरबानी से रिस्पॉन्ड करना इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है. और यही हम अपने टीम्स में देखना चाहते हैं. काइंडनेस और एम्पैथी का ताल्लुक भी बहुत गहरा है. एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के एहसास को महसूस करना. जब एम्पैथी होती है, काइंडनेस नेचुरली आती है. अगर एक टीम समझता है कि बुलिंग किसी को कितना हर्ट करती होगी, तो वो खुद कभी बुली नहीं करेगा. अगर वो महसूस करता है कि एक्सक्लूजन कितना तकलीफ देता है, तो वो दूसरों को इंक्लूड करेगा. इसलिए काइंडनेस सिर्फ बिहेवियर नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी है. और पेरेंट्स इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं. आज के डिजिटल जमाने में काइंडनेस का एक और पहलू ऑनलाइन बिहेवियर भी है. कमेंट्स में सॉफ्टनेस, मैसेजेस में रिस्पेक्ट, ऑनलाइन मॉकिंग से बचना, सोशल मीडिया पर भी इंसानियत, ये सब मॉडर्न काइंडनेस का हिस्सा है. टीन्स को ये समझना जरूरी है कि काइंडनेस सिर्फ फेस टू फेस नहीं होती, डिजिटल दुनिया में भी होती है. और फिर काइंडनेस ग्रेटिट्यूड को भी बढ़ाती है. जो बच्चा दूसरों का ख्याल करता है, वो अक्सर ज्यादा शुक्रगुजार भी होता है. और ग्रेटफुल और काइंड हार्ट्स अक्सर ज्यादा पीसफुल होते हैं. एक और खूबसूरत बात, काइंडनेस कंटीजियस होती है. एक मेहरबान रवैया दूसरों तक फैलता है. एक टीम अगर स्कूल में काइंडनेस शो करता है, दूसरे भी इंस्पायर हो सकते हैं. एक घर में अगर काइंडनेस कल्चर हो, वो पूरी फैमिली एनवायरनमेंट को बदल देता है. इसीलिए काइंडनेस को सिर्फ एक आदत नहीं समझना चाहिए, कि कल्चर है, ये एनवायरनमेंट है, ये लेगेसी है. और पेरेंट्स इस लेगेसी के बिल्डर्स हैं. कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं, हम इतनी वैल्यूज सिखाते हैं लेकिन बच्चे शो नहीं करते. लेकिन वैल्यूज अक्सर फौरन से नजर नहीं आती हैं, वो अंदर एब्जॉर्ब होती रहती हैं. आज आप जो

0: काइंडनेस सिखा रहे हैं, कल वो शायद किसी दोस्त के साथ यूज करें, परसों अपनी फैमिली के साथ, और एक दिन वो इसी काइंडनेस के साथ अपने बच्चे की तरबियत करेंगे। यानी काइंडनेस जनरेशंस तक चल सकती है और यही पेरेंटिंग का खूबसूरत असर है। हम परफेक्ट टीन्स रेज नहीं कर रहे, हम कंपैशनेट इंसान रेज कर रहे हैं, और कंपैशनेट इंसान छोटी छोटी मेहरबानियों से बढ़ते हैं। हर काइंड वर्ड मैटर करता है, हर सॉफ्ट रिस्पॉन्स मैटर करता है, हर केयरिंग जेस्टर मैटर करता है। स्मॉल एक्ट्स रियली मैटर, क्योंकि आज की एक छोटी काइंडनेस कल किसी का जख्म भर सकती है। और आज जो टीन काइंडनेस सीख रहा है, कल वो इसी दुनिया को ज्यादा रहमत वाली जगह बना सकता है। यही काइंडनेस की असल अहमियत है। टीनेज वो उम्र है जहां बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। जिस्म बदल रहा होता है, इमोशंस गहरे हो रहे होते हैं, सोच इंडिपेंडेंट बन रही होती है, और बच्चे धीरे धीरे बचपन से एडल्टहुड की तरफ सफर कर रहे होते हैं। इसलिए मरहला खूबसूरत भी होता है और चैलेंजिंग भी। कभी पेरेंट्स हैरान हो कि बच्चा बचपन में बहुत सॉफ्ट और अफेक्शनेट था, अब कभी रूड लगता है, कभी दूर दूर, कभी रिएक्ट सादा करता है, वो सोचते हैं कि ये इतना चेंज क्यों हो गया। लेकिन अक्सर ये रिबेलियन होना नहीं बल्कि डेवलपमेंट की वजह से होता है। टीन ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, खास तौर पर वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन से रिलेटेड है। इसलिए कभी कभी टीन को पता होता है कि क्या सही है, लेकिन उस वक्त इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उस पर अमल नहीं कर पाता। यही काइंडनेस चैलेंज हो सकती है। जब इमोशंस इंटेंस हो, पीयर प्रेशर हो, सेल्फ इमेज का कंसर्न हो, तब मेहरबानी का रवैया मेंटेन करना आसान नहीं लगता। और इसीलिए इस एज में काइंडनेस और भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। टीनेजर्स के लिए एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं फिट इन करता हूँ या नहीं, मैं कूल लगता हूँ या ऑकवर्ड, ये सवालात अक्सर उनके जहन में होते हैं। कभी इसी एक्सेप्टेंस का प्रेशर में टीन्स दूसरों के साथ वैसा रवैया अडॉप्ट कर लेता है जो असल में उनकी नेचर नहीं होती। मिसाल के तौर पर किसी ग्रुप में फिट होने के लिए किसी का मजाक बनाना, बुलिंग में चुप रहना, किसी आउटसाइडर को इग्नोर करना, या किसी पर सार्कास्टिक कमेंट्स करना, ये अक्सर दिल की सख्ती नहीं होती, कभी इनसिक्योरिटी होती है। इसीलिए पेरेंट्स के लिए समझना जरूरी है कि हर रूड रिस्पॉन्स बदतमीजी नहीं, कभी इनर स्ट्रगल भी हो सकती है। टीन ईयर्स में इमोशंस बहुत इंटेंस महसूस होते हैं। दोस्ती का इशू हो तो बहुत गहरा लगता है, रिजेक्शन बहुत पेनफुल लगता है, कंपैरिजन बहुत हर्ट करता है, और जब कोई खुद इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो तो दूसरों के लिए जो है सॉफ्टनेस शो करना कभी कभी मुश्किल लगता है। इसीलिए काइंडनेस सिखाना सिर्फ अच्छा बनो कहने से नहीं होता, पहले उनकी इमोशनल दुनिया समझना पड़ती है। जब पेरेंट टीन के प्रेशर को समझते हैं तब वो बेटर गाइड कर पाते हैं। अक्सर टीन्स का रफ जो टोन है वो भी उनके अंदर के स्ट्रेस का सिग्नल होती है। कभी स्कूल प्रेशर, कभी आइडेंटिटी कंफ्यूजन, कभी सोशल एंजाइटी, कभी लोनलीनेस, और कभी सिर्फ ये एहसास कि कोई मुझे समझता ही नहीं। ऐसे में पेरेंटिंग का रोल सिर्फ करेक्शन का नहीं, कनेक्शन का होता है, क्योंकि कनेक्टेड टीन्स वैल्यूज ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं। डिसकनेक्शन में लेक्चर्स असर करते हैं, कनेक्शन में मॉडलिंग असर करती है। टीनेज का एक और जो चैलेंज है वो है कंपैरिजन कल्चर। सोशल मीडिया ने इस प्रेशर को और इंटेंस कर दिया है। हर जगह फिल्टर्ड लाइव्स, परफेक्ट इमेजेस, पॉपुलैरिटी मैट्रिक्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, वैलिडेशन। ऐसे माहौल में काइंडनेस कभी पीछे रह जाती है और कंपटीशन आगे जा जाता है। लेकिन पेरेंट्स यहाँ एक काउंटर कल्चर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ कंपैरिजन के बजाय कंपैशन हो, परफॉर्मेंस के बजाय करेक्टर हो, पॉपुलैरिटी के बजाय प्रिंसिपल हो। ये बहुत पावरफुल तरबियत है। कभी टीन्स का सरकाज़म या फिर ब्लंडनेस भी मैच्योरिटी की कमी होती है, बदनीयती नहीं। उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी बात किसी को कैसे हर्ट कर गई। यहां पनिश करने से पहले टीच करना इंपॉर्टेंट है। पूछिए, अगर कोई तुमसे ऐसे बात करता तो तुम कैसे फील करते? इस मोमेंट में काइंडनेस क्या होती है ये समझना है। ऐसे सवाल एम्पथी जगाती है और एम्पथी काइंडनेस की बुनियाद है।
1: आप सुन रहे हैं पेरेंटिंग जर्नी Only on FM 107, दिल से देसी।
0: एक और प्रेशर है पीयर प्रेशर। कभी टीन इंडिविजुअली काइंड होता है, लेकिन ग्रुप में रवैया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बिलोंगिंग की नीड बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए पेरेंट्स को ये सिखाना होता है कि काइंडनेस करेज भी होती है। कभी क्राउड के अगेंस्ट खड़े रहना भी काइंडनेस है। बोलिंग के खिलाफ बोलना काइंडनेस है। अकेले बैठे बच्चे को इंक्लूड करना काइंडनेस है। फ्रेंड की गलत बात में साथ ना देना भी काइंडनेस है। ये मोरल करेज है और इसी एज में ये बिल्ड होता है। टीनेजर्स कभी अपने इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए कभी उनकी फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर में निकलती है। जब पेरेंट सिर्फ बिहेवियर दिखता है और स्ट्रगल नहीं देखता तो मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। लेकिन जब पेरेंट्स समझता है कि टीन एज एक इमोशनल ट्रेनिंग ग्राउंड है तो अप्रोच बदल जाती है। फिर सवाल ये नहीं होता कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, बल्कि मैं इस स्टेज में उसकी रहनुमाई कैसे कर सकता हूँ। ये पेरेंटिंग शिफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। काइंडनेस इस एज में चैलेंज इसलिए भी लगती है क्योंकि टीन्स फेयरनेस को स्ट्रॉन्गली फील करते हैं। अगर उन्हें कुछ अनफेयर लगे वो रिएक्ट करते हैं। कभी इसी रिएक्शन में टोन हार्श हो जाती है। यहाँ उनकी सेंस ऑफ जस्टिस को काइंडनेस के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। उनको बताएं, सच बोलना और रिस्पेक्टफुल रहना दोनों साथ चल सकता है। डिसएग्री करना और रूड ना होना मुमकिन है। स्ट्रॉन्ग होना और काइंड होना अपोजिट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और शायद सबसे अहम बात। टीन इयर्स में काइंडनेस परफेक्ट बिहेवियर का नाम नहीं, प्रोग्रेस का नाम है। कभी वो फेल करेंगे, कभी रूड रिस्पॉन्ड करेंगे, कभी सेल्फिश होंगे, कभी इनसेंसिटिव भी। लेकिन इसी प्रोसेस में सीखेंगे। करैक्टर मिस्टेक्स के बगैर मैच्योर नहीं होता। इसीलिए पेरेंट्स का काम परफेक्शन डिमांड नहीं, डायरेक्शन देना है, रहनुमाई देना है, मॉडलिंग करना है। एक और मिसकंसेप्शन ये होता है कि टीन्स वैल्यूज सुनना नहीं चाहते। हकीकत ये है कि वो हिपोक्रेसी रिजेक्ट करते हैं, वैल्यूज को नहीं। अगर पेरेंट्स काइंडनेस प्रीच करें और घर में हार्शनेस हो, टीन डिस्कनेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो काइंडनेस लिव्ड फॉर्म में देखें तो वो एब्जॉर्ब करेंगे, चाहे फॉरेन ना दिखाएं। ये याद रखिए, टीन्स अक्सर सुनते कम और ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। आपका रवैया उनकी ट्रेनिंग है, आपका कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना उनकी ट्रेनिंग है। आपका डोमेस्टिक वर्कर के साथ जो टोन है वो उनकी ट्रेनिंग है. आपका रोड पर रिएक्शन भी उनकी ट्रेनिंग है. यानी काइंडनेस उनको फॉर्मली भी सिखाई जाती है और साइलेंटली भी. और साइलेंट टीचिंग अक्सर ज्यादा पावरफुल होती है. टीन ईयर्स चैलेंजिंग है लेकिन इसीलिए फर्टाइल भी है. इसी एज में डीप वैल्यूज प्लांट होती हैं. इसी एज में मोरल करेज डेवलप होती है. इसी एज में कंपैशन आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकती है. इसलिए अगर कभी काइंडनेस मुश्किल लग रही हो तो डिस्करेज ना हो. ये फेलियर नहीं, ये फॉर्मेशन है और फॉर्मेशन वर्क लेती है. आज जो आप एम्पथी सिखा सकते हैं कल वो किसी दोस्त का सहारा बन सकता है. आज जब आप इंक्लूजन सिखाते हैं कल वो किसी जगह पे किसी इंसान को खड़ा कर सकता है. आज जो आप मेहरबानी सिखाते हैं कल वो उसकी लीडरशिप का कोर बन सकता है. इसीलिए टीनेज को सिर्फ डिफिकल्ट फेज ना समझें, इसे करेक्टर बिल्डिंग का गोल्डन फेज समझें और काइंडनेस को इसी फेज का सेंट्रल लेसन बनाएं. पेरेंटिंग में एक बहुत गहरी और सिंपल सी हकीकत है. बच्चे ज्यादा वो नहीं सीखते जो हम उनको कहते हैं बल्कि वो सीखते हैं जो हम खुद करते हैं. इसे हम मॉडलिंग कहते हैं, यानी मिसाल बनकर सिखाना. अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीन्स काइंड, रिस्पेक्टफुल और एम्पथी रखते हों तो सबसे पहले हमें अपने रवैये को देखना होगा, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट उनकी सबसे पहली क्लासरूम होती है. टीनेजर हर रोज अपने पेरेंट को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो जानबूझकर हो या नहीं. वो देखता है कि जब हम किसी से नाराज होते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जब कोई गलती करता है तो हम कैसे बात करते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा टोन कैसा होता है, और जब हम किसी स्ट्रेंजर या सर्विस वर्कर से मिलते हैं तो हमारा रवैया कैसा होता है. ये सब उनके लिए साइलेंट लेसन्स होते हैं. अगर हम अपने घर में हार्श टोन यूज करते हैं तो बच्चे भी समझ लेते हैं कि स्ट्रेस में लाउड या रूड होना नॉर्मल है. लेकिन अगर हम कामली रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो वो सीखते हैं कि दिस एग्रीमेंट भी डिग्निटी के साथ हैंडल हो सकती है. काइंडनेस सबसे पहले लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होती है. तुम कभी ठीक नहीं करते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमने तो फिर गलती कर दी. ऐसी बातें टीन के सेल्फ वर्थ को हर्ट करती हैं. लेकिन अगर हम कहना सीख लें, चलो इसको दोबारा ट्राई करते हैं, गलती हो गई लेकिन हम सीख सकते हैं, मुझे तुम्हारी कोशिश नजर आ रही है, तो ये सिर्फ करेक्शन नहीं होती, ये काइंडनेस होती है. मॉडलिंग काइंडनेस का एक और पहलू इमोशनल रेगुलेशन है. टीनेजर देखता है कि जब पेरेंट गुस्से में होता है तो क्या करता है. क्या वो सिर्फ चिल्लाता है, क्या वो दूर हो जाता है, या फिर थोड़ा रुककर सांस लेकर सुकून से बात करता है. ये छोटी छोटी चीजें टीन के अंदर इमोशनल ब्लूप्रिंट बना देती हैं. अगर घर में डिसएग्रीमेंट्स हमेशा फाइट्स में बदल जाएं, तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एग्रेशन है. लेकिन अगर घर में डिसएग्रीमेंट रिस्पेक्ट के साथ हैंडल हो तो बच्चे सीखते हैं कि लोग डिसएग्री भी हो सकते हैं और फिर भी काइंड रह सकते हैं. काइंडनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रिस्पेक्ट है. और रिस्पेक्ट सिर्फ एडल्ट्स के लिए नहीं होती, हर इंसान के लिए होती है. अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, रिलेटिव्स, नेबर्स या इवन स्ट्रेंजर्स के बारे में. टीन ये सब एब्जॉर्ब करता है. अगर हम रोज किसी की बुराई करते हैं तो बच्चे समझ लेते हैं कि जजमेंटल होना नॉर्मल है. लेकिन अगर हम दूसरों के बारे में फेयर और बैलेंस्ड बात करते हैं,

तो वो सीखते हैं कि हर इंसान के पास एक स्टोरी होती है। मॉडलिंग काइंडनेस का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एम्पथी इन एक्शन। सिर्फ कहना कि दूसरों का ख्याल रखो काफी नहीं होता, बच्चे देखना चाहते हैं कि हम खुद कैसे ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फैमिली मेंबर थका हुआ हो तो हम उसकी हेल्प करते हैं, अगर कोई उदास हो तो हम उससे पूछते हैं, अगर कोई मिस्टेक करता है तो हम उसको शेम नहीं करते। ये सब एक्शंस टीम के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स बन जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है घर का टोन। घर सिर्फ रूल से नहीं चलता, टोन से चलता है। अगर घर में ज्यादा वक्त टेंशन, क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट्स का माहौल है तो बच्चे इमोशनली डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अगर घर में वार्म्थ, एप्रिसिएशन और सॉफ्टनेस हो तो बच्चे नेचुरली ओपन और काइंड बन जाते हैं। काइंडनेस को मॉडल करने का मतलब ये भी है कि हम अपनी गलती मान सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल लेसन है। अगर पेरेंट कह सके मैं गुस्से में हूँ, ज्यादा बोल गया, मुझे अफसोस है, तो टीन सीखता है कि गलती को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं मैच्योरिटी है। लेकिन अगर पेरेंट कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता तो बच्चे भी डिफेंसिवनेस सीखते हैं। काइंडनेस का एक और हिडन एस्पेक्ट है ह्यूमिलिटी। जो इंसान हम्बल होता है वो दूसरों को नीचा नहीं समझता, और जब हम अपने घर में ह्यूमिलिटी दिखाते हैं तो बच्चे भी ग्राउंडेड रहते हैं। मॉडलिंग का मतलब सिर्फ अच्छे मोमेंट्स नहीं होते, ये स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, जब घर में प्रेशर होता है, जब थकन होती है, उस वक्त हमारा रवैया सबसे ज्यादा पावरफुल लेसन होता है। टीन उस वक्त देखता है अब मेरे पेरेंट का रियल करैक्टर क्या है। अगर उस वक्त भी सबर, सॉफ्टनेस और रिस्पेक्ट हो तो वो लेसन लाइफ टाइम याद रहता है, और अगर उस वक्त हार्शनेस हो तो वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाता है। इसीलिए मॉडलिंग काइंडनेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सिर्फ कन्वीनियंट मोमेंट्स में नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, टीन्स हिपोक्रेसी बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। अगर हम बाहर लोगों से पोलाइट हैं लेकिन घर में रूड हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं और अक्सर वो वैल्यूज रिजेक्ट कर देते हैं, इंसान नहीं। इसलिए ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। काइंडनेस को एक्ट नहीं आइडेंटिटी बनाना होता है। जब बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स हर सिचुएशन में रिस्पेक्टफुल हैं, चाहे घर हो, स्कूल हो या पब्लिक प्लेस, तो वो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ बिहेवियर नहीं, ये लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल सबसे पावरफुल टीचर होती है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि मॉडलिंग परफेक्शन का नाम नहीं। बच्चे परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहते, वो रियल पेरेंट्स चाहते हैं जो सीख रहे हों, जो गलती करते हों लेकिन इम्प्रूव भी करते हों। यही रियल काइंडनेस है। और जब टीन्स ये देखता है कि काइंडनेस सिर्फ कहने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है, तो वो धीरे धीरे इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है। इसीलिए याद रखें, आप जो दिन भर करते हैं वो आपके बच्चे भी कल बन जाते हैं। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती बल्कि ये वो पहला स्कूल होता है जहाँ बच्चे जिंदगी के सबसे बुनियादी सबक सीखते हैं। यहीं से उनकी सोच बनती है, यहीं से उनका रवैया डेवलप होता है, और यहीं से वो दुनिया को देखना सीखते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीन्स काइंड और एम्पैथेटिक हो तो सबसे पहले हमें अपने घर का एनवायरनमेंट देखना होगा। घर को काइंडनेस का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के मतलब यह है कि यहाँ रोज छोटी छोटी सिचुएशंस में मेहरबानी

0: की प्रैक्टिस हो। ये कोई फॉर्मल लेसन नहीं होता बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा होता है। सबसे पहले सिबलिंग्स के दरमियान रवैये को देखा जाता है। अक्सर घरों में बहन भाई के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, टॉयज, स्पेस, अटेंशन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हर लड़ाई में सिर्फ कौन सही है डिसाइड किया जाए तो बच्चे कॉम्पिटिशन सीखते हैं, लेकिन अगर फोकस इस बात पर हो कि कैसे हम एक दूसरे के साथ काइंडली रह सकते हैं तो ये उनको कोऑपरेशन सिखाता है। मिसाल के तौर पे, तुम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे तुम अपने भाई की मदद कर सकते हो, कैसे तुम अपनी बहन के साथ शेयर कर सकते हो। ये छोटी छोटी गाइडेंस घर को कॉन्फ्लिक्ट जोन से लर्निंग जोन बना देती है। घर में काइंडनेस का एक और पहलू डेली हैबिट्स होती हैं, जैसे कि शुक्रिया कहना, माफी मांगना, एक दूसरे की बात सुनना, बुजुर्गों का अदब करना, छोटी हेल्प ऑफर करना। ये सब चीजें अगर रूटीन बन जाएं तो बच्चे नेचुरली इन वैल्यूज के साथ ग्रो करते हैं। अगर घर में प्लीज, थैंक यू और सॉरी सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स ना हो बल्कि रियल यूज में हो, तो बच्चे समझते हैं कि रिस्पेक्ट हर रिलेशनशिप का हिस्सा है। एक और इम्पोर्टेंट बात, घर का इमोशनल टोन है। अगर घर में ज्यादातर वक्त टेंशन, क्रिटिसिज्म या शाउटिंग होती हो तो बच्चे इमोशनली डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन अगर घर में कामनेस, सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग हो तो बच्चे इमोशनली सेफ फील करते हैं। और जब कोई इंसान सेफ फील करता है तो नेचुरली ज्यादा काइंड होता है। घर को काइंडनेस का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने का मतलब ये भी है कि पेरेंट्स इंटेंशनली अप्रिसिएशन का कल्चर डेवलप करें। बच्चे जब कोई अच्छा काम करे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसको नोटिस करना जरूरी है। तुमने अपने भाई की हेल्प की, मुझे अच्छा लगा, तुमने अपना काम टाइम पर किया, थैंक यू, तुमने पेशेंस सिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। ये अप्रिसिएशन उनको रीइंफोर्स करता है कि काइंडनेस वैल्यू रखती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि प्रेज ओवर द टॉप ना हो, सिंपल, रियल और स्पेसिफिक एप्रिसिएशन ज्यादा इफेक्टिव होती है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं पेरेंटिंग जर्नी ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: घर में काइंडनेस सीखने का एक और तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। जब बच्चे छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जैसे अपना कमरा ठीक करना, छोटी सी कोई मदद कर देना या किसी काम में असिस्ट करना, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं बनते बल्कि कंसिडरेट भी बन जाते हैं। वो समझते हैं कि हर इंसान का एक रोल होता है और हर किसी की कॉन्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। घर में रियल लाइफ सिचुएशंस बहुत अच्छे टीचिंग मोमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई गेस्ट आए, अगर कोई फैमिली मेंबर थका हुआ हो, अगर कोई चीज़ टूट जाए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इन मोमेंट्स को इग्नोर करने के बजाय इन्हें टीचिंग अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहिए। इस सिचुएशन में हम कैसे काइंड रह सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को कामली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सवाल बच्चे के अंदर थिंकिंग पैटर्न चेंज कर देते हैं। घर में काइंडनेस का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है लिसनिंग कल्चर। अक्सर घरों में सब बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं, लेकिन जब बच्चे फील करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वो भी दूसरों को सुनना सीखते हैं।

स्टेप कंसिस्टेंसी हो। अगर कभी काइंडनेस है और कभी हार्शनेस तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर एक स्टडी पैटर्न हो जहां रिस्पेक्ट, सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग कंसिस्टेंटली हो तो बच्चे नेचुरली उस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घर में काइंडनेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती बल्कि पेरेंट्स के लिए भी होती है। अगर पेरेंट अपनी थकन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करके भी रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं तो ये सबसे पावरफुल लेसन होता है। घर को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने का मतलब परफेक्शन नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस, रोजाना की प्रैक्टिस, छोटी छोटी सिचुएशंस में बेटर रिस्पॉन्स देना और धीरे धीरे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहां काइंडनेस नेचुरली हो जाए। याद रखें, घर सिर्फ वैल्यूज से नहीं चलते, रूल से नहीं चलते, रिश्तों से चलते हैं और रिश्ते काइंडनेस से मजबूत होते हैं। जब घर में काइंडनेस होती है तो बच्चे सिर्फ अच्छे नहीं बनते, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग, सोशली अवेयर और कंपैशनेट इंसान बन जाते हैं। काइंडनेस सिर्फ घर तक या लफ्जों तक लिमिटेड नहीं होते बल्कि जब ये एक्शन में नजर आती है तो हम इसे सर्विस या फिर खिदमत खल्क कहते हैं। टीनेजर्स के अंदर अगर दूसरों की मदद करने का जज्बा डेवलप हो जाए तो वो अच्छे इंसान ही नहीं बनते बल्कि सोशली रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली मैच्योर एडल्ट बन जाते हैं। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि काइंडनेस का मतलब सिर्फ तमीज से बात करना है, लेकिन अक्सर में काइंडनेस का सबसे गहरा लेवल वो होता है जब हम अपने कंफर्ट से निकलकर किसी और के लिए कुछ करते हैं। सर्विस का मतलब जरूरी नहीं कि कोई बड़ा या फॉर्मल काम हो, छोटी छोटी चीजों से भी शुरू हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी दोस्त की हेल्प कर देना जिसका होमवर्क मिस हो गया हो, या घर में किसी थके हुए वालिदैन की मदद कर देना, किसी छोटे भाई बहन को समझाना, स्कूल में नए स्टूडेंट्स को गाइड करना, ये छोटी छोटी सर्विसेस हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। जब टीन अपने कम्फर्ट जोन से निकल कर दूसरों की मदद करता है तो उसके अंदर एम्पथी नेचुरली डेवलप होती है। वो समझता है कि हर इंसान की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। फैमिली वॉलंटियरिंग भी इसका बहुत अच्छा जरिया है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलकर किसी कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लें तो ये उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। ये उनको सिर्फ लेक्चर से नहीं, एक्सपीरियंस से सिखाता है। जैसे कि किसी नीडी फैमिली के लिए राशन कलेक्ट करना, किसी क्लीनिंग या एनवायरमेंटल एक्टिविटी में हिस्सा लेना, किसी चैरिटी ड्राइव में सपोर्ट करना, किसी एल्डरली पर्सन की हेल्प करना, ये एक्सपीरियंसेस टीन्स के पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड कर देते हैं और वो अपनी दुनिया से निकलकर दूसरों की दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं। सर्विस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्रैटिट्यूड है। जब टीन देखता है कि कुछ लोग बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो नेचुरली अपनी चीज़ों की वैल्यू समझने लगता है। ये ग्रैटिट्यूड उसके बिहेवियर को हम्बल और काइंड बनाती है। सर्विस टीन को एंटाइटलमेंट से दूर ले जाती है। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है कि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन सर्विस सिखाती है कि मैं भी कुछ दे सकता हूँ। ये माइंडसेट चेंज होना बहुत पावरफुल होता है। पेरेंट्स को यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। सर्विस को कभी पनिशमेंट या फिर बर्डन नहीं बनाना चाहिए। अगर टीन को लगे कि वो ये फोर्स्ड काम है तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, लेकिन अगर उसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाया जाए तो वो नेचुरली इन्वॉल्व होता है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि किसी की मदद हो सके। ये छोटी सी चीज किसी के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। जब टीन पर्पस समझ लेता है तो वो विलिंगली पार्टिसिपेट करता है। सर्विस का एक और पहलू है इमोशनल कनेक्शन।

टीन किसी को हेल्प करता है और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखता है तो उसे इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये सेटिस्फेक्शन उसे दोबारा काइंडनेस की तरफ ले जाती है, यानी सर्विस एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करती है। हेल्प करना, पॉजिटिव फील करना, फिर दोबारा हेल्प करने का जज्बा पैदा होना, टीनेजर्स के लिए बहुत हेल्दी साइकिल है क्योंकि इससे उनका सेल्फ वर्थ भी इम्प्रूव होता है। वो समझते हैं कि वो किसी का काम कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, और ये फीलिंग उनको कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड बनाती है। सर्विस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव चेंज है। अक्सर टीन्स अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझते हैं, एग्जाम्स, फ्रेंड्स, सोशल इश्यूज, लेकिन जब वो दूसरों की स्ट्रगल्स देखते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है। वो समझते हैं कि दुनिया सिर्फ उनकी नहीं, सबकी स्ट्रगल का मिक्स है, और ये अंडरस्टैंडिंग उनको ज़्यादा मैच्योर बनाती है। पेरेंट्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो सर्विस को रूटीन का हिस्सा बनाएं, सिर्फ ओकेजनल एक्टिविटी ना रखें, जैसे हर मंथ किसी की छोटी छोटी कम्युनिटी हेल्प, घर में रेगुलर शेयरिंग हैबिट्स, स्कूल या नेबरहुड में ओकेजनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। कंसिस्टेंसी इस लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सर्विस का एक और पावरफुल लेसन ह्यूमिलिटी है। जब टीम किसी की मदद करता है तो वो अपनी इम्पोर्टेंस को बैलेंस में रखता है। वो समझता है कि हर इंसान वैल्यूएबल है। ये ह्यूमिलिटी उसे एरोगेंस से दूर रखती है। कभी कभी टीन्स सिर्फ रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स पर फोकस करते हैं, ग्रेड्स, ट्रॉफीज, रिकॉग्निशन, लेकिन सर्विस उनको याद दिलाती है कि इंसानियत सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है और यही लॉन्ग टर्म करेक्टर बिल्डिंग करता है। सर्विस का एक और एस्पेक्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट। जो टीम दूसरों की मदद करते हैं वो नेचुरली लीडर बन जाते हैं, क्योंकि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड देना नहीं बल्कि केयर करना होता है। एक केयरिंग लीडर ही रियल लीडर होता है। ये समझना ज़रूरी है कि सर्विस सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं बल्कि अपने अंदर इंसानियत डेवलप करना है। जब टीम सर्विस करता है तो वो सिर्फ बाहर से किसी की हेल्प नहीं करता बल्कि अपने अंदर एक बेटर वर्जन बिल्ड करता है, और यही काइंडनेस का सबसे ब्यूटीफुल लेवल है। जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं और साथ ही अपनी शख्सियत को भी एलिवेट करते हैं। काइंडनेस सिर्फ थ्योरी नहीं होती बल्कि रियल जिंदगी के सिचुएशंस में समझ आती है। पेरेंट्स को चाहिए कि बुलिंग, एक्सक्लूजन और फेयरनेस जैसे टॉपिक्स पर ओपनली बात करें, बच्चों से सवाल करें, इस सिचुएशन में काइंडनेस क्या होती। इस तरह टीन सोचता है कि मुश्किल सिचुएशंस में भी रिस्पेक्टफुल और फेयर कैसे रहा जाए। एम्पथी का मतलब है दूसरों के जज्बात को समझना। जब टीन किसी की फीलिंग्स को फील करना सीख लेता है तो काइंडनेस नेचुरली आती है। पेरेंट्स को बच्चों को सुनना, समझना और पर्सपेक्टिव लेना सिखाना चाहिए। एम्पथी ही काइंडनेस की असल बुनियाद है। जब टीम कोई अच्छा काम करे, छोटी सी काइंडनेस भी हो, उसे नोटिस करना जरूरी है। ओवर प्रेज नहीं बल्कि सिंपल अप्रिसिएशन देना चाहिए। इससे बच्चे को फील होता है कि उसका पॉजिटिव बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है और वो उसे रिपीट करता है। काइंडनेस छोटी छोटी आदतों से बनती है, जैसे मुस्कुराना, शुक्रिया अदा करना, किसी को इंक्लूड करना या मदद करना। ये छोटे एक्शंस मिलकर स्ट्रॉन्ग करेक्टर बनाते हैं। कंसिस्टेंसी से सबसे ज्यादा ये आसान हो जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ना कि सिर्फ कभी कभी के बड़े एक्ट्स। काइंडनेस एक दिन में डेवलप नहीं होती, ये टाइम और एक्सपीरियंस से ग्रो करती है। पेरेंट्स का रोल सिर्फ टीच करना नहीं बल्कि मॉडल करना और गाइड करना है।

0: ये गोल होना चाहिए कि टीन एक कंपैशनेट, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग एडल्ट बने जो दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। काइंडनेस कोई एक दिन का लेसन नहीं और ना ही सिर्फ एक अच्छा रवैया है जो कभी कभी दिखाया जाए। ये एक लंबी जर्नी है जो घर से शुरू होती है और पूरी जिंदगी साथ चलती है। टीनएज इयर्स में बच्चे सिर्फ सीख नहीं रहे होते बल्कि अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हैं। इसी दौर में अगर उनके अंदर एम्पैथी, रिस्पेक्ट और मेहरबानी की बुनियाद रख दी जाए तो ये वैल्यूज उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। पेरेंट्स का रोल यहाँ बहुत सेंट्रल होता है, ना सिर्फ सिखाने का बल्कि दिखाने का भी। बच्चे उन्हीं बातों को ज्यादा याद रखते हैं जो वो देखते हैं, महसूस करते हैं और रोज के रवैये में एक्सपीरियंस करते हैं। काइंडनेस का मतलब सिर्फ अच्छा बनना नहीं बल्कि दूसरों को समझना, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना और छोटे छोटे एक्शंस पर उनकी जिंदगी बेहतर बनाना है। और सबसे अहम बात यह है कि काइंडनेस परफेक्शन नहीं मांगती, ये कंसिस्टेंसी मांगती है। कभी गलती हो जाए, कभी सब्र टूट जाए, लेकिन वापस सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग की तरफ आना ही असल ग्रोथ है। आज जो टीन छोटी काइंडनेस सीख रहा है, कल वो किसी की जिंदगी में सुकून का जरिया बन सकता है और शायद वो काइंडनेस उसे एक बेटर इंसान बनाने, एक बेटर फ्रेंड और एक बेटर लीडर बनने दे। आखिर में ये याद रखें, काइंडनेस सिर्फ सिखाई नहीं जाती, ये जी जाती है। और जब घर में काइंडनेस हो तो सोसाइटी में भी रोशनी बढ़ती है। लिसनर्स, ये थी हमारी आज की पेरेंटिंग जर्नी की एपिसोड और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।

0: कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई स्टूडियो की घड़ी में तो 11 बज के सही 2 मिनट हो रहे हैं, आप बताइए कि आपका टाइम कैसा चल रहा है।
1: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस।
1: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजी नाजिया और आरजी सर्वर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं शो में जिसका नाम है आफ्टरनून एक्सप्रेस, और आज है बहुत ही प्यारा ट्यूसडे वाला दिन। तो बस आज हम जो है वो सर्वर मिर्जा, आज ट्यूसडे का दिन है,
2: मंगल है।
1: हाँ
2: मंगल ही कहते हैं ना,
1: मंगल
2: हाँ।
1: कहते हैं, और जो आप शीट लेके बैठे वो विटनेस लेके है।
2: अच्छा ऐसा है क्या? भाई देखिए तारीफ तो उस खुदा की
1: बनती ही नहीं है,
2: नहीं मैं उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। तो ये आपने मतलब देख के और हम मुझे अब बता रही है नाजिया जी?
1: नहीं तो मेरे पास टाइमिंग आ, एक सेकंड में मैं आई हूँ, मैंने देखी शीट और मैं अपनी जगह पे आ गई। लेकिन मैं कितनी प्रिसाइज हूँ देखने के मामले में, मैंने कहा वाह सरवर मिर्जा एक दिन आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चलती हूँ, ये आगे चल रहे हैं।
2: ये तो शाकिर मोहम्मद वाला किस्सा हो गया। शाकिर अगर मुझे सुन रहे हैं तो परेशान ना हो, घर से बाहर निकले तो देखा रास्ते में कुछ मसला था सामने पड़ा हुआ जिसपे कदम नहीं रखना था, तो उन्होंने कदम रखा और निकल गए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, खैर चौथे दिन जब ऐसा हुआ जब बाहर निकले तो किसी ने समझाया कि क्या कर रहे हो तुम भाई, ऐसा नहीं करा करो, तुम साइड से भी तो निकल के जा सकते हो। कह रहे भाई रास्ता तो यही है, क्या करूं, आज फिर ऐसे ही होके निकलना पड़ेगा। तो आज यही हो गया, तो अब हमारे लिए आज वेनेसडे ही है, अब हम वेनेसडे मनाएंगे। ट्यूसडे हो तो एक दिन निकल,
1: आज हमारा ट्यूसडे, हम बेशक ट्यूसडे ही मनाएंगे, उस पे ही बात करेंगे, और कल ही आप लेकर आएंगे अपने पेपर।
2: भाई देखिए जिंदगी में से एक दिन निकल गया तो निकल गया, मैं सुना दिया, अब वापस तो जाने का नहीं।
1: मतलब इनके साथ दोस्तों बहुत बहुत कांड होते हैं, आपको कुछ नहीं
2: बुलाती
1: पता
2: है,
1: ये तो
2: जाने
1: आज
2: का नहीं, रात भाई लगा था।
1: ये तो आज एक जो है ना लाइव मैंने बताया, मिर्जा भी ऐसे करते रहते हैं कि ये जो है
2: क्या
1: ये
2: बात
1: भी
2: है,
1: आपको हैरत।
2: मतलब मुझे अपने ऊपर इतना फख्र महसूस हो रहा है इस वक्त,
1: ये प्राउड तो हम लोग दिन भर कर रहे
2: हैं। कहते ना कि यार बड़ा शार्प आदमी, बड़ा तेज आदमी दुनिया से आगे चल रहा है, मैं वाकई देखिए पूरे 24 घंटे आगे चल रहा हूँ। कल 11 बजे जो मुझे करना था,
1: और जो शार्प आदमी वो आज के लिए ब्लैंक चल रहा है, कल के लिए चल रहा है, आज का कुछ नहीं सोच रहा है, खाली हाथ आए।
2: आज तो अपनी है नादिया, आज तो अपनी है, कल की फिक्र करनी चाहिए।
1: याद आ गया, ये रात तो अपनी है, पूरी रात बैठे बातें कर रहे हैं, रात तो अपनी
2: कल की फिक्र करनी चाहिए। अब फिक्र कल की रहेगी तो
1: आज की भी कुछ फिक्र कर लीजिए।
2: आज की फिक्र करने के लिए हमारे लिसनर्स हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ जुड़ेंगे।
1: मुझे उम्मीद थी आप ऐसा कुछ घपला जरूर करेंगे,
2: बातचीत करेंगे बराबर,
1: इसलिए हर कॉपी मैंने सॉफ्ट में रख रखी।
2: वाह वाह वाह वाह,
1: मैं हार्ड पे,
2: सॉफ्ट मिजाज तो आप हैं ही मिथना दिया,
1: मैं हर कॉपी सॉफ्ट में रखती ही हूँ।
2: तो भाई अगर आपने हमारे साथ जुड़ना है और कल के हवाले से बातचीत करनी है, आज भी अपना शेयर कीजिए, कल भी हम आपके साथ होंगे। नंबर हमारे आपको पता ही है 666-22-107-6662-107 पे आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, हाल अहवाल बता सकते हैं, मेरी खैरियत पूछ सकते हैं, और वहीं कॉल कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, नंबर है डायल कर देना है, वो बहुत आसान सा है, 443-443-77 यानी अंग्रेजी में 443-443-77। और यहां पर नाजिया का हुआ इशारा और ये आ गया पहला कॉलर हमारा। आदाब, हेलो, सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। भाई क्या हाल है, नाजिया क्या हाल है, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? है ना, हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग, कैसे जा रही है आपकी मॉर्निंग?
4: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बुध में ही जी रहा हूँ।
1: ये भी बुध में आपकी तरह जी रहे हैं।
2: अच्छा, और मैं पैदा भी बुध में हुआ था तो घर वाले बुद्ध बुद्धू दादा कहते थे एक्चुअली, अब समझ में आया क्यों, एकदम से उन्होंने बोला तलहा भाई ने एकदम से बोला तो मेरे समझ में आया।
4: यार सरो भाई आज तो आज जहाँ बोलो ना आप
2: इसी बात के तो पैसे ऐसी कर देता हूँ यार, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मेरा कुछ भरोसा नहीं है बकौल नाजिया के।
4: आप खुद नहीं पता कि आप क्या कर देते हैं,
2: ये वाकई
4: करके बोलते कि क्या कर दिया मैंने,
2: ये बिल्कुल ये मैंने किया है, ये भी होता है कभी कभी, और फिर कभी कभार ऐसा होता है यार ये मैंने किया है, एक ये भी होता है और एक ये होता, अरे ये मैंने किया है, तो दोनों ही तरीके
1: एक और भी होता है ये आपने किया है,
2: ये तो
1: आपने किया है, देखिए

0: दूसरे
1: एक और होता है, एक और होता है, ये तो तुमने क्या किया।
2: ये बात है
0: यार, ये सवाल तो मुझसे बहुत बार पूछा गया है स्कूल से लेके आज तक लोग पूछ रहे हैं, और इस पे गाना भी आ गया ना, ये तूने क्या किया, वो गा रहे हैं ना अपने, कौन है, अमजद भाई है, कौन से है, साबरी साहब है, कौन से, नाम भूल गया मैं, भरल गा रहे हैं,
1: पहुंच गया
0: तो वो गाना मेरे लिए ही बना, गाना मेरे लिए ही बना है मेरे ख्याल में। भरल तला भाई, अहलन व सहलन, कैसे हैं, कैसी हुई सुबह, और अभी तक का टाइम कैसा गुजरा आपका?
1: भाई बेहतरीन, भाई बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का,
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या बात है, ये बात, हर हाल में खुश हैं, तो क्या खुशी है आज?
1: भाई खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, आज अप्रैल, लास्ट वीक अप्रैल हुआ था।
0: अरे बेटे क्या बात है यार, मबरूक माशाल्लाह,
1: प्रमोशन अल्हम्दुलिल्लाह, प्रमोशन अप्रेजल दोनों हुआ माशाल्लाह।
0: अच्छा माशाल्लाह,
1: आज उसकी कंफर्मेशन।
0: तो ये बताइए, अरे ये वो सब छोड़ो यार, ये तो इतना ही सुन लिया काफी है, डायरेक्ट रिपोर्ट कोई है खाली एक जगह
1: क्या है क्या
0: कोई क्या? कोई अंडर में जगह खाली है किसी साहब को नौकरी, किसी साहब को, अरे किसी साहब को नौकरी की जरूरत है
2: आपके लिए?
0: ये तूने क्या किया
1: आपके आपके लिए तो बताए, वरना तो मेरे अंडर तो बेचारे जो काम कर रहे पछता ही रहे।
0: अरे अल्लाह,
1: ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कहां ज्वाइन कर दिया
0: ये जो अभी ये बात आपके आपने फरमाई थी, तो वो ये डेली बेसिस पे असल में सामने आती है, तला यही कहते हैं, ये तूने क्या किया हर बार बात में।
1: मैं ये कहता हूँ, ये क्या कर दिया तूने भाई, ये तो बोला ही नहीं
0: था। नहीं नहीं तला साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, जिस मिजाज के हैं और जिस तरीके के हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी अंडर काम करने वाले लोग होंगे और साथ में कलीग्स भी और बड़े भी, सभी खुश होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है।
1: ये सर आपने ना अपनी तारीफ करी इनडायरेक्टली।
0: अरे नहीं यार, मुझसे तो हर कोई परेशान है, मेरे साथ तो 15-15 साल पुराने वाले भी परेशान है भाई, ये बैठी है बराबर है।
1: जब भी तो कह रहा हूँ, अब जब कोई नहीं कर रहा तो अपनी खुद तो कर ले बंदा।
2: सही बात
0: खैर यार, बहुत ही बढ़िया
2: साहब, कहते हैं तारीफ की जरूरत ही क्या है,
1: किसकी कर रहे हो रहे ना, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो
0: यार तला भाई, ये तो गेम पलट गया, 99 पे सांप ने काट लिया, सीधे 2 नंबर पे आ गया,
1: ये धप्पा हो गया
0: भाई वाह क्या बात है तला, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, और अपना खूब ख्याल भी रखिए, दुआओं में याद रखिए, और भी कुछ अर्ज करना चाहते हैं, फरमाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं?
1: नहीं नहीं, बस आपकी तारीफ माशाल्लाह सुबह होती रहती है।
0: अच्छा सुबह हो चुकी है, मैं समझ गया, ये कौन सी तारीफ हुई है सुबह, मैं समझ गया।
1: नहीं भाई रोज हो रही है तकरीबन ना, और अल्लाह तो मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा यार सरो भाई से बात कर लूंगा, भाई मैंने नहीं बोला,
0: तो फिर ऐसी ही तारीफ हुई है जो बोलना भी पसंद नहीं कर रहे, मैं समझ गया।
1: मैंने नहीं बोला, मैंने पहले बोल दिया भाई, मेरे हाथ उठा के बोले मैंने नहीं बोला भाई,
0: मैं तो उनसे मुलाकात करूंगा,
1: लपेट का है
0: उनसे उनसे उनसे मुलाकात कर लूंगा अभी मैं, बस 2 घंटे बाद।
1: वो सरो भाई कोने वाला दांत तोड़ देना, कोने वाला
0: है ही गाँव उनके, ना कोने पे है ना बीच में है कोई।
2: अरे तो रैप कैसे करेंगे,
0: अभी
1: रुक
0: जाओ, जब रैप रिकॉर्ड हो जाए, जब तो रैप अच्छा कर रहा है, दांत है ही नहीं,
2: मुंह से करेगा रैप, वो दांतों से रैप कौन करता है,
0: हां तो दांत है नहीं, जब भी तो रैप अच्छा हो रहा है, ये तो खासियत है, जब अगर दांत ना हो तो फिर वो एक वो नहीं, फ्लो नहीं
1: बनता ना, वो दांत सही नहीं। कबीर साहब ये तारीफें सुन रहे हैं, वो जिस तरह सुबह मेरी तारीफ करके गए, अलग जोंगरा का,
0: वाह क्या बात है, चलिए यार तला बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए सुबह ही सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच तला, टेक केयर अल्लाह
2: हाफिज। ऑलराइट, अभी तक हम हालांकि टॉपिक तक नहीं पहुंचे हैं और अभी रुक के पहुंचेंगे।
0: टीपी टीपी टॉप टॉप, व्हाट कलर यू वांट, वांट
2: टुडे आई वांट ब्लैक फॉर यू।
0: ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
3: अल्लाह का शुक्र है सर, मैं शोएब बात कर रहा हूँ।
0: शोएब भाई अहलन वसहलन, कैसे हैं शोएब भाई, खैरियत सब, कोई नई ताज़े खास लेके आए?
3: नहीं अभी फिलहाल कुछ नहीं है, सब अल्लाह का शुक्र है।
0: अच्छा अभी तैयार नहीं की है, चलिए तैयार दोपहर तक तो हो ही जाएगी, 1:30-2 बजे तक। लंच से पहले
3: हाँ हो जाएगी,
0: बस
3: बिल्कुल हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी
0: उस वक्त।

0: तो नोशो तनावल फरमा लेंगे फिलहाल के लिए. बताइए, ब्रेकफास्ट अच्छा हुआ?
1: अभी तक तो नहीं हुआ. दरअसल मैं ब्रेकफास्ट करता ही नहीं.
0: नाश्ता ही नहीं किया या करते ही नहीं?
2: क्यों ऐसा करते हैं?
1: बस ब्रेकफास्ट में एक ब्लैक कॉफी चाहिए होती है और डायरेक्ट उसके बाद फिर लंच होता है 3-4 बजे.
0: मेरी तरह है. क्या बात है यार. मतलब मैं भी 3-4 बजे भी लंच करता हूँ. अब भी से तो कितनी बार पहले हो जाता, कोई मसला ही नहीं है. और बताइए भाई.
1: ब्रेकफास्ट में प्रॉब्लम हो जाती है भाई, इसलिए बंद कर दिया.
0: क्या बात है, सारा आपकी मोहब्बत है. और कुछ शेयर करना चाहते हैं?
1: शेयर क्या शेयर करूँ, अभी हाल फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है. देखो सब लाइफ इतनी स्मूथ जा रही है कि मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ जा रही है.
0: चीता कर दीजिए, कुछ बिल्ली बिल्ली कर दीजिए. शेयर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं.
2: बिल्ली बिल्ली कर
0: कुल्ली कर दीजिए. चलिए, अगर बिल्ली बिल्ली हो रही तो कुल्ली तो आराम से हो जाएगी. पानी की बॉटल होगी, गर्मी हो रही है भाई. कहाँ है अभी आप
1: शुएब भाई? जी मैं अभी काम स्टार्ट किया है.
0: नहीं नहीं, है कहाँ, कौन सी जगह है?
2: मैं काम कर रहा हूँ.
1: मैं अभी गराफा हूँ.
0: गर्राफा में होते हैं. क्या बात है यार. चलिए
2: बहुत ही अच्छे.
0: चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए. अब से थोड़ी सी देर में हम टॉपिक का शोशा भी छोड़ने वाले हैं
2: इंशाल्लाह.
1: मुझे लगा अभी छोड़ रहे हैं शायद. अभी
2: थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि ऐसे हमने अभी बनाया हमारी
0: सिचुएशन. एक हल्की कनक रह गई है, हल्की आंच पर रख दिया है. बस जैसी तैयार हो जाएगी फौरन आप देखिए. बिल्कुल परोसी जाएगी और नगमा काफी इंतजार कर रही है, उनको ज्यादा सताएंगे नहीं. आहा, मंगल की बेहतरीन सुबह हो चुकी थी, ये दोबारा सुबह हुई भाई. हम आते हैं, मतलब मैं और नाजिया आते हैं तो दोबारा सुबह शुरू होती है. उम्मीद तो यही करते हैं. फिलहाल 11:13 और आफ्टरनून एक्सप्रेस में सरवन नाजिया आपके साथ FM 107 पे.
2: दिल से देश.

0: घुंघरू टूट गए से मेरा मतलब समझ में नहीं आया मुझे कुछ ज्यादा। शिल्पा राव और अरिजीत सिंह, बहरहाल जो भी है 2.0 बनाने की कोशिश करी है घुंघरुओं के गाने को, बना तो अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है। अरे किधर गया यार ये है। क्या शेर सुनाया नादिया जी आपने, क्या शेर सुनाया भाई, वाह वाह वाह वाह। हेलो एंड वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागतम। तो भाई ये थे घुंघरू टूट गए और अभी तो हम आ गए आपके पास 11:18। आज का खासम खास प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए है और आज खास क्या है ये भी हम आपको बताएंगे अब से थोड़ी सी देर में। भाई जहां पर आज के दौर में खूबसूरत सफर जो टीवी प्रोग्राम्स का है या कहना चाहिए ड्रामों का है, सीरियल का है, ड्रामा तो बहुत लोग कर रहे हैं जिंदगी में, मेरी भी, मगर असली ड्रामा जो है वो तो शुरू हो रहा है टीवी के ऊपर। तो खास हम खास ये कि आप ये बता सकते हैं कि आपको कोई ऐसी टीवी सीरीज है, कोई सीरियल है जिसने उजागर किया है, जिसने कुछ समझाया है, जिसने आपके अंदर कुछ बदलाव लाए हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइट एंड लाइट।
1: हाँ ये भी बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी सीरीज है विच यू कैन लाइक वॉच अगेन एंड अगेन, बार बार आप उसे देख सकते हैं, एटलीस्ट 3-4 बार उस सीरीज को देख ही सकते हैं।
0: भाई देखिए इंसान के काफी चेहरे होते हैं, जिंदगी भी काफी तरीके से चलती है, तो एक वो चेहरा जो हंसी मजाक का होता है, एक वो जो थोड़ा संजीदा होता है, एक वो जो थोड़ा दीनी एतबार से होता है, तो मैं इन तीनों को जोड़ने की कोशिश करके बताता हूँ कि मेरे साथ लाइफ में क्या हो रहा है। तो अगर मैं दीनी एतबार से पहले बात करूं तो फिर मुझे इर्तुगरुल और उस्मान, बिल्कुल इर्तुगरुल और
1: ये पहली बार तो मैं अर्तुगुल समझती हूँ।
0: हाँ वो उर्दू में है एक्चुअली, तुर्की में अगर आप कहेंगी तो इट्स इर्तुगरुल, उस्मान। उसके बाद मैंने इर्तुगरुल पूरा देखा और काफी,
1: मैंने भी 2-3 बार देखा, हमारे यहाँ तो बहुत ही फेवरेट है, हमारी अम्मा का इतना फेवरेट है कि मेरे ख्याल से उस्मान और ये दोनों सीरीज ही बैक टू बैक चलती है। और मैंने सोचा था कि मैंने कहा भी, मैंने उनका टेस्ट भी लिया,
0: अच्छा
1: कम से कम 5-6 बार रिपीट कर चुकी है।
0: अब बताइए, अच्छा और ये सवाल पूछने के लिए आपने भी बहुत इसके ऊपर नॉलेज हासिल करी होगी। मैंने तो
1: चलते फिरते देखा, इसलिए मेरा टेस्ट कोई ना ले, मैंने पहले ही ले लिया।
0: अच्छा जो चलते फिरते दो चार सवाल देखे।
1: जो मैंने 2 बार पूरी देखी वो पंचायत, पंचायत मेरी काफी फेवरेट सीरीज रही है और मैंने उसे 2 बार देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब दोनों ही बार मैंने इक्वली एंजॉय किया। ऐसा होता नहीं यूजुअली कि कोई भी सीरीज मैं टिक के पूरे आराम से इत्मीनान से पूरी देखूं, बट दैट वाज लाइक वन एंड ओनली सीरीज जिसे मैंने देखा पूरा, एंड दैट टू 2 टाइम्स, 2 बार उसे मैंने देखा।
0: भाई चलिए ये तो अच्छी
1: बात है, कह सकती हूँ कि हाँ, it's like one of my favorite।
0: अब मैं अपनी बात यही बता रहा था कि दीनी अखबार से तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिला और मिल रहा भी है। अब वो क्या चीज है, खैर वो एक लंबा मसला हो जाएगा, बट दीनी अखबार से अगर हम बात करें तो इर्तुगरुल एंड उस्मान ऑब्वियसली, वहीं अब जैसे शौक है खाने पकाने का और दूसरी चीजों का, तो मुख्तलिफ सीरीज हैं बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, शेफ इन द किचन है और भी चीजें हैं जिसमें गॉर्डन रामसे हैं, या अगर हम अपनी

0: ही बात करें तो फिर संजीव कपूर के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो पहले भी आते थे, अभी रिपीट भी होते हैं। इसके अलावा और भी चीजें, अब हंसी मजाक से मुतालिक तो मैं कपिल देखता ही देखता हूँ, और अगर मैं इंडिया से बाहर की बात करूँ तो मैक्स को मैं बहुत सुनता हूँ। मैक्स अमीनी अगर लोग जानते हैं तो मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ उनका, और उनको भी बहुत देखता सुनता हूँ, उनकी भी सीरीज वगैरह है। हम किसी OTT प्लेटफॉर्म का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, हम खाली सीरीज सीरियल्स ड्रामे जो आपने देखे। अब जैसे कि नाजिया के जमाने के थे, अलिफ लैला था, चंद्रकांता था, शक्तिमान था, उस टाइम की भी आप बात कर सकते हैं।
1: आपके जमाने का भी था वो, क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो आज तक आपके जा रहे हैं।
0: वो तो मैं अभी तक जा रही
1: हूं, आज तक आप
0: ये तो नाजिया जी अभी तक जा रही है, यकीन जानिए वो हसीन सपने देखना मैंने छोड़े ही नहीं है।
1: आप एक वो भी तो सीरियल था जिसमें आप कूद के लपक के पीठ पे उस पे चढ़ जाते थे।
0: हाँ,
1: आप ही पे तो था,
0: तू बोला मैं चला,
1: चला।
0: वो कौन था, नाम नहीं याद आ रहा, बताइए तो सही।
1: अरे वो आपका इतना अच्छा मशहूर
0: कैरेक्टर था, वो तो मैं
1: आपका अभी गेटअप भी आपने क्या कमाल
0: कर, विक्रम एंड बेताल
1: वही आपका, आप रहते थे बेताब।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वो भी था, ब्योमकेश बख्शी भी मुझे याद आ रहा है, और भी काफी उस टाइम के, मतलब उस टाइम से मेरा मतलब है मैं तो छोटा था, बहुत नन्ना सा था, मगर कानों पे आवाज पड़ती थी तो मैं देखता और सुनता भी
1: मतलब
0: था।
1: मतलब होंगे 2 घंटे के।
0: हाँ, देख भाई देख आता था उस टाइम पे। और क्या याद आ रहा है मुझे, एक वो आता था, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अगर किसी को याद है तो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं।
1: कॉलर भी,
0: अच्छा कॉलर हैं, और यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं, इनसे बात करते हैं उसके हाँ। बाद मैसेजेस की जाने
1: पर फेवरेट सीरीज की आज बात हो रही है। हाँ, मेक श्योर कि एक सीरीज तो जरूर बताइए।
0: मना कर रहे हैं
1: नहीं है।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: गाबा जी, एहलन वसहलन, कैसे हैं गाबा भाई?
2: सरवर भाई, सबसे पहले तो कोइंसिडेंटली,
0: अच्छा
2: ये जो घुंघरू वाली बात है ना यार, मेरे दिमाग में भी आई सरवर भाई ये।
0: अरे क्या बात है यार, सेम फ्रीक्वेंसी FM 107 सुनते हैं आप? हाँ तो यार,
2: घुंघरू सेठ, घुंघरू सेठ नहीं, घुंघरू वाली बात याद आई सर।
0: हाँ ले ली वो। क्या बात है यार।
2: जी और नाजिया, तो कैसे
1: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: जी बिल्कुल, तो मेरे दिमाग में जब ये सॉन्ग चल रहा था ना अभी, हाँ। घुंघरू टूट गए, हाँ। तो मैं मैडम इमेजिन कर रहा था अभी वो आर्टिस्ट कैसा होगा और वो कितनी शिद्दत से नाचता होगा कि उसके घुंघरू टूट जाते हूँ मैडम नाचते समय।
1: सही बात है, कितनी शिद्दत से कोई परफॉर्म कर रहा है और इतना ज्यादा उसमें डिवोटेड है कि वाकई उसे एहसास भी नहीं है कि मतलब ये वही जो लाइन फ्रीक्वेंसी दिखानी है।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन है ना नाजिया जी, ऐसे ही नहीं लिखी गई है, वही घुंघरू टूट गए, ये लाजमी स्टोरीज तो पीछे वाली हैं, ये लाजमी टूटे ही टूटे हैं पहले, इसीलिए
0: तोड़वाए गए हैं
2: दिमाग में ये बात है।
0: और गाबा भाई क्या हालचाल है, कैसी रही मॉर्निंग आपकी?
2: मॉर्निंग बेस्ट है सर।
0: क्या बात है यार,
2: गर्मी,
0: as usual, गर्मी। आज बात हो रही है अपने कुछ सीरियल्स या सीरीज के हवाले से, कुछ ड्रामा या टीवी पे जो भी आप देखते आए हैं कुछ शेयर करना चाहते हैं
2: सरबर भाई? बात ऐसे है, बहुत सारी सीरीज हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे।
0: ओके
2: मैं आपको एक सिंपल सीरीज बताता हूँ, वो आपके भी काम आएगी सरबर भाई।
0: अच्छा
2: फ्लिक्स पे पड़ी है वो, मैं शॉर्ट में नाम बता देता हूँ आपको।
0: अच्छा बस नाम उसका नहीं लेंगे हम, OTT प्लेटफॉर्म का,
2: मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको।
0: ठीक है, हाँ ओके।
2: उस पे एक वेब सीरीज पड़ी है सर, खाना खजाना और कहानियाँ।
0: क्या बात है,
1: अच्छा
0: बेहतरीन
2: सरवर भाई, अगर आप उसको देखोगे ना,
0: हाँ।
2: अपनी हर स्टेट का, जैसे नॉर्थ साउथ या स्पेसिफिकली स्टेट का नाम लेके उन्होंने प्रॉपर डिटेल्ड में बताया है सर।
0: सही
1: सही
0: सही,
1: वेरी नाइस।
2: और वो इतनी अच्छी वेब सीरीज है ना, उसमें सर आपको अपना कल्चर की, रिलीजन की और खाने पीने की पूरी डिटेल्ड में नॉलेज बताई गई है,
0: सही।
2: तो आप देखेंगे, हाँ। बहुत अच्छी वेब सीरीज है सर वो।
0: ओके चलिए भाई, बिल्कुल अगर टाइम मिल गया मुझे अभी फिलहाल में ही तो जरूर उसको मैं देखूंगा। अच्छा हुआ आपने बताया।
2: बहुत सारी डिशेज हैं सर, जैसे आपने सुना होगा वाजवान का नाम।
0: जी जी,
2: वाजवान सुना है सर?
0: सुना, जी जी बिल्कुल सुना है, खाया है, बनाया नहीं है बस, ये कश्मीरी डिश होती है।
2: मेरे को जरूर खिलाना है आपने एक बार जब अच्छा मिले, ठीक है सर?
0: ये कश्मीरी डिश है
2: सरवर भाई,
0: खासम खास, और हमारे कश्मीरी भाई जो है वो बहुत अच्छी प्रिपेयर भी करते हैं, तो है तो बहुत ही जबरदस्त चीज, और इंशाल्लाह ताला अगर कभी बनाना सीख गया तो यार आपको भी खिला दूंगा।
1: इसका कभी नहीं खिलाएंगे, जब मिलेंगे सीख रहा हूँ।
2: मैं भी वही देख रहा हूँ,
1: नहीं खिलाएंगे।

0: नहीं यार ऐसा
1: नहीं, नहीं बादल तो कई बार आएंगे, बरसेंगे नहीं उनका ये हाल,
2: बरसेंगे नहीं, नहीं सही बात है जी
0: भाई, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है, ये वाली बात है।
1: आप गरज चुके हैं।
0: अरे मैं गरजता भी हूँ बरसता भी हूँ नाजिया जी, आप क्या बात कर रही है जी।
1: भी
2: भाई एक बार जी चंडीगढ़ में मौका मिला था मेरे को खाने का एक बार, और जो प्रोफेशनल वाजवान होता है ना सर, उसकी तैयारी तो एक महीना पहले शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसको बनाने के लिए जो प्रोफेशनल बंदे हैं वही उसी को बनाते हैं,
0: वही बनाते हैं,
2: उनको बोलते हैं वाजा।
0: हमारे कतर में भी दो चार जगहें ऐसी हैं इंशाल्लाह, अगर आप ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएंगी। बिल्कुल हाँ ओके एंड
2: अच्छा तो
0: चलिए तो खाने पीने की बात हो गई, कोई और ऐसी सीरीज जिसने आपको बहुत मुतासर किया हो?
2: सीरीज नहीं सर, एक वो शो आता था मोगली।
0: ओके वो जरूर देखते थे,
1: सबने देखा है मोगली।
0: सही
2: जी बिल्कुल सर, आप उसका म्यूजिक सुनोगे ना पता नहीं सरवर भाई उसके म्यूजिक
1: जंगल जंगल
2: है क्या नहीं,
0: उसके पीछे भी कहानी है।
2: जंगल जंगल बात चली है पता चला है,
0: गुलदार साहब ने लिखा है इसको और इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, तो वो भी बड़ी जबरदस्त है, उसको आप देखेंगे तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है तो कुछ कहानी ऐसी थी कि कुछ था उसके पीछे मसला, मुझे अब एकदम आपने अभी बात करी तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शेयर करूंगा थोड़ी सी देर में याद करके। तो मोगली तो खैर सभी के प्यारे थे, आज तक राज दुलारे हैं, इवन हमारे OTTs पर भी कितनी नई नई मूवीज आ गई हैं उनको लेकर, इवन अभी बहुत ही रिसेंटली मोगली के नाम से ही मूवी आई है OTT पे, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बनाई है दर्शाई है, बच्चे हों बड़े हों सभी देख के पसंद करते ही करते हैं।
2: सरवर भाई वो हो गई एक अलिफ लैला देखो, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक देखो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: प्रोग्राम तो अच्छा था ही था, उसका बैकग्राउंड मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, जो पुराने शोज होते थे उनके म्यूजिक इतने ज्यादा जबरदस्त होते थे ना सर, आजकल मेरे को नहीं लग रहा अभी कोई शो ऐसा हो।
0: एक्चुअली होता क्या था कि बहुत रेयर होते थे, मतलब वो चीजें वो धुन हम पहली बार सुनते थे तो इसलिए हमें अच्छी भी लगती थी, दिल में भी रह जाती थी, आज तक हैं भी। अब वो कॉपी इतनी हो गई है और गुंजाइश खत्म हो गई है हर चीज की, तो रिपीटेशन कहीं ना कहीं लगता है, धुन सुनी भी लगती है, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती दिल दिमाग पे।
2: नहीं सरवर भाई वो जो धुन थी ना पुरानी,
0: हाँ
2: वो अपनी देसी धुने थी सर, आजकल तो बहुत कुछ मिक्सअप चल रहा है, मेरे को नहीं लगता अभी उन जैसी जो धुने पहले बन चुकी है भी उन जैसी धुन बनेगी कोई, क्योंकि सर वो परमानेंट है, जो आजकल वाली है तो एक दिन बंदा सुनेगा दो दिन सुनेगा बंदा ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती है सर दिमाग से। देखो आपने अभी मेरे को याद करा दिया मोगली का, वो अभी भी मेरे दिमाग में है सर।
0: सही सही।
2: और आपने बात की विक्रम और बेताल सर, क्या बात है
0: है ना, वो जब सवाल पूछ लेता था हाँ, और सवाल उसमें पूछने के बाद दिमाग उसी में ही घूमता रहता था, अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा, क्या बात है भाई।
1: बिल्कुल
0: चलिए साहब बहुत ही बढ़िया बहुत ही जबरदस्त, और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं?
2: बस सरवर भाई मैं हंसने के लिए क्या सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ पाकिस्तानी ड्रामे।
0: ओके
2: प्योर पंजाबी में होते हैं ना देसी।
0: ओके ओके खाली पंजाबी ही नहीं और भी मतलब जबानों में, और जो मैं क्या ही
2: कहूं होते हैं जो स्टेज ड्रामास होते हैं उनमें प्योर पंजाबी होती है।
0: मोइन अख्तर साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं, ये बहुत लेजेंड से गुजरे हैं जिन्होंने हमें हंसना सिखाया, हमें मजाक दिया है, तो बहरहाल अपनी अपनी चॉइसेस हैं। और मजीद बात करते गाबा भाई, अजान का वक्त हो गया तो
2: सॉरी सॉरी
0: हाँ जरा नहीं सॉरी नहीं इजाजत लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला कनेक्ट हो जाइएगा तो जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे गाबा भाई, और अब एक छोटा सा ब्रेक अजान सुनते हैं, इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद बातचीत जारी रहेगी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी एफएम 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 आरजे फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। हर

0: सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। मोबाइल हाथ में, लेकिन फैमिली पास होकर भी दूर हो चुकी है। क्या आप भी चाहते हैं कि घर के रिश्ते फिर से मजबूत हों और फैमिली के साथ गुजारा वक्त फिर से कीमती लगे? तो सुनिए फैमिली ओरिएंटेड शो जो दिलों को करीब लाता है, संडे से थर्सडे शाम 4 to 5 PM आरजे महविश खान के साथ डियर फैमिली शो, जो रिश्तों को जिंदा रखता है।
1: Excuse me. अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ, उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 आरजे फजील के साथ, जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
4: सुबह 11 PM से दोपहर के 1 PM तक
3: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: हाँ जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागतम। और आफ्टरनून एक्सप्रेस में इस वक्त सरवर नाजी आपके साथ बने हुए हैं। गाड़ी तेजी से चल रही है हमारी और आफ्टरनून तक ले जाकर छोड़ेगी आपको। यहाँ पर अब आप लोगों के कुछ मैसेजेस, आज बात मुद्दा जो है हमारा टीवी सीरियल्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किसी ने कुछ सीख दी है किसी सीरियल ने, ड्रामे ने, तो भी आप हमारे बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मैसेजेस कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड नाजिया मैम जी, आई एम विद यू। सरवर भाई, डोंट वरी भाई, आई एम विद यू। किस बात पे, कोई बात हुई होगी, मुझे छेड़ा होगा नाजिया ने, जाहिर है। थैंक यू कहते हैं सरवर भाई, आज तो जंगल में मंगल है। सरवर भाई, आज आपकी एंट्री तो दमदार है, दम धमाका। दो दिन दिन से शांत था क्या मैं? अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड नाजिया जी। ओके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंथनी भाई, कबीर भाई की रिक्वेस्ट थी। अच्छा, क्या मुझे एंथनी कहने की? अफजल उस्मानी हमारे साथ, क्या है इसके पीछे राज अफजल भाई? कहते हैं थैंक्स ब्रो भाई, कैसे जैसे भाई भाई के जैसा कोई नहीं। कहते आसिफ भाई, अच्छा नसीम भाई आ गए हैं, कहते हैं सरवर भाई का नाम एंथोनी रखा गया है। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ है नाजिया सुबह सुबह? वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, मेरी बातों का तुम
1: भरोसा
5: मत, बुरा मत मानो। वाव क्यों लगा दिया इसमें, वैसे भी हम बिछड़ने वाले हैं। ओए नसीम भाई, ऐसा नहीं कहो यार। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, नादिया मैम, कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग, नाइस शो आफ्टरनून एक्सप्रेस। मुझे सिर्फ कपिल शर्मा का शो पसंद है, मुमताज भाई कहते हैं।
1: ओ नाइस, ये तो खैर मुझे भी पसंद है।
5: लीजिए साहब आ गए, यूसुफ भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नादिया और सरवर कैसे हैं आप दोनों? आफ्टरनून एक्सप्रेस में स्वागत करते हैं, मंगल की सबको शुभकामनाएं देते हैं। सरवर भाई, सुबह कबीर भाई कह रहे थे कि आज आपको एंथनी कहना है, क्या कर गया ये मॉर्निंग में? मुझे समझ नहीं आया क्यों, प्लीज बताइए। ये मुझे भी नहीं मालूम यूसुफ भाई, मैं खुद अभी सुन रहा हूँ। कह रहे हैं हाँ, हाल की बात करूं तो पंचायत और गुल्लक अच्छी लगी मुझे।
1: गुल्लक, यस।
5: पुरानी सीरियल्स में मुझे याद है चंद्रकांता बहुत ही अच्छा सीरियल था।
1: अरे ओहो, ये सब
5: चंद्रकांता की कहानी।
1: अब यक्कू के रोल में
5: फिर तामा, उसने मेरी भावों से इंस्पायर हुए थे वो, एक्चुअली मेरी टाइम पे भावें जो हैं ऐसी थी।
1: तो आज भी इनकी यक्कू जैसी भावें हैं।
5: नहीं वैसे
1: ये इंस्पिरेशन अपनी साथ लेके चले बिफोर इट गेट एक्सपायर्ड,
5: मगर कह नहीं सकता मैं कुछ ऐसा, याद तो आया मुझे। ओके आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आहट। ओ आहट का म्यूजिक बताते हैं भाई, आदिल मोमिन है हमारे
1: आज
5: साथ।
1: हंसी आती है पहले। अच्छा। वाले जो ऐसे हॉरर वाले जो शोज आते थे,
5: मैं तो बहुत डरता था यार आहट, जब भी आता था भाई साहब।
1: आज भी आप आहट से डर जाते?
5: जितने कंबल थे सबको अपने ऊपर डाल लेता था भाई मैं, इतना ज्यादा।

0: टाइम पे वाकई आहट आता था
1: मेरे, आज तक क्या वैसे ही डरपोक रहे हैं।
0: हाँ वो उस टाइम की बातें, और एक्चुअली बचपने में क्या हुआ कि नाजिया जी की फोटो देख ली एक बार किसी फैमिली की कोई गैदरिंग थी।
1: मेरी कैसे थी कि आप तो खुद मुझसे 80 साल छोटे
0: हैं। हाँ जब ही तो
1: कोई तो पूछ रहा था, कोई
0: एक गैदरिंग थी दादा जान के जमाने की, वो फोटो फ्रेम होके घर पे लगी हुई थी, तो उसमें एकदम फोटो के बीच में एक चेहरा देखा, ओए ओए ये क्या है भाई। बस जब से नादिया जी ये हाल हुआ कि
1: सरवर मिर्जा आप मुश्किल से 2 घंटे के रहे, मैं 80 साल की थी, कैसे ये मैच आपने पे फिट किया।
0: गुड मॉर्निंग भैया कहते हैं नादिया जी और सरवर जी, रमेश यादव है हमारे साथ।
1: हम लोग बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं
0: यार रमेशवा। कहते हैं सरवर जी आप जीत गए हो, हैं जसविंदर पाजी कहते हैं कि इस बात पे कहां जीत गया, कुछ तो करके गया है सुबह सुबह। कहते हैं यक्कू या अल्लाह, हाँ याद आ गया यूसुफ भाई को यक्कू। अस्सलाम वालेकुम सरवर नाजिया, कैसे हैं आप दोनों। क्या कहना चाहते हैं, खैर मैं इसको जरा सा पढ़ लूं मज़े, मैं कुछ और समझ रहा हूँ। शेख सलमान साहब का यहाँ पर मैसेज है तो एक बार उसको पढ़ लूँ फिर सही से अदा करूंगा। तो भैया कुछ मैसेजेस यहाँ पे, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी यादें शेयर कर सकते हैं, और प्रोग्राम के दूसरे भाग में भी हम बढ़ेंगे, फिर गेम वगैरह भी खेलेंगे।
1: इससे पहले एक छोटी सी अपडेट भी हम देना चाहेंगे,
0: दे देते हैं ब्रेक पे जाने से पहले पहले।
1: हाँ जी, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस वक्त जो है कतर में कैंपेन चल रही है, और ये कैंपेन बेसिकली पब्लिक हेल्थ केयर कैंपेन का हिस्सा है, जो कतर में लोगों को इमरजेंसी और अर्जेंट सर्विस हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में एजुकेट करने के लिए चलाया गया है। आपको बताएं कि इस कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन, हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन लीड कर रही है। पीएचसीसी इसमें यह हाईलाइट कर रहा है कि अर्जेंट केयर सर्विसेज कितनी जरूरी है ताकि पेशेंट्स को सही वक्त पर, सही जगह पर और सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। अर्जेंट केयर सर्विसेज उन पेशेंट्स के लिए होती है जिन्हें अचानक मेडिकल प्रॉब्लम हो लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। ओके, सो इससे उन्हें घर पर ही किस तरह से पहले फौरी तौर पे किस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फिर किस तरह से कोई भी उनका जो करीबी है वो उन्हें किस सिचुएशन में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर जाए। तो उस टाइम अक्सर होता है कि प्रेशर होता है और उस प्रेशर में आके लोग सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते उस सिचुएशन को। तो इसलिए इस कैंपेन को चलाया जा रहा है ताकि हर किसी को पता हो कि अगर घर में कोई ऐसी अचानक सिचुएशन आए तो किस तरह से हमें हैंडल करनी है पूरी, और किस तरह से उस पेशेंट को हैंडल करना है ये भी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, और मैं आपको बताऊं कि पीएचसीसी कतर भर में तमाम अर्जेंट केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। इनके पास जल्द ही देखा जाए तो 15 हेल्थ केयर सेंटर्स भी होंगे जो 24 घंटे अर्जेंट केयर सर्विसेज देंगी, और ये सर्विसेज उन तमाम पेशेंट्स के लिए होंगी जो किसी भी पीएचसीसी हेल्थ सेंटर में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर हर तरीके का सेफ, आसान और अच्छा अफोर्डेबल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। तो चलिए ये चीज़ें आपको बतानी थी, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अपने आप में कमाल की सर्विस जिसे और इन्हांस किया जा रहा है, हालांकि वो तो है ही। और ये भी है कि सर्विसेज को बढ़ाने के लिए अलखोर मेडिकल सेंटर जो है वो 21 मई 2026 से अडल्ट और बच्चों दोनों के लिए अर्जेंट केयर सर्विस जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से और भी दूसरे सेंटर्स में बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो बहुत ही अलग ही डिपार्टमेंट हो गया अब अर्जेंट केयर सर्विस का।
0: जी बिल्कुल ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, लेते हैं ब्रेक, बढ़ते हैं गाने की तरफ। दिलजीत दोसांझ क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं जानते हैं। चार्मर
2: तेरी गल
0: दा टोया, आई वाह,
2: देख के कुछ
0: जी ट्रैक सर्वर नादिया आपके साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से।

0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से RJ सरवर मिर्जा के साथ Only on FM 107, दिल से देसी, अल्फाज जो तारीफ लिखते हैं।

0: हाँ जी मेरे दिल को भला भला। भाई अजनबी भले लगने लगे तो फिर लाइफ सेट हो जाती है।
1: सारी उम्र चाहतों का चलता रहे।
0: कुमार सानू और आलिशा चिनाई FM 107 पे ये गाना सुना आपने, कुछ यादें ताजा हुई क्या? और बिल्कुल भाई आफ्टरनून एक्सप्रेस में इस वक्त बेहतरीन नगमात आपके लिए और आरजे नाजिया और सर्वर आपके लिए और यहाँ पर कॉल हमारे लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो
0: हेलो भैया आवाज आ रही है? हेलो
3: हेलो हेलो
0: जी हाँ आवाज आ रही है?
3: बहुत दूर से आ रही है भैया, आवाज थोड़ा नजदीक आई है।
0: आसिफ भाई हमारी बिल्ली
3: अम्मी को मियाँ
0: ओके बॉम्बे में भी बोली जाती है यार ये ये कहावत।
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई यार बिल्कुल कहावत तो ही बोलते हैं हमारे मुंबई में
2: भी,
3: हमारी
2: बिल्ली
0: है बिल्लियां बिल्लियां
2: तो
3: हैं। वो एक और बोले जाती है हमारे हमारे मुंबई में एक और कहावत है।
0: अच्छा सुनने वाली है? सुनने वाली
3: सुनने वाली है वो 100 बिल्ली खा के
0: बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जल्दी ही नादिया जी सफर अपना पूरा करेंगी। और अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया।
3: भाई क्या हाल चाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है आसिफ भाई, उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे।
3: सॉरी
0: ये क्या क्या क्या क्या
3: सर,
0: हाँ, हाँ क्या ये है क्या

0: कुछ
1: ये है क्या एंथनी वेल्स
0: ये क्या क्या ये सुलझ नहीं रही क्या गुत्ती है ये कौन है
2: भाई एक सेकंड रुको मैं एक सेकंड
1: अभी सुलझाता हूँ एक मिनट रुको मैं एक मिनट में सुलझाता हूँ ये जो मसला है अभी सुलझा
0: अरे प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड
1: क्या बात है चलिए जब तक ये हमें होल्ड पर होल्ड पे रख के फिर ये ड्रॉप भी हो गई है
0: अच्छा चलिए भाई चलिए हम
1: आई थिंक वापस से हमारे साथ ही इज अगेन लाइक ट्राइंग फिर कनेक्ट हो रहे हैं
0: अच्छा हो रहे हैं आसिफ भाई हेलो
2: जी भैया
0: हाँ जी जी आसिफ भैया
2: आज है ना एक्चुअली वो क्या हो गया सुबह सुबह मॉर्निंग में एंथनी भाई का वो मैंने स्टोरी सुन लिया था मैंने कबीर भाई के
0: कोई उनके स्टोरी में किरदार होगा जो हरकतें दूसरी तीसरी कर रहा होगा इसलिए उन्होंने मुझे नाम दे दिया वो यही हुआ होगा नहीं
2: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई अल्लाह माफ करे ऐसा कुछ नहीं वो बस ऐसे ही मुंह पे आ गया एंथनी भाई वो हमारे एंथनी भाई
0: कुछ तो होगा खैर चलो आप नहीं बता रहे तो उनसे ही पता कर लूंगा मैं ऐसी बात नहीं
1: क्या था क्या आसिफ जी क्या था क्या ये
2: भी कसम से कुछ नहीं बस एंथनी भाई का मुंह से मतलब निकल गया आज कबीर भाई और मेरी शर्त लगी थी कि आसिफ भाई तुमको आज अपने सरोज भाई को एंथनी भाई बोलना है आगे की बात देखेंगे
0: कुछ नया सोचा छोड़ के गया है चलिए मालूम करेंगे इसके हवाले से भी
2: आज भाई आज तुमको ना सच्ची में आज घर पे जाना और रूम में घुसना बोलना क्या रहा भाई एंथनी भाई किसको बोलने बोला
0: हाँ नहीं अभी अभी प्रोग्राम के बाद ही घर जाने की जरूरत नहीं यहीं पे देख लूंगा मैं
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो भाई आसिफ भाई ये बताइए किसी ऐसे सीरियल ने जिसने आपको बहुत ही ज्यादा कुछ सिखाया हो भावुक किया हो दिल पे असर डाला हो कोई ऐसा टीवी सीरियल वगैरह कुछ याद है
2: बिल्कुल बिल्कुल मेरे बचपन में हम लोग देते थे विकराल घबराल इश्क कोई है
0: विकराल घबराल
2: जी जी आप उसको
1: अच्छा ये दोनों कैरेक्टर आपने ही निभाए सर
0: हाँ नहीं विकराल घबराल तो मुझे याद आ रहा है
1: विकराल तो थे विकराल में तो
2: उसके अंदर बिजली भी रहती थी उसके अंदर एक बिजली घबराल घबराल वो जबरदस्त सीरियल मतलब हम लोग के
0: अच्छा
1: हम लोग ने नहीं सुना
0: अच्छा
2: आप देखिए बहन प्लीज आप एक बार देखिए अच्छा। और दूसरा एक हमारा शक्तिमान
1: हाँ शक्तिमान तो खैर
0: शक्तिमान तो सभी के अपने थे भाई क्या हाँ,
1: शक्तिमान तो खैर सबका फेवरेट तो चलिए
0: ये दोनों आप देखते
1: विकराल घबराल तो कुछ नया लगा
2: जी और हम और ये बात हम लोग कैसे देखते थे मतलब ये सीरियल हम लोग के घर में टीवी नहीं थी कुछ भी
0: पड़ोसी क्या जाके
2: जी पड़ोसी के घर में जाके बैठ के बराबर
0: अच्छा यार सभी का मामला ये है कि सब पड़ोसियों के जाके देखते तो ये पड़ोसी कौन से थे जो टीवी लाते थे ये नहीं समझा
2: आज भी मतलब वो घर अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे दुआ है
0: सही
2: भाई वो लोग ना मतलब कैसे थोड़े हम लोग से थोड़े ऊंचे थे ना तो उनके मतलब घर में टीवी थी इस टाइम पे
1: पड़ोसी अच्छा मालदार ढूंढ के रहे
0: नहीं यार ये तो
1: कुछ
0: ये तो ठीक है मगर दिल की गुंजाइश देखिए और यही वो बात है जो दूसरे पहलू भी खोलती है डिस्कशन के कि उस टाइम पे पूरा मोहल्ला उस घर में घुस जाता था भाई और उनको उनके चेहरे पे एक जरा सी शिकन नहीं आती थी जिसको
1: शिकन कहते तो आती
2: नहीं, थी नहीं, नहीं, आज के टाइम पे हम लोग जाते थिएटर में पिक्चर देखने के लिए तो हम लोगों की कभी कभी ऐसा याद आता है कि ऐसा ही तो माहौल होता था हम लोग के बचपन में भी एक टीवी उसके अंदर एक फैमिली दो फैमिली फिर हम बच्चे लोग घुसते थे देखने के लिए
0: सही एक टीवी एक बीवी और बच्चे लोग घुसते थे देखने के लिए क्या बात है यार
1: लेकिन अच्छी बात है कि लोगों में पेशेंस तो था ही पहले खैर
0: जी
2: और अभी के टाइम पे तो मतलब हम लोग कैसा वो हम लोग वो देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं
0: अच्छा
2: मैंने पाकिस्तानी ड्रामा इतना देखा इतना
1: मैं भी
2: देखा
1: बहुत देखती हूँ
2: अभी मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा पाकिस्तानी ड्रामा है एक परीजाद परीजाद मेरा बेस्ट है
1: परीजाद तो खैर मैं देख चुकी हूँ और कौन सा अभी लेटेस्ट में आप कौन सा देख रहे हैं
2: खुदा और मोहब्बत
1: खुदा एंड मोहब्बत अच्छा अभी नया एक शुरू हुआ है शहदाई वो भी बहुत अच्छा है
2: जो वो अभी मेरा लगता मैंने वो छठा एपिसोड देख लिया मैंने
0: क्या यार मैच हो रही है लाइन
1: बहुत ही अच्छा एक और भी मैं क्योंकि मैं
0: नाजिया से इस खदर लाइन मैच हो रही थोड़ी देर में नाजिया ये ना पूछेगी बताइए कि वो फरदाना या फलाना वाला ड्रेस जो आपने कहां से लिया आसिफ ये बताइए थोड़ा मेकअप फाउंडेशन पे ना आ जाए आसिफ ये बताइए वो वाला पाउडर आपने कहां से लिया
1: ये चिड़ है क्योंकि ये नहीं देखते इनको पता भी नहीं है एक और मैं आपको रेकमेंड करूंगी जंजीरें
0: तो आपको बांधने की जरूरत है नाजिया बहुत
1: सज्जल अली का है बहुत अच्छा है ये भी बहुत अच्छा
0: जंजीरों की जरूरत तो आपको बहुत है नाजिया अल्लाह ताला करे कि
1: और आपको पिंजड़े की
2: एक और सीरीज है
0: अच्छा एक और भी है
2: नहीं मतलब हॉलीवुड में हम लोग देखते वेब सीरीज देखते
0: हैं
2: ना उसका
0: अच्छा अच्छा
2: हम लोग का जो मेरा मतलब

0: फेवरेट है, जैसे हाउस ऑफ ड्रैगन है, ड्रैगन हाउस है, ये सब हम लोग देखते हैं, बहुत हम लोग का मतलब फेवरेट है सब।
1: बहुत फेवरेट। ऐसे मैं भी जो नेशनल ज्योग्राफिक की जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज आती थी एक टाइम में हम लोग जरूर देखते थे, वो एनिमल प्लैनेट वो बहुत ही फेवरेट था, प्लैनेट अर्थ बहुत ही अच्छा था, वो ये सारी सीरीज इनकी जितनी भी होती थी
2: अपनों को देखने में असल में अच्छा लगता है, मजा आता है।
1: मैंने शार्क टैंक भी देखा है सर, मैं मतलब आप बताइए, मैं जो हूँ वो मैं हाउस एमडी भी देख चुकी हूँ, मुझे पता
2: है। ऐसा नहीं करो, एक्चुअली ये नाजिया ने जो बात करी वो हकीकत है, और आज तक
1: मेरा फेवरेट है द गुड डॉक्टर, वो मुझे लगता है आपको भी देखना चाहिए।
2: आज तक चल रहे हैं, और खैर मैं नाम नहीं ले सकता, अर्थ के नाम से एक निकाला गया था और वो एक चैनल ने निकाला था, उनका पहले नाम था उसका और उसके बाद अर्थ उसके अंदर लगता है, और उन्होंने जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ को पेश किया मुझे नहीं लगता शायद किसी और चैनल ने आज तक पेश किया हो। एनी हाउ बहुत बढ़िया,
1: अगर आपको बिजनेस में देखना है तो आई थिंक बेस्ट इज शार्क टैंक, और मैंने देखा किस तरह से आइडियाज को पसंद करते थे लोग और इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट्स,
2: वाह,
1: तो मतलब वो बहुत ही कमाल का। और अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है,
2: आपको मालूम है,
1: हां मैं उसी को देख रही हूं, वही बता रही थी मैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई देखना है कि बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक पॉडकास्ट मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी, एंड दैट इज द डायरी ऑफ सीईओ।
2: अच्छा,
1: ये भी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलने वाले हैं।
2: क्या बात,
0: मगर मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मतलब मेहनत से वो सीजन बाय सीजन चलता हूँ मैं।
1: अच्छा,
0: ये आपको पता है लगता है, मैंने पहले भी आपको बोला ये बात, मैंने सीजन बाय सीजन चलता हूँ, जैसा मेरा सीजन पहले स्टार्ट होता है बिग बॉस से।
1: अच्छा, ओके, सही है,
0: बिग बॉस देखा, उसके बाद
1: बिग बॉस भी तो हम देखते थे।
2: अच्छा, मतलब जिस हिसाब से चीजें रिलीज होती हैं उस हिसाब से ही आप तरतीब वाइज कहना चाहिए।
0: जी जी, मैं पूरा साल यही करता हूँ, मतलब ठंडे मौसम में देखता हूँ,
2: बहुत बढ़िया
0: मौसम में ये सब, और अभी इसमें चल रहा पाकिस्तानी ड्रामा,
1: अभी मेरा भी पाकिस्तानी चल रहा है ड्रामा जितने भी हैं।
0: हेलो बेन, अपनी भाई बहन,
1: और एक चीज एक और याद आ गया मुझे, डॉक्टर बहू भी आप देख सकते हो।
2: अरे अल्लाह रहम करे, सास बहू साजिश आसिफ करते हुए सास बन गए एक दिन, पता चला।
1: नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ये भी सीरियल, ये ड्रामा भी पाकिस्तानी बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहू कुबरा खान का, तो बहुत ही अच्छा है।
2: वाह, क्या कहने हैं, नाजिया को
1: तीन तो बताई थी, बिल्कुल देख रही हूँ लेटेस्ट,
2: क्या कहने हैं भाई। देखिए आप लोग भी देखिए, अगर आपको इससे सीख मिलेगी तो अच्छी बात है, और मजा
1: नहीं तो सीख तो आप कुछ लेंगे,
2: बिल्कुल कुछ ना कुछ तो सीखी लेंगे,
1: सीखे ले ही लेंगे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ जी
0: नाजिया बहन, एक बात बोलना चाहता हूँ आपको।
1: हाँ बताइए।
0: आपकी और मेरी केमिस्ट्री मिलती है भाई बहन की, तो आप एक काम करो मेरे साथ में शो करो प्लीज।
2: आए हाय हाय, क्या नाम बता रहे थे आप अपना?
1: जरूर, क्यों नहीं, मैं तो बहुत
2: एलन व सहलन भाई, एलन व सहलन, व्हाई नॉट,
1: हम लोग बड़े आराम से जो है वो एक दिन तो पूरे पाकिस्तानी ड्रामास पे करेंगे,
2: पूरा
0: पूरा काम कम होएगा, सीरियल की बातें ज्यादा होगी,
2: सीरियल की बातें होंगी, कपड़ों की बातें होंगी, फाउंडेशन, लिपस्टिक, पाउडर, इन सारी चीजों की बातें भी होंगी।
1: आपने क्या बोला था, पाउडर
2: पाउडर
1: पाउडर,
2: वो ज्यादा है उसमें, डर कम है, तो ये जरूर आप इस्तेमाल करें। ओके आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, यू आर मोस्ट वेलकम। एक छोटा सा ब्रेक और वापस आए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check।
2: हाँ जी लीजिए साहब, बज गए 12 बज के सही 7 मिनट और यहाँ पे मैं और नाजी आपके साथ। It's the afternoon express। और इसी के चलते यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर करना चाहते हैं, देखते हैं कि कौन है। हेलो, सलाम वालेकुम।
3: हेलो सर, सलाम वालेकुम।
2: हेलो हेलो
3: सलाम वालेकुम।
2: हेलो, अच्छा हेलो, नादिया की तरफ आवाज आ रही है, इधर नहीं आ रही।
3: मैंने कहा एक तरफ से जवाब नहीं मिला तो एक तरफ से ले ले पहले।
2: दूसरी खिड़की में जब तक पहुंचे सारी चाय कॉफी बिक गई।
3: टिकट एक तरफ नहीं मिलता तो बाएं साइड।
2: क्या बात है भाई, रमेश भाई अहलन व सहलन, आज तो आपने बाजी मार ली, वरना तो काफी हेलो हेलो करवा देता मैं आपसे। आज समझ के आए थे कि ये करूंगा।
3: और सुनाइए सर कैसे हैं?
2: बस आप बताइए कैसे हैं? वैभव भाई खैरियत से हैं? क्या नई ताजे है, क्या
4: आप भी बस अब बिल्कुल ठीक है? एंथनी भाई सब खैरियत?
2: क्या नाम है सुरेश भाई का?
3: अच्छा, ये मैं भी सुन रहा था काफी देर से, हालांकि कबीर भाई का प्रोग्राम तो सुना मैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि सरोवर भाई को एंथनी जरूर बोलना।
2: My name is Anthony Gonzalez. कैसे हैं रमेश भाई, क्या नई ताजे है आज, क्या खासम खास है, कैसी गुजरी सुबह और अब दोपहर कैसी आ रही है आपकी?
3: ठीक है, बस बढ़िया सर, रही लंच वंच करके बैठे हुए हैं सर।
2: अरे लंच हो भी गया हमारे बगैर?
3: जी
4: अभी तो हो गया,
3: बस आप दिल में तो हमेशा ही रहते हैं सर।
2: अरे क्या बात, तो दिल में भी खिला रहे हैं लंच हमें आप?
4: दिमाग
3: बिल्कुल, हम खाते हैं तो आप भी खाते हैं।
2: जब भी कहूँ मेरा पेट भारी भारी क्यों लग रहा, कितने डोसा यार, एक डोसा कम खाते हैं यार तमिश भाई, ये क्या किया, ये बिरयानी निपटा
3: क्या
2: रहे?
3: क्या बात है सर, नहीं नहीं सर क्या बात है, वाह
2: वाह,
3: ये तो समझ जाते हैं आप बिल्कुल, दिल की आवाज को बोले पकड़ लेते।
2: आपने कह दिया दिल में है तो बस डोसे बराबर उतर रहे थे और मेरे साइड से जा रहे थे, क्योंकि दिल में तो नहीं आ रहे थे।
4: क्यों आपको सांभर नहीं मिल रहा था दिल में?
2: उससे थोड़ा उससे हल्के से बाल भीग गए जब भी, तो मैंने कहा कि
3: सांभर में मैम ज्यादा मिर्ची होती है ना,
4: वो इनके लिए सही रहती है सेहत के लिए।
2: रमेश भाई बात हो रही है आज सीरियल्स के हवालों से, कोई ऐसा सीरियल जिसने आपको खुश किया हो?
3: अरे सर सीरियल तो मत बोलिए सर, उस समय जिस समय पैदाई थे हम लोगों की बातों में
2: नहीं, तो यार जब तो शुरू यार 1936 में तो अच्छे खासे सीरियल आ गए थे ब्लैक एंड व्हाइट।
3: नहीं नहीं 1974 की बात कर रहा हूँ।
2: अच्छा, तो जब तो माशाल्लाह अच्छे खासे आप जवान थे।
3: तो वहाँ जब ये सीरियल आता था रामायण और महाभारत और उसके बाद ये क्या नाम है आपका शक्तिमान,
2: क्या बात,
3: एक बगल में जहाँ हम लोग कलकत्ता में रहते थे वहीं पे CISF का कैंप था सर।
2: अच्छा,
3: तो उसमें एक मेस हॉल था, उसमें टीवी लगा हुआ था, कलर टीवी था उसमें।
2: वाह,
4: अच्छा।
3: उस समय उसी nice. में जाते थे हम लोग, एकदम सुबह भाग लेते थे, 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाते थे। और पहले तो डरते डरते हाफ पैंट पहने हुए और बनियान पहने हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दोस्तों का कि वो तू घुस, तो बोलता नहीं तू घुस पहले, नहीं तू घुस यार। तो CISF वाले लोग रहते थे ना तो वो लोग ताकते थे,
2: बिल्कुल
3: वो लोग हाथ से इशारा करके बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरो मत आ जाओ। जाके हम लोग आराम से उधर बैठते थे और सर देखते थे उस सीरियल को, वो समय था। तो काफी दिन के बाद एक टीवी हमारे दोस्त ने था, वो जो शटर वाली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं होती,
2: बिल्कुल बिल्कुल शटर खोलना होता उसका,
3: वो टीवी मेरे दोस्त के पास थी, बड़ी दोस्त ने कहा कि आइए ले जाइए, मैंने कहा चलो ठीक है आता हूँ। लेके आया घर पे तो एंटीना लाया, लगाया उसको,
2: अच्छा
3: तो उसको घुमा करके तो उसको पकड़ाया जाता था।
2: हाँ वो जब तो हमारे आपके भी कनेक्शन नहीं मिलते, हेलो हेलो करते रहते हैं, अब समझ में आया एंटीना बहुत घुमाया।
3: उस समय नेशनल चलता था बहुत ज्यादा, वही
2: सही,
3: नेशनल
2: सही, क्या
3: इंडिया का
2: सही,
3: और ये सब चीजें अब कहाँ है, तो भाई टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, अब तो घर घर में एकदम एंड्रॉइड मोबाइल है, सब कुछ आप जो घर बैठे ही सब कुछ मंगा लीजिए, खा लीजिए, देख लीजिए, जो दिल में आए वो कर लीजिए।
2: क्या बात है यार, क्या बात है, पुरानी यादें और बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और काफी कुछ सीखने समझने को मिलता भी था, जहन बिल्कुल बेहतर होता था,
3: अलग ही था वो सिस्टम पहले का। अभी तो सर क्या इस चैनल पे क्या कहना, बहुत कुछ बदल गया, कुछ बोलने लायक नहीं है अभी।
2: क्या
3: पहले तो ये नहीं सोचते थे हम कि आप कौन है हम कौन है, ये सब कुछ नहीं।
2: हाँ भाई बिल्कुल, आपका इशारा समझ रहा हूँ मैं। तो चलिए रमेश भाई ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी, और अब आइए तो थोड़ा गेम शेम हो जाए, आज उल्टी गिनती खेलेंगे हम।
3: बिल्कुल
2: तैयार हैं,
3: चलिए शुरू कर दीजिए एकदम सर।
2: चलिए साहब, तो आज हमें 1000 की सीरीज में रहना है, 1121 के आपको पीछे जाना है, 10 गिनती 10 सेकंड के अंदर।
3: अच्छा 1121
2: से? हाँ 1121 से 1111।
3: 1000?
2: हाँ
4: 1000, बेचारे कम कर दीजिए सर।
2: नहीं नहीं नहीं,
3: 121
2: से 111।
3: नहीं 121 ही बोलना है कि 1121 बोलना है?
2: अरे 21 बोलिए ना यार।
4: सिर्फ 21 बोल जाइए।
3: अच्छा ठीक है, चलिए 1121 से
2: 1111
3: 111
2: ठीक है। चलिए ठीक, दोनों को रखना भी है, दोनों को बोलना भी है, और 10 सेकंड मिलेंगे आपको।
3: ओके
2: चलिए, तो मैं अपनी गाड़ी रेडी कर लेता हूँ यहाँ पर। कहाँ गई भाई घड़ी, कहाँ है घड़ी? आ गई। चलिए तो ये रही घड़ी, स्टॉप वॉच ये रही। चलिए रेडी रमेश भाई?
3: यस सर।
2: आपका टाइम शुरू हो गया अब।
4: 1121
2: सेकंड में रमेश भाई ने, मगर क्योंकि क्लियर थे,
4: बिल्कुल क्लियर था,
2: बिना अटके थे, तो 13 सेकंड में किया है। हाँ। देखते हैं, क्योंकि हमारी गिनती बड़ी है, 1000 भी उसमें शुमार करना है, तो देखते
4: हैं भी बोलना है।
2: कौन कौन चैंपियन है आज, बहुत दिनों बाद उल्टी गिनती पे आए हैं हम और नाजिया।
4: यस।
2: कौन क्या, अभी तक तो रमेश भाई का स्कोर सबसे बढ़िया 13 सेकंड में किया है भाई ने, क्या कहने भाई रमेश भाई,
4: बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी शुरुआत।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
3: निकल रहा ड्यूटी। ओके सर, थैंक यू सो मच।
4: थैंक यू सो मच,
2: यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे।
4: ओके अल्लाह हाफिज़।
2: ओके बाय। ये रमेश भाई हमारे साथ, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, और नंबर आपको पता ही है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कॉल कर लें तो 666-22107 पे एक डॉट भी बना सकते हैं। कॉल करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आपके लिए सुनाते हैं। बड़े ही फिल्टर करे हुए गाने हैं ये, दिल से निकल रहे हैं मेरे। भाई अगर एक बात कहूंगा मैं, बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, कुछ लोग शायद मेरी बात से एतराज करें, दी लता मंगेशकर की लीग में अगर किसी को रखना है तो चित्रा को रखा जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाय हाय हाय हाय हाय, क्या मीठी आवाज है, एंजॉय कीजिए ये ट्रैक। ये रमन साहब भी है इसमें। आफ्टरनून एक्सप्रेस पे सनू नाजिया आपके साथ, दिल से देसी।

0: खैर मेरे तो क्या ही कहने। नादिया भी ऐसे ही कुछ कह रही थी और यहाँ पर हमारे साथ चैंपियन।
1: आपके बारे में कुछ ना कहना ही, सब कुछ कह देना ही क्या।
0: नादिया
1: कुछ ना कहना ही, सब कुछ कह देना।
0: वाह वाह,
1: चुप रहना ही।
0: अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नादिया सिस्टर।
1: इर्तुगरुल
0: गाजी सीरियल के से सीख मिली है, जिंदगी में मकसद होना जरूरी है तभी आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं।
1: right.
0: बड़ी चीज, जैसे नाजिया सिस्टर के बिजनेस चल रहे हैं पूरे कतर में। यार ये मैंने नहीं कहा, लिटरली आई एम टेलिंग यू, गुलफाम खान का ये बात कही है, ये लाइन उन्होंने लिखा है। आप कभी समझे मैं छेड़ रहा हूँ तो जग जाहिर है। नाजिया जी माशाल्लाह भाई, कॉल उठा लो गरीब
1: हमने
0: का,
1: उठा रखी
0: अब
1: है।
0: तो नमाज भी अदा हो गई।
1: हेलो
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन है हमारे साथ? क्या बोले, कैफ हाल कह रहे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: आप कैसी? ठीक है, सब ठीक ठाक है, खैरियत?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: मबरूक।
0: बेशक सही, आज दूसरा दिन
2: इंशाल्लाह।
0: बहुत
2: और क्या हाल जा रहे हैं?
0: बहुत ड्रामा है। नादिया करती रहती है, आपको तो मालूम। आपने नाम नहीं बताया अपना, इतनी सारी दुआएं भी
2: भाई बोला ना, अब्बास बोला, नहीं सुना?
0: अच्छा अब्बास भाई, नहीं वो आवाज इतनी घूमती फिरती और गूंजती हुई आ रही है, लड़ती लड़ाती सबसे कि समझ नहीं पाया था मैं। अभी क्लियर है? कैसे हैं अब्बास भाई?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। आप खैरियत से?
2: इंशाल्लाह खैरियत, इंशाल्लाह सब के लिए
0: इंशाल्लाह। क्या बात है भाई। तो अब्बास भाई यहाँ पर हम गेम खेल रहे हैं, आप रेडी हैं हमारे साथ खेलने के लिए? उल्टी गिनती गिनने का है।
2: उल्टी गिनती
0: बहुत आसान है।
1: आसान दो
0: बहुत आसान देने वाला हूँ मैं आपको।
1: 10-1
2: और सब ठीक है?
1: 100-1
0: और सब ठीक है। पहले तो मैं ठीक हूँ, उसके बाद बाकी सब ठीक है। चलिए तो अब्बास भाई, आपको 1144 से 1133 जाना है।
1: ये तो बहुत,
2: 1144 से 1133।
0: आई वाह, बिल्कुल आसान है। ठीक है,
2: पीछे
0: देखिए,
2: साथ में रहेगा।
0: देखिए टाइम लिमिट नहीं है कोई भी, 13 सेकंड का अभी तक का रिकॉर्ड है। अगर आप उससे कम करेंगे तो आप चैंपियन है, अदरवाइज आप पूरा करिए, कोई इसमें मसला नहीं है, आराम से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल है,
2: 1042 बोला रहे आपने?
0: 1144
2: 44
0: आई वाह, 10 पीछे जाने का है। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू। हाँ कोशिश करिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कॉल किया, आप चैंपियन है भाई ऑलरेडी।
1: और क्या, ऑलरेडी आप चैंपियन है।
0: चलिए तो आपका टाइम शुरू हो गया अब अब्बास भाई। ठीक है, शुरू हो गया।
2: ओके, 1100
0: तो है ही नहीं इसके अंदर, 44 है।
2: 44-45
0: नहीं जाना, 44-43 जाना है।
2: 45 सही है।
0: हाँ, नजमा से हिलाल जाना है।
2: नजमा से हिलाल या मंसूरा?
0: हाँ आप मंसूरा जा रहा है, हमें हिलाल जाने का है। ठीक है चलिए, घड़ी में तो 37 सेकंड हो गए, फिर से शुरू कर देता हूँ उसको। ये इधर, हाँ ओके ओके, आपका टाइम शुरू हो गया अब अब्बास भाई।
2: ओके, 1100 47
3: आई वाह, वो भी यही कह रहे थे वो भी यही कह रहे थे 47 किसी से लेने हैं, मुझे लग रहा है ये 47 किसी से लेने हैं, वही याद रह गए हैं या लेने सही बताओ किसी से लेने हैं ना 1147 चलिए एक बार और, हाँ एक बार और, आज यही करता रहूंगा मैं शाम तक, एक बार और
2: अब शाम तक अच्छा ये ओके चाओ
3: क्या बात है भाई आपकी,
2: अरे इंग्लिश में होता तो ठीक था लेकिन
3: अच्छा अरे अरे आप इंग्लिश में करिए, इंग्लिश में करिए कोई मुश्किल नहीं है,
1: हाँ इंग्लिश में करिए बेहतर है।
3: 1144
1: सही है,
3: ओनली
1: टू
3: मेरी आज की खत्म हो गई, आपकी कुछ बची है तो आप छोड़ दीजिए मेरी भी हो गई, अरे आप तो कह रहे थे इंग्लिश में खेलूंगा क्यों छोड़े देने हैं फिर,
2: नहीं इंग्लिश में मुश्किल है क्या है, 144
3: चलिए
2: 133
3: है ठीक है ठीक है
1: ठीक है चलिए खेलिए
2: ओके 1,043
3: उसको भी आने दो, इसको भी आने दो, और कौन है
2: कोई नहीं है,
3: कोई नहीं है भाई अब्बास भाई आज के विनर घोषित हुए, यही चैंपियन है और कोई नहीं, मजा आ गया भाई अब्बास भाई आपके साथ खेल के, क्या बात है
1: खेला आपने बहुत अच्छा,
3: जाते जाते वाटर कूलर लेते जाइएगा गर्मी बहुत है,
2: क्या करें वाटर मेरे पास वाटर बोतल है,
3: अच्छा है कूल वाटर, वेरी गुड वही रखना मेरे पास, गर्मी बहुत है मुझे असर भी दिख रहा है गर्मी का आपके ऊपर बहुत ज्यादा, थोड़ा सा पानी पी लो
2: अरे
3: ओहो क्या बात है, चलिए जल्दी से खा लीजिए बहुत जरूरत है आपको इस वक्त, मुझे लग रहा है भूख ज्यादा है,
2: भूख ज्यादा नहीं
3: अभी ज्यादा नहीं है, अच्छा अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, 12:28 हो गया ओके शुक्रन मा सलामा इतने प्यारे अब्बास भाई, इतनी प्यारी गिनती, इतने प्यारे उल्टे गए कि पता ही नहीं चला किस तरफ से निकल गए, उल्टे हाथ से गए सीधे हाथ से गए निकल लिए बस तेजी से, यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं वो शामिल कर लेते हैं,
1: फिर एक अपडेट भी शामिल करते हैं।
3: ओके अमजद इकबाल साहब हमारे साथ जुड़ गए और
1: वालेकुम
3: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नादिया के पास अपडेट आ चुकी है और आपको वॉइस नोट या बताएंगी अभी क्या करना है, अमजद भाई डोंट वरी प्रोग्राम के साथ या प्रोग्राम के बाद, ओके कहते हैं सर्वर भाई कबीर भाई, ही सेड टू अस टू कॉल यू एंथनी सो आई गॉट एंग्री, आई सेड टू हिम क्लियरली यू कैन चेक माय मैसेजेस विद कबीर शो, माय फेवरेट शो राजा रेंचो इन 90, हाँ हाँ हाँ हाँ ये भी तो आता था यार राजा रेंचो तो बहुत जबरदस्त था, मुझे याद आ रहा है मकसूद भाई हमारे साथ हैं, अच्छी याद दिलाई आपने, हम तो तुर्किश हिस्टोरिकल ड्रामा देखते हैं भाई, कौन है ये मोहम्मद भाई है, कौन सा वाला देखते हैं ये भी तो बताते हैं, देखते तो हम भी हैं सरवर जी, 1 से लेकर 100 तक गिनती मुझको भी आती है, जसविंदर सिंह तो अब 101 से हमें शुरू करनी है, आ जाइए खेल लेते हैं, करूं कॉल आपको तो बताइए, मुझे सबसे बेस्ट सीरियल तुर्किश सीरियल लगा सुल्तान अब्दुल हमीद, यार लिटरली
1: अच्छा,
3: आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, उस्मान पूरा करने के बाद मैं अब्दुल हमीद पे ही जाने वाला हूं एक्चुअली और इसको मैं जरूर देखूंगा, ओके कहते हैं अब्दुल हमीद ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट सीरियल रहा और होगा भी मुझे लगता है, MMK पठान यहाँ पर एक चैंपियन हमारे साथ, मैसेजेस शामिल करते रहेंगे और साथ साथ चैंपियंस को भी जोड़ते रहेंगे, येलो
1: आई थिंक वो कॉल ड्रॉप हो गई,
3: ओहो हो हमने नंबर भी कुछ लिखे हुए थे नाजिया, अगर हम डायल कर सकते हैं
1: तो बिल्कुल, अब हम उनके साथ भी कनेक्ट होते हैं
3: बिल्कुल, जब तक नाजिया कोशिश कर रही है तो यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस और शामिल कर लेता हूँ, खादर आ गए हैं दोबारा से, कहते हैं सरवर भाई रियली इट इज हैप्पी टू से इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामा तन्हाइयां,
0: यार मेरा ओके करंट ड्रामा परिजाद. आई लाइक परिजाद बिकॉज द मैन हु कम फ्रॉम द बॉटम विद हार्डशिप नेवर लुक फॉर लग्जरी ऑल दो एवरीथिंग इज अवेलेबल विद इन रीच द क्लाइमेक्स इज इन परिजाद इज एक्सेलेंट. एयर रहमान हाउस इज वेरी नियर टू माई हाउस इन चेन्नई. ओ हो खादर अब्दुल हादी हेलो सलाम अलैकुम.
4: वालेकुम अस्सलाम.
0: है हेलेन कौन है हमारे साथ?
4: जी मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं इंडिया राजस्थान से.
0: राजस्थान से फारूक भाई क्या बात है फारूक भाई, पहली बार कॉल कर रहे हैं लग रहा.
4: जी पहली बार आज, वैसे मैं आपको सुनता हूँ लेकिन आज मेरे दिल किया चलो कॉल करते हैं, हमें नंबर बताए ना.
0: आए हाय ये दिल की बातें सुन के आदमी फंस जाता है फारूक भाई. अब आप डेली कॉल करेंगे, क्यों सुनी आपने अपने दिल की?
1: इंशाल्लाह. तो चलिए आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं? हम लोग गेम खेल,
4: वो 1121 वाला गेम है ना, वो मैंने देखा तो मेरा दिल किया फिर.
0: अच्छा देखा आपने, अच्छा
1: ये भी खेलना चाहते हैं तो मुझे लगता है वही स्लॉट इनको भी.
0: हाँ बिल्कुल. तो 1144 से 1143 तक जाना है. इंग्लिश या उर्दू फारूक भाई?
4: हिंदी ठीक है.
0: हिंदी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. 1144 से 1133 ठीक है, रेडी है?
4: जी
0: आपका टाइम शुरू.
4: 144 से ओके ओके.
0: हाँ ओके टाइम शुरू हो गया अब.
4: 1144 1143 1142 1141 1142 1143 1138 1137 1136 1135 1134 1133.
0: क्या कहने क्या कहने भाई ने 10 सेकंड में कर दिया भाई. Very nice, very good. फारूक भाई पहली बार आए यार
1: एक ही पेस में और एकदम क्लियर और
0: क्या बात है यार, क्या बात है,
1: रुके बगैर
0: 10 सेकंड में कर दिया मेरे भाई ने. और
1: 10 सेकंड
0: आज पहली बार तशरीफ लाए, हमारी मोहब्बत खींच लाई फारूक भाई को. आखिर
1: नाइस, वेरी नाइस
0: है फारूक भाई,
1: बहुत ही अच्छा
0: है कि गए फारूक भाई.
4: जी बिल्कुल, मैंने तो 1121 की तैयारी की थी लेकिन आपने 144 से शुरू कर दी मुझे.
0: मैं ऐसे ही करता हूँ ना, चालाक बहुत हूँ मैं.
1: कह रहा हूँ
0: फारूक भाई आगे भी कॉल करते रहिएगा
4: इंशाल्लाह. जरूर.
0: खाना खा लिया?
4: जी खाना खा लिया, मैं अभी इधर ओनिजा में आया हूँ बच्चों को पिकअप कर, स्कूल की छुट्टी हुई ना.
0: अरे वाह क्या बात है, हमारा प्यार ढेर सारा बच्चों को, और अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह कल दोबारा बात.
1: थैंक यू बाय. तो हमारे साथ यहाँ पर थे फारूक जी जिन्होंने ये हमारी जो उल्टी गिनती चल रही है उसको 10 सेकंड्स में कंप्लीट किया. और एक और यहाँ पे हमारे साथ चैंपियन कनेक्ट होते हुए एंड यस
0: चैंपियन कनेक्ट होते हुए और यहाँ पर कुछ मैसेजेस के कॉल करने के लिए और कॉल जो व्हाट्सएप नंबर पे आ रही है नादिया, तो उनको भी अगर हमें स्लॉट मिलता है और टाइम मिलता है तो उनको कॉल करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
5: वालेकुम सलाम सरवर भाई, कैसे हो? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह. हेलेन कौन है हमारे साथ, कहाँ थे?
5: मैं हूँ मुदस्सिर आपके साथ.
0: हाँ यार मुदस्सिर भाई कहाँ थे यार, है ये कोई बात हुई? जाइए मैं नहीं बोल
5: रहा यार, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है फोन, नहीं लग रहा है.
0: अच्छा फोन नहीं लग रहा है, कम से कम चलिए मैं तो लग रहा हूँ.
5: आप भी नहीं लग रहा है ना?
0: अरे यार
1: आप तो बहुत लग रहे हैं,
5: आप सिर्फ कान के टाइम में नजर आते हो, फिर तुम्हारा भी नजर नहीं आता है.
0: अरे यार हमारे तो दिल लगे हुए हैं यार, कैसी बात कर रहे हैं
5: ना. ये तो है ना सरवर भाई, नाजिया कैसे है? ठीक है.
1: हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, उम्मीद करिए आप भी ठीक होंगे.
5: अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह.
0: चलिए
5: शुरू करेंगे.
0: मुदस्सिर भाई रेडी हैं?
5: जी जी.
0: चलिए तो आपको गिनती दे देता हूँ, जब हम 1000 के स्लॉट पे खेल रहे हैं तो आपने करना है साहब 1235 से 1225.
5: 1235 से 1225 तक.
0: आई वाह बिल्कुल यही है.
5: अच्छा नीचे जाना है ना, 3433 से इधर अपना.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही.
5: अच्छा
0: चलिए रेडी है?
5: जी रेडी है.
0: चलिए आपका टाइम शुरू हो गया अब.
5: 1235.
0: आप इसको 1235 भी कह सकते हैं एक्चुअली. मजा नहीं आया, निकल लिए.
1: हाँ,
0: डर गए मुदस्सिर भाई, कह रहे ये क्या कर दिया मेरे साथ, 1200 का कहां से ले आए.
1: चलिए और भी लोग हमें जो कॉल कर रहे थे, हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ कनेक्ट हो जाएं और उन्हें यहाँ पे कॉल करने की कोशिश. यार आप चाहे तो भाई अच्छा खासा खेलने वाले सकते थे। हाँ, आज हमारा कौन सा गेम चल रहा है, क्या रूल्स हैं?
0: भाई हमारा गेम तो चल रहा है उल्टी गिनती का, और वक्त हो गया एक ब्रेक का भी, मगर हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी लाइन हमारी बिजी नहीं है, तो आपको एक कॉल आने वाली है जिन्होंने खेलने के लिए बताया है। फिलहाल एक मैसेज यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा परिजात का जिक्र कर रहे थे और खादर ने बताया कि यार रहमान साहब के काफी करीबी रहते हैं, वो घर पे गुड आफ्टरनून कहते हैं यहाँ पर।
1: फॉर्चुनेटली दो लोग कनेक्ट हो गए हमारे साथ,
0: नैंडोज हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, नंदू हैं एक्चुअली, तो इंग्लिश में पढ़ दिया मैंने वो नंदू भाई है, कहते गुड आफ्टरनून नंदू भाई से बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी हुई हमारी,
1: हमारे साथ दो कॉलर्स भी एक साथ जुड़ गए,
0: क्या बात है।
1: मैं
0: मिला दोस्त, हाँ नहीं अरे ये तो आपकी माशाल्लाह हमारी खुश नसीबी है। हेलो सलाम अलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कौन है हमारे साथ, कौन कौन है हमारे साथ?
6: साकिब।
0: अच्छा दूसरे नहीं बोल रहे, चलिए साकिब भाई से खेल लेते हैं पहले।
1: और दूसरे कौन है हमारे साथ?
0: नहीं बोलेंगे, खाली है।
1: हेलो
6: जी। हेलो
1: हाँ, एक तो साकिब है, दूसरे कौन है हमारे साथ?
0: दूसरे आकिब होंगे। चलिए साकिब भाई रेडी हैं? साकिब भाई पहली बार कॉल कर रहे हैं क्या?
6: जी जी।
0: यार कहाँ थे अभी तक यार, पकड़ लिया देखिए मैंने आपको, कोने में खड़े हुए आप खा रहे थे बिरयानी, मैंने धप्पा मार दिया, अब मुझे भी खिलानी पड़ेगी।
1: कह रहे मैं समोसा खा रहा
0: हूँ। समोसा तो आप खा रहे थे, बिरयानी मुझे खिलानी पड़ेगी।
6: बिल्कुल राइट के साथ में।
0: आए है क्या बात है, कहाँ से ताल्लुक है?
6: जौनपुर।
0: ओह यार जौनपुर, तो आज मेरा एक दोस्त चला भी गया जौनपुर के, बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं भाई हमारे साथ, वाह वाह वाह बड़ी प्यारी जगह, क्या कहने साकिब साहब। तो चलिए रेडी हैं फिर खेलने के लिए?
6: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए तो फिर आपको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं क्योंकि आप जौनपुर से हैं, खासम खास जगह जो मुझे बहुत पसंद है। तो आपने क्या करना है साहब, आपको 1166 से वापस जाना है।

0: 1158, 1159, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157, 1157 भाई मसला ये है कि आपने किया तो 11 सेकंड में है, बट इतना क्लियर था और इतनी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आसान नहीं था ये वाकई टफ था, तो भाई ने किया 11 सेकंड में, जो कि जबरदस्त किया यार। पहली बार तशरीफ लाए और खेले अच्छा, क्या कहने भाई साकिब भाई।
1: जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग का प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लगता है, इस टाइम जो है स्पेशली वक्त निकाल के जो है एकदम फ्रेश हो जाता है आदमी।
2: चलिए जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। हमारी भी यही ख्वाहिश रहती है कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए, पर थैंक यू फॉर योर कॉल, आगे भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ओके,
0: बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, खुश रहिए, ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, खाने में भाग रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय
2: बाय, अल्लाह हाफिज़। अब आई थिंक हमारे साथ एक और यहाँ पे कॉलर कनेक्टेड है।
0: ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सरवर भाई, नाजिया मैम, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ?
3: आपके साथ अभी आसिफ शाह।
0: आसिफ, क्या बात है आसिफ भाई की, खैरियत से हैं आसिफ भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। आपकी प्रोग्राम
0: यार बड़े यार करीबी, इतने लोग ऐसे जुड़ रहे हैं, आसिफ नाम इतना करीब मेरे दिल के, जौनपुर से मेरा दोस्त इतना करीब मेरे दिल के, यार सबको पता चल गया असल में मेरे बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्त है आप कहाँ से हैं आसिफ भाई।
3: आपकी मिजाज जैसे आप प्रोग्राम चलाते है ना, और भी लोग जोड़ते जाएंगे और भी।
0: अच्छा, और प्रोग्राम बंद ही कर दे सो।
3: ये मेरी पहली कॉल है, अहलन वसहलन,
0: अहलन वसहलन,
2: ये बड़ी खुशी
0: मोहब्बत नवाजिश। और ये तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आपको हम खींच लाए अपने पास, कैसे ना कैसे करके आसिफ भाई हैं। गेम खेलेंगे,
3: यकीन करो इस प्रोग्राम में मैंने कॉल करने की हिम्मत की कि मैं कॉल करूंगा सरवर भाई, नाजिया मैम, यहाँ जो हंसी मजाक होता है, रिफ्रेशमेंट होता है, आदमी कि बोरियत खत्म हो जाती है कसम से, इसीलिए फोन किया।
0: मेरी भी हो जाती है।
2: थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
3: लेकिन आज तो आपके पीछे सब पड़े हैं, पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं है।
0: अच्छा?
3: किसने शरारत की है?
0: हाँ क्या है पता नहीं, ये असल में मिलजुल के ये लोग करते रहते हैं सब मेरे साथ, ये आम है।
2: ये मैंगोज है।
3: चलो
0: तो
3: चलो, ये तो आपकी
0: मेरी शराफत है,
3: आपकी शराफत है,
2: ये आपको पता ही नहीं है क्या नहीं बोलते हैं भाई हमारे।
0: बिल्कुल नहीं बोलता है मैं ये यार, ये आसिफ भाई समझ गए मुझे, आसिफ नाम का शख्स समझ रहा है मुझे एक्चुअली, दिल से दिल को रहा होती है।
2: क्या बोले, वाकई रोने का दिल चाह रहे।
0: चलिए आसिफ भाई रेडी है गेम खेलने?
3: बिल्कुल रेडी।
0: तो साहब 172 से 162 जाना है आपको, ठीक है?
3: पीछे के रिवर्स में,
0: रिवर्स गियर लगाना, 172 से 162, 1162, 1000 कहना जरूरी है, 100 भी कहना जरूरी है, ठीक है?
2: ठीक है,
0: रेडी, या अल्लाह, टाइम शुरू हो गया।
3: 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162।
0: क्या कहने, मेरा भाई कैसा, आसिफ भाई जैसा, नहीं इन्होंने भी 11 सेकंड में कराया, बट वाकई क्योंकि ये स्लॉट रियली टफ है भाई नादिया,
2: 1000 भी लग गया
0: और पहली बार चैंपियन आके इतना जबरदस्त स्कोर कर रहे हैं, क्या ही कहने यार आसिफ भाई, बहुत ही जबरदस्त।
3: जीत गया?
0: हाँ जीत गए, बिल्कुल।
2: मेरा टारगेट
3: था 9 सेकंड।
0: आए हाय,
2: 2 सेकंड पीछे रह गया,
0: 2 सेकंड से रह गए बस सब।
3: मेरा टारगेट 9 सेकंड था पर नहीं हुआ, लेकिन टास्क कैसा है, 72 का हिंसा जो है वो थोड़ा लंबा पड़ता है।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने,
3: इसमें डिफरेंस क्या है, 69 के बाद एकदम डिफरेंस हो जाता है, 71, 67, 68।
0: इसका मतलब खेलते हैं आप ये गेम यूजुअली?
2: तभी तो ना सब
3: सुनता हूँ, डेली सुनता हूँ, हंसता बहुत हूँ आपकी बातें सुन सुन के।
0: अच्छा,
3: फिर मैं पानी पीता हूँ लास्ट में, इतना ज्यादा हंसता हूँ।
2: पानी मिलने पीने पे आपने मजबूर कर दिया।
0: खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं से नवाजते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
3: पर तू बड़ा मचेरा है।
0: अच्छा, मैं
3: और भी नई नई मछलियां पकड़ेंगे, आप ही कॉल आएंगे।
0: कह रहे तू बड़ा मचेरा।

0: और भी नहीं नहीं नहीं यार, आप तो चैंपियन है यार आसिफ भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, तो मोहब्बत है आप।
1: मैं तो आपका ही चैंपियन हो गया ना, आपको कॉल करके चैंपियन बन गया।
0: आज वाकई आप चैंपियन बन गए, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: अपना ख्याल रखिएगा,
0: आप भी, अल्लाह
2: हाफिज़, थैंक यू सो मच
0: भाई। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, एक नगमा सुन लेते हैं, जरा सांस भी ले लेते हैं, और चैंपियनशिप तो यहाँ पर चल ही रही है, एक प्यारा सा नगमा जो है समाप्त फरमाइए। अलीशा चिनाई की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना, हमने टाइम का दिलबर जानिया, आफ्टरनून एक्सप्रेस में सर्वर और नाजिया आपके साथ जुड़े हुए हैं, सुनते रहिए FM 107 दिल से।

भाई रुलाने का मकसद नहीं था मेरा बिल्कुल भी। What a beautiful track। भाई गर्मियों का टाइम हो, सरवर नाजी का साथ हो और ऐसे गानों, ओए होए होए होए।

0: जी साहब, घड़ी में बजे 12:47 और यहाँ पर हमारे साथ एक चैंपियन भी कनेक्ट हो गए गाने के साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अहलन, कौन है हमारे साथ?
1: अली हमजा।
0: अली हमजा साहब, कैसे हैं अली भाई?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
0: आप अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अली भाई, गेम खेलने के लिए
1: मैं आपका शो डेली देखता हूँ ना, आपका शो बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह।
2: थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।
0: ये तो मोहब्बत है अली भाई आपकी। अच्छा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिए, गर्मी हो गई है, पानी वगैरह पीते रहिए और ड्राइविंग में बेइंतहा एहतियात भी कीजिए।
2: बिल्कुल,
1: ड्राइविंग के दौरान मैं आपको शो ही देखता हूँ और किसी तरफ ध्यान नहीं होता मेरा।
0: अरे मेरा भाई कैसा, बिल्कुल बेहतरीन यार, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत अच्छी बातें करते हो। मैं रमजान में भी आपका पूरा महीना मैंने आपका ये शो सुना
0: है। अच्छा, आपको लगता है मैं अच्छी बातें करता हूँ, क्योंकि नाजिया नहीं कहती कि मैं अच्छी बातें करता हूँ। तो इनसे एक बार कह दिए कि नाजिया सरवर अच्छी बातें करता है, कह दिए एक बार।
2: वो झूठ नहीं बोलते।
1: सही कह रहे हैं।
0: नहीं, इनको कहिए ना, नाजिया को नाम लेके कहिए, नाजिया।
2: नहीं मत कहिए, मत कहिए,
0: सर्वर अच्छी बातें करता है। चलिए तो गेम खेलेंगे अली भाई। चलिए साहब, तो आपने क्या करना है, 1125 से 1115 जाना है। ठीक हो गया? चलिए घड़ी रेडी कर लेता हूँ, आपका टाइम शुरू हो गया अब।
1: जी, इसके साथ मैं भी हूँ, अली हमदा के साथ है।
0: अच्छा, कोई और भी है? कौन है साथ में?
1: जी जी, मैं मुदस्सिर हूँ।
0: ओहो, मुदस्सिर भाई।
1: आज हम तीन लोग हैं, एक शाहजेब है, एक अली हमदा और एक मैं मुदस्सिर।
0: यार क्या कहने भाई,
2: तीनों खेलेंगे
0: भाई। शाहजेब भाई, मुदस्सिर भाई एंड अली भाई को हमारा सलाम पहुँचे पहले तो, और बहुत अच्छा लगा कि एक साथ मिलके। तो यूजुअली एक साथ मिलकर ही आप हमारा शो सुनते हैं, या आज ही कहता ऐसा इत्तेफाक है?
1: अली हमजा ने बताया है हमको कि इनका शो अच्छा होता है, हम इसके साथ ही घूमते हैं।
0: चलो यार, अली भाई का तो एक बिरयानी सेट की हुई। अब मुदस्सिर भाई की और कौन है साथ में? शाहजेब भाई की बिरयानी और सेट करनी है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। ठीक है,
2: ये मुझे नहीं लग रहा आप इनकी कर रहे हैं, ये आपकी कर रहे हैं।
0: ठीक है, नहीं पहले तो मैं कहूंगा ना,
1: ऐसी बात नहीं है, आप ही काम में।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि इस वक्त गेम मुदस्सिर भाई खेलेंगे या अली भाई?
1: क्या
0: इस वक्त गेम हमारे हाँ, कौन खेलेगा आप तीनों में से?
1: गेम शाहजेब खेलेगा आपके साथ।
0: अच्छा, उसके लिए दूसरा आदमी रखा हुआ उसके लिए दूसरा आदमी रखा हुआ
2: खेलने के लिए कोई और, सुनने के लिए कुछ और।
1: अभी हम अलखोर की तरफ जा रहे हैं।
0: अलखोर की तरफ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं यार, क्या बात है। जब भी तीनों एक साथ हैं और एंजॉय कर रहे हैं काम के साथ साथ, क्या बात है भाई। आओ भाई शाहजेब भाई, आगे आओ।
2: आगे
0: हाँ भाई शाहजेब भाई।
1: जी सर,
0: क्या हाल चाल है, खैरियत से? तबीयत वगैरह ठीक एकदम? चलिए साहब, तो गेम खेलने के लिए रेडी हैं?
1: जी रेडी।
0: चलिए, तो आपने यही जो मैंने गिनती, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, 1125 से 1115 वापस जाना है। ठीक है
2: ठीक है
1: ठीक है।
0: ऑलराइट देन, तो घड़ी सेट कर दूं, शुरू कर दूं?
1: ठीक है, ओके।
0: चलिए शुरू हो जाइए।
1: 1124, 1123, 1125
0: शादी भाई, 1125 भी कहना है। ठीक है
1: जी, बोल रहा हूँ।
0: मतलब आपने 24 से शुरू किया ना, तो 25 भी कहना है।
1: ठीक है ठीक है, ओके
0: ओके। चलिए, आपका टाइम शुरू हो गया।
1: 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225,
0: लंच में,
2: ये सिंगापुर की होते हैं,
0: कुछ कुछ ऐसी डिश बन गई है
2: सिंगापुरियन राइस।
0: मगर यार अच्छा अच्छा खेले,
1: इसलिए मैंने बोल दिया।
0: नहीं नहीं इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा खेले आप, और आपने 13 सेकंड में किया विच इज वेरी गुड। आप बीच में 19 जो आपने शिफ्ट लिया है ना अंग्रेजी में, थोड़ा सा वहां पे 2 सेकंड जो है आपके लग गए ज्यादा, बट पहली बार कॉल किया यार पहले तो
2: बहुत अच्छा।
0: आप लोगों को सलाम है, अली भाई को, शादीब भाई को, मुदस्सिर साहब को, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिए। आप लोग इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं, मोहब्बत तकसीम कर रहे हैं पूरे कतर में, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे भाई। हमारे साथ जुड़े भी रहिए, बने भी रहिए, दुआओं में याद भी रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अली भाई का बहुत शुक्रिया प्रमोशन करने के लिए अली भाई।
1: ओके सर,
0: थैंक यू, ओके बाय,
2: ओके बाय।
0: कुछ मैसेजेस हैं बट वेरी सॉरी कि हम उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइम की तंगी की वजह से। हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: भाई, मैं खेलूंगा ये गेम मेरे से हो जाए।
0: हैं कौन है?
1: आसिफ भाई,
0: आसिफ भाई, एलन वर्सेस एलन खेलूंगा ये गेम। चलिए एक आसिफ शाह भी खेल के गए, मालूम है आपको?
1: हाँ मालूम है भाई, 1125 से 1115 तक ना।
0: नहीं वो नहीं, ये तो अभी अभी गए आसिफ भाई खेल के गए, वो बहुत खतरनाक खेल के गए भाई, वो भी खेल के गए 1100। चलिए आपको भी दे देता हूँ, 1182 से 1172 जाने का है।
1: ए
0: आसिफ भाई कर लोगे यार?
1: 1000 भाई कितने से?
0: 1182
1: से
0: 1172
1: ऊपर जाने का भाई तो।
0: हाँ ऊपर जाना ना और क्या।
1: हाँ भाई ठीक है,
2: रिवर्स रिवर्स
0: ठीक है, उल्टे
2: backward,
0: पीछे
2: बैकवर्ड
0: ठीक है। जल्दी जल्दी आपका टाइम शुरू हो गया,
1: 1182 से 1172
0: शुरू जाओ शुरू जाओ शुरू जाओ।
1: 1182 1183 1184 1185 नहीं
0: की तरफ जा रहे हो, हमें पीछे जाना है, पीछे बैक साइड, पीछे तो देखो, अपने पीछे देखो आसिफ भाई।
1: भाई हार गया, दूसरे को मौका दो भाई।
2: अरे इतनी जल्दी क्यों हार मानी?
0: एक बार कोशिश तो करो यार, कोशिश करो, अब कोई दूसरे को मौका नहीं देंगे।
1: मैं तो वो रीडिंग करके बैठना भाई, जो मतलब अभी भाई पिछले वाले भाई ने खेला था।
0: अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन, चलो वही वही कर दो, नो वरीज।
1: ओके
0: 1125 से 1115 हाँ ठीक है चलो शुरू।
1: 1125 1124 1123 1122 1121 1120 1119 1118 1117 1116
2: 1115।
0: यार 9 सेकंड में भाई ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया आज, क्या कहने
2: बात है। आप तो हमारे एकदम लास्ट यार, बताओ कहाँ छोड़ के अल्टीमेट चैंपियन
0: छोड़ के भागे जा रहे थे और चैंपियन बन गए आसिफ भाई। यार
2: आप जीत गए भाई,
0: ए आसिफ भाई निकल लिए क्या?
2: नहीं नहीं है, अब्सॉर्ब कर रहे हैं न्यूज़ को थोड़ा
0: सा। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त,
2: बहुत अच्छा खेला आपने।
0: चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, और आज चैंपियन भी बन गए आप। देखो ऐसे कभी हथियार डालने का नहीं, हमेशा खेलने का है ना, आज चैंपियन बन गए आप। क्या बात है, जबरदस्त खेले यार आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत अच्छा जबरदस्त।
0: तो भाई तमाम लोग, रमेश भाई, अब्बास भाई, फारूक भाई, मुदस्सिर भाई, साकिब भाई, आसिफ, शाहजाब, अली, हमजा, मुदस्सिर एंड शाजीब एंड ऑफ कोर्स हमारे आसिफ भाई अभी जो चैंपियन बन के गए, सभी चैंपियन हैं, सबने बहुत अच्छा खेला। और तमाम वो लोग जिन्होंने भाग लेने की कोशिश करी, जिन्होंने हमें मैसेजेस भेजे, जिन्होंने कॉल मिस कर दी और हम मिला नहीं पाए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी चैंपियन हैं, इंशाल्लाह ताला कल आपके आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए मुझे और नाजिया को इजाजत दे दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए,
2: देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
0: भाई। और यहाँ पर जाते जाते चलिए अच्छा गाना और लगा देता हूँ आपके लिए, शिल्पा राव को याद कर लीजिए, गाने में वो थी जब तक लोग जानते नहीं थे, मगर आज उनको सभी जानते हैं, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दोस्तों, दुनिया की सल्तनतें महदूद हैं मगर असल बादशाही अल्लाह की है। वो जमीनों का भी मालिक है, दिलों का भी मालिक, हालात का भी मालिक है। जब बंदा ये मानता है तो उसके दिल से मखलूक का खौफ कम हो जाता है, गोया वो इस दुआ का कायल है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
3: कभी शाम को काम खत्म करने के बाद जब हम चेयर से उठते हैं तब ऐसा लगता है ना कि बॉडी बोल रही हो बस अब हो गया, अब और काम नहीं हो पाएगा। नेक एकदम स्टिफ हो जाती है, लोअर बैक कंप्लेन मोड में चला जाता है, शोल्डर्स बड़े हैवी लगने लगते हैं जैसे कि पूरा काम उन्होंने किया हो। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेस्क जॉब और बॉडी पेन के बारे में। दोनों का काफ़ी गहरा रिश्ता है। जब आप किसी को कहोगे कि बस ऑफिस में बैठ के काम करना होता है तो लोगों को बड़ा ही ईजी लगेगा, अरे बैठ के काम करना है एसी में, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं, इधर उधर दौड़ा भागी नहीं करना है। बट नहीं, हमारी बॉडी के लिए ये लाइफस्टाइल ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है क्योंकि हम घंटों तक के एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं। नेक स्क्रीन की तरफ झुकी होती है, शोल्डर्स फॉरवर्ड होते हैं, बैक थोड़ी सी राउंडेड होती है और बॉडी मूवमेंट के लिए बनी ही नहीं है, जैसे कि फ्रीज हो चुकी है ऐसा लगता है। इसलिए डेस्क जॉब के साथ नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट स्टिफनेस और शोल्डर टाइटनेस बड़ा ही कॉमन हो जाता है। वेल, अक्सर हम इस पेन को नॉर्मल है, जॉब ऐसी होती है, ये नाम दे देते हैं, बट ये पेन नॉर्मल नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है मतलब ये सिग्नल है, ये वो सिग्नल है जो कह रहा है कि मुझे थोड़ा मूवमेंट चाहिए। गुड न्यूज ये है कि डेस्क जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हैबिट्स को थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले पोस्चर, स्क्रीन अगर आई लेवल पे हो, फीट फ्लैट हो ऑन द फ्लोर, बैक सपोर्टेड हो तो बॉडी पे प्रेशर कम होता है। दूसरी चीज, मूवमेंट ब्रेक्स लीजिए, हर 30 से 35 मिनट पे थोड़ा उठ के स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को, थोड़ा चल ले। बॉडी के लिए ये एकदम मैजिक के समान काम करता है, जैसे कि अगर आपने नेक रोल्स किए, शोल्डर श्रग्स, स्पाइन स्ट्रेच, तो ये सिर्फ एक दो मिनट का ही टाइम लेते हैं पर इसका इफेक्ट पूरे दिन का होता है। और हाँ, वाटर ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हाइड्रेशन मसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है और स्टिफनेस कम करता है। डेस्क जॉब का एक और हिडन इशू है एंड दैट इज मेंटल फटीग। कॉन्स्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर माइंड को थका देता है जो बॉडी टेंशन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसलिए कभी कभी स्क्रीन से थोड़ा दूर रहना, आंखों को रेस्ट देना और डीप ब्रीथ लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन कि अगर आप लगातार फोन चलाते रहेंगे या लैपटॉप यूज करते रहेंगे, एक पॉइंट पे वो भी हैंग हो जाएगा, तो इमेजिन हमारी बॉडी कितनी सेंसिटिव होती होगी अगर हम बैक टू बैक काम करते रहेंगे। इसलिए कॉन्स्टेंट ब्रेक्स लेते रहिए। बॉडी को थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है, थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और जब आप बॉडी को बीच बीच में मूव करने देते हो ना तो आपकी बॉडी भी आपके साथ कोऑपरेट करती है। तो आज का एक सिंपल सा रिमाइंडर, काम के साथ साथ अपनी बॉडी को भी जॉब पर रखिए, क्योंकि जब बॉडी कंफर्टेबल होती है तो फोकस बेटर होता है, एनर्जी स्टेबल होती है और काम भी थोड़ा ईजी लगता है। इसलिए याद रखिए, डेस्क जॉब फिक्स्ड हो सकती है पर पेन को परमानेंट बनने की जरूरत नहीं है। एंड योर हेल्थ मैटर।
2: FM 107 प्रेजेंट्स Your Health Matter with RJ Shruti.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी।

में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे जर्मनी के एक मशहूर फुटबॉलर जिनका नाम है रूडी वॉयलर। यहाँ दोस्तों रूडी वॉयलर जर्मनी के फुटबॉल की तारीख के सबसे मशहूर खिलाड़ियों और कोचेज में से एक हैं। उन्होंने अपनी शानदार स्ट्राइक स्किल्स की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल की। रूडी वॉयलर ने जर्मन नेशनल टीम के लिए बहुत अहम गोल स्कोर किए हैं और 1990 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की कामयाबी में बड़ा किरदार अदा किया। इटली में हुए उस वर्ल्ड कप में जर्मनी ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर ट्रॉफी जीती थी और वॉयलर टीम के सबसे भरोसेमंद फॉरवर्ड्स में से शामिल थे। उनकी स्पीड, फिनिशिंग और फील्ड पर लीडरशिप की वजह से फैंस उनको बहुत पसंद करते थे। दोस्तों प्लेयर के तौर पर रिटायरमेंट के बाद भी उनका फुटबॉल से रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। वो जर्मनी के हेड कोच बने और 2002 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मन टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जहां ब्राजील के हाथों उनको शिकस्त मिली, यानी जर्मन टीम को शिकस्त मिली। बहुत कम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जर्मनी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वॉयलर की कोचिंग और टीम मैनेजमेंट ने सबको मुतासिर किया। रूडी वॉयलर को जर्मन फुटबॉल का एक लेजेंड माना जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन सिर्फ गोल्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने जर्मनी के फुटबॉल कल्चर को भी मजबूत बनाया। उम्मीद है आपको आज का यह स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Bada hi kamal ka segment hai jahan hum baat karte hain kisi na kisi important topic pe. To aaj bhi hum baat karne wale ek bahut hi important topic pe aur wo hai how to build an emergency savings fund. कितना कमाल का टॉपिक है अगर इस पे बात की जाए तो मुझे लगता है मैं घंटों बता सकती हूँ। ज्ञान बांटना बड़ा आसान लगता है लेकिन हाँ उस पे अमल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज मिलकर इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम और आप मिलकर एक दूसरे को सिखाएं कि किस तरह से हमें इमरजेंसी सेविंग्स फंड जो है उन्हें बिल्ड करना है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो भाई इमरजेंसी सेविंग्स फंड ऐसा कोई फंड हम जो है ना अपनी लाइफ में क्रिएट करते ही नहीं है ना बिल्ड करते हैं ना यकीन करते हैं अल्लाह ना करे किसी को किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो बट ये वर्ड अपने आप में ना इतना भारी भरकम है द मोमेंट यू लिसन इमरजेंसी अरे लगता है क्या हॉस्पिटल कोई गया है ये वाली फीलिंग आ जाती है और शायद कोई भी नहीं चाहता इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से हम तैयार रखें खुद को लेकिन हाँ जिंदगी जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल है। जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती कभी अचानक नौकरी का मसला आएगा कभी मेडिकल इमरजेंसी आ ही सकती है या फिर घर का कोई ऐसा जरूरी खर्चा जो निगलेक्ट ही ना किया जाए। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है इमरजेंसी सेविंग्स फंड। देखिए इमरजेंसी सेविंग्स फंड वो पैसे होते हैं जो हम सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए साइड पर रखते हैं। पहले तो ये सवाल उठेगा कि क्या आप ऐसा कोई पैसा साइड पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो आज से अभी से इस आदत को अपना लीजिए। ये फंड जो है वो आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसे तो कम करते ही करता है और हमें बड़े फैसले बड़ी घबराहट से भी बचा लेता है। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी सेविंग्स फंड क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं। पहले तो इसे समझते हैं कि है क्या। तो इमरजेंसी सेविंग फंड्स जो है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को इनकम रुक जाए अल्लाह ना करे कोई अचानक ऐसा खर्चा बढ़ा जाए जो आपको पुश करे लोन लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए या हो सकता है लोगों से पैसे बोरो करने के लिए मदद मांगने के लिए तो ऐसे में अगर आप गिल्टी महसूस करते हैं तो ये फंड आपको कॉन्फिडेंस देगा। बहुत से लोग इसलिए टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। थोड़ा सा पैसा भी अगर इमरजेंसी के लिए अलग रख लिया जाए तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। ये फंड सिर्फ पैसे नहीं है मैं कहती हूँ ये पीस ऑफ माइंड है। इमरजेंसी फंड बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए। देखिए इमरजेंसी फंड बनाने का जो कदम है वो आपका पहला माइंडसेट है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस फंड को ना बनाइए एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए। इमरजेंसी फंड बनाने का पहला और सबसे बड़ा कदम है आपकी नियत और आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ये सोच लेना कि कल से सेविंग शुरू करनी है काफी नहीं होगा दोस्तों। आपको क्लियर डिसीजन लेना होता है कि ये अमाउंट चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन सेविंग मैं जरूर करूंगा या करूंगी। इसके बाद आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का अंदाजा लगाइए। आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में रेंट खाना बिल ट्रांसपोर्ट और जरूरी चीजों पर कितना खर्चा होता है। जनरली सजेशन ये होते हैं कि इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए ऐसा कहा जाता है इसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी रकम भी सेव नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं छोटी सी शुरुआत लेकिन होनी तो चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो छोटी सेविंग को सेविंग ही नहीं मानते। बहुत से लोग सेविंग इसलिए शुरू नहीं करते कि उन्हें लगता है इतनी छोटी सी रकम का क्या होगा लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग का मतलब कंसिस्टेंसी है अमाउंट नहीं क्वांटिटी नहीं।

आप 50 रियाल से 100 रियाल से भी शुरुआत कर सकते हैं और जैसे ही सैलरी आए पहले इमरजेंसी फंड के लिए उसे अलग कर दें बिना कुछ खर्च किए। अगर पॉसिबल हो तो इमरजेंसी फंड के लिए अलग बैंक अकाउंट ही खोल लीजिए जहां आसानी से पैसे आप डालें और आप उसको टच भी ना करें। इससे होगा है कि टेम्पटेशन आपकी कम हो जाएगी और शायद सेविंग डिसिप्लिन डेवलप होगा। इमरजेंसी फंड को सेफ जगह रखना भी जरूरी है। इमरजेंसी सेविंग्स को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां पैसा सेफ हो, जरूरत पर फौरन आपको मिल जाए और किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। इसीलिए इमरजेंसी फंड्स को स्टॉक, क्रिप्टो या कई बार रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाना ठीक नहीं होता। सिंपल सेविंग्स अकाउंट या फिर इजली एक्सेसिबल ऑप्शन बेहतर रहते हैं। हर कुछ महीने में अपने इमरजेंसी फंड्स को रिव्यू करें। रेगुलर रिव्यू डिसिप्लिन लेकर आता है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान रखते हैं कि जी ये बढ़ गए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस तो बढ़ते घटते रहते हैं और मैं घटना क्यों कहती हूँ, बढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी हो सकता है कभी दिक्कत आए, 50 रियाल भी सेव करना मुश्किल हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपने लिख रखा है ना, तो आप कहीं ना कहीं उस गिल्ट का शिकार होंगे और जैसे जहां आपको मौका मिलेगा आप वो 50 रियाल खड़ाक से बचा लोगे और फिर आप उसको इमरजेंसी फंड में डाल ही दें। ये आदत बड़ी कमाल की है और इससे आपका जो है वो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी फंड को सिर्फ वाकई इमरजेंसी के लिए ही यूज ना किया जाए, इसको लाइफस्टाइल के लिए यूज ना किया जाए, ये फंड ही आपके लिए बना रहे। देखिए इमरजेंसी फंड बनाना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो इंसान के लिए जरूरी भी है, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम। ये फंड आपको मुश्किल वक्त में सहारा देता है। इसकी शुरुआत आज से कीजिए। याद रखिए कि इमरजेंसी फंड ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है और इसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, इस वक्त कितने बज रहे हैं भाई? आज बड़ी डिस्टॉर्मेंट चल रही है, बड़ी डिस्टॉर्मेंट भाई। इस वक्त बज रहे हैं 1:31, मतलब ये के कितने 1:31 होते हैं ना 31, हाँ 1:31 हो रहे हैं भाई। और टाइम हो चला है सफ़ा के साथ, सुपर सफ़ा के साथ द सुपर किड्स शो एंजॉय करने का।
4: आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स शो।

तो भाई बच्चा पार्टी वेलकम वेलकम वेलकम आप सभी को ढेर सारा वेलकम और आपका और मेरा साथ रहेगा तीन बजे तक, दोपहर तीन बजे तक, 1:30 से लेकर 3 o'clock तक मेरा और आपका साथ रहता है संडे से लेकर थर्सडे तक इन द सुपर किड्स शो। और आज सुपर सफा आपसे ये कह रही है कि भाई देखें आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये जितने भी साइलेंट लिसनर्स हैं ना, ये छोटे छोटे चुंजू पुंजू सारे बैठे हुए और सोचते रहते हैं कि कभी कभी हम भी कॉल करेंगे। देखो एक सिंपल सी बात बता दूँ, यहाँ पे वी लिसन एंड वी डोंट जज। ये कोई स्कूल तो है नहीं, कोई एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा, कोई थीसिस तो लिखवा नहीं रहे, कोई PhD की डिग्री भी नहीं मिल रही यहाँ पर। यहाँ पे हम फन और रिलैक्स करते हैं, हम अपनी छोटी सी दुनिया की बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली एटमोसफेयर में बात करते हैं। तो डोंट थिंक एंड हेजिटेट टू मच, ओके, नर्वस नहीं होना। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव शो है, तो बच्चा पार्टी। अगर आप अंडर 18 हैं तो आप मज़े से कॉल करें भाई, आपका अपना कहते हैं ना अपना टाइम, अपना अपना टाइम है भाई, ये तीन बजे तक का अपना टाइम है। तो आपने करना ये है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं

0: 3443377 पर क्या नंबर है 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल. और अगर आप चाहें तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. किस पे नंबर क्या था 6662107 मैसेज का नंबर यही था. कल तक तो यही था, आज भी यही है 6662107 मैसेज का नंबर है. और साथियों आज जो है ना हम बात करेंगे किसके बारे में, हैप्पीनेस के बारे में. अब हैप्पीनेस जो होती है ना वो यूँ समझ लें कि एक ऐसी चीज़ है जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर बनती है. और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सिर्फ अपने लिए कुछ करने से बेहतर होता है, या यूँ कह लें कि इसको कुछ ऐसा घुमाया जाए बात को कि किसी और, हम कहते हैं ना दूसरे नज़रिए से भी देखो, तो दूसरा नज़रिए इस बात का ये कि हैप्पीनेस सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड नहीं होती. हैप्पीनेस जो है ना वो उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं मुख्तलिफ, जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं ना. आप एक गिटार की स्ट्रिंग को जब तार छेड़ते हो तो एक सुर निकलता है, फिर दूसरा तार छेड़ते हो दूसरा सुर निकलता है. वैसे ही लाइफ में हैप्पीनेस का भी यही सिस्टम होता है. हैप्पीनेस के अलग अलग नोट्स होते हैं और हर नोट कलेक्टिवली जब कलेक्ट होता है तो उससे हैप्पीनेस प्रोड्यूस होती है. और मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस का एक एस्पेक्ट होता है, या एक हमारा जो हम कह रहे हैं नोट होता है, वो होता है रिलेटेड किससे, हेल्पिंग अदर्स से. एक नोट तो ये होता है कि वी टेक केयर ऑफ आर सेल्फ, वी थिंक अबाउट आर सेल्फ एंड वी प्रोटेक्ट आर पीस, ठीक है. फिर दूसरी चीज़ होती है, कहते हैं ना दो एंड होते हैं, या यूं कह लें कि कॉइन के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं कॉइन के. तो जो हैप्पीनेस है ना उसके कॉइन के दो साइड्स होते हैं. एक ये कि यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड द सेकेंड साइड इफ़ यू फ्लिप इट, दूसरी साइड होती है कि आप दूसरों का भी ख्याल रखें. आप जब दूसरों का ख्याल रखते हैं तो इसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्या अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है, कि जब आप दूसरों की काइंडनेस के साथ हेल्प करते हो ना तो आप खुद भी इंटरनली हैप्पी ही फील करने लगते हो. अब देखें इसका फिलॉसफी में जाएंगे तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे हम. तो भाई आज मैं बच्चा पार्टी से, मतलब छोटी सी दुनिया से जो बड़े बड़े सवाल करने वाली हूँ वो ये हैं कि आज आपने एक सिंपल काम करना है, क्योंकि आज मेरा भी दिन ना बड़ा हैवी चल रहा है. तो मैं चाहती हूँ कि कुछ सिंपल किया जाए ना. देखें स्कूल से हम भी थके हुए आ रहे हैं कि नहीं, आप भी थक गए होंगे, थोड़ी सी बैटरी जो है ना वो ख़त्म होने वाली होगी स्कूल से आकर. तो एक रिचार्ज करते हैं अपने आप को, ठीक है. और वो रिचार्ज ये है कि आज आपने मुझे बताना है कि कल से लेकर आज तक कोई एक या दो ऐसी चीज़ आपने मुझे बतानी है जो आपके लिए काइंडनेस में आती हैं और आपने एक्चुअली में वो चीज़ की है. समझ रहे हैं बात? बात ये है, मामला ये है, सवाल ये है कि भाई कोई एक ऐसी चीज़ बताएं, एटलीस्ट कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो आपके जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि भाई आई डिड दिस थिंग विच हेल्प्ड अदर्स. समझ रहे हैं? बींग हेल्पफुल मेक्स यू फील प्राउड. कोई एक ऐसी चीज़ जिसने कल से लेकर अभी तक आपको प्राउड फील कराया हो, आपने किसी की हेल्प की हो, कुछ काइंड जेस्चर किया हो. याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है तो मुझे कॉल करें 4434377 पर. और जो बच्चा कॉल करेगा वो नेम प्लेस एनिमल थिंग भी खेलेगा. तो भाई देखते हैं हमारे साथ पहले कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ? गैस करूं? देखें इतनी देर बाद कॉल करती हैं सिद्रा, तो फिर मैं कैसे गैस करूंगी?
1: मुझे पता है आप ये बोलने वाले.
0: तो मैंने सही गैस किया है कि नहीं किया है?
1: किया है.
0: हाँ तो देखा, मेरी दोस्त हैं एक सिद्रा और वो मुझे इतने देर बाद कॉल करती हैं, भूल जाती हैं.
1: नहीं भूलती हूँ.
0: हाँ ऐसे ही नहीं भूलती हैं.
1: मैं तेरी कॉल कर रही हूँ, नहीं लग रहा.
0: अल्लाह मैं तो कह रही हूँ ये फोन ही चेंज कर दो सिद्रा, है ना. फोन चेंज कर देते हैं, फोन में कुछ गड़बड़ होगी, है ना. क्या कहती हैं, फोन में गड़बड़ है?
1: नहीं है.
0: नहीं है तो फिर एक बात तो बताएं, कितने साल बाद कॉल कर रही हैं मुझे?
1: दो दिन के बाद.
0: अच्छा पहले दो दिन थे, अच्छा जी, फिर 10 days हो गए. अच्छा तो फिर भाई 10 days में कितने साल की हो गई?
1: 3 साल की रहूंगी ना.
0: अरे कोई बर्थडे शर्टे नहीं आई बीच में?
1: नहीं आई.

0: ओह इवनिंग वाले बच्चे, इवनिंग वाले बच्चे, ये बात मैं भूल जाती हूँ, नाम नहीं भूलती मैं सिद्रा का, लेकिन ये भूल जाती हूँ कि इवनिंग स्कूल में जाती हैं। अच्छा भाई, तो फिर आपसे ये पूछ लेते हैं, कल का दिन कैसा गया?
1: अच्छा गया।
0: अच्छा गया, तो फिर भाई आज मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपने मुझे बताना है कल से लेकर आज के बीच में, ठीक है? सिंस यस्टरडे टिल नाउ, ऐसी कोई एक चीज आपने मुझे बतानी, मिनिमम एक चीज या एटलीस्ट दो चीजें तो आपने मुझे बतानी है जो आपने कहा, आप कहेंगी कि भाई आई वॉज हेल्पफुल एंड दिस, जो मैंने हेल्प की आई एम प्राउड अबाउट इट।
1: मैं मेरे फ्रेंड की हेल्प करती हूँ कभी कभी प्रोजेक्ट बनाने में, पीई में कोई गिर गया था रोता है तो मैं नर्स रूम लेके जाती
0: हूँ। ओह हेल्पफुल बच्चा, हेल्पफुल। और कल से लेकर अभी तक का क्या सीन है, कुछ किया है?
1: मैं मेरे भाई को हेल्प करती हूँ।
0: क्या करने में? पढ़ने में?
1: ओह
0: खाना खिलाती हूँ उसे, दैट्स सो स्वीट।
1: ड्रेस यूनिफॉर्म पहनाई हूँ।
0: अरे वाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। तो चलें भाई, और ये बताइएगा कि कल स्कूल में क्या क्या किया था?
1: कल स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी
0: बस, खेला कूदा नहीं कुछ?
1: खेला है ना।
0: तो फिर बताएं ना क्या क्या खेला भाई।
1: मैंने खेला फुटबॉल।
0: Nice.
1: और वॉलीबॉल।
0: ओह नाइस, वॉलीबॉल के रूल्स आते हैं आपको? क्या क्या रूल्स? थोड़े थोड़े आते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आते सिद्रा, मुझे सिखाएंगी किसी दिन?
1: सिखाऊंगी।
0: मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती है वॉलीबॉल।
1: मेरा सबसे फेवरेट स्पोर्ट स्केटिंग है।
0: ओह स्केटिंग, हाँ स्केटिंग मुझे आती है, रोलर स्केट्स राइट?
1: मुझे भी तो आती है ना।
0: चलिए फिर हम किसी दिन प्लान बनाएंगे, फिर विदा पार्क चलेंगे, वहाँ पे रोलर स्केटिंग करेंगे। ओके
1: ओके, अब तो गेम खेलना है ना, मुझे कौन सी गेम है?
0: हाँ हाँ, आपने तो स्कूल भी जाना है। चलिए भाई, हम खेल रहे हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। ओके
1: ओके।
0: अच्छा आपको जो है ना मैं 45 सेकंड दूंगी, ठीक है? विद इन दैट 45 सेकंड्स आपने करना ये है कि आपने मुझे जल्दी जल्दी नेम प्लेस एनिमल थिंग बताना है जो अल्फाबेट मैं आपको दूंगी उससे, ठीक है?
1: ठीक है।
0: चलें जी, 1 2 3 और आपका अल्फाबेट है आई, स्टार्ट।
1: इनाया।
0: ओके, प्लेस?
1: इंडिया।
0: वेरी गुड। अच्छा जी, एनिमल? अच्छा क्या एनिमल, क्या या थिंग? आइसबियर। ओके अच्छा, थिंग?
1: आइसक्रीम।
0: ओके तो भाई 40 सेकंड्स का हमारा स्कोर हो गया है सिद्रा के साथ, तालियां बजा दें भाई, तालियां सिद्रा के लिए, वेरी वेरी गुड हो गया। तो भाई आपने 40 सेकंड्स में स्कोर किया है और नाइस नाइस नाइस। अच्छा आइस बियर जो होता है ना वो एक्चुअली कार्टून्स में बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली पता है इसका नाम क्या होता है?
1: क्या होता है?
0: पोलर बियर।
1: yes.
0: कार्टून्स में उसको बच्चे बोल लेते हैं या कार्टून कैरेक्टर को नाम दे दिया जाता है आइस बियर, या हम कह लें कि फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको प्यार से बोल देते हैं आइस बियर, लेकिन एक्चुअली में उनका नाम होता है पोलर बियर। सो आई वुड कंसिडर इट, अगर हम थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख कर रूल एंड रेगुलेशन पे चलें तो थ्री आंसर्स वर राइट। ओके
1: ओके, मेरा भाई आपसे बात करना
0: चाहता है। जी जी जी भाई,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सिद्रा के भाई, कैसे हैं आप?
1: सरकार के भाई बोलते लेते
0: सिद्रा के भाई बोल रहे हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा तो फिर ये बताएं कि क्या नाम है आपका सिद्रा के भाई?
1: किरण।
0: खिजर। खिजर कैसे हैं?

0: बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई है जो कि कॉल कर रहा है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ?
1: मेरा नाम फातिमा है।
0: फातिमा, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड।
0: अच्छा भाई फातिमा, यू हैव अ वेरी प्रिटी नेम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कितने साल की हैं?
1: मैं 10 साल की हूँ।
0: 10 साल की है, माशाल्लाह, बिग गर्ल हैं। ये बताएं स्कूल जा रही हैं कि आ रही हैं?
1: मैं आ रही हूँ।
0: आ रही हैं, तो ये बताएं कि स्कूल का दिन कैसा गुजरा?
1: अच्छा था।
0: बस अच्छा था, ऐसे यूं ही बस ऐसे अच्छा सा था, बस सही था या बहुत अच्छा था?
1: हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे तो खाया अच्छा था।
0: कुछ भी नहीं किया तभी अच्छा था?
1: हाँ, क्योंकि मैंने खेली।
0: आज पढ़ाई नहीं हुई, स्टडिंग नहीं हुई आज? हाँ। कुछ मजे की ऐसी वाली हैवी स्टडिंग नहीं हुई, राइट?
1: हाँ।
0: तो टीचर एब्सेंट थे या क्या था मामला? टीचर वॉज एब्सेंट और यू जस्ट टीचर गेव यू सम टाइम टू जस्ट रिलैक्स?
1: शी वाज प्रेजेंट।
0: आज टीचर का मूड नहीं था पढ़ाने का, है ना?
1: हाँ,
0: तो फिर आप लोगों को रिलैक्स मिल गया, गुड। कभी कभी ऐसा होना चाहिए, कभी कभी भाई टीचर्स अगर सुन रहे हैं ना हमें, तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए प्लीज कि थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स कर दिया करें। अच्छा ये बताएं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं अभी फाइनल टर्म वाले?
1: नहीं,
0: हो गए एग्जाम आपके? चलें भाई, ये बच्चा रिलैक्स्ड है, ठीक है। कुछ क्योंकि कुछ बच्चों का सेशन जो है ना वो सितंबर का जिनका स्टार्ट होता है, तो वो उनके अभी एग्जाम्स आने वाले हैं जून में। तो भाई ये बताएं फातिमा, यू हैव टू टेल मी वन थिंग, ओके? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। कल से लेकर अभी तक आपने ऐसा कोई एक काम बताना है इन विच यू हैव हेल्प्ड समबडी एंड दैट हेल्प एक्चुअली मेक्स यू फील गुड, इट मेक्स यू फील प्राउड। कोई भी एक ऐसी छोटी, इट कैन बी एनी, यू डू, इट डजंट नीड टू बी अ बिग थिंग।
1: आई फेड द बर्ड्स।
0: ओह दैट्स सो नाइस, यू फेड द बर्ड्स। और आपने थोड़ा सा खाना दिया उन्हें एंड पानी वगैरह भी दिया?
1: जी।
0: दिस इज सो जेनरस ऑफ, दिस इज सो नाइस थॉटफुल ऑफ यू।
1: मैंने हाथ से खिलाए।
0: डू यू हैव लाइक पेट बर्ड्स या वो जो बर्ड्स होती हैं बाहर, पेट्स को?
1: पेट बर्ड्स।
0: नाइस, यू नो नॉट जस्ट कीपिंग पेट्स इज अ थिंग बट इफ यू टेक केयर, दैट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एक्चुअली अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स एंड दे ऑल्सो नीड काइंडनेस, दे ऑल्सो नीड लव एंड दे ऑल्सो नीड हेल्प ऑफ योर्स।
1: वी हैव फोर पीपल।
0: फोर पीपल और फोर बर्ड्स? फोर पीपल लाइक आई डोंट गेट इट, लाइक फोर पीपल
1: like in the car we have 4 people.
0: अच्छा, मैं कह रही हूँ फैमिली मेंबर्स 4 हैं। अच्छा, you have hello to everybody, hello, hi. That was so cute, hi. So I it's just a सबको इज्तमाई सलाम मेरा। So I will be talking to Fatima as of now because I cannot talk to everybody at the same time. So inshallah आप लोगों से भी बात होगी। तो ये बताएं फातिमा, विल यू प्ले गेम विद अस, नेम प्लेस एनिमल थिंग?
1: यस।
0: ओके, सो द थिंग इज, अभी तक के टॉप स्कोरर हैं हमारे पास तमीम। तमीम ने विद इन 25 सेकेंड्स हमारे जो है वो नेम प्लेस एनिमल थिंग खेला है हमारे साथ एंड यू हैव टू ट्राई टू ब्रेक हिज रिकॉर्ड।
1: आई थिंक आई कैन डू
0: बेटर। सो यस दैट्स व्हाट वी नीड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। The total time is actually 45 seconds. Let's see in how many seconds do you cover it up, okay?
1: Okay.
0: So, we will choose an alphabet. Let's say, okay. Your alphabet is E. E as in echo. Your time starts now.
1: Isa.
0: Okay. Name Isa, place?
1: England,
0: okay. Animal?
1: Elephant,
0: okay. And thing?
1: Electronic fan.
0: इलेक्ट्रॉनिक फैन. ओ भाई 19 सेकेंड्स, वेरी वेरी गुड हो गया भाई, वेरी वेरी गुड.

0: 蛮精彩的啊。Very good.
1: Yesterday, my brother Yusuf also said 19 seconds.
0: अच्छा वो यूसुफ थे जिन्होंने 19 किया था, मैं समझी. हाँ एक मिनट रुकें जरा, मैं अपना कल वाला पेपर निकालूं. मरियम थी क्या, यूसुफ थे? वैसे आई कीप माय रिकॉर्ड्स. तो कल कौन था भाई? हाँ सही बोल रही हैं, यूसुफ थे कल. मैं मरियम का समझ, मरियम ने कितना किया था? मरियम ने 20 सेकंड्स किया था. ओ इंटेलिजेंट यूसुफ की इंटेलिजेंट बहना. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. So I already had a chat with Yusuf yesterday. So you're Yusuf's Hello. Sister, right? Hello.
2: Yes.
1: Hello.
2: Hello.
0: ये कौन है? फातिमा है कि यूसुफ है?
1: मैं फातिमा हूँ.
0: हाँ फातिमा, very good. तो आपने यूसुफ के जितना ही स्कोर किया है. And congratulations to you. अभी तक का आज का highest score आपने सेट कर दिया 19 seconds. अब जिसने भी कॉल करना है 19 seconds. का रिकॉर्ड ब्रेक करना है. यस
1: मैं यूसुफ को दे रही हूँ. ठीक है
0: चलें. ठीक है
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, हाउ आर यू?
1: गुड.
0: 11 इयर्स ओल्ड यूसुफ
1: जी,
0: तो ये बताएं कि आज कितना रिकॉर्ड तोड़ने का मूड है? अभी तक के टॉप स्कोरर आप ही हैं.
1: हो सकता है.
0: अच्छा ये बताएं, हाउ वाज योर डे एट स्कूल टुडे यूसुफ?
1: गुड.
0: वेरी गुड और गुड? वीवीआईपी गुड और जस्ट गुड? बहुत अच्छा था. क्या क्या किया? पीई पीरियड था?
1: हेलो एक वो मेरा एक कजिन है तो मैं उसको दूँ?
0: अच्छा उनसे बात करनी है, चले इब्राहिम से बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप?
3: वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ.
0: तो ये बताएं इब्राहिम, हाउ वाज योर डे एट स्कूल?
3: बहुत अच्छा था.
0: वो यूसुफ जैसा, यूसुफ के साथ ही हैं आप क्लास में?
3: नहीं हम लोग दूसरे स्कूल में.
0: ओके सो इब्राहिम व्हाट्स योर एज?
3: मेरा एज है
0: 11 इयर्स के. तो हाउ वाज योर डे एट स्कूल टुडे? गुड तो था, कैसे गुड था? क्या क्या किया?
3: पहले हम लोग बहुत सारी मैथ्स में बहुत सारी चीज सीखे.
0: ओके एंड देन लाइक गिव मी वन थिंग ना, कि कोई एक ऐसी चीज ऐसी जो आज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो स्कूल में.
3: बहुत खेला
0: तो क्या फुटबॉल खेला?
3: नहीं बाहर एक्चुअली बंद है क्योंकि बहुत गर्मी रहती है. तो हम लोग अंदर खेले.
0: तो कौन सी गेम खेली इंडोर?
3: टैग.
0: अरे भाई टैग इंडोर खेल ली इन्होंने? इतनी सी क्लास में टैग खेलते फिर रहे थे?
3: क्लास में नहीं मेन हॉल में.
0: अच्छा ओके हाँ मैं तो भूल गई कि स्कूल में हॉल भी तो होता है, मैं ये बात भूल गई. चलें ठीक है. अच्छा ये बताएं हमारे पास, हमारे साथ नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगे
3: जी?
0: चलें जी. अभी तक के टॉप स्कोरर कौन है? फातिमा और यूसुफ हैं. तो 19 सेकंड से कम में आपने सॉल्व करना है. ओके
3: जी
0: चलें भाई. आपका अल्फाबेट है, टाइम रुकें भाई रीसेट करते हैं. हाँ आपका अल्फाबेट है आर, आर आर एज इन रोमियो. ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
3: रायान.
0: ओके
3: रशिया.
0: ओके एनिमल.
3: एनिमल रैट.
0: ओके एंड थिंग.
3: थिंग रोब.
0: ओके अरे भाई 17 seconds भाई, 17 seconds. Very nice हो गया भाई, highest score set हो गया है. यूसुफ और फातिमा का record तोड़ दिया इन्होंने. Very good
3: जी.
0: अच्छा भाई जाने से पहले कोई अच्छा सा message देना चाहेंगे? नहीं नहीं अभी जो है, अभी जो है हम नेक्स्ट कॉलर के पास नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट कॉलर के पास जाएंगे क्योंकि आप लोग से ज़्यादा करूँगी ना बात तो फिर वो अनइवन हो जाता है. जो बच्चे बाकी कॉल करें ना उनको थोड़ा सा चांस देंगे. और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कॉल बैक अगेन. ओके
3: मैं मैसेज बोलूँ?
0: हाँ जी मैसेज बोलें.
3: नेवर गिव अप.
0: दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ एट दिस एज, नेवर गिव अप. चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.
3: अल्लाह हाफिज़.

0: अच्छा बच्चा बाटी, आज से ना एक रूल सेट कर लेते हैं कि आप लोगों को अगर बात करनी है, आई टेक मैक्सिमम टू कॉलर्स ओनली इन वन कॉल, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी कॉल कर रहे होते हैं ना, वो बहुत मुझे वो अनफेयर लगता है. तो अगर किसी ने वापस से, कोई थर्ड बच्चा है, कोई फोर्थ बच्चा है, तो वापस से कॉल कर लें. अगर आपकी कॉल लग जाती है तो वेल एंड गुड, दैट्स फेयर, ठीक है? तो एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
1: उस्मान.
0: उस्मान फ्रॉम USMAN.
1: यस.
0: और उस्मान ने हमें कल भी कॉल की थी, और उस्मान ने कहा था, उस्मान कितने साल के हैं? 13 साल के हैं
1: जी.
0: तो भाई ये बताएं, 13 साल के उस्मान, आज आप कैसे हैं?
1: आज मैं अच्छा
0: हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आज भी 13 साल के ही हैं
1: जी?
0: मैंने कहा अच्छा, 24 घंटे में शायद कोई प्रोग्रेस हुई हो. अच्छा ये बताएं कि आज का दिन कैसा गुजर रहा है?
1: आज का दिन अच्छा गया.
0: अच्छा गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज स्कूल में क्या क्या किया?
1: आज पेपर भी था.
0: अरे भाई पेपर था, डरा देते हो भाई पेपर के बारे में बात करके. उस्मान कभी आपके साथ ऐसा होता है कि दैट यू गेट नाइटमेयर्स दैट यू आर टेकिंग एन एग्जाम? होता है, मुझे अभी भी होता है पता है. मुझे, मेरे साथ अभी भी ये होता है. सो चलिए नॉर्मल है, ठीक है, ओके. आई डोंट गो टू स्कूल एनी मोर, बट येट आई गेट नाइटमेयर्स दैट आई एम टेकिंग एन एग्जाम एंड आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट. अच्छा भाई ये बताएं कि आज का जो एग्जाम था वो कौन से सब्जेक्ट का था?
1: सेकेंड लैंग्वेज.
0: तो सेकेंड लैंग्वेज आपने क्या चूज की हुई है?
1: हिंदी.
0: हिंदी
1: जी.
0: अच्छा मैंने कहा, अच्छा मुझे इन्होंने हिंदी बोला, मुझे सिंधी सुनाई दिया. ओके हिंदी, राइट? HINDI हिंदी. ओके सो हाउ डू यू फाइंड हिंदी? इट्स इजी लैंग्वेज और इट्स अ बिट टफ?
1: वेरी हार्ड.
0: पता नहीं क्यों होता है भाई, पता नहीं, मैं भी, मेरी जो लैंग्वेज थी, मैंने उर्दू ली हुई थी, तो मुझे पता नहीं क्यों टफ लगता था. हिंदी वाले बच्चों को देखती हूँ, वो कहते हैं हिंदी मुश्किल लगती है. फ्रेंच भी अगर कोई बच्चा लेता है तो वो कहते हैं फ्रेंच भी मुश्किल लगती है. बट मुझे लगता है आई फील दे आर, दे माइट बी टफ, बट इट्स आर, इट्स अ काइंड ऑफ आर मदर टंग ना.
1: हिंदी मुझे किसी के, किसके लिए लगता है, तो ये क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते
0: हैं?
1: आपको पता है?
0: मतलब ये क्रिकेट आप गेम का बोल रहे हैं?
1: हाँ आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं?
0: आई एम नॉट Not really, really sure.
1: गोल गट्टम लकर पट्टम धे धनादन.
0: ओके देखें ये जो है ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया. गोल गप्पे क्या?
1: घट्टम.
0: गोल घट्टम.
1: यस
0: गोल घट्टम.
1: लकर पट्टम.
0: पट्टम
1: धे
0: धनादन. ये सीरियसली में ऐसा ही है?
1: हाँ
0: सीरियसली. यार ये मेरे, मेरे लिए ये वो हो गया, नई चीज हो गई. नहीं इसका मुझे देखना पड़ेगा. दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. आई विल हैव अ लुक एट दिस. दिस इज वेरी, मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ. This is a new thing for me. I learned a new thing from you. Cricket को cricket ही बोलेंगे, हम सब cricket बोलते हैं. This is something new for me. I'll keep this in mind. Goal, ghatam, lakkad, pattam, de dhanadhan. I'll ask everyone yes. around. अब ये सवाल मैं बाकी सबसे ऑफिस में करूँगी. सही okay. है ओके okay. चले भाई ये नई चीज़ मुझे आपसे सीखने को मिल गई. See, we learn from each other. That's why it's hard, right? उस्मान yes. मुझे पता चल गया बेटा, मुझे पता चल गया. अब मैं हिंदी की साइड नहीं लूंगी. अच्छा ये बताएं कि अच्छा ही सर्वाइव द डे आफ्टर दिस. इवन देखो ये दिस इज द थिंग. देखो हम कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं, गोल घटम लकड़ पतम और पता नहीं किन किन चीज़ों से. इट इज़ हैपनिंग, सो वी सर्वाइव द डे अल्हम्दुलिल्लाह. आफ्टर ऑल दिस येट ही इज़ हैविंग अ गुड डे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये बताएं उस्मान, मैं आपको और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती, गेम खेलेंगे
1: जी?
0: लेकिन गेम से पहले

0: आपने एक काम करना है, आपने मुझे कोई एक चीज ऐसी बतानी है जो कल से लेकर आज तक आपने की हो, विच हैज मेड यू प्राउड एंड इट कम्स इन द थिंग कि आपने किसी की हेल्प की हो.
1: आज मेरे फ्रेंड से एक टीचर ने क्वेश्चन पूछे और मैंने मेरे फ्रेंड की हेल्प किया.
0: चीटिंग की? ये तो चीटिंग हो गई. ये तो चीटिंग नहीं हो गई. उस्मान है कि चले गए? उस्मान को मैंने सोच में डाल दिया. उस्मान कह रहे वाकई में चीटिंग तो नहीं हो गई. अच्छा एक रैंडम लाइक द टीचर आस्क्ड एज अ सेंस ऑफ वाइवा या कोई टेस्ट लिया था टीचर ने?
1: रैंडम.
0: चलो उसके अंदर तो हो जाता है, ये कोई असेसमेंट तो था नहीं जिसके अंदर चीटिंग हो, है ना. असेसमेंट होता तो फिर चीटिंग हो जाती, लेकिन असेसमेंट नहीं था, इट वॉज जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, राइट? तो खैर है, वो आइडियाज एक दूसरे को हम ट्रांसफर करते रहते हैं. ये बोल दो टीचर को, ये बोल दो टेबल के पीछे से हम आवाजें दे रहे होते हैं, है ना
1: जी.
0: चलो इट्स ओके, इट डज नॉट कम इन चीटिंग. अच्छा भाई ये बताएं, गेम के लिए रेडी हैं?
1: हाँ.
0: अच्छा तो फिर आपको दी जाएंगे 45 seconds और आज का हमारा हाईएस्ट स्कोर किया है इब्राहिम ने, विच इज 17 seconds. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके तो आपका okay. आज का अल्फाबेट है एन, एन एज इन नैनो, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1: मिज़बा
0: नहीं, एन एन एन. एक मिनट. लेट्स रीस्टार्ट द टाइम. एम नहीं, एम के बाद जो आता है ना एल एम
1: एन
0: एन एन एन. हाँ
1: ओके.
0: योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1: नहियान.
0: ओके.
1: नेपाल.
0: एनिमल एंड थिंग. थिंग बोल दें.
1: नॉर्वे.
0: ओके. प्लेस बोल दी, ठीक है. प्लेस तो हो गई थी.
1: नेस्ट.
0: ओके थिंग हो गई. और ये बता दें एनिमल. एनिमल फ्रॉम एन. पैरेट फ्रॉम एन. चलिए मिट. कल भी मैंने बताया था किसी को तो बताया. चलिए मिट, टाइम अप हो गया. क्लैपिंग. टाइम अप हो गया. नॉट बैड. वैसे एन से जो है ना, एन से जो एनिमल आता है ना, वो आई वुड से हाँ है, इट्स अ बिट डिफिकल्ट. लेकिन सबसे ईजीएस्ट है ना वो है ये अपना नाइटिंगेल. अदर देन नाइटिंगेल देयर इज एन एनिमल विच यू कैन आल्सो सर्च फॉर, नुम्बैट. इट्स अ वेरी स्मॉल, जैसे वो स्क्वर्ल नहीं होता.
1: क्या बोले?
0: स्क्वर्ल होता है ना, स्क्वर्ल जिसे हम गिलहरी कहते हैं.
1: हाँ
0: वो वैसा होता है नुम्बैट, एंड इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल एनिमल. You can go search of about it, and that also comes with N.
1: Okay.
0: ठीक है.
1: और मेरा एक भाई है फाती.
0: चलें भाई, हमने कहा था हम एक कॉल पर दो बच्चे ले लेंगे, तो फिर उनसे बात कर लेते हैं. बता दें कौन है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं.
2: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका?
2: फाती.
0: अच्छा ये एज अ निकनेम है या ये पूरा नेम ही है? ये रियल नेम है. अच्छा फाती कितने साल के हैं? व्हाट्स योर एज?
2: 6
0: इयर्स के. माशाल्लाह वेरी गुड. अच्छा फाती दिस इज अ न्यू नेम फॉर मी बिकॉज आई थॉट दैट इट्स अ निकनेम. व्हाट डज योर नेम एक्चुअली मीन?
2: आई डोंट नो.
0: यू डोंट नो? Seriously? आपका नाम किसने रखा था आपको पता है? You did not ask. मामा बाबा?
2: मम्मा
0: ने रखा था. तो भाई मम्मा से अब आपने आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है? मम्मा से पूछेंगे, मम्मा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय नेम. ओके
2: ओके
0: चलें जी. अच्छा फिर अभी के लिए तो मुझे ये बताएं कि हाउ वाज योर डे एट स्कूल?
2: Good.
0: How? What did you do?
2: We were playing.
0: You were playing. So, bhai, play karte

0: करते जो है हम क्या क्या प्ले किया?
1: टैग.
0: क्या पे प्ले किया?
1: टैग.
0: टैग. ओके ओके ओके. यू लाइक प्लेइंग टैग? यू हैव फ्रेंड्स?
1: यस.
0: कितने फ्रेंड्स हैं आपके पास? हाउ मेनी फ्रेंड्स?
1: फोर.
0: माशाल्लाह, यू आर वेरी लकी दैट यू हैव फोर फ्रेंड्स. अच्छा, ये बात बताएं कि सिंस येस्टरडे टिल नाउ, इफ आई आस्क यू, हैव यू हेल्प्ड एनीबॉडी अराउंड?
1: यस.
0: व्हाट डिड यू डू? व्हाट वाज द हेल्प? टेक केयर ऑफ
1: माय सिस्टर.
0: टेक केयर ऑफ
1: माय सिस्टर.
0: ओह, यू हैव अ यंगर सिस्टर?
1: यस.
0: That's so kind of you, Fati. I really admire this. You took care of your younger sister. And what's her age?
1: 1.
0: She's just 1 year old. And you love her so much that you took care of her. Bhai, iske liye to special taaliyan hote hain. Special, special, bhai. Special, special. Acha, tell me one thing. You love your brother, Usman, more or you love your younger sister more?
1: My younger sister.
0: Younger sister. That's so cute of you. Because she's like a doll, right?
1: Yes.
0: Okay. Chale, would you like to play nameless animal thing with us?
1: Okay.
0: Okay. So, you're 6 years old. So, let's make it a not bit complicated for you. So, you'll be given 45 seconds, okay? You have to solve the game with, let's say, how much less time you take, okay?
1: Okay.
0: आपका वर्ड है सी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1: कैट.
0: ओके. नेम.
1: कनाडा.
0: ओके.
1: इंडिया.
0: ओके.
1: क्रिस्टियानो.
0: क्रिस्टियानो. क्रिस्टियानो. एंड थिंग. थिंग थिंग थिंग.
1: कटर.
0: ओके. तो भाई 23 सेकेंड्स. वाओ, नॉट बैड, वेरी गुड. तो भाई वेरी वेरी गुड हो गया. यू प्लेड इन 23 सेकेंड्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो भाई जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: बी स्ट्रांग.
0: भाई फाती की तरह जो है वो अच्छे से स्ट्रांग बनना है. जिम शिम जाना है. जिम जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है?
1: ठीक है.
0: स्पोर्ट्स प्ले करेंगे. ओके. चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: सो दैट वाज फाती. एंड फाती चले तो गए, लेकिन मैं अगर सुन रहे हैं तो भाई होमवर्क याद रखिएगा. आई एम क्यूरियस टू नो द नेम, मीनिंग ऑफ योर नेम. तो भाई क्योंकि हम लोग प्यार से कहते हैं फाती. कभी किसी का नाम फातेह होता है तो हम उसे प्यार से फातेह कहते हैं, या किसी का नाम फातिमा होता है तो हम उसे फती कहते हैं. तो ये मुझे ऐसा लगा जैसे वो है, निकनेम है, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड दिस नेम. आई एम क्यूरियस टू नो. चलिए भाई एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ? हानिया.
2: हानिया
0: जी, इतने टाइम बाद आपने कॉल की है, कहाँ गुम हो जाती हैं?
2: हम फोन लगा रहे थे, आपने उठाया नहीं.
0: ये तो एक तो मैं तो कह रही हूँ इस फोन को चेंज करा दूँ. हानिया, मैं तो कब से कह रही हूँ, ये सब इस फोन की गलती है, क्या करें. अच्छा ये बताएं कि आज स्कूल का दिन कैसा था हानिया का?
2: अच्छा था.
0: क्या क्या किया आज हानिया ने स्कूल में?
2: हमने उधर पहले हमने मजे से कुछ करा. हमने बाहर खेला. उसके बाद हमने पढ़ी थोड़े, बाद में हमने ड्राइंग किया, बाद में हमने लैपटॉप चलाया.
0: अरे वाह, कुछ किया, फिर बाद में खेला भी, फिर बाद में कुछ पढ़ा भी, फिर ड्राइंगे भी की,
2: खाना लेके खाया.
0: अरे भाई ये तो बहुत कुछ कर लिया हानिया माशाल्लाह से, है ना?
2: और बाद में मैंने खेला
0: भी भाई, फिर से भी खेला, पहले खेला फिर बाद में भी खेला.
2: बहुत अच्छा लगता है.
0: चले अच्छी बात है, खेलते कूदते रहना चाहिए, अच्छी बात.
2: गिफ्ट दे दिए.
0: अच्छा भाई हानिया, आज हम बात कर रहे हैं कि हेल्प

0: के बारे में बात करें, मदद करने के बारे में, तो आपने मुझे कोई एक चीज ऐसी बतानी है जो कल से लेकर आज के बीच में आपने की हो कि आपने किसी की हेल्प की हो, किसी और की हेल्प की हो।
1: मैंने एक बच्ची को मदद की।
0: एक बच्ची को, एक ही बच्ची को मदद की है कल से लेकर अभी तक?
1: नहीं टीचर, नहीं, चार बच्चों का मदद कर चुकी हूँ।
0: ऐसे चार बच्चों की ऑलरेडी मदद कर, तो क्या मदद की आपने?
1: किसी को चोट लग जाती तो मैं उनको सुरा के पट्टी बांध देती हूँ।
0: लो जी, ऐसा कैसे चल रहा है भाई, सही सही बताएं भाई।
1: पेंसिल रहता है, अगर किसी के पास पेंसिल नहीं रहती, रबड़ नहीं रहती, मैं दे देती हूँ।
0: हाँ, ये एक बहुत बड़ी हेल्प है। क्लास में कभी कभी होता है बच्चे अपनी पाउच भूल जाते हैं या पेंसिल नहीं होती किसी के पास,
1: पेंसिल दे देती हूँ।
0: हाँ, दिस इज गुड, दिस इज गुड, आई लाइक इट। आप वेरी गुड हो गया भाई, तो कल से लेकर अभी तक यही काम चल रहा है, पेंसिल रबर बांटे जा रहे हैं। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। ये बताएं, हमारे साथ नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगी?
1: यस।
0: चलें भाई, आपने, आपको दिया जाएगा 45 सेकंड्स का टोटल टाइम। ओके
1: आंटी, कुछ पूछो, 10 दिन में बकरी ईद आ रहा है, उसको ईद मुबारक।
0: आपको भी ढेर सारी ईद मुबारक, और खुश रहें और ईद अपनी एंजॉय कीजिएगा। चलें जी, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं, ठीक है?
1: ठीक है।
0: तो भाई, हानिया का लेटर हम हानिया को देंगे वाई से, और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। वाई नाम बताएं, कोई भी वाई से नाम बताएं।
1: वाई से वेट।
0: नहीं ना, नाम, किसी का नाम,
1: किसी का नाम।
0: हाँ जी,
1: यामीन।
0: यामीन, ओके। और कोई जगह बताएं वाई से जो शुरू होती हो, कोई प्लेस। वाई से कोई प्लेस, अच्छा वाई से कोई एनिमल याद आ रहा है आपको?
1: वाई से,
0: हाँ एनिमल, कोई कोई एनिमल भी नहीं याद आ रहा। अरे भाई, हमारा टाइम तो खत्म हो गया। चलें भाई, एक तो हमने यामीन तो हमने बता दिया, चलें एक पॉइंट तो बनता है। वैसे एनिमल बताऊं, एनिमल क्या होता है वाई से? यैक होता है, यैक। यैक पता है क्या होता है?
1: क्या?
0: यैक जो है पहाड़ों में रहने वाला एक जानवर होता है।
1: कौन सा जानवर?
0: कौन आन्या गुस्सा होके पूछ रही है, कौन सा जानवर भाई? एक वाइल्ड किस्म का ना, आप कह लें कोल्ड वेदर में सरवाइव करने वाला।
1: भालू रहते हैं आंटी
0: जी?
1: वाइल्ड से भालू।
0: भालू, भालू भी तो रहते हैं, लेकिन भालू तो नहीं, हम लोग बोल रहे थे ना, हम लोग वाइल्ड से ढूंढ रहे थे कोई एनिमल। तो यैक ना यूं समझ लें पहाड़ी बकरा। जी
1: पेंगुइन?
0: नहीं ना, पी फॉर पेंगुइन होता है, वाई फॉर पेंगुइन थोड़ी होता है।
1: वाई,
0: वाई, वाई से यैक, यैक, यैक, वाई ए के, यैक। अच्छा भाई, जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी?
1: यस।
0: चलें जी, बता दें।
1: देना चाहती हूँ आंटी, आप लोग खुश रहिए।
0: चलें, आप भी ढेर सारा खुश रहिए, अपना खाना पीना एंजॉय करें। जी जी
1: जी, क्या कल मेरा फोन?
0: हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।
1: और आप भी आंटी, अल्लाह हाफिज।
0: अच्छा भाई, जिन बच्चों को हानिया की तरह नहीं समझ में आना, यैक क्या होता है? यैक जो है ना, आप यूं कह लें कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जानवर होता है। इट लुक्स लाइक अ बुल, हाँ उसका शेप कुछ ऐसा ही बड़ा सा, आप यूँ दिमाग में रखें, जैसे बुल टाइप का होता है, पहाड़ों में रहता है। एंड इट सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, ये हर पहाड़ में नहीं रहता, ये एक्सट्रीम कोल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर्स तक को ये सर्वाइव कर जाता है। इट्स वेरी थिक, वेरी, बहुत ज़्यादा ना इसकी शैगी से बाल होते हैं, और इसके बाल ही इसको विंटर से बचाते हैं। और ये क्योंकि पहाड़ों में लो ऑक्सीजन होता है, तो ये वहाँ पर टाइट एयर कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है। इट्स अ वाइल्ड एनिमल, अगर आप इसको ऐसे दिमाग में इमेजिन करना चाह रहे हैं, तो इट्स समथिंग लाइक अ बुल, लेकिन बहुत ज़्यादा बालों से भरा हुआ और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है और बहुत ज़्यादा जो है ना ये बड़ा सा जानवर होता है, इसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो बस कुछ ऐसा ही है, यह कैसा होता है। तो साथियों आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलना चाह रहे हैं, तो आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। क्या नाम यक, और क्या बताया जा सकता है यक का। एक और चीज़ ये है कि यक हिमालय रीजन्स में रहता है, एकदम से मुझे याद आया बीच में। तो भाई 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और देखते हैं मतलब कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। रानिया मैडम कैसी हैं आप?
2: कौन है?
0: रानिया नहीं है?
2: नहीं।
0: अच्छा तो फिर कोई और है, मुझे ऐसा लगा जैसे रानिया है।
2: नहीं।
0: तो फिर आप कौन हैं? तो ये तो बताया ही नहीं आपने।
2: शफक।
0: शफक?
2: यस।
0: शफक तो जल्दी जल्दी बात किया करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ जब थोड़ा बहुत कोई एक सेंटेंस बोल जाती है, तब मुझे पता चलता है शफक है कि रानिया है। जरा कुछ सेंटेंस बोलें।
2: ये मेरी 9th कॉल है।
0: 9th कॉल है? अरे इतनी देर से कॉल कर रही थी।
2: आधे घंटे से मैं आपको कॉल कर रही थी।
0: सॉरी मेरा बच्चा, सो सॉरी। इतनी सारी कॉलें चल रही है, देखिए मैंने अभी तक ब्रेक तक नहीं लिया, मैं कंटिन्यूसली, मेरी रेलगाड़ी जो है ना 1 घंटे से चल रही है और अभी मुझे कॉल आ रही है माशाल्लाह से। तो ये बताएं शफक कैसी हैं आप? ठीक हैं?
2: ठीक हूं।
0: तो आज कुछ शफक, कुछ दिनों से शफक जो ना लो लो लग रही है, क्यों? तबीयत ठीक है?
2: गर्मी होती है।
0: गर्मी होती है तो बेटा पानी वगैरह, जूस शूस पानी ये चीजें पिए?
2: पानी पीती हूँ।
0: अच्छा जी, तो जूस वगैरह भी पिया करें, क्योंकि गर्मी में ना हाइड्रेटेड रहने के लिए हमें जूस और पानी दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा ये बताएं कि आज का दिन कैसा गुजरा है गर्मी के अलावा?
2: अच्छा था।
0: अच्छा था, क्या क्या किया आज के दिन में शफक ने?
2: आज मेरे साथ एक प्रैंक भी हुआ, लेकिन मजा भी आया।
0: आज कुछ कुछ कुछ क्या हुआ?
2: आज मेरे साथ प्रैंक हुआ।
0: प्रैंक हो गया?
2: यस।
0: तो प्रैंक में क्या हुआ भाई?
2: हमारी टीचर एब्सेंट थी और हम दूसरी क्लासेस में मर्ज हो रहे थे।
0: ओके।
2: तो उसने ना सेक्शन एफ की आज थी। मुझे लगा कि कल होगी, लेकिन नहीं, मैं चली गई और उनकी पी हो गई।
0: क्या क्या? मुझे नहीं समझ में आ रही बात, प्रॉपरली नहीं समझ में आ, क्या हुआ?
2: आज सेक्शन एफ की
0: ठीक है मर्ज हुई। ठीक है,
2: फिर मुझे लगा कि कल होती है उनकी पी, लेकिन आज मैं ई में चली गई और मेरे साथ क्रैम्प हुआ, उनकी पीई हो गई।
0: अरे भाई, तो मतलब पी पीरियड निकल गया हमारा।
2: यस।
0: अरे भाई, लेकिन वैसे ही गर्मी लग रही थी गर्मी तो वैसे ही हो रही थी, गर्मी में खेल लेती फिर भी?
2: यस, हम लोग हर रोज खेलते हैं।
0: अरे कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट पी पीरियड कब आएगा?
2: संडे को।
0: अरे भाई, मतलब ये कि हमें 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा।
2: 4 दिन क्या, हमें तो अब पी भी नहीं मिलेगी 2nd June से लेकर।
0: हाँ, स्कूल ऑफ हो जाएंगे, सही। अरे बाबा, अरे बाबा, चले कोई बात नहीं, ईद पे कजन के साथ खेल लेना।
2: यस।
0: बकरे के साथ खेलना ईद पर इस दफा, पकड़न पकड़ाई बकरे के साथ खेलना। अच्छा भाई ये बताएं कि आई एम रियली सॉरी कि आपका पीई पीरियड निकल गया, आई एम रियली रियली सॉरी। तो चले आपका थोड़ा सा गम गलत करते हैं, मतलब ये कि थोड़ा सा हल्का करते हैं दिल। ये बताएं कि कल से लेकर अभी तक कोई एक ऐसी चीज़ आपने मुझे बतानी है विच हैज़ मेड यू सो प्राउड कि आपने किसी की हेल्प की है।
2: मैंने अपने भाई की टेक केयर की, रात को मम्मी किचन में थी तो मैंने उसका ध्यान रखा।
0: वाओ माशाल्लाह, इतनी बड़ी हो गई है, भाई का ख्याल रख लेती हैं।
2: यस, वो
0: अभी बॉर्न हुआ है। ओ, छोटे से भाई का ख्याल रखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने दिन के या कितने हफ्ते के हैं आपके भाई?
2: वो
0: सोच रही है
2: 50 दिनों का है 50 डेज।
0: माशाल्लाह, खैर आफियत से रखे। और वे बड़ी बहनों का तो जो है ना प्यार अलग सा होता है, बड़ी बहनें तो ख्याल रखती हैं ना, है ना?
2: यस, सो दिस इज कजन में भी कतर के घर में सबसे बड़ी
0: हूं। ओह, तो भाई बिग सिस्टर आपका तो फर्ज बनता है, बिग सिस्टर भाई बहनों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चले भाई, इसी के साथ अब एक काम करते हैं, आपकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करते क्योंकि आज आप वैसे ही मुझे जो है ना हिम्मत हारी भी लग रही हैं गर्मी की वजह से। नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं, ओके?
2: ओके।
0: लास्ट टाइम शफक ने कितना स्कोर किया था? मेरे ख्याल से शफक ने खेला तो था लास्ट टाइम। शफक ने 45 सेकंड्स में हमें चारों जवाब दिए थे, 45 सेकंड्स लिए थे शफक ने, तो इस दफा कुछ कम करेंगे, ठीक है?
2: ओके।
0: चलो भाई शफक, आपको दिया जाएगा एक अल्फाबेट और आपका अल्फाबेट है एल, एल फॉर लीमा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
2: एल फॉर लायन,
0: अच्छा।
2: एल फॉर लाइबा, एल फॉर
0: प्लेस प्लेस
2: लेबनान,
0: ओके।
2: एल फॉर
0: थिंग थिंग थिंग थिंग,
2: एल फॉर
0: थिंग थिंग, कुछ भी हो सकता है, थिंग एनीथिंग। शफक हैं के चली गई थिंग, ओके। चलें भाई 37 सेकंड शफक के, नॉट बैड शफक, पता है 19 सेकंड में सॉल्व कर लेती, जाकर थिंग में अटक गई, बट गुड एफर्ट, वेरी गुड, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव, कल से बेहतर है। कल 45 सेकंड में किया था, आज 37 सेकंड में किया, नॉट बैड एट ऑल, वेरी गुड।
2: फोन करूंगी तो फिर 19 सेकंड में करूंगी,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भाई ये भी बड़ी बात है कि शफक डिड नॉट क्विट, शफक सेड बेशक मैं अपना टाइम लूंगी लेकिन कंप्लीट करूंगी, वेरी गुड शफक, वेरी गुड। तो भाई जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी?
2: Never give up.
0: Never give up. Very, very good. शफक की तरह प्रोग्रेस करते रहें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ढेर सारा पानी पिएं और एंजॉय करें अपने टाइम को। अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई बच्चा पार्टी, आप हमें कॉल कर सकते हैं 6662107 पर, नहीं कॉल नहीं सॉरी, मैसेज कर सकते हैं 6662107 पर और कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
0: जी, कौन है हमारे साथ?
3: यूसुफ।
0: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ है हमारे साथ?
3: जी।
0: यूसुफ कितने साल के हैं?
3: 11।
0: अरे ये तो कहीं वही वाले यूसुफ तो नहीं है
3: जी?
0: किसके किसके भाई, किसके भाई? ये अपनी जो है फातिमा के भाई। कैसे हैं यूसुफ?
3: अच्छा
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी लेकिन जल्दी में हुई थी, कुछ समझ में ना आया क्या हुआ है ना
3: ये।
0: तो ये बात बताएं कि यूसुफ आज का दिन कैसा गुजरा है?
3: अच्छा।
0: और ये बताएं कि यूसुफ ने आज के दिन में क्या क्या किया?
3: आज मेरा वो एग्जाम था तो वो अच्छा गया बहुत।
0: माशाल्लाह, मैं अल्लाह ताला गिव यू मोर सक्सेस। और ये बताएं कि आज किस चीज का एग्जाम था?
3: मैथ।
0: उड़ी भाई, मैथ्स मुश्किल नहीं लगता?
3: नहीं।
0: माशाल्लाह वेरी गुड भाई,
3: इजी था।
0: ये अलग जनरेशन है, ये मैथ्स को पसंद करती है। अच्छा भाई, ये बताएं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको?
3: सेकंड लैंग्वेज
0: हिंदी। अरे भाई क्या दुखती रख पे हाथ रख दिया, मैंने थर्ड ग्रेड तक हिंदी पढ़ी थी और अच्छा। फिर जो है वो मुझे मुश्किल लगती थी, एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट, इट्स ओके। अच्छा भाई, ये बताएं कि आज के दिन में अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कल से लेकर आज तक आपने ऐसा कोई काम किया हो विच हैज मेड यू प्राउड, विच यू हैव हेल्प समबडी?
1: मेरी बैंक का ख्याल।

0: करते हैं, वो रोती थी छोटी सी होती, छोटी सी तो है, रोती होगी तो परेशान हो जाते होंगे, है ना
1: जी।
0: तो भाई जब वो ज्यादा रोती है तो फिर उनको कैसे चुप कराते हैं? मम्मा को पकड़ा देता हूँ।
1: उसको टीवी दे देता है, नहीं तो उसको सूटर।
0: अरे वो समझ जाती है, वो समझती है, टीवी वगैरह देखती है प्रॉपरली। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सेट है भाई। जब कुछ समझ में ना आए टीवी के आगे रख दो पहले को, कार्टून के आगे रख दो। अच्छा भाई चलें, बट दिस इज़ अ वेरी गुड एफर्ट कि आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं। दिस इज़ वेरी माइंडफुल। तो भाई हमें ये बताएं कि हमारे साथ गेम खेलेंगे यूसुफ?
1: जी।
0: यूसुफ आपका रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, आपने 19 सेकंड का रिकॉर्ड किया था, इब्राहिम ने 17 सेकंड में कर लिया, तो आज का क्या प्लान है? 17 सेकंड से लेस?
1: ओके
0: ओके, डन है
1: जी।
0: अच्छा जी, आपको क्या अल्फाबेट दिया जाए? रुकें जी, कुछ सोचते हैं कौन सा अल्फाबेट दिया जाए। कुछ ऐसा करें कि कुछ इजी सा या कुछ मीडियम लेवल का?
1: मीडियम
0: के दिया जाए। ठीक है,
1: कौन सा
0: के इज मीडियम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
1: करीम।
0: ओके, प्लेस
1: कर्नाटका।
0: ओके, एनिमल
1: कंगारू।
0: ओके,
1: काइट।
0: अरे भाई 15 सेकंड्स, भाई 15 सेकंड्स, नाइस नाइस नाइस नाइस नाइस नाइस, हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया 15 सेकंड्स। अरे अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये। 15
1: क्या मिलेगा?
0: गिफ्ट क्या मिलेगा? गिफ्ट ये मिलेगा कि एक वाटर कूलर मिलेगा, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता। गिफ्ट ये है भाई कि जब हम गेम्स खेलते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, एंड दैट इज अ वेरी आई नो इट्स नॉट अ टेंजिबल गिफ्ट बट इट इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक सो कि कोई और चीज ज्यादा अच्छी हो सकती है कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। चले इंशाल्लाह जब किसी दिन गिफ्ट वाला गेम होगा ईद पे, मेरे ख्याल से क्या पता शोज होंगे बच्चों के जिसके अंदर गिफ्ट होंगे, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करके देखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी के लिए जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे?
1: Never give up.
0: Never give up. चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। A very motivating message from Yusuf. Allah Hafiz.
1: Allah
0: Hafiz. भाई गर्मियों के दिनों में वाटर कूलर तो गिफ्ट मिलना ही चाहिए, जहां से मिले उठा लेना, मुझे भी एक एक एक, एक मुझे भी लाकर देना प्लीज। आइस डालकर रखेंगे उस वाटर कूलर में। तो बच्चा पार्टी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लूं के कॉल लूं, देखिए कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कहती है ना ब्रेक लेते हैं, वैसे ही मुझे कॉल आ जाती है। चलिए भाई आपकी कॉल लेते हैं, बिकॉज दैट इज मोर देन इम्पॉर्टेंट। अच्छा भाई एक कॉलर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी भाई, हमारे जो है ना ब्रेक के स्टॉपर कौन हैं आप? अब्दुल सलाम। कैसे हैं?
2: जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ डिड योर डे गो?
2: वेरी गुड थैंक यू।
0: वेरी गुड, तो इस वेरी गुड में क्या क्या आता है अब्दुल सलाम?
2: हमने हिस्ट्री में लेटर्स को कलर किया था।
0: किसमें किसमें?
2: मैंने हिस्ट्री में लेटर्स को कलर किया था।
0: लेटर्स को कलर किया लाइक हिस्ट्री में?
2: यस, हम वो सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए हमें वो पोस्टर बनाना था, इसलिए मैंने किया था।
0: ओके ओके ओके ओके अब्दुल सलाम, ठीक है मुझे समझ में आ गई। इट वाज एन एक्टिविटी रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड स्टफ। ओके ओके, आई गेट इट नाउ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में से मिस कर गई थी। अच्छा भाई ये बताएं कि ये एक दो दिन बाद क्यों कॉल किए भाई, बीच में कहाँ गुम हो गए थे?
2: मैंने कल लगाया था।
0: कल कॉल की थी?
2: यस।
0: या देखिए जरा, फ्यू आवर्स, इट इज जस्ट पास्ट फ्यू आवर्स, और मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझे दो तीन दिन पहले कॉल की थी। तो भाई ये बताएं अब्दुल सलाम, कल से लेकर अभी तक, ओके कल से लेकर टिल नाउ, गिव मी वन थिंग व्हिच मेक्स यू

0: proud because you helped somebody. What was that help that made you proud?
1: I helped my sister draw a princess.
0: You helped your sister in drawing?
1: Yes.
0: Nice. And what's the age of your sister?
1: 4.
0: Oh, that's so kind of you. Aye, chote bhai behno ke sath pyar se khelna. You know, it takes a lot of patience and it takes a lot of effort to actually stick around with your younger siblings. Kyunki unke andar patience kam hota hai. So, helping your sister with her drawing project, it's very good. I admire it. Mashallah, mashallah, very good. Beta, iske andar bahut sabar ki zarurat hoti hai. Acha, bhai, ye bataye ki name plus animal thing khelenge?
1: Yes.
0: ओके okay. अच्छा आपको याद है आपका कल का स्कोर क्या था?
1: नहीं
0: याद. मेरे पास लिखा हुआ तो है लेकिन मेरे साथ कुछ गड़बड़ ये हो गई है कि अब्दुल सलाम का नाम कहीं मिसप्लेस हो गया है मुझसे. ओके okay. चलें कोई बात नहीं. हम आज एक और नया रिकॉर्ड बना लेते हैं. ठीक है, देखिए 45 सेकंड्स मिलेंगे आपको एंड यू हैव टू आई गिव यू एन अल्फाबेट एंड उस अल्फाबेट से आपने मुझे नेम प्लेस एनिमल थिंग बताने. ठीक है ओके. सो विच लेवल वुड बी प्रेफर, इजी, मीडियम, एडवांस?
1: मीडियम.
0: चलें जी, अल्फाबेट हैं ही बेचारे इतने मासूम से. चलें मीडियम में तो फिर हम जे की तरफ चलते हैं. ठीक है, यू हैव द अल्फाबेट जे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1: जैक.
0: ओके.
1: जापान.
0: ओके.
1: और जगुआर.
0: Jaguar, okay. And thing?
1: Jelly beans.
0: Jelly beans. Oh, bhai, 12 seconds. You know, today's lowest. Like, sabse jaldi solve karne wale aap ho gaye. Very nice, only 12 seconds. Nice. Very nice ho gaya. 12 seconds, bhai. नाइस. अभी तक जब तीन दिन से हम ये गेम खेल रहे हैं एंड सिंस द पास्ट थ्री डेज, टोटल थ्री डेज के अंदर ये आपका स्कोर सबसे हाईएस्ट है. सो वेरी नाइस. ये बताएं, जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स.
0: हाँ भाई, ये एक बहुत एसेंशियल बात है, सबको पता होनी चाहिए कि नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स. अगर आपको कोई कैंडीज देता है, कोई कहता है कि भाई आपके अम्मा अब्बा बुला रहे हैं, मेरे साथ चलो, आई टेक यू टू योर पेरेंट्स एंड दिस एंड दैट, डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी. और हमेशा याद रखें अपने अम्मा अब्बा का सेल फोन नंबर याद रखें. ठीक है, चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: तो भाई, एक बहुत ही अच्छी बात बोली आज अब्दुल सलाम ने कि नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स. किसी से कोई चीज़ लेकर खानी नहीं होती, किसी के साथ ऐसे ही चलनी पड़ना होता. नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड अनलेस और अनटिल यू नो द पर्सन वेरी वेल. इट्स द फैमिली मेंबर. आप कहीं बाहर जाते हैं, इस बात का ख्याल रखें. अगर आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कहीं आप ऊपर नीचे इधर उधर होता है, पार्क्स वगैरह जाते हैं, गुम भी हो जाते हैं, अगर डोंट पैनिक. क्योंकि जब आप पैनिक करते हैं ना, तो आपकी सोचने की पावर ख़त्म हो जाती है. आइदर इट बिकम्स वीकन और आपको ऐसा लगता है कि फिर सामने वाला जो भी मेरे सामने आएगा, दे आर आर फ्रेंड. अगर आप कहीं गुम भी हो जाते हैं, यू नीड टू गो टू अ सिक्योरिटी पर्सन, एन ऑफिशियल, और वहां जाकर आप उन्हें याद रखें कि अपने पेरेंट्स का, किसी घर वाले का मोबाइल नंबर, एक किसी का भी एक का मोबाइल नंबर एटलीस्ट याद करें. और जब आप किसी सिक्योरिटी, अगर आप गुम हो जाते हैं, किसी सिक्योरिटी वाले से बोलें, वो आपकी हेल्प करेंगे मामा बाबा को फ़ोन करने में. जो आप नंबर उन्हें देंगे, उस पर कॉल की जाएगी और आपकी फैमिली को कांटेक्ट कर लिया जाएगा. तो ये बात याद रखें कि पैनिक नहीं करना पहले तो किसी सिचुएशन में, दूसरी बात ये कि किसी स्ट्रेंजर के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना. ठीक है, और भाई हम एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम. अमायरा, कहाँ गुम थी आप? कहाँ गुम थी? कल कॉल किया था. है कल मेरी आपसे बात हुई थी?
1: नहीं.
0: ओहो, कल बिजी चल रहा था इसलिए बात नहीं हो पाई.
1: नहीं.
0: ओह, आई एम सो सॉरी बट आई वाज मिसिंग यू. चले भाई, आज हमारी बात हो गई ना, इट्स ओके. कभी कभी बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है ना, तो आप माइंड नहीं करना, नेक्स्ट डे फिर से कॉल करना, ठीक है? यू आर अ वेरी काइंड गर्ल ना. हाँ, खुद कह रही है हाँ, आई एम अ वेरी काइंड गर्ल. आई कॉल अमायरा एज अ वेरी काइंड गर्ल बिकॉज आई हैव मेट अमायरा एंड शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी लवली. अच्छा भाई अमायरा, ये बात बताएं, गुस्सा आता है आपको?
1: कभी कभी.
0: नहीं अमायरा, मुझे तो नहीं लगता.
1: कभी कभी.
0: अच्छा मुझे मुझे हंसी इस बात पर आती है कि अमायरा की इतनी प्यारी सी आवाज़ है, अमायरा गुस्सा भी करती होंगी अगर तो कैसे डांटती होंगी. अमायरा एक दफा डांट के दिखाएं. मुझे तो इनकी डांटने में भी हंसी आ जाएगी, इतनी डॉल जैसी इनकी आवाज है, डांटेंगी तो उल्टा हंसी आ जाती होगी. चले भाई, नहीं बताएंगी. आई होप कि आपको गुस्सा कभी ना आए, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जिसके ऊपर आपको गुस्सा आए और आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें. अच्छा अमायरा ये बताएं कि आज का दिन कैसा गुजर रहा है भाई? बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा टुडेज क्वेश्चन इज अमायरा, यू हैव टू गिव मी वन थिंग, ठीक है? कोई एक चीज़ आपने मुझे ऐसी बतानी है जो कल से लेकर अभी तक आपने की हो. आई नो ऑलरेडी यू आर अ वेरी हेल्पफुल गर्ल माशाल्लाह से, बट गिव मी अ पर्टिकुलर थिंग जो आपने कल से लेकर अभी तक की हो एंड विच मेक्स यू प्राउड दैट यू हेल्प समवन एल्स. वन थिंग, it can be anything amira, it doesn't need to be moving mountains, it can be anything. something
1: ha aaj maine ek cheez kiya
0: tha. Kya cheez?
1: Hum log wo waiter ke appointment ke baad hum log wo aaye dosa house. Mm-hmm. Maine mamma ko pucha aur kuch kiya, mamma ne kaha nahi.
0: To phir
1: तो नहीं था फिर वही.
0: अच्छा आपने मम्मा से पूछा, दैट वाज द हेल्प कि आपने मम्मा से पूछा.
1: हाँ.
0: अच्छा भाई ये भी
1: कुछ मंगवाना है.
0: ओह दैट्स आल्सो वेरी थॉटफुल कि दैट यू आस्क्ड योर मम्मा दैट इफ शी नीडेड एनीथिंग.
1: और मैंने मुझे वो पापड़ था तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आया था तो मैंने हाफ हो गया था, तो मैंने हाफ मम्मा को अपने खुद के हाथ से खिलाया.
0: ओह दैट्स सो स्वीट. मम्मा को अपने हाथों से खिलाया खाना. That's so sweet of you. That's very thoughtful of you.
1: और जब हम मम्मा नानी के घर में रहते थे तो उस टाइम मैंने अपने भाई के लिए, वो छोटे से भाई के लिए, क्या लेकर गई थी?
0: क्या लेकर गई थी?
1: हाँ वो कुकिंग से जैसा जो मटेरियल है वो फोर्क स्पून.
0: अच्छा वो
1: उसका ऐसा एक्टिंग टाइप उसको खिलाया.
0: लेकिन अमायरा दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, यू आर माइंडफुल अबाउट योर यंगर ब्रदर, आपने उनका ख्याल रखा ना. This is also very good. This also comes in help. So very, very good, और very good.
1: और वो कॉल में मुझे अम्मू-अप्पी बुलाते.
0: क्या क्या बुलाते हैं?
1: अम्मू-अप्पी.
0: अम्मू-अप्पी. ओए ना पार्शी अम्मू-अप्पी. चले भाई.
1: और कल कल ने मम्मा को मेरी चाची का कॉल आया था. तो उनके भी डॉटर है, वो मेरे कजन है हैयू. उसका निकनेम हैयू है और उसका रियल नेम हया था.
0: सही.
1: उसको वो कह रहे थे कि अब मैं साइकिल चला रही हूँ.
0: ओह सो यू आर एडमायरिंग हर कि भाई साइकिल चला रही है.
1: हाँ फिर मैंने कहा अपने को भी क्यों नहीं बैठाया.
0: अच्छा इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, कम्युनिकेशन करती हैं इनकी, ये हेल्प है कि ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करती हैं. अच्छा द थिंग इज अमायरा, मेरे पास ना अभी टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है? सो अब हम ये काम करेंगे कि हम जल्दी से गेम खेल लेंगे, ठीक है? गेम खेलेंगे तो नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल रहे हैं हम इस वीक में, और आई विल गिव यू अल्फ़ाबेट एंड यू हैव टू गिव मी नेम प्लेस एनिमल थिंग उस अल्फ़ाबेट से, ठीक है?
1: Okay.
0: So your name starts with A. So I will just make it like A से मुझे आप जो है ना वो name place animal thing बताएं, ठीक है? Your time starts now.
1: मेरा
2: निकले मामू
0: अम्मू ओके

0: एनिमल एनाकोंडा. ओके अच्छा प्लेस प्लेस प्लेस प्लेस कैंगरूज कहाँ होते हैं?
1: अमेरिका.
0: अच्छा चलो अमेरिका में नहीं होते लेकिन ओके. एंड थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग करें करें याद करें. डोंट गिव अप. कोई भी चीज ए से कोई भी चीज आती है. डोंट गिव अप. टाइम ओवर हो गया. एप्पल. ओके गुड. चलें भाई हमारा टाइम वैसे ओवर हो गया लेकिन द पॉइंट इज नॉट गिविंग अप. वेरी गुड. आपने 45 सेकंड में हमें 3 चीज़ें बताई. सो इट्स गुड इट्स ओके. और आपने हमें 52 सेकंड्स में 4 चीज़ें बता दी. तो इट्स ओके वी डू नॉट गिव अप. आई वुड कंसिडर इट कि कल हम लोग फिर से खेलेंगे एंड वी विल परफॉर्म इवन मोर बेटर. ओके चलें जी जाने से पहले कुछ जल्दी से अच्छा सा मैसेज दे दें.
1: आई लव माय पेरेंट्स.
0: ओह यू लव योर पेरेंट्स. वी ऑल लव योर पेरेंट्स एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देम. चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. तो भाई बच्चा पार्टी आज जाने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी जाने का तो टाइम हो गया है ओवर हो गया है टाइम. तो बच्चा पार्टी जाने से पहले आपको ये बोलूँगी देखें कॉइन की दो साइड्स होती हैं ना जैसे वैसे ही हमारी हैप्पीनेस की भी दो साइड्स होती हैं. एक स्ट्रिंग अटैच होती है हमारी तरफ और दूसरी स्ट्रिंग अटैच होती है उसकी दूसरों की तरफ. मतलब ये कि अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट गिव्स अस इनर पीस एंड हैप्पीनेस. तो भाई बी प्राउड ऑफ़ योरसेल्फ. आप लोग बच्चे हैं छोटी छोटी हेल्प चाहे वो अपने कपड़े समेटना हो चाहे वो अपनी जहाँ आपने खाना पीना खाया है वो समेट लेना हो चाहे सेल्फ स्टडिंग हो चाहे अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना हो. एवरी काइंड थिंग यू डू इज़ अ हेल्प. चाहे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरीके से बात करना हो चाहे वो क्लास में पेंसिल कॉपी नोट्स रबर शेयर करना हो अपनी टीचर से अच्छे तरीके से बात करना हो क्लास को मॉनिटर करना हो ये सब कुछ हेल्प में आता है. तो कीप ऑन डूइंग ऑल द गुड बिहेवियर्स. योर गुड बिहेवियर्स आर हेल्पफुल टू अदर्स. इट्स हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी इट्स हेल्पफुल फॉर यू इट्स हेल्पफुल फॉर द फैमिली. तो ये नोट याद रखें कि बड़ों की इज्जत करें छोटों का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखें क्योंकि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख पाता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा है कि नहीं. चलें जी मुझे दीजिए इजाज़त. साइनिंग आउट. इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज. सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल हो रहे हैं 3:02 और आप सुन रहे हैं शो पिच परफेक्ट।
2: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अजी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिच परफेक्ट शो में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद अमीन और मेरे साथ आज फजील, और ऑलरेडी पिच परफेक्ट शो का जो ये एपिसोड है, ये शो है, ये जो भी है क्रिकेट के हवाले से, और काफ़ी आप लोगों के जितने भी मैं समझता हूँ फजील जो क्वेश्चंस, जो आंसर्स और जो आप लोग जुड़ जाते हैं, इससे साफ साफ ये साबित होता है कि क्रिकेट प्रोग्राम बेहद ज़रूरी है।
4: बिल्कुल, और क्या लिए।
3: और देखिए ना, अब काफ़ी कुछ हो रहा है और पिच परफेक्ट में हम लोग बताते आ रहे हैं, और इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में काफ़ी कुछ हमें सुनने और देखने को मिला है। स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात करूं तो 437 रन का एक पहाड़ जैसा वो हदफ जो है पाकिस्तान को पार करना है, और लास्ट जो मैंने स्कोर देखा था लंच तक, लंच के बाद तक, तो वो पाकिस्तान की हालत थोड़ी नाजुक,
4: थोड़ी ज्यादा ही नाजुक था। 4 विकेट तक तो मैंने देखा था,
3: तो 5 विकेट तक, 5 विकेट तक, और वो ताइजुल इस्लाम का बॉलिंग में देख रहा था, बंदा कमाल का बॉल करता है, उसका एक्शन भी कुछ ज्यादा ही जलेबी जैसा एक्शन है, और इनफैक्ट बाबर आजम को भी आउट किया। और अभी जो आखिरी दिन का जो स्कोर रहा है, आज चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद 316 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। अब देखना यह है कि कल जब आखिरी दिन ये दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो क्या पाकिस्तान विल बी एबल टू चेज द स्कोर। 437 रन अभी जितना बच गया है वो मैं बता दूं कि 96 रन है, 121 रन है और 96 ओवर्स में आखिरी दिन में आपको करना है, हाथ में सिर्फ है 3 विकेट्स। तो इसके साथ साथ ये पाकिस्तान वाला मैच भी काफी बड़ा इंटरेस्टिंग, और आखिरी दिन पिछले मैच में भी हमने आखिरी दिन रिजल्ट होते हुए देखा था, और ये भी मैच जो है आखिरी दिन तक मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि फर्स्ट सेशन तक ये मैच खत्म हो पाएगा। और इसके साथ साथ आईपीएल की बात करूं तो आईपीएल में भी हमने काफ़ी कुछ रोमांच जो मैचेस हैं वो हमें देखने को मिला है, एंड हैदराबाद की टीम एंड उसके साथ बैंगलोर टीम, ये दोनों टीमें जो है प्लेऑफ के लिए जगह बना लिया, एंड गुजरात भी जगह बना लिया, और चौथे टीम में अभी जो है अभी क्लियर नहीं है पिक्चर, हमें एक दो दिन के अंदर में क्लियर हो जानी चाहिए। आईपीएल की ये न्यूज, और साथ साथ आज का जो क्वेश्चन है, सवाल है, सवाल बड़ा ईजी है, इसमें आप लोगों को बस कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बता दो कि चेन्नई से खबर आई है कि यू नो इंडिया के आईपीएल से कि महेंद्र सिंह धोनी का ऑलमोस्ट टाटा बाय बाय, यानी फाइनली ही हैज प्लेड हिज लास्ट गेम। तो आप लोगों को ये कहना है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को ना खिला के इस सीजन में आईपीएल में चेन्नई सुपरस्टार्स ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या कुछ गलती कर दिया है या नज़रअंदाज किया है? आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को 2027 आईपीएल के लिए भी खेलना चाहिए, ये है सवाल। आप अपना सवाल के जवाब जो है वो भेज सकते हैं, योर ओपिनियन मैटर्स द मोस्ट, 666-2107 पर आप भेजिए कि महेंद्र सिंह धोनी को अगले साल के लिए भी क्या चेन्नई टीम, उनको टीम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए।
4: ब्रांड वैल्यू के लिए तो बिल्कुल क्यों नहीं, अरे जब उनकी वजह से यानी कि धोनी की वजह से अगर लाखों लोग आ रहे हैं और यू नो मैच को देख रहे हैं या फिर व्यूज आ रहे हैं या फिर चेन्नई के ओनर को इतने सारे ऐड मिल रहे हैं, उस ऐड से कमाई हो रही, तो क्यों नहीं, ये तो बड़ा ज़रूरी हो जाता फिर। फिलहाल इस पर भी हम बात करेंगे, और इंडिया का जो स्क्वाड है ODI के लिए अगेंस्ट अफगानिस्तान वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसे प्लेयर आए हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों, ऐसे प्लेयर अब इस ODI टीम में आ चुके हैं। पंजाब के प्लेयर्स आ गए हैं, उसके अलावा यू नो वो प्लेयर आ गए जिसको अभी हमने सिर्फ 3 से 4 दिन पहले देखा बेहतरीन परफॉर्म करते हुए, ऐसे प्लेयर्स आ गए, स्पिनर आ गए हैं, तो हम इस पर भी बात करेंगे। और अफगानिस्तान का जो ODI मैच है ये 2 हफ्ते बाद है वर्सेस इंडिया, और ये आईपीएल के खत्म होने के 2 हफ्ते बाद है, यानी कि 14 दिन के बाद। कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, और कौन कौन से प्लेयर क्यों हैं, इस पर भी हम अमीन भाई से सोचेंगे समझेंगे और पूछेंगे कि क्यों हैं। वेल अब हम जरा बात कर लेते हैं कि ये ईशान किशन की कल की इनिंग के बारे में, और चेन्नई को हराना बहुत लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी जो कह सकते हैं क्वालिफाई कर गई है वो बैंगलोर की टीम है। बैंगलोर की टीम का जो चेन्नई से मैच था उसमें रजत पाटीदार नहीं थे, वो कैप्टेंसी नहीं कर रहे थे, लेकिन जुरेल कैप्टेंसी कर रहे थे। ये क्या सीन है, क्योंकि
3: अच्छी पारी भी खेली,
4: लेकिन इसमें एक बड़ी सीन है। लोगों का ये कहना है, क्रिटिक्स का ये कहना है, या फिर जो खेल के बेहतरीन जानकार है वो ये कहते हैं कि इसका रीजन ये है कि चेन्नई से थोड़ी जेलेसी ज्यादा है, और इस जेलेसी के चक्कर में ये जानबूझ के किया गया है। अच्छा। कि जो जुरेल हैं उनको कैप्टेंसी करानी चाहिए, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैच बैंगलोर की तरफ से हो रहा है ये नहीं दिखाना है।
3: अच्छा,
4: हाँ,
3: अच्छा।
4: तो चेन्नई को ऐसा ले लिया, रहे अब तो हल्के आदमी हो तुम।
3: अच्छा।
4: और फिर वो मैच बड़ा जबरदस्त हुआ भी था, तो क्या कहना है आपका, क्या है इस पर नजर आपका?
3: मेरे ख्याल से कि जुरेल की बात हो रही है।
4: हाँ,
3: अब जुरेल जो है इंडियन टीम में भी ही इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अब जुरेल को एज अ विकेट कीपर को प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट फेज ऑफ क्रिकेट की जो बारे में हम बात कर रहे थे अभी, तो हो सकता है कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि जुरेल को थोड़ा सा वैल्यू दिया जाए, थोड़ा सा भाव दिया जाए, बिकॉज है तो अच्छा
4: कीपर है,
3: कीपर भी अच्छा है और बैटिंग भी जबरदस्त उसने बैटिंग भी की है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट को जो हम देखेंगे, जिसमें ये जितने भी नौजवान खिलाड़ी हैं, सूर्यवंशी को ले लें और और जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो उसमें शायद जुरेल को प्रमोट करने के चक्कर में ये सब किया गया है।
4: बट व्हाट अबाउट केएल राहुल, ईशान किशन?
3: मुझे लगता है केएल राहुल का दिन जो है, मुझे लग रहा है आप
4: T20 के लिए,
3: हाँ अभी मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे।
4: और व्हाट अबाउट द 50 ओवर गेम?
3: 50 ओवर में हो सकता है,
4: हाँ। और क्योंकि विकेट कीपर 3 है, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, केएल राहुल है, तो क्या लगता है लंबे वक्त तक?
3: अब ये जैसे कि मैंने T20 से

0: लेकिन ओडीआई में भी हो सकता है कि दीपक ये इसको जुरेल को प्रमोट किया जाए फॉर द 50 ओवर गेम के लिए, और ये न्यू फेस चाह रहे हैं जहां तक मुझे दिख रहा है कि बीसीसीआई और बीसीसीआई के जो हेड ऑफ सेलेक्टर्स हैं, जो चीफ सेलेक्टर्स हैं, अजीत अगरकर कह लें या कोच, हेड कोच जो है गौतम गंभीर है, एक तरह से ऑल फेज आउट करना चाह रहे हैं कि जो पुराने प्लेयर्स हो चुके हैं. अब भुवनेश्वर कुमार इतने अच्छे बॉलिंग के इस पूरे T20 में, आई डोंट थिंक कि भुवनेश्वर कुमार को दोबारा ये लोग वापस बुलाएंगे. अगर बुला लिया तो
1: एज का भी फैक्टर है ना अब तो, और फिर कितना गेम बचा ये भी देखते हैं.
0: ये भी
1: सेम शमी के साथ भी मुझे लगता है एज फैक्टर की कितना ही गेम बचा है.
0: बिल्कुल.
1: बट अब फास्ट बॉलर के लिए कितना गेम बचा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो भी जाता है एक्चुअली में. एक सवाल कि अभी से या दो या तीन साल तक, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कौन है ऐसा बॉलर. वेल, बड़े ही इंटरेस्टिंग जो इस बार की ओडीआई का स्क्वाड है अगेंस्ट अफगानिस्तान. खैर, इसके दो रीजन हो सकते हैं, जब हम इस पर बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इसमें शामिल ही नहीं है ओडीआई के स्क्वाड में.
0: अच्छा.
1: है ना, तो वो बहुत ही अच्छे प्लेयर है लेकिन शामिल नहीं है. बट कुछ ऐसे प्लेयर है जो एकदम नए हैं और वो आ गए हैं, खेल रहे हैं. ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक रीजन तो ये हो सकता है कि चलो भाई अफगानिस्तान के साथ है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी सीरीज नहीं है तो को हल्के में लिया जा रहा है और इस वजह से, या फिर सच में दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, हमें नई जनरेशन के क्रिकेटर्स को तैयार करना है, इस वजह से इस ओडीआई में खिला रहे हैं. वेल, दोनों रीजन हो सकते हैं. वेल, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हमें इस, पहले तो शायद ओडीआई स्क्वाड में बात करें या फिर
0: टेस्ट टीम, क्योंकि
1: टेस्ट के बारे में बात जो भी चल रहा है पहले उस पर तो.
0: हां, 6 तारीख को जो टेस्ट होने जा रहा है, पहले तो टेस्ट वन ऑफ टेस्ट है और उसके बाद ओडीआई शुरू है, 3 मैचों की सीरीज है. तो ओडीआई में और T20 टेस्ट टीम में भी काफी चीजें हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कि नए नए, जैसे कि फजील बताया कि मैंने तो ये नाम पहले मतलब सुन रहा हूँ, टू वेरी ऑनेस्ट, गुरनूर ब्रार.
1: हाँ, नहीं, अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा बोला था
0: तो, मतलब ये हर्ष दुबे, मानव सुथार, ये जो है ये सब नए खिलाड़ी हैं. और अभी अभी आली अगेन किसी नो क्रिकेट जो इंडियन
1: सवाल क्रिकेट, नहीं है क्रिकेटर्स पे, लेकिन ये कि ये क्यों आपके पास और अच्छे हैं.
0: और अच्छे हैं अभी. अब जो ऑर्डिनरी जो क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट फॉलो करता हो इंडियन क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट, उनको भी पता नहीं होगा कि ये मानव सुथार कौन है. मुझे पढ़ना पड़ेगा मानव सुथार. पहले होता था कि रणजी ट्रॉफी में आपने बाल्टी भर भर के रन स्कोर किए या विकेट्स लिए, उसके बाद आप नो यू गेट इनटू द टीम. अभी तो पता नहीं कहां से उड़ के आ रहे हैं ये चीजें, आप समझ में नहीं.
1: तो रीजन होगा, खैर इस पर भी हम तफसील से करेंगे बात. बट फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बस सवाल रिपीट कर देते हैं.
0: सवाल ये है कि MS धोनी क्या अगले सीजन के लिए उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों के सामने एक राय है, कोई क्वेश्चन नहीं है. आप अपना ओपिनियन जो है 666-2107 पर लिख सकते हैं कि MS धोनी को इस सीजन में सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया था एंड मैनेजमेंट ने कुछ पता नहीं क्या है मैनेजमेंट के दिमाग में. तो अब ये आज कल कुछ जो वायरल्स हुए, कुछ वीडियोस, कुछ शोज जिसमें MS धोनी मतलब टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ऑलमोस्ट खेल चुके हैं और अपना IPL से टाटा बाय बाय हो गया. तो आप लोगों को ये बताना है कि MS धोनी शुड प्ले और शुड नॉट प्ले इन IPL एनीमोर.
1: बिल्कुल. सुंदर FM 107, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक टू पिच परफेक्ट शो। मैं हूं आपके होस्ट मोहम्मद अमीन, मेरे साथ आरजे फजील। और ब्रेक से जाने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा था, सवाल नहीं है बेसिकली, एक ओपिनियन आप लोगों से मांगा था। ये ओपिनियन है कि एमएस धोनी फाइनली क्या आईपीएल से टाटा बाय बाय कर चुके हैं? अगर टाटा बाय बाय उनको करवा दिया गया है तो आप लोगों के राय से क्या है कि आप लोगों को ये कहना है कि नो नेक्स्ट 2027 आईपीएल जब शुरू होगा क्या धोनी को खेलना चाहिए फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स? आपको सिर्फ ये बताना है विथ योर ओपिनियन, नाम के साथ बता दीजिएगा तो आप लोगों के ओपिनियन भी हम थोड़ा सा पढ़ के सुना देंगे, लोगों को बता देंगे हाँ धोनी साहब को खेलना है माई वे। और क्योंकि धोनी आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना ध्रुव जुरेल नहीं है।
2: हाँ क्या बात है, अरे बड़ी भारी लाइन बोल दी भाई साहब।
1: तो ये आज तो बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है, ये जो स्क्वाड का ऐलान कर दिया है फॉर द वन ऑफ टेस्ट अगेन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ आई मीन ये वो जो वन ऑफ टेस्ट होने जा रहा है उसके बाद फौरन बाद तीन मैचों की ओडीआई सीरीज भी है जून 14 से लेके जून 20 तक। पहला तो ये वन ऑफ टेस्ट होगा 6 जून से, और इसमें एक जो फजील जो इम्पोर्टेंट जो मतलब मुझे ये सब कुछ प्लॉट लगता है, प्लॉट अच्छा। जो हम पहले ही बात करते आए हैं पिछले एक महीने इस हमारे शो में कि यहाँ पे मुझे लगता है कि आई वुड से वेरी स्ट्रॉन्गली एक वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा, षड्यंत्र। क्योंकि शुभमन गिल को एक साल पहले ओडीआई टीम में ये टोटल फेलियर है, इनको टेस्ट टीम या टेस्ट बल्लेबाज कह के हम चला रहे थे तो टेस्ट में सही है, इंग्लैंड में बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, टेस्ट में तो बड़ा ही कमाल का कप्तानी भी किया है, ओडीआई में इनको दोबारा कप्तान जो है दोबारा बना दिया गया है।
2: हाँ बिल्कुल,
1: दिस इज व्हाट इज रियली सरप्राइजिंग। और केएल राहुल को वाइस कैप्टन, चलो केएल राहुल की मतलब मैं इज्जत करता हूँ, केएल राहुल इज अ वेरी ग्रेट बैट्समैन, बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी करता है। पिछले शो में हमने बताया था कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ये दोनों खिलाड़ियों को बॉलर को अजीत अगरकर जो है बाहर ही रखेगा, और बाहर रखने का मतलब ये हो गया अभी ये जो नया जो जिस बॉलर के हम बात कर रहे थे जो ब्रार साहब हैं, अब ब्रार साहब को देखने के लिए अजीत तोड़ा जी इंटरनेट में छानबीन करने पड़ेंगे भैया, थोड़ा सा दूरबीन लगाने की कोशिश करेंगे मैं कि ये ब्रार साहब है कौन। अब शुभमन गिल देखिए मैं आपको
2: इंटरेस्टिंग अगर देखा जाए दोस्तों मैं बता दूं बस आपको यहीं से पता चल जाएगा, आईपीएल में सिर्फ एक मैच खेला है और गुरनूर ब्रार का रेगुलर बेसिस पे यू नो आपने डोमेस्टिक भी अगर देखे तो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, 9 मैचेस लिस्ट ए के खेले हैं, T20 भी बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं, मतलब होता है ना कि कोई एक ऐसा प्लेयर तो हो जिसने 30 मैच एटलीस्ट खेला हो डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी, लेकिन इस तरह के प्लेयर नहीं है। अब देखिए आकिब नबी है, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, मोहम्मद शमी है, वो सारे अच्छे प्लेयर्स, ये यू नो भुवनेश्वर कुमार है, ये सारे प्लेयर है ही नहीं, लेकिन प्रिंस जो है वो आए, ये इंटरेस्टिंग बात है और ये अच्छी भी बात है कि प्रिंस यादव ने पंजाब के साथ खेलते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही आला परफॉर्म किया, तो उनकी एंट्री अच्छी लगती है। लेकिन गुरनूर ब्रार आप, हर्ष दुबे आप, और प्रसिद्ध ने तो प्रसिद्ध भी है इसमें तो उन्होंने तो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था क्योंकि उनके खिलाफ तो बहुत लोगों ने जो फैंस हैं उन्होंने भी उल्टी सीधी बात कही थी कि अरे यार ये तो उस लेवल पे अभी नहीं आए हैं फिर क्यों खिला रहे।
1: मैं कोई कुछ डॉट्स दूंगा, ये डॉट्स आप लोग जोड़ सकते हैं, मैं थोड़ा वो थोड़ा सा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, हम थोड़ा सा उस तरफ के होते हैं कि थोड़ा छानबीन करने वाले आ जाते हैं कि ब्रार साहब जो हैं पंजाब से हैं, ठीक है पंजाब से हैं जी, और पंजाब से, और भी ये टेस्ट मैच जो होने जा रहा है मुल्लनपुर में तो बेसिकली चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स ही हैं, और दूसरी बात ये कप्तान कौन है, भारतीय टीम का कप्तान है शुभमन गिल, वो भी पंजाब का पुत्र है जी, तो खेलते कहाँ है जी ये ब्रार साहब जो है वो गुजरात के लिए खेलते हैं,
2: गुजरात के लिए खेलते और प्रैक्टिस कराते हैं गिल को,
1: और जी ये सब जी ये सब

0: थॉट्स हैं, इसको आप जोड़ के आपको समझ में, गुजरात सडनली इम्पोर्टेंट एक फ्रेंचाइजी टीम कैसे, हाँ ठीक है आप प्ले ऑफ में जगह बना लिया आपने, तो ब्रार साहब को खिलाने का मतलब है कि आप अगर प्रोमोट करना चाह रहे हैं आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे मतलब क्यू से बाहर अगर किसी खिलाड़ी को अपने बैठा दिया और इसको आपने सिर्फ ये कह दिया कि शुभमन गिल कहता है कि ये डेरिल स्टेन जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर थे, स्टेन जैसा बोलिंग एक्शन है, तेज तरार मतलब बहुत ही धमाकेदार बॉलिंग करता है, दैट डजेंट रियली क्वालिफाई आपके कहने से ही टीम में इसके लिए आसानी से जगह। अब ये बात हो गई कि अब परफॉर्मेंस कम और
1: चापलूसी मैं सोच रहा हूँ मैं भी खेल लेता थोड़ा सा, अगर कोई मिल जाए ऐसा कोई कप्तान जो मेरा साथ दे दे।
0: हाँ बिल्कुल,
1: यू नेवर नो यार, अगर 9 मैच खेल के कोई इंडियन टीम में आ रहा है इट्स अ बिग डील।
0: और गुजरात जो जो फ्रेंचाइजी टीम है, यहाँ पे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इन ऑलवेज ऑलवेज एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है ये आप लोग समझ लीजिए, तो आप गुजरात से खेलने का मतलब हो गया कि अब इंडियन टीम में भी आपको जगह मिल सकती है। एंड सेकेंडली आप पंजाब अगर एक मतलब देखिए रीजनलिज्म एक बायस चीज़ है जो इंडियन क्रिकेट या पहले बहुत पहले पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट में पहले कराची वर्सेस लाहौर, मुंबई वर्सेस दिल्ली, पहले नॉर्थ वर्सेस वेस्ट की लड़ाई होती थी इंडियन टीम में 1970 1980 में। अब देखेंगे गावस्कर की कप्तानी में नॉर्थ वाले बड़े नाराज हो जाते थे, नॉर्थ वाले को बाहर कर दिया जाता था, सिवाय कपिल देव बेदी साहब थे, जब बेदी साहब कप्तान थे तो भाई महाराष्ट्र जो बॉम्बे के प्लेयर हैं उनको बाहर कर दिया, तो ये रीजनलिज्म बायस जो है खत्म हो गया था सौरव गांगुली के आने के बाद एंड जॉन राइट के आने के बाद, ऑन परफॉर्मेंस के यार्डस्टिक पर टीम में रखा जाता था। लेकिन अब मुझे जहां तक लग रहा है, मैं फजील ये जो मैं अभी चार्ट देख रहा हूं, ये जो स्क्वाड का ऐलान किया है, मैं तो अभी समझ रहा हूं कि ये तो सरासर वो है कि कुछ अच्छे बॉलर्स जो हैं उनको आपने जगह नहीं दी।
1: दैट इज व्हाट। लेकिन अगर हम अच्छा अभी हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ओडीआई पे आ जाएं,
0: हां टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं,
1: टेस्ट के बारे में ओडीआई पे आ
0: जाएं, ओडीआई पे आ जाएं,
1: ओडीआई पे तो चले देखिए गिल समझ में आता है कैप्टन है, मुझे लग रहा था श्रेयस को कैप्टन बनाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, श्रेयस वाइस कैप्टन है, रोहित और कोहली हैं। अब ये एक बड़ी बात है कि रोहित और कोहली अगर हैं तो ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर फिटनेस की भी बात है, कोहली की तो फिटनेस ठीक है, रोहित की आई डोंट नो कि आने वाले वक्त में क्या होगा। केएल राहुल विकेट कीपर है,
0: केएल राहुल विकेट
1: चलेगा, विकेट कीपर
0: हाँ,
1: ईशान किशन विकेट कीपर है चलेगा, हार्दिक अच्छे परफॉर्म में अच्छे परफॉर्मेंस में तो नहीं है लेकिन ईशान किशन परफॉर्मेंस में है चलेगा, हार्दिक एट अ टाइम वाला हिसाब है कि कभी जिस दिन वो चल गए और बॉलिंग में भी वो चल जाते हैं और टूर्नामेंट में चलना जरूरी, देखिए एक और बहुत बड़ी चीज है कि टूर्नामेंट में आप परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, आप जनरल मैच में तो कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, आईपीएल एक तरह से स्ट्रीट क्रिकेट है इंडिया का, है ना, आप हर जगह चल जाते हैं, लेकिन अगर आप टूर्नामेंट में चल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हार्दिक है, रोहित है, कोहली है, ये श्रेयस है, ये ऐसे प्लेयर है जो टूर्नामेंट अच्छे टूर्नामेंट में चलते हैं जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं, बट अभी फिलहाल ये बीसीसीआई और अफगानिस्तान की जो यू नो साइड है वो खेल रही है। नीतीश रेड्डी आई डोंट नो कि इतना अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं, सुंदर वॉशिंगटन सुंदर का एक दो मैच मुझे याद है, कुलदीप अच्छे बॉलर हैं, हर्षदीप अच्छे बॉलर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा कहीं ना कहीं मुझे तो यह लगता है कि इतना ज्यादा इससे कहीं ज्यादा अचीव करने वाले हैं, मोहम्मद सिराज हैं, दुबे हैं, शिवम दुबे अच्छी बैटिंग करते हैं, वो भी आ सकते थे, उन्होंने कई बार मैच T20 में पलटा है, और फिर प्रिंस यादव बहुत अच्छे बॉलर है, गुरनूर ब्रार कहां से आए पता नहीं, हर्ष दुबे का भी पता नहीं, हर्ष दुबे का क्या कहना है आपका,
0: वो मुझे थोड़ा सा वो माइक्रोस्कोप के सहारे देखना पड़ेगा।
1: और प्रिंस यादव पे क्या कहेंगे,
0: मैं कह रहा हूँ कि ये जो नए नए नाम है मेरे सामने, तो ये नए नए नाम है,
1: प्रिंस यादव को जो बॉलिंग करते हुए देखा है इस बार पंजाब से खेल रहा है और बहुत अच्छे, नहीं पंजाब से नहीं आगे दिल्ली से खेल रहे हैं वो, और शमी के बाद ये बॉलिंग करने आते हैं और बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, इन्होंने विराट कोहली का भी विकेट लिया है हाल ही में, 0 पे आउट किया था, लेकिन खैर विराट कोहली का विकेट लेना इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि भाई आप इंडियन टीम में आ जाएं, ऑब्वियसली आपको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म किया है प्रिंस यादव ने, अच्छा आईपीएल गुजर रहा है उनका, मोस्ट विकेट में भी उनका नाम आया था एक वक्त पे, लेकिन अभी फिलहाल भुवनेश्वर जो है वो आगे हो गए।
0: हाँ तो तब चल मतलब वो हिसाब से देखा जाए कि इनको थोड़ा सा चांस दिया गया तो वो मतलब सही है,
1: बिल्कुल हाँ इनको इनके लिए सही है, लेकिन गुरनूर ब्रार मैं उस पर तो बड़ा वो है मेरे को कि नहीं ये कैसे हो सकते हैं। उसके अलावा वनडे में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन सब के बारे में हमने बात कर ली, ईशान किशन पर नजर होगी कि क्या ये ऐसे प्लेयर हैं, लंबा खेलने वाला प्लेयर चाहिए, है ना, अब क्योंकि ये गेम ये फॉर्मेट विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर का है जो लंबा खेल पाए, बट अभी जो मैं देख पा रहा हूं बैटिंग जो है उसमें नीतीश कुमार रेड्डी बहुत लंबा टिककर खेल सकते हैं या नहीं, आई डोंट नो, मतलब मैंने तो उस तरह की बैटिंग नहीं देखी है क्योंकि मैं विराट कोहली जैसे प्लेयर का दीवाना हूं, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर का दीवाना हूं जो 50 ओवर खड़े ओवर खेल सकते हैं, दो दो रन भाग सकते हैं, तो

0: ये चीज है। उसके अलावा टेस्ट में भी बहुत सवाल है, गुरनूर ब्रार है, मानव सुथार है, प्रसिद्ध कृष्णा प्रॉब्लम रही है, लेकिन चले मोहम्मद सिराज है, कुलदीप है, ध्रुव जुवेल बिल्कुल सही, वॉशिंगटन सुंदर, लेफ्टी एक चाहिए हमें,
1: ठीक है।
0: बोलर भी है वॉशिंगटन, है ना, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मुझे लगता है टेस्ट स्क्वाड अच्छा है, बट वनडे में अभी और सुधार की जरूरत है
1: बिल्कुल। और देखिए नए प्लेयर्स को आप मौका दीजिए, कोई बात नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ आपने करा क्या है, आपके मार्कशीट अगर यू नो उस लेवल का नहीं है और आपको दाखिला कैसे मिल जाएगा इन द बेहतरीन कॉलेजेस में, तो ये सवाल ये थे कि मुझे जहाँ तक थोड़ा सा स्लाइट फीलिंग जो है वो है कि रीजनलिज्म बायस जो है अब बीसीसीआई सेलेक्टर्स के अंदर में मैं देख सकता हूँ। और यहाँ पर जो अजीत अगरकर ने 2027 तक का एक्सटेंशन मांग लिया था, क्योंकि उनका ये लास्ट ईयर था एज अ बीसीसीआई हेड ऑफ सेलेक्टर, अब उनको आसानी से दे दिया जा रहा है। गौतम गंभीर अपना ही एक किंगडम चला रहे हैं, तो भाई वो कहते हैं कि माइट इज राइट, तो ये माइट इज राइट वाली बात हो गई अब इंडियन क्रिकेट में बीसीसीआई में। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, कि आपने कुछ अच्छे क्रिकेटर्स को मौका ना देने का ठान लिया है। हाँ, कि देना ही नहीं है,
0: कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपने उनको छोड़ के कहीं और ही पकड़ना शुरू कर दिया,
1: और
0: कितनी गलत बात।
1: बिल्कुल, जैसे कि कश्मीर का ही जो बॉलर है
0: आकिब नबी,
1: आकिब नबी उसके बारे में, सरफराज के बारे में, आप सरफराज इतना बुरा नहीं है कि अफगानिस्तान जैसे एक टीम, वो भी एक आप घरेलू एक टेस्ट मैच में चांस अगर आप नहीं देंगे ऐसे, आप तो क्रिकेटर के जो मेंटल जो आप टॉर्चर करेंगे वो अलग बात है, और उसका क्रिकेट जो खराब करेंगे ये तो दूसरी बात है।
0: बिल्कुल, सरफराज ने वजन भी कम किया है, T20 में गेम भी खेला और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, इंडियन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है नेशनल टीम से, फिर भी अब क्या डिमांड है आई डोंट नो।
1: अब तो ये सोच के वो इतना वेफर थिन हो जाएगा, अब उसको अलग वजन घटाने के लिए कोई चांस नहीं मिलेगा।
0: अब तो वजन घट जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो। तो चले अब हम आ जाते हैं धीरे से बांग्लादेश वर्सेज पाकिस्तान के इंटरेस्टिंग मैच में जो आज हो रहा है। वेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। क्यों इंटरेस्टिंग मैच है? क्योंकि ये सेकंड मैच है, एक मैच पाकिस्तान हार चुकी है, अब ये जिद है यहां पर कि जीतना ही पड़ेगा पाकिस्तान को ये मैच। ओवरऑल जैसा मैच चल रहा है लग तो नहीं रहा है कि पाकिस्तान जीत पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को 121 रन अभी भी चाहिए और डे 4 यानी कि आज का दिन खत्म हो चुका है और 7 विकेट गिर चुके हैं, 316 पे 7 विकेट है।
1: बिल्कुल, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से ये पूछा गया कि असल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान टीम में, तो बाबर आजम ने साफ तौर पे कह दिया कि ये बैट्समैन यानी बल्लेबाजों के दरमियान तालमेल ना होने की वजह से, लॉन्ग पार्टनरशिप ना होने की वजह से पाकिस्तान टीम को इस तरह का एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि देयर इज़ अ मेंटल ब्लॉक, यानी आपके दिमाग में कहीं पर एक चीज जो है फंस चुका है। वो क्या है कि बांग्लादेश बॉलर्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा आप लोग बड़ा ही वो मानने को तैयार है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया में है, आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, एंड उसमें ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि स्पेशली नाहिद राणा के बारे में कि ही इज अ वंडरफुल बॉलर, बहुत जबरदस्त बॉलर है, और उनको खेलना पाकिस्तान बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आई मीन दैट इज व्हाट ही हैज टू से।
0: बिल्कुल, तो अब बांग्लादेश के स्कोर कार्ड पे आ जाते हैं। पहले दिन बैटिंग करी, पहली इनिंग में जॉय जो है बहुत जल्दी आउट हो गए हैं, ज्यादा किसी ने रन नहीं बनाए, 30 तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन लेटन दास ने जो आग उगला है अपने बैट से 126 का स्कोर किया है 79 के स्ट्राइक रेट से, 2 छक्के 16 चौकों की मदद से टीम को पहुंचाया पहले इनिंग में 278 तक, वरना ये 278 नहीं 100 पे ही जो बांग्लादेश की टीम है वो निपट जाती। लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम आई, उनकी भी शुरुआत यू नो 2 विकेट तक बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन बाबर आजम ने 68 रन की पारी खेली, थोड़ा संभाला, उसके बाद 8-21 सलमान अली आगा ने 21 रन बनाए, 8 रन शकील ने बनाए, रिजवान अली इन सब ने तो रन नहीं बनाए, लेकिन फिर खान साहब ने 38 रन की पारी जो है वो खेली। ये साजिद खान की जो पारी थी इसकी वजह से टीम ने कुछ बैलेंस जरूर पाया, लेकिन फिर भी 232 पे यानी कि बांग्लादेश से पहले ही खत्म हो गई। बांग्लादेश ने 278 बनाया पहली इनिंग में, पाकिस्तान ने 232। फिर उसके बाद दूसरी बैटिंग दूसरी इनिंग आई, उसमें फिर जॉय ने पहले बैट्समैन ने 52 रन बनाए, उसके बाद मुशफिकुर रहीम ने 137 रन ठोक डाले, लिटन दास ने 69 और टोटल स्कोर खड़ा किया 390 का, जो इतना बड़ा था कि फिर उसका पीछा करना था क्योंकि टारगेट 437 का हो गया था 390 के बाद। तो पाकिस्तान अब बैटिंग करने आई है लेकिन लगातार विकेट गिरे हैं, सिर्फ शान मसूद हैं जिन्होंने 71 का स्कोर किया, 50 मारा, बाबर आजम 47 पे, और इस बार सलमान अली आगा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन वो आउट हो गए 71 रन पे। अब सारा दारोमदार जो है वो रिजवान पे है और खान साहब पे है, रिजवान अभी नॉट आउट खेल रहे हैं 75 पे, रिजवान की बैटिंग अच्छी चल रही है 8 चौकों के साथ, अब ये यहां से मैच निकाल कर लेकर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि टोटल 7 विकेट जो है वो गिर चुके हैं। अब नाहिद राणा के बारे में बात कर लेते हैं, 2 विकेट उन्होंने लिया है, अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, जबरदस्त उनकी यू नो बॉलिंग है, और एक और प्लेयर हैं जिन्होंने 4 विकेट ले लिए हैं जैसे कि आपने कहा तैयबुल इस्लाम।
1: तैयबुल इस्लाम की एक डिलीवरी जो है जिस तरह से सलमान को आउट किया है, सलमान को टोटली बीट करते हुए, एंड मैंने शुरू से देख रहा हूँ ये तैयबुल इस्लाम को जिसके बॉलिंग एक्शन बड़ा ही मुझे एक साउथ अफ्रीका का एक बॉलर था आज से 30 साल पहले की बात है, पुरानी बात तो नहीं है लेकिन पुरानी बात है, पॉल एडम्स करके एक बॉलर था या इनका साउथ अफ्रीका का एक लेग स्पिनर था, उसके बॉलिंग एक्शन ये होता था कि गर्दन वर्दन वो जमीन के नीचे गाड़ के चलते थे और उनका सिर्फ हाथ जो था आर्म बॉलिंग आम, वो बॉलिंग आम ही दिखता था, तो वैसे ही एक्शन में थोड़ा बहुत तैयबुल इस्लाम के बॉलिंग एक्शन वही है, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं ये, और सलमान अली आगा को जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया, क्लीन बोल्ड किया, काबिले तारीफ है, आई मीन डिलीवरी की जो वेरिएशन है, स्पिन है, और इस विकेट से जितना इन्होंने फायदा उठाया है, मतलब उसमें मैं तो सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि भाई बेस्ट विशेस फॉर दिस यंग बॉलर तैयबुल इस्लाम। और नाहिद राणा के बारे में बाबर आजम ने भी कहा कि जो पेस है, जिस तरह के पेस को पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है धराशायी हो गए हैं, तो उसको लेकर भी हम बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ के जो कोच हैं फिल सिमंस एक टाइम में वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर थे एंड बार बार बांग्लादेश टीम के लिए वो आते हैं, बीच में कोचिंग करवा के 2-3 साल के बाद वो चले जाते हैं, और बांग्लादेश टीम के पीछे कई ऐसे फॉर्मर प्लेयर्स हैं, देखिए वो हर प्लेयर हर टीम जो है, मैं आज के दौर पे कहूँगा कि नेपाल इज ऑल्सो वेरी गुड टीम, लेकिन जो मेंटेलिटी जो चेंज करने वाली बात है, ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आके हमारे लड़कों को सिखा के जाते हैं, इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन, पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन, और कई साल पहले की बात है कि डेव वॉटमोर श्रीलंका को, श्रीलंकन टीम को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा एक रोल अदा किया था, जिसके बलबूते पर 1996 का वर्ल्ड कप जीता था, वो एक मेंटालिटी है, देखिए साउथ एशियन मेंटालिटी है कि पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने ये अरे क्या होगा फास्ट बॉलर, हम तो अभी हार जाएंगे, मगरात के सामने हो, डेल स्टेन के सामने हो, हम लोग अरे इतनी तेज से बॉलिंग कर रहे हैं। आज नाहिद राणा को देख के ये लग रहा है कि मतलब एक तो ये इतना लंबा चौड़ा बंगाली है, ये देख के ये लगता है कि ये बंगाली है क्योंकि ये इनके जो फिजिक है इट्स क्वाइट वेल बिल्ट फॉर फास्ट बॉलिंग, और ये जो अंदर में डालने वाली बात है ना कि कॉन्फिडेंस जो कूट कूट के इनके अंदर में भर दिया गया है, भाई आप लोग भी हरा सकते हो, एंड ये कॉन्फिडेंस बांग्लादेश टीम में हम देखने को मिल रहा है। अच्छा अगर ये सीरीज बांग्लादेश की हो जाए, बांग्लादेश अगर कल जीते, जो कि लग रहा है कि ऑलमोस्ट 95% जो प्रोबेबिलिटी है ना जीतने की वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में है और 5% जो है वो बांग्लादेश के लिए, अगर ये सीरीज जीते पाकिस्तान के अगेंस्ट में बांग्लादेश, तो ये मुसलसल दूसरी सीरीज होगी 2024 के बाद, पाकिस्तान विल बी बीटन अवे इन बांग्लादेश। और एक साथ ये भी बता दूं कि मुशफिकुर रहीम ने कल जो सेंचुरी जो सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी किया और लिटन दास के साथ मिलकर जो पारी को थोड़ा सा संभाल दिया, मुशफिकुर रहीम बिकेम द टॉप सेंचुरी गेटर्स फॉर बांग्लादेश क्रिकेट, 14 सेंचुरी स्कोर करके, सो ओवरऑल बांग्लादेश को देख के मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा फील होने
0: अच्छा लग रहा है। हाँ, जब ऐसी इस तरह की टीम जो लगातार मेहनत करती है और वो यहाँ पर पहुंच जाए तो दिल को खुशी होती है, अनलाइक यू नो कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने इतनी मेहनत ना करी हो लेकिन फिर भी इंडियन टीम में आपको जगह,
1: जैसे ब्रार साहब,
0: तो ये दुख होता है। फिलहाल 5:38 एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके मैसेज लेंगे जो आपने हमें भेजा है 666-22107 पे। एक छोटा सा ब्रेक दिल से।

0: दिलजीत दोसांझ, पिटबुल नीरज की आवाज में गाना सुना आपने एफएम 107 पे, और ये शो
1: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: दिल से देसी और पिच परफेक्ट शो, क्या कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट की बातें और क्रिकेट के लोग और उनसे हमारे राब्ता जो होते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ फजील, क्या कह रहे हैं लोग कि धोनी को खेलना चाहिए 2027 आईपीएल में या नहीं, कोई कुछ कह रहा है तो
0: आज का सवाल था दोस्तों कि धोनी को क्या खेलना चाहिए या फिर नहीं। तो ये मैसेज किसका है, आसिफ का है, कहते हैं धोनी भाई तो नहीं खेलेंगे, मगर आई एम हैप्पी प्रिंस प्ले ओडीआई खेलेगा, आई एम हैप्पी। दूसरी बात, टेस्ट में अब ऋषभ पंत वाइस कैप्टन नहीं है कि राहुल रहेंगे। हाँ राहुल रहेंगे, एंड आईपीएल में अब पहले जैसा नहीं रहा कुछ, आप जानते हो। हाँ वो वाला मजा नहीं रहा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मिसिंग सा है, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो बहुत सारे व्यूज जो है वो कम भी हुए, करोड़ों लोगों ने ये मैच जो है वो नहीं देखा है, कई परसेंटेज में व्यूज जो है या फिर यू नो व्यूवर्स कम रहे हैं, जनता कम रही है, फैन कम रहे हैं देखने वाले आईपीएल। सब नए प्लेयर को खेलने का मौका मिलना चाहिए, रोहित और हार्दिक खेलेंगे, मगर इनके एक सेम प्रॉब्लम है हेल्थ। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका का वीए, साउथ अफ्रीका के वो बॉलर का नाम है अब्दुल एडम, और इमरान ताहिर भी बहुत यूनिक स्पिनर है। हाँ बिल्कुल सही है, और धोनी भाई तो नहीं खेलेंगे, ये इनका कहना है आसिफ भाई का। एक और ही मैसेज है, और इनका नाम है आशिक। आशिक साहब कहते हैं, अरे आशिक भाई आप वापस, बहुत दिनों बाद, पता नहीं ये वही वाले आशिक है नहीं। ओके, तो इनका कहना है कि धोनी में अब हेल्थ की प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है, मुझे भी लग रहा है कि हेल्थ की प्रॉब्लम है क्या, हालांकि एक दो बार आए प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल भाई खेलना चाहिए, धोनी हम सबका फेवरेट है, ये कहना है सुफियान का। ओके, धोनी को खिलाना चाहते हैं। फिर हैं ये नाम तो नहीं लिखा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम अमीन और फजील भाई, मुझे लगता है कि धोनी अभी 2 साल और खेल सकता है। अरे हम अगली बार का पूछ रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं 2 साल का और खेल सकता है। आपका नाम क्या है, इकबाल। ओके इकबाल साहब, हम इस पर मंथन करेंगे कि 2 साल 2027 में पहले बात कर लेते हैं, क्या लगता है अगले साल खेलेगा अमीन भाई।
2: मैं
0: पैसे कमाने, रांची के गार्डन को बनवाना है बाबा भी।
2: धोनी है माही वे, एंड क्या बंदा है, आई मीन क्या कैरेक्टर है, हेलीकॉप्टर शॉट कह लीजिए, उसके हेयर स्टाइल कह लीजिए, और क्या फिनिशर। अगर धोनी के बाद अगर कोई फिनिशर हमारे सामने, अगर मतलब जनरेशन की जो बात कर रहे हैं कि पिछले 15 साल में हमने देखा है, वो है ऑब्वियसली कोहली साहब। तो फिनिशर्स जो धोनी साहब थे, और आज भी चेन्नई शहर में एक रांची का एक लड़का इतना पॉपुलर हो सकता है, ये मेरे ख्याल से किसी भी फ्रेंचाइजी टीम में इतने सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, ठीक है।
0: हाँ।
2: कोई राजस्थान का है तो वो चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, या चेन्नई का है तो कलकत्ता के लिए खेल रहे हैं, या राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। कभी नोट किया है पिछले 19 सालों में कि एक लड़का जो कि रांची का है, झारखंड का है, वो चेन्नई में, तमिल में, तमिलनाडु में, वहाँ पे इतना पॉपुलर है, वहाँ के फैंस दीवाने
0: हैं। हाँ।
2: तो वो परफॉर्मेंस दिया है 5 मरतबा चेन्नई को यू नो आईपीएल चैंपियन करवाना। और दूसरी बात है कि धोनी इटसेल्फ इट्स अ बहुत ही लार्जर देन लाइफ एक कैरेक्टर है, जिसको देख के हर कोई नौजवान मुतासिर होता है कि मैं धोनी जैसे बनूंगा।
0: और चेन्नई में जो फैन होते हैं बड़े मजबूत फैन होते हैं, और वैसे भी ये ओवरऑल इंडिया में कितने ज्यादा फेमस है। उसके अलावा आप मुझे संजू सैमसन के ऐसे फैन चेन्नई में दिखाई दे रहे हैं। वो तो बाकी आने वाले वक्त बताएगा कि किस तरह के प्लेयर हैं, क्योंकि ये प्लेयर जब परफॉर्म करके देता है तब वो बड़ा प्लेयर बनता है।
2: तो दो चीजें हमारे सामने हैं, एक तो है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट मैच, क्या कल बांग्लादेश पाकिस्तान को हराने में कामयाब रहेगी या पाकिस्तान इस मैच को बचा लेगी।
0: बिल्कुल, ये
2: दूसरी बात कि धोनी साहब क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये हमें इंतजार करना होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट शो तक पता चल जाएगा।
0: हाँ उम्मीदन। तो दोस्तों ये था आज का शो पिच परफेक्ट, फिलहाल अमीन और फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी परसों दोपहर 3 बजे, सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने, जिसका नाम है लर्न।

0: Assalamu alaikum and good evening. आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मामिश खान. उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे. सब कुछ एकदम से बिल्कुल सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा भला होगा और आप भी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे. और आज आ गया है ट्यूसडे आ गया है. हम हफ्ते के बीच में पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और आज हम किस पे बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मतलब कि हफ्ते हफ्ते की तकरीबन कुछ मिलती जुलती सी थीम होती है. तो आज हम थोड़ी सी और, मतलब एक ना, मतलब रोज़ के रोज़ वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो तो वो उसमें आप जितना प्रैक्टिस करते हो वो बढ़ती रहती है, उसकी शिद्दत बढ़ती रहती है. अगर आप रूहानियत की तरफ हो तो आपके अंदर जितना बाय द टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रूहानियत बढ़ती रहेगी. तो इसी तरीके से ये वाला जो मामला है वो भी बढ़ता रहता है आपका वक्त के साथ साथ. बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, कल हमने परसों बल्कि बात की थी किस हवाले से, एक दफ़ा देख लेती हूँ. हाँ, हमने ब्लेसिंग्स पहले गिनी थी अपनी ज़िंदगी की, उसके बाद फिर हमने पर्सनल ग्रोथ की बात की. और आज हम बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, हम सब ने सुना है कि कुछ ना कुछ, मतलब ना हर बंदे के साथ ऐसा होता है जिसे आप मेरिकल कह सकते हैं, ठीक है, मौजज़ा कह सकते हैं. कुछ लोग कह देंगे नहीं, मतलब जो ना ये अंबिया के साथ ये जो लफ्ज़ है मेरिकल का, मौजज़े का, ये उनसे ही वाबस्ता है. लेकिन मैंने देखा है कि मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को मौजज़ा कह लो या फिर करामत कह लो, जो भी कह लो, ये आपकी मर्ज़ी है. इंग्लिश में वैसे मेरिकल ही कहा जाता है. तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा होते देखा हो, सही है, मतलब मौजज़ा मुझे लगता है प्रॉपर वर्ड है. करामत बोलो तो वो कुछ वो वाली फील नहीं आती. तो आप अगर ये चाहे, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल ऐसे हटकर थी, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और उस वक्त आपको ज़रूरत थी उस चीज़ की और वो एकदम से आपकी ज़िंदगी में हो गई हो. थोड़ा सा मुझे पता है कि हल्का सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मतलब आप सोच में पड़ जाएं कि भाई इस पे तो बात ही नहीं कर सकते, ऐसा वाला नहीं. तो बात तो कर सकते हैं, ठीक है. थोड़ा सा जहन पे जोर डालिए और हमें कॉल मिला दीजिए 4434377 पे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है 6622107. और एक भाई ने कर लिए हिम्मत तो उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. और अगर मैं एक बहन हूँ तो
0: हाँ जी, आपकी आवाज़ सुनते ही मैंने यही सोचा, क्योंकि यूजुअली हमारे भाई आते हैं. ये भी एक देखें मेरिकल ही हो गया कि बहन आ गई पहले. जी कैसी है?
1: पहले भी एक दफा आपसे बात हो चुकी है ना?
0: जी जी, नाम बताइएगा फिर एक दफा.
1: मुनीबा.
0: मुनीबा जी, मुनीबा कैसी हैं? कैसी है, क्या हो रहा है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है.
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: ये जो आपका टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो.
0: जी जी.
1: तो ये कह सकते हैं कि बाजूकात हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बाजूकात हमारी कोई दुआ पूरी हो जाती है, इसको इत्तफाक, हम इसको एक हसीन इत्तफाक भी कह लेते हैं ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी चीज हुई हो जो कि आप, मतलब ना, आप दुआ तो मांग रही हो लेकिन फिर भी ना, मतलब कहीं बेयकीनी सी और फिर भी वो आपकी दुआ से वो चीज आपको मिल गई हो?
1: बहुत सी चीजें होती हैं, हो जाती हैं. रिसेंटली एक वाक्य मुझे याद आ रहा है. हमारी जानने वाली फैमिली है तो वो लोग कम्युनिकेशन के लिए पाकिस्तान गए हुए थे और वापसी पे उन्होंने अपनी वापसी की अरेंजमेंट इस तरह से कराई थी कि उनकी बेटी का जो है ना वो बेबी आना था.
0: अच्छा.
1: तो उन्होंने अपनी वापसी की इस तरह से अरेंजमेंट कराई थी कि जो डॉक्टर्स ने, मतलब जो ड्यू डेट वगैरह दी है उस तक वो वापस आ जाएंगे. तो हुआ ये कि आपको पता है ना कि इमरजेंसी जो है ना सी सेक्शन से बेबी पहले आ गया.
0: अच्छा.
1: और पूरी फैमिली आ नहीं पाई, सिर्फ वो ना उनका बड़ा बेटा और वो मियां बीबी ही उधर थे.
0: सही.
1: तो फिर हमारी उनसे जो है ना, मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं वो.
0: सही.
1: तो मेरी उनसे अच्छी दुआ सलाम थी. तो आप यकीन कीजिए कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन उस बेबी के आने से पहले ही हमारे घर पे काफी सारा ना मचन आया.
0: अच्छा. सही.
1: मेरे फादर इन लॉ थे किसी जो है ना शेख अरब शेख ने, उनको एज ए गिफ्ट काफी सारा मटन दिया.
0: सही.
1: मेरे बच्चे मटन इतने शौक से नहीं खाते, वो चिकन शौक से खाते हैं. तो अब वो जो बेबी जब आया तो उसके लिए जो है ना, मैंने सोचा कि मैं उसकी कुछ दिन, जब तक उसकी फैमिली नहीं आ जाती 5-6 दिन तक, मुझे उसकी हेल्प करना थी. तो आप यकीन कीजिए कि घर की नॉर्मल सी चीजों के साथ मैं आराम से उसके लिए खाना मैनेज कर पा रही थी, उसके घर के लिए दी और उसके लिए सूप वगैरह, उसको हॉस्पिटल में विजिट करना और ये सब कुछ इतना इत्तेफाक से इस तरह से कन्वीनियंट हुआ, तो मुझे ये साथ हुआ कि सर उसके पेरेंट्स ने दुआ की होगी और मुझे अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी उसका एहसास करने की उस मौके पे। ये इतने ऊपर से लेके इत्तेफाक थे, यानी अगर एक उनके पेरेंट्स नहीं पहुंच पाए उस मौके पर तो मुझे उनकी हेल्प करने का मौका अल्लाह की तरफ से ऐसा मिला, वो जो मुझे फिल्म में सब कुछ मिला हुआ था।
0: हाँ।
1: तो जो मतलब जो काफी हमारी जरूरत से ज्यादा था और बच्चे इतना पसंद भी नहीं करते थे।
0: हाँ।
1: तो मैं वो उससे उनकी हेल्प कर पाई।
0: सही, देखिए वैसे कहते हैं ना कि किसी की हेल्प की अगर आप नियत कर लो तो अल्लाह ताला उसमें आप नहीं मदद करते, वो अल्लाह ही मदद करता है और अल्लाह ताला बस आपको जरिया बनाता है,
1: देखिए
0: रास्ता आसान करता है। एग्जैक्टली,
1: बहुत से जो है ना बात काम होते हैं, कुछ ऐसे वाकयात और भी हुए हैं लाइफ में, लेकिन मैं यही कहूंगी अपनी करामत नहीं समझना चाहिए।
0: Exactly.
1: अल्लाह का करम और अल्लाह का एहसान समझना चाहिए। हम
0: बिल्कुल
1: तो बहुत फताकार बनने हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी कोई हमें अल्लाह ताला किसी की मदद की हमें तौफीक दे तो ये भी उसकी तौफीक है और अल्लाह ताला हमसे कोई नेकी का काम ले तो भी ये उसकी हमारे ऊपर इनायत है, हमें उसने उसकी हिदायत दी और अगर ऐसा कोई हम अमल कर पाए तो इसके लिए भी हमें अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग कहने लगे कि ये हमारी करामत है या ये हमारा मौजूदा है, यही हमारे नदियों का सेवा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह ताला ही के करम होते हैं। अल्लाह ताला वाकई मतलब अगर ना हमारे ऊपर नजरे करम करे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, लेकिन ये
1: और जो प्राइड और जो सेल्फ वो है ना ये थे।
0: हाँ।
1: मेरी करामत या मेरा ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं,
0: बिल्कुल पसंद नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है।
1: और इस लिहाज से दो और वाकयात मुझे याद आ रहे हैं अपने मदर इन लॉ के हवाले से।
0: जी जी जी जी,
1: वो मतलब उनकी बेटियां ज्यादा हैं और उनको काफी ज्यादा और वो सब शादी के बाद, जब आपको पता है जो अपनी बेटियों के बारे में सेंसिटिव होती है और शादी के बाद उनको बहुत मिस करती हैं, उनके लिए बहुत दुआएं करती हैं। तो मेरी और मेरी नंद की शादी इकट्ठे हुई थी तो हम लोग जब उमरा के लिए गए ना तो उनके वो वहां से मेरे फादर इन ला ने मेरी सिस्टर इन ला को भी बुलाया था और मेरी मदर इन ला की बहुत ख्वाहिश थी हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। तो आप यकीन करें जब हम लोग मक्का गए तो इससे पहले कि हम उमरा करते तवाफ से भी पहले अहराम बांध के बैतुल हराम में

0: दाखिल होने से पहले इतने बड़े मजमे में होटल का भी पता नहीं है कहाँ रुके हैं, हमारी उनसे मुलाकात हो गई।
1: अच्छा देखें,
0: पहले उनसे मुलाकात हुई और फिर उमरा इकट्ठे किया। और इसी तरह का दूसरा वाक्य फिर बच्चों के साथ हम लोग 2 साल पहले जब गए थे तो तब भी वही जो मेरी सिस्टर इन लॉ उनको आना था और उनको ये था, उन्होंने अपने 2 बेटों को हिट कराया था ना, तो उनके साथ उसके बाद ना उमरा करना चाह रहे थे।
1: सही,
0: तो इधर से हम सब लोग गए हुए थे
1: जी,
0: तो वो उन्होंने पहले मदीना आना था।
1: अच्छा,
0: तो हुआ ये कि हम लोग एक होटल में गए अपने जानने वालों के थ्रू, हमने वो होटल अरेंज किया हुआ था। वहाँ गए तो वो ना बाथरूम जाए तो उसका दरवाजा बंद हो जाए, फिर कॉकरोच प्रॉब्लम, बच्चों को हाइजीन इश्यूज बहुत हो रहे थे, तो हम घबरा गए। हमने कहा हमने होटल, अब जब होटल चेंज करके हम जिस होटल में जाके शिफ्ट हुए ना
1: जी जी,
0: तो अगले दिन मेरी माँ उसी होटल के दूसरे हिस्से में अपने बेटों के साथ आते रहे, उनकी इससे पहले के मतलब मस्जिद में नबी जाते हैं हम लोग इकट्ठे हो गए।
1: जबरदस्त, मतलब ये इतने हुस्न इत्तेफाक हो गया ये
0: जी, मेरे के लिए हुस्न इत्तेफाक कह लीजिए ना आप, यही ऐसे हुस्न इत्तेफाक हमारी बात ख्वाहिश और हमारी बात दुआएं अल्लाह से हम मकबूल हो जाती है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो से हमें नवाजता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही,
0: तो इस तरह के इवेंट जो है ना फिर बहुत अच्छे इत्तेफाक बन के फैमिली में अच्छी मेमोरीज का हिस्सा रहते हैं और याद रहते हैं।
1: सही बात है, बिल्कुल ऐसे,
0: बड़ा अच्छा लगता
1: है। जबरदस्त जबरदस्त, मुनीबा मुनीबा ही नाम बताया ना आपने।
0: जी जी मुनीबा
1: मसूद, जी जी जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुनीबा, और कॉल करती रहा करें, काफी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, मुझे याद पड़ रहा है कि आपसे जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बहुत जबरदस्त आपने जो किससे भी शेयर किए हमसे, तो थैंक्स अ लॉट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ थी मुनीबा, और इन्होंने ज़बरदस्ती जो चीज़ें हमसे शेयर की, मेरा ख्याल है इन्होंने बिल्कुल ग्राउंड बना दिया आप लोगों के लिए। अब आप लोग भी कॉल कीजिए हमें और शामिल हो जाएं, अपने अपने जो किस्से हैं जो ऐसे आपको लगते हैं कि थोड़ा नामुमकिन सा लगता था लेकिन वो चीज़ पूरी हो गई। अच्छा, एक भाई ने मैसेज किया हुआ है, कह रहे मैडम बहुत फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में, मैंने इसलिए कहा था कि कुछ लोग मना करते हैं लेकिन मेरिकल की जो एक उर्दू ट्रांसलेशन अगर आप करें तो यही बनती है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर नहीं, लेकिन ये इसीलिए मैंने वाजे भी कर दिया था ये बात। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हमें आपके साथ
1: क्या हाल चाल है भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है,
1: जबरदस्त जबरदस्त ग्रेट, और क्या हो रहा है
2: कल? बस यही हाल, वही लॉन्ग ड्राइव पे जो ड्यूटी आ तो डेस्टिनेशन के, हाँ डेस्टिनेशन के करीब ही हूँ, तो कहीं अपना आराम से मतलब है ना बातें मतलब कॉल कर सकता हूँ, और बाकी के प्रोग्राम के डेली के मौजू जो रहते हैं डेली टॉपिक रहती है, तो सारे लिसनर बेहतरीन जो अपना अपना ओपिनियन देते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, तो सुनने के लिए बड़ा मजा आता है, तो मैं सुनता हूँ लेकिन मैं कॉल नहीं करता इसके लिए कि कभी मतलब इतना मतलब वो रहता है ना कि अभी मतलब ड्राइव पर हूँ, चलो लेकिन अच्छे कॉलर्स है ना तो कुछ मिलता है सीखने के, कुछ पॉइंट्स है ना मिलते हैं, क्या इसने क्या बेहतर बात कर दी, कितना बेहतरीन, तो वो कुछ कितनी कुछ चीजें है ना, ये प्रोग्राम को ही क्रेडिट जाता है, 107 की टीम को ही जाता है कि काफी कुछ सीखने, जो हमारे अंदर वीकनेस जो कुछ था ना
1: जी जी,
2: कि किस तरह की कुछ कभी जल्दी फैसले ले लेना, कभी क्या कर देना, कभी क्या कर देना, तो काफी हद तक है ना मोटिवेशन बहुत सारा मिलता है, बहुत भरपूर एकदम से
1: सही सही
2: जो है ना। हाँ, तो आज की तो वही है कि आज का
1: आज हमने आपकी जिंदगी में कोई ऐसी अनहोनी सी बात हुई हो जो कि आप चाहते हो लेकिन आपको लगता हो कि नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी अल्लाह से मांग के देखता हूँ क्या पता अल्लाह पूरी करते हैं।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले यहाँ से कतर से पहले काफी अरसे में ना सऊदी अरबिया में रहा हूँ।
1: अच्छा,
2: सऊदी में मैं काफी रहा हूँ, तो मेरे हर साल है ना उम्रे होते रहते थे, मेरी छोटी बहन भी वहाँ है फैमिली के साथ, तो हम लोगों के उम्रे अक्सर होते रहते थे, साल में कभी 2 भी 3 भी, तो जब भी मेरा तवाफ का जो चक्कर होता था ना तो मेरे दिल में वो ख्याल है ना होते रहता था कि या अल्लाह मैं तो तवाफ कितने बार किया, मैं तो कर ही रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी दो फैमिली में मेरे मेरे मेरा बेटा और मेरी बेटी थी, कभी दो ही बच्चे थे और मेरी वाइफ, और बोला ये तेरे घर के चक्कर हम लोग साथ में मिलके लगाए तो कैसा रहेगा, तो ये ख्याल है ना घुसता रहता था। और फिर कुछ टाइम बाद है ना वो सच हुआ और वो एकदम मतलब जैसा हमने सोचा था ना वैसा हो गया, वो हो गया। और फिर फैमिली आई, दो महीना स्टे करी वहाँ पे, मेरी बहन का ही घर है ना, मतलब वो रहती है फैमिली के साथ ना, तो वहाँ हम फिर साथ में बाय रोड गए, बाय रोड सब जाके जियारत की, मैं खुद ड्राइव किया था, काफी हदसे रहा ना सऊदी अरबिया में। हाँ तो वो एक मतलब सपना ही होता है ना,
1: सही बात
2: कि मतलब एक परदेश में अपनी मतलब फैमिली को बुला के साथ में इतना लंबा चौड़ा ट्रैवलिंग कराना। और फिर मैं जाते टाइम और ये था कि मैंने उनको ड्रॉप करके आया बॉम्बे साथ में। हाँ और एक अरमान ये थी कि मैं ना अपनी फैमिली को ना सऊदी एयरलाइंस में ना ट्रैवलिंग कराऊं, क्योंकि मैंने काफी किया हुआ था, तो मुझे एक वो लगता था फैमिली अगर साथ में बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, तो ऐसे से ना ख्याल चलते रहते थे, तो वो सारे चीजें ना सच हुई एकदम से जो है ना। और उसके बाद 2024 में मैं यहाँ से जब वेकेशन पे था तो मेरी वही छोटी बहन के पास ना बड़ी बहन गई हुई थी विजिट पे, तो वो लोग दोनों थे वहाँ पे और मैं तीन बहन में एक ही भाई हूँ, तो मेरी जो बीच वाली मंजली बहन है ना, मेरा जो सगा भांजा है वो यूएस में है, तो वो हैदराबाद में रहती है, तो इनके प्रोग्राम हो गए कि उम्रे पे जाना है, तो उनके बेटे ने मेरे भांजे ने सब कुछ कर दिया। अब मैं बॉम्बे में वैकेशन पे हूँ और मेरी मतलब पोजिशन भी इतनी नहीं थी, तो मेरी छोटी बहन बोली हम लोग तीनों बहन अभी हो रहे इकट्ठे और तुम वहाँ अकेले एक ही भाई हो, तो हम चारों मिल जाते ना, तुम भी आ जाओ कैसे भी करके और हम साथ में ना उम्रा करेंगे। तो ये भी एक दिल में मतलब खुशी, मतलब ये तो अल्लाह ने एक बेहतरीन मौका दिया कि घर के तीनों बहन और एक भाई, वालदेन तो गुजर चुके हैं, तो ये बेहतरीन मौका मतलब मिला मुझे, तो हमने ना तीनों बहन में एक भाई, हम चारों मिलकर है ना हम फिर ना मक्का मदीना सारे उम्रे के सारे ज्यारतें किए, वो एक मतलब बहुत जबरदस्त लम्हा, यानी अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नियामत, इतनी मतलब कभी हमने गुमान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि हम चारों बहन भाई मतलब एक जगह इस तरह से मतलब ये करेंगे। हाँ तो बड़ी बड़ी बड़ी बेहद खुशी, कभी भी वो लम्हे याद आते ना बेहद बेहद खुशी होती है।
1: सही बात है, एक तो मतलब उमरा फिर ऊपर से माशाल्लाह से पूरे मतलब बहन भाइयों का, और वैसे भी मतलब ये शादी वगैरह के बाद ना बड़ा मुश्किल होता है कि सब लोग एक जगह एक घर पे हो, आप लोग माशाल्लाह इतनी जबरदस्त जगह पे मिले।
2: हाँ सबकी फैमिली सबकी, वो बड़ी बहन ने तो अपनी मेरी भांजी जो बड़ी थी उसको तो वही इंडिया में छोड़ा था, उसकी पढ़ाई चल रही थी, फाइनल ईयर था, तो वो अकेली आ गई थी। बीच वाली जो मंजली वाली है उनका बेटे यूएस में है, तो उन्होंने तो काफी कुछ उनकी बैकिंग हो गई, और मैं थोड़ा सा मेरा बैलेंस सही नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी छोटी बहन ने ना मुझे बहुत हिम्मत दिया, बोले नहीं आप आओ, आप आओ, बाकी का सब छोड़ो, बस आप आओ। तो फिर मैं ना चले गया। हाँ तो हम चारों मिलकर है ना ये जो सारी जो ये अल्लाह की दी इतनी बड़ी जो नियामत, इतना अच्छा जो मौका है ना, बहुत शुक्र है अल्लाह का, बहुत बड़ा एहसान है कि इस तरह हम बहनों को इतने अपने घर के पास बुला मतलब घर पे बुलाकर मतलब इस तरह हमको मिलाया इतने जबरदस्त से। सब अपनी अपनी जिंदगियों में थे, लेकिन देखो हाँ कहीं चलो पिकनिक होती है या कहीं ट्रैवलिंग होता है इंडिया का इंडिया में, तो बात तो समझ में आती है, चलो प्रोग्राम बन गया, लेकिन इस तरह मतलब एक मतलब अनहोनी मतलब इस तरह का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ
1: अल्लाह ने अल्लाह के घर में आप लोगों को इकट्ठा कर दिया माशाल्लाह।
2: हाँ हाँ ये सबसे बड़ी ना पूरे मोहल्ले सब वाले ना सबको जो पता चला ना कि अरे बोले लोग भी बहुत खुशी हो, सब खुशी है कि देखो इनके कोई नवालदेन भी नहीं है, तो लेकिन ये चारों बहन भाई एक साथ मतलब ये उमरा करेंगे, और मेरी वाइफ को भी बड़ी खुशी हुई है, वाइफ को नहीं लेके, ठीक है वाइफ का तो हो चुका था पहले ही, और उसने भी बहुत मतलब ये कह के बहुत नसीब वाले हो आप कि आप अपनी बहनों के साथ, और बड़ी बहन माँ दाखिला होती है, फिर मैं बड़ा भाई, मेरे बाद दो छोटी बहन, तो एक मतलब एक फैमिली का इतना अच्छा मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन था, और यानी कितना एहसान अल्लाह का, मतलब अल्फाज ही नहीं कि अल्लाह एक का किस तरह हम ये उतारे, मतलब ये इतना बड़ा एहसान हम पे किया है, बहुत बड़ी नियामत की है
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ने अल्लाह के घर में आपको इकट्ठा किया, इंशाल्लाह जन्नत पे भी इसी तरह से आप सब लोगों को इकट्ठा करें इंशाल्लाह,
2: इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े जी। ओके जी,
1: ओके जी, सलीम, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रही जी तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स, और अच्छी अच्छी बातें जबरदस्त, सब लोग अपने अपने जो वाकया हैं वो शेयर कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं 4434377 पे कॉल करके, लेकिन पहले हम चलेंगे एक सॉन्ग की तरफ, ठीक है, फिर हम वापस आते हैं।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर. बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ. सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर, मनी नेविगेटर एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. Your guide for a smarter, strong financial decision. सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए.
1: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM, और हमारा टॉपिक चल रहा है आज कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हुई हो. अच्छा, इससे मैं पहले मैसेजेस पढ़ दूं, फिर एक जो चीज है थोड़ा सा मतलब क्लियर भी करना चाहूंगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, गुड इवनिंग मामा जी, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू द शो डियर फैमिली. मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज, हैप्पी ट्यूजडे इवनिंग कहा है आपने, बहुत खुश लग रहे हैं. आप भी मेरी तरह खुश लग रहे हैं. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जद इकबाल पाकिस्तान. बहुत अच्छा टॉपिक है. अल्लाह ताला तो कहता है मुझसे मांगो, जो नहीं मांगता वो फिर अल्लाह उससे नाराज हो जाता है. वही वाहिद हस्ती है जो हर एक की ख्वाहिशात पूरा करता है. और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज आपका. इस हवाले से किस्से तो बहुत हैं, लेकिन मैसेज लंबा हो जाएगा. मुख्तसर बात ये कि इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, कि अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है उसे मांग कर देखना चाहिए. और ऐसे ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं कि इंसान अगर किसी को सुनाए तो यकीन ही नहीं आता. वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है. बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. दो दिन काम था, बाहर था, इसलिए शो नहीं सुन सका. मैं भी आपको ना उस दिन एक चीज़ का रिप्लाई नहीं कर सकी थी. आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगी. अच्छा जी, एक जो चीज मैं बताना चाह रही हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि एक भाई का मैसेज आया है फिर दोबारा. वो कह रहे हैं कि मौजा ना सिर्फ नबियों के साथ होता है और करामात अल्लाह के वलियों को मिलती है. अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि इस चीज के बारे में थोड़ी रिसर्च मैंने भी की थी, और उसके मुताबिक अगर आप याद करें कुरान में एक वाकया है जिसे बहुत ही बड़ा एक अल्लाह ने निशानी आयत अल्लाह ने अपनी बयान किया है, और वो है असहाबे कहफ का वाकया. और उसको अगर आप उर्दू में, क्योंकि मौजज़ा और करामत जो है ना ये उर्दू के वर्ड्स हैं, और दूसरी चीज़ ये कि ये मतलब ये अरबिक के वर्ड नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ने जो जहाँ पे भी अपनी किसी ऐसी कुछ मतलब जो ना बिल्कुल ऐसी नेचर से हट के कोई चीज़ अगर अल्लाह ने बताना चाहिए तो उसके लिए आयत का या बुरहान का वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो अरबिक में होता है. तो ये करामत और मौजज़ा दोनों एक तो उर्दू वर्ड्स हैं. दूसरी चीज़ ये कि ये जो चीज़ है ये हमें कहीं पे भी किसी नबी ने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम ने इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं की कि ये वर्ड बोला इसके लिए जाएगा, वो वर्ड बोला उसके लिए जाएगा. ये बात भी उलमाए कराम की तरफ से है, लेकिन उसमें मतलब हर बंदे की एक अलग राय हो सकती है. तो ये वाली चीज़ ना इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, बहस तलब नहीं होती. असल चीज़ ये होती है कि मतलब क्या, वो आपको समझ में आ रहा है. तो अल्लाह ताला ने तो इस तरह की चीजों को, हर चीज को अल्लाह ने जहां मतलब जो है वो पहाड़ सॉरी पानी को मतलब जो ना जो एक तरह से पानी दो टुकड़ों में बट गया था हजरत मूसा के लिए, उसको भी अपनी आयत कहा है. तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने चांद सितारों को भी अपनी आयत कहा है, मतलब नेचर को भी अपनी आयत कहा है. तो इसलिए हमारा मसला क्या हो जाता है ना, हम लोग गैर जरूरी चीजों के ऊपर अटक जाते हैं. हम लोग उस चीज का जो असल जो मकसद है उस चीज के ऊपर बात करने का, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते. तो प्लीज थोड़ा सा मतलब इस मामले को, इस बहस को छोड़िए और जो चीज है उसको समझ लीजिए कि असल में बात क्या है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी, मैं नदीम नजाकत बात कर रहा हूँ. वैसे निकनेम मेरा नदीम नजाकत है, और कहते सब मुझे अब्दुल समद है.
1: अब्दुल समद, अच्छा जी, ओके, जबरदस्त. नदीम नजाकत, राइट
3: जी?
1: जी, सही. और अब्दुल समद, दोनों नाम प्यारे हैं आपके.
3: थैंक यू. आप सुनाएंगे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. आप क्या कहना चाहेंगे भाई?
3: बस मैं यही कहना चाहूंगा, मौजज़ात तो बहुत हैं अल्लाह के, और अगर देखा जाए तो यानी कि अल्लाह का जितना भी शुक्र करा जाए वो बहुत कम है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग सोचते हैं और वो होती हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते उन चीजों को. मैं ये मेरा जो शेड्यूल है वो तकरीबन मुझे गल्फ में रहते थे, 22 ईयर्स हो गया है. पहले मैं सऊदी में था, लेकिन जब मैं छुट्टी जाता था तो अक्सर ये सोचता था यार पता नहीं शादी कब होगी, शादी कब होगी. वो शादी जब हुई तो अल्लाह ने जिस जिससे भी जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई ठीक है, उसके बाद मैं सोचता था मैं माशाल्लाह सऊदी में था, उम्रे भी माशाल्लाह किए, दो हज भी किए माशाल्लाह मैंने
1: माशाल्लाह।
3: लेकिन मैं जब भी वहाँ जाता था हरम शरीफ तो अक्सर ये सोचता था कि यार रब्बुल आलमीन तूने शादी करा दी है तो मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जो हो पहला जो हो वो बेटा हो, एक नफ्सियात ख्वाहिशात होती इंसान की। और इंशाल्लाह अगर जब बेटा होगा तो कुरान हाफिज बनाऊंगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि माशाल्लाह पहला बेटा हुआ और माशाल्लाह वो कुरान हाफिज भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शादी को 16 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह, 15 इयर्स का है वो।
1: बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको, क्योंकि थोड़ी नियत मैंने भी मतलब थी मेरी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका। अल्लाह ताला इन फ्यूचर अल्लाह ताला उसको दोनों को सादत दे कि वो खुद से कर सके इंशाल्लाह ताला।
3: आमीन। फिर माशाल्लाह वो बेटे की ख्वाहिश ऐसी थी क्या बताऊं मैं जी के, माशाल्लाह पहला बेटा हुआ, उसके बाद बेटी के चक्कर में दूसरा हुआ माशाल्लाह, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा माशाल्लाह, आज पांच बेटे हैं।
1: उसमें कहते ना हमारी उर्दू में कहावत है कि अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर ही देता है, तो ये वाकई सही है। और क्या मतलब लोग ना माइंड करते हैं कि नहीं ये क्या बात हुई, वो क्या बात हुई, लेकिन अल्लाह ताला तो मतलब वो हस्ती है ना, जैसे अमजद इकबाल साहब ने कहा कि अल्लाह तो कहता है कि मुझसे मांगो, दुनिया में वही तो हस्ती है जो कहता है जो मांगना है मुझसे मांगो। हाँ
3: बिल्कुल, माशाल्लाह वो कुरान हाफिज हैं माशाल्लाह, रमजानों में सुनते भी हैं माशाल्लाह, दो दफा वो सुन चुके हैं कुरान
1: माशाल्लाह।
3: और फिर दूसरी बात माशाल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ और जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ और जिसको चाहता हूँ दोनों चीजें देता हूँ। मैं आपका अक्सर सुनता रहता हूँ ये वाला प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी दो तीन दिन पहले की बात है, शायद एक लेडी आई थी आपके शो पर, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है वो 14 साल का है, 14 साल का वो
1: जी उनके बेटे का जी
3: हसन, मैं चाहता हूँ उनके बाजी का अल्लाह उसको शिफा दे। वो बोलने लगे यही सेम केस मेरे घर में भी है।
1: अच्छा सही। हाँ सही।
3: वो मेरा भतीजा है, वो भी माशाल्लाह 14 साल का है, 13-14 साल का है वो, बस सारे काम उसके सही हैं, आपको सारी बातें भी समझा देगा वो, लेकिन शरारत में भी माशाल्लाह सबसे आगे रहेगा, लेकिन वो बस सिर्फ सही से बोल नहीं पाता है वो। मैं चाहता हूँ कि बाजी का जो भी बच्चा है अल्लाह उसको भी इस्तीफा दे, अल्लाह मेरे भतीजे को भी दे
1: इंशाल्लाह।
3: उसका नाम हमजा है, लेकिन देखिए अफसोस होता है इस बात का। अच्छा माशाल्लाह वो फिर भाई की चार बेटियां हैं और एक बेटा है, तो मैं सोचता हूँ कि यार अल्लाह मियां एक सहारा है वो भी ऐसा है, तो खैर ये तो अल्लाह के काम है, देखिए अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। तो मौजदात तो बहुत होते हैं इंसान के साथ, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है। अभी तो फिलहाल इंशाल्लाह हूँ कतर में हूँ, और कबीर भाई आजकल नहीं दिख पा रहे हैं वो,
1: कबीर भाई आजकल सुबह सुबह होते हैं 6-9 होते हैं। अब जून से हम भी आपको नहीं दिख पाएंगे क्योंकि अब हम होंगे 6-9।
3: अच्छा
1: हाँ, फिर आपको वो दिखेंगे शाम के।
3: कबीर भाई से तो मेरी मुलाकात भी हुई है। अच्छा। वहाँ पर जब आपका इवेंट जो चल रहा था ना ये फीफा का,
1: तो अच्छा,
3: वहाँ पर अमिता जी से भी मेरी मुलाकात है माशाल्लाह। कबीर भाई की तो खैर दिल्ली तो दिल वालों की है,
1: सही तो उनसे बात होती रहती है आपकी।
3: माशाल्लाह बस यही चाहता हूँ कि जिसकी भी अल्लाह जो परेशानियों दूर करें, और जो जिनके साथ ये चीज होती है अल्लाह उसको भी रियलाइज करें कि हमारे साथ ये हुआ है, यानी छुपाने की कोई बात नहीं होती है। बस लोग ये चाहते हैं कि आज अगर हमने दुआ करी है अल्लाह से तो फौरन हो जाए, तो फौरन तो कुछ भी नहीं होता है।
1: सही बात है, और छुपाने की बात नहीं होती। पता है भाई होता क्या है कि लोग ना दूसरे लोगों के जो उनका रिएक्शन होता है ना उससे घबराते हैं, इसलिए लोग बोलते नहीं, क्योंकि जैसे वो बोली थी ना मुझे उस चीज पे मेरा दिल इतना मतलब अजीब हो गया था कि जब वो ये बात बोली थी।

0: अब यकीन मानिए कि उन्होंने ये बात की, मैं सजा तो मैं उस टाइम कॉल भी करना चाह रहा था
1: जी,
0: लेकिन
1: सुरविंदर ने ये कहा ना, कुछ लोग कहते हैं कि आजमाइश है, कुछ लोग कहते हैं सजा, मतलब ये जो चीज है ना, ये हमारा माशरा बिल्कुल, ये जबकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत
0: है,
1: एग्जैक्टली
0: कुछ नहीं है,
1: बिल्कुल बिल्कुल है,
0: अल्लाह तो यानी किस किस को कैसे। और बहुत से बच्चे तो मैंने ऐसे देखे जिनके बेचारों के हाथ पैर भी नहीं होते,
1: वही
0: तो ये सब ये कह देना कि ये तुमने कुछ ऐसा करा हुआ, नहीं नहीं ये गलत,
1: अल्लाह ताला के जो लोग करीब होते हैं, बिल्कुल जो करीब होते हैं ना उनके ऊपर ही आजमाइश आती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने चुना है।
0: तो ऐसे भी ऐसे लोगों को देखा है कि अभी परसों की एक न्यूज है, न्यूज क्या, मैं एक संभल है यूपी में, शायद जानती होंगी आप,
1: क्या नाम है
0: वहाँ पर, नहीं नहीं संभल एक जगह का नाम है,
1: जगह का नाम है, अच्छा अच्छा सही
0: जी जी, तो वहाँ पर एक गरीब बिल्कुल औरत, आप यकीन मानिए उसके माशाल्लाह तीन बेटे हुए एक साथ, और
1: अच्छा,
0: माशाल्लाह वो भी सही है और बच्चे भी माशाल्लाह सही है। अब ये बताइए इसमें क्या, ये क्या उसकी तवक्क की बात, नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह जिसको चाहता है जो दिल चाहता है देता है,
1: एग्जैक्टली ऐसे।
0: लेकिन ये कमेंट्स गैरियानत वाले जो कमेंट करते हैं
1: लोगों को सोचना चाहिए इस बात पे कि हम जो कुछ कह रहे हैं ना वो दूसरे के दिल पे किस तरह से लग रही है, इसलिए हमेशा नाप तोल के सोच समझ के इंसान अपनी जबान से अल्फाज अदा करे। बिल्कुल चले भाई, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बस एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पर भी है और एक ब्रेक पे भी हमने जाना
0: है, शायद भी आएंगे थी, वो भी उसके लिए कह रही थी, हाँ, मैं चाहता हूँ वो मेरे भतीजे के लिए भी दुआ करें और उनके लिए भी,
1: चले हमजा और हसन दोनों के लिए दुआ करेंगे और अपने अपने बेटे से खासतौर पे जो हाफिज़ कुरान है ना जरूर दुआ करवाइएगा, ठीक है,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जरूर कॉल कीजिएगा आगे,
0: थैंक यू।
1: रही जी, तो माशाल्लाह से हमारे भाई हमारे साथ थे और कॉलर भी हमारे साथ हैं, बस एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मैं एक बात इस हवाले से करना भी चाह रही थी, क्योंकि वो होता है ना कि आपको कोई बात पता है तो आप दूसरों को एक अगर होप बन सकते हो तो वो जरूर बनना चाहिए, लेकिन पहले ब्रेक।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: जी वेलकम बैक। और हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लोग जिसके साथ भी परेशानी है, एक तो पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला उसको दूर कर दे, और फिर अगर अल्लाह ना करे ऐसा अगर नहीं होता तो उसमें भी आप ये ज़रूर समझें कि आपके लिए यकीनी तौर पे कोई ना कोई भलाई होगी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही सुन रही थी कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक मिनट भी नहीं है उस ज़िंदगी के मुकाबले में जो हमें आगे मिलने वाली है, और अल्लाह ताला ने उस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये ख़ास एक करम किया हुआ है कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं। कहते हैं ना, मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर भी उसको अजर देता है उस तकलीफ़ के ऊपर। तो ये तकालीफ इंशाल्लाह ताला अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों को जन्नत में लेके जाएंगी। तो ये छोटी मोटी जो तकलीफें आती हैं या फिर जिसको बड़ी भी आपको जो महसूस होती है, तो उसको हमेशा ये समझे इंशाल्लाह ताला इसमें आपके लिए भलाई ही भलाई है। दूसरी चीज़ ये कि जो माँ बाप एक उनके दिल में अंदेशा होता है ना कि क्या होगा कल को हम जब नहीं होंगे, तो यकीन करें कि मेरी अम्मी की टीचर थी और वो माशाल्लाह से मतलब अम्मी की टीचर थी, तो उनकी अम्मी के मुकाबले में कुछ 17-18-20 साल तो बड़ी होंगी ना कम से कम। तो वो उनका एक ही बेटा, जैसे अभी ये भाई बता रहे थे, और उनकी तीन बेटियां थी, तीनों बेटियों की भी शादियां हो चुकी हैं, और ये कि जाहिर सी बात एक फिक्र होती होगी कि एक बेटा है फिर क्या होगा कल को इसका। लेकिन यकीन करें कि आज मेरी अम्मी के इंतकाल को 10 साल हो चुके हैं, मतलब अब ये कोई 11वां साल हो जाएगा, लेकिन वो माशाल्लाह से आज भी हयात हैं, अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल फिट रखा हुआ है, सेहतमंद रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला जो अता करता है ना आपको, तो उसके साथ वो आपके लिए वसाइल और वो सारी की सारी चीज़ें पैदा कर देता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो भी माँ बाप जिनके दिल में भी डर खौफ आता हो ना, प्लीज़ अपने दिल से निकाल दें, अल्लाह ताला ही पालने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई पालने वाला नहीं है। आप अपने दिल को बिल्कुल मुतमईन रखें, बिल्कुल ना सोचा करें, बल्कि बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ दी है जो इंशाल्लाह ताला आपको उस बच्चे को इंशाल्लाह ताला जन्नत में लेके जाएगी, और अल्लाह करे कि वो इस दुनिया में इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल बिल्कुल ठीक होके मिले, ठीक है। तो अपने दिल पे बिल्कुल भी ऐसा ख्याल ना लेकर आया करें। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम, कैसी हैं मैं
1: विशाल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अनिका, आप कैसी हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं अभी आप।
1: नहीं यार, मतलब मेरा ना, मुझे ये होता है कि एक जो चीज़ है, आज भी मैंने एक शो की रिकॉर्डिंग की, उसमें

0: तो अल्लाह ताला की तरफ से जो परेशानियाँ आती हैं ना, वो मैं समझती हूँ बेहतर ही होती हैं, बड़ी मुश्किल से छोटी मुश्किलें जो हैं वो बेहतर होती हैं. तो बाकी वली होना ज़रूरी नहीं, मैं समझती हूँ मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं, उसके लिए वली होना या कोई बहुत इकरामात का लफ्ज़ तो एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं और इंसानों के साथ भी होते हैं. जो इंसान सोच नहीं रहा होता समटाइम वो हो जाता है. तो उसमें बड़ी चीज़ जो होती है वो सब्र की होती है. मैं समझती हूँ सब्र इंसान को बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र के सिले में ही कुन का मौजज़ा रखा हुआ है. तो जो सब्र करता है उसी को जो है वो मौजज़े भी मिलते हैं सारा कुछ. तो मौजज़े होते इसी दुनिया में होते और अल्लाह नीयतों का देता है, इंसान की नीयत जानता है. मेरे सामने की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा, अभी मैं बात शुरू करूंगी तो लंबी होती जाएगी, कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं अपने साथ ज़िंदगी में इस तरह हुआ होता है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते. तो ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कहाँ कहाँ से किस तरह से अल्लाह ताला की मदद आ जाती है. और जो आपने सोचा नहीं, आप सोच रहे हो अच्छे इस तरह हो जाएगा, लेकिन उस तरह नहीं होता है. अब मेरी कज़न बिल्कुल यंग एज में, 20-22 साल उनकी उम्र थी, तो आपको पता है मरी, अगर आप कभी गई
1: हो, बिल्कुल गई हूँ
0: इस्लामाबाद में मरी, तो वहाँ पर छत्तर पार के पास एक टर्न आता है, काफ़ी डेंजरस उसको कहा जाता है, और वहाँ पर बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं. तो मेरे भी कज़न का जो है वहाँ पर बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत ही क्रिटिकल किस्म का, उनका कंडीशन बहुत क्रिटिकल और बहुत ही डेंजरस किस्म का एक्सीडेंट हुआ था. तो डॉक्टर ने कहा था कि कोई होप नहीं है, आईसीयू में उनका रखा था. और आईसीयू में आपको पता है बहुत से लोगों का कहना है कि आईसीयू में जाने वाले लोग जो है खुशकिस्मती से ही वापस आ जाए, तो आज वरना नहीं आते वेंटिलेटर और आईसीयू से. तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है कि ये लड़का बच जाए, लेकिन वही कि अल्लाह ताला ने सब्र का सिला कुन में रखा है, सब्र के सिले में सॉरी कुन रखा है, मैं थोड़ा गलत बोल गई हूँ. तो वो चीज़ कि उन्होंने सब्र किया, हिम्मत नहीं हारी. मेरी पप्पा को यकीन था कि मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा, और आप यकीन करें, और डॉक्टर्स ने कहा था कि साल तक हम नहीं कुछ कह सकते हैं ना, तो वो कोमा में था लेकिन सेंसेस में नहीं था, कोमा भी नहीं कहा जा सकता था, वो सेंसेस में भी नहीं था बंदा. तो कहते हैं हम कुछ इसके बारे में भी नहीं कह सकते. तो वो एक महीने के अंदर अंदर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होश में भी आ गया, एक महीने से पहले पहले, और अपने पाँव पर खड़ा भी हो गया. तो बस अल्लाह ताला यही कि अल्लाह ताला नियतों का देता है, आप अल्लाह ताला से जुड़ो, अल्लाह ताला से मांगो, मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं.
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: इंसान समटाइम ऐसा होता है कि मैंने यहाँ तक सुना है कि ठीक है अल्लाह ताला ने मौत का एक वक्त मुकर्रर किया है, लेकिन महज दुआ भी तो होती है ना.
1: बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है,
0: तो तकदीर को बदलती है ना. तो वही चीज होती है. फिर एक दफा मुझे खुद याद पड़ता है कि हम लोग नथिया गली जा रहे थे, और वहीं कुछ इसी तरह से रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड को थोड़ा होता है रात के वक्त ना जरा ड्राइव करते हुए, लेकिन हम लोगों को पहुंचते पहुंचते रात हो गई. तो एक टर्न था, तो वहां पर मैंने एकदम से तो उन्होंने ब्रेक लगाई इतनी जोर की, बच्चा मेरा छोटा था सो चुका था. तो मैंने कहा यार आप आराम से गाड़ी चलाना, कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आई है, एकदम मुझे ब्रेक लगानी पड़ी है, मुझे लग रहा है सामने ना कुछ अंधेरा सा है, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा. वैसे जब हम वापिस आए सुबह में और वो जगह हमने देखी, तो आपको पता है आगे खाई थी और बिल्कुल एज पे हम लोगों ने ब्रेक लगाई.
1: देखें
0: तो ये सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला को पता होता है क्या
1: exactly.
0: होता है.
1: बिल्कुल सही
0: बात, उसने जो जिंदगी लिखी है उसको आप दुआ अच्छा सोच के अच्छी नियत करके, और मैं समझती हूँ हर वक्त अल्लाह से डरते हुए चलो. कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, कोशिश यही करो कि अल्लाह का डर आपके दिल में हो. कहीं पर भी फिरौन बनने की कोशिश मत करो. तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करते हैं. बाकी मैं यही कहूंगी कि मौजज़ात होते हैं, मेरा तो यही यकीन है, उसके लिए वली या पैगंबर होना जरूरी नहीं है.
1: हाँ, सहाबी कहाफ का देखे ना, हमारे सामने वाकया मौजूद है, और वो नबी भी नहीं थे, और वो मतलब उनका कोई मतलब इस तरह का मामला नहीं था. और वली तो हम सब बन सकते हैं ना, वली का मतलब क्या होता है, अल्लाह का दोस्त. तो हमें अल्लाह ताला को दोस्त बनाना चाहिए. अल्लाह ताला अगर कबूलियत हमें दे दे इंशाल्लाह ताला, तो सबकी ज़िंदगी में हो सकते हैं. और ये मतलब मुझे लगता है हर दफ़ा कुछ लोग इस तरह की बात को पॉइंट आउट करते हैं जिसका कोई आपको मिलता भी नहीं है रिकॉर्ड. मतलब अगर आप उसको अरबिक में देखें ना, हमें देखना किससे चाहिए कि कहाँ से निकली हैं चीज़ें, वो अरबिक रूट्स में देखें तो आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती. हम लोगों ने अपने तौर पर एक चीज़ बना दी और उस पर हम इतने परेशान हो रहे होते हैं कि ये ना बोलते हैं ये चीज़ गलत हो जाएगी. तो ये इतना हमें ना वहमी मुसलमान नहीं होना चाहिए. मतलब थोड़ी सी चीज़ों को लॉजिक की बेस पे देखें, जहाँ पे जो चीज़ है वो है उसको उस तरह से लेना चाहिए.
0: बहुत सी चीज़ें मैरिज, अभी एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, अभी जैसे आप बात कर रही थी बच्चों के हवाले से, मेरी अपनी नंद है और माशाल्लाह से माशाल्लाह शादी के 15 साल के बाद उनके कोई उम्मीद नहीं, कोई लोग कहते बस इनके तो फोन ही नहीं होना. शादी के 15 साल के बाद उनके जो है बेटी हुई है. तो ये चीज़ें भी होती हैं, अल्लाह जब चाहे आप सिर्फ उससे मांगो, आप

0: अल्लाह सब्र का सिला देता है. आपके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है. मैं यही कहूंगी, ये भी मौजज़े होते हैं कि जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं, डॉक्टर्स कह देते हैं, अच्छा नहीं पॉसिबल नहीं है, अल्लाह सब पॉसिबल कर सकता है, सिर्फ आपकी दुआ की जरूरत है, सिर्फ एक आपकी दुआ की. जैसे अभी एक भाई बात कर रहे थे, मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनके बेटे को शिफा दे, जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे. लेकिन यही है कि सिर्फ आप अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला से जुड़ो. अल्लाह ताला क्यों नहीं सुनता? सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, हर इंसान की सुनते हैं.
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है. चलें दी अनिका, बहुत बहुत शुक्रिया. कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं तो मैं उनको मौका देती हूँ. और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बात आपने शेयर की. थैंक्स अ लॉट, ज़रूर कॉल कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. अच्छा जी, तो इसके साथ ही एक और कॉलर है. मैं सोच रही थी कि मैं सॉन्ग की तरफ जाऊँ, लेकिन ये हम कॉल ले लेते हैं और कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: हेलो, वालेकुम सलाम मैडम
1: जी. कौन बात कर रहे
2: हैं? अली रज़ा.
1: अली रज़ा, क्या हाल चाल है भाई?
2: ठीक है मैडम, आप?
1: अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. ये बताएं अली रजा, कोई मेरिकल हुआ है लाइफ में?
2: मैडम हम तो उसी शहर से हैं जहाँ से मेरिकल स्टार्ट होते हैं.
1: अभी अभी मतलब आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ,
2: मेरिकल स्टार्ट होते हैं हमारे मैडम. देखिए ना, अगर वहाँ पे गैस आ रही तो मेरिकल, पानी आ रहा तो मेरिकल.
1: अच्छा, शहर बोला था, शहर बोला था, मैं समझी उमर बोला है, कुछ इस तरह से बोला है. ठीक है, हाँ वो तो हमारी तो जिंदगी में लम्हे लम्हे पे होते हैं भाई.
2: हम तो उसी जा रहते हैं जहाँ मेरिकल स्टार्ट होते हैं मैडम.
1: एग्जैक्टली, रोड से वापस आ गए खैर खैरियत से, तो ये एक मेरिकल है.
2: मिरेकल है, हाँ. exactly. आपको लूटा नहीं तो मिरेकल है.
1: सही बात है, सही बात है. मतलब बच गए, मोबाइल नहीं छीना किसी ने, ये बात सही है, बिल्कुल है, सही है.
2: बाइक बच गई, मिरेकल है. पानी आ गया, मिरेकल है. रोड बन गया, मिरेकल है.
1: सही बात है, बिल्कुल है.
2: माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, वरना मेरे मुझे कॉल करने का नहीं था, मेरे टाइप का टॉपिक नहीं था. मैंने कहा माहौल गर्म है, थोड़ा जाके ऐसी मजाक कर लूं मैं.
1: चलें गोड़ा, अच्छा किया,
2: हो जाएगा माहौल.
1: चलें जी, जबरदस्त, अच्छा किया आपने. और बिल्कुल बात तो ठीक है. चले, अभी बहुत कॉल्स का एक तांता बना हुआ है और एक गाना मुझे जरूर चलाना है, वरना मुझे ये कहा जाएगा कि आप गाने नहीं चलाएं. ठीक है, चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. रही जी, तो इसके साथ मैं गाने की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन जल्दी से ना बस मैं कुछ मैसेजेस शामिल कर दूँ. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? माविश, अल्लाह ने कहा है कि बस में हो तो दूसरा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, और मांगना किसी और से मांगना शिर्क है. बेशक अल्लाह मांगने वाले को ही अता करता है. अल्लाह वल्ला. अच्छा, मुझे लगता है कि आसिफ है ये, और आसिफ कह रहे हैं कॉल करने का. मैं कोशिश करती हूँ भाई, लेकिन ये कि अभी इस वक्त मौका ही नहीं मिल रहा मुझे, कॉल पे कॉल आ रही है तो मैं आपको कॉल कैसे मिलाऊं. नसीम कहते हैं कि चाल तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हाल का पता नहीं है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. चलिए अच्छी बात है, चाल तो ठीक है. और एक और भाई ने कहा, अहमद ने, कि टाइम मिले तो कॉल कीजिए. टाइम मिल गया तो भाई मतलब करती हूँ, कोशिश करती हूँ. ठीक है, चले जी, इसके साथ ही बढ़ेंगे म्यूजिकल ट्रैक की तरफ.

0: है जी राइट थोड़ा सा हमने मतलब बराए नाम सुन लिया है फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है हमने गाना सुनने की और हम आ जाते हैं कॉलर की तरफ हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो
0: वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रहे हैं
1: जी
0: मिसेस अफ्तल कैसी हैं आप
1: अल्लाह का शुक्र आप कैसी हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप बताएं कैसी हैं सब कुछ कैसा चल रहा है
1: बहुत अच्छा चल रहा है अल्लाह का बड़ा करम है
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: मैंने सब बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करना था क्योंकि सब ने इतनी ज्यादा दुआ की मेरे बच्चे के लिए
0: इंशाल्लाह ताला हम याद रखेंगे हमेशा हसन को अपनी दुआओं में
1: थैंक यू सो मच ये बहुत बड़ी बात की आपने और आज का टॉपिक तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अभी
0: आपसे पूछ रही हूं मेडिकल्स के बारे में कि

0: जिंदगी में कभी आपके कोई ऐसी चीज हुई हो जो आप चाहती हो लेकिन फिर भी मतलब ना वो लगता ना हो, इंशाल्लाह ताला एक तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको ये मिरेकल दिखाए कि आपका हसन बोलने लग जाए इंशाल्लाह ताला,
1: आमीन इंशाल्लाह ताला।
0: जी तो इससे पहले आपने कोई देखा है इस तरह की कोई चीज हुई हो जो एक्सपेक्टेड हो भी लेकिन फिर भी कहीं ना मतलब दिल में हो कि बस कर दे अल्लाह ताला?
1: हाँ, इस वक्त जो है ना जो मिरेकल हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ में मसले तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, एक अरबपति इंसान भी है ना तो उसकी जिंदगी में भी कोई ना कोई मुश्किल होगी, कोई ना कोई मसला होगा, कोई ना कोई परेशानी होगी। ठीक है, तो सुकून तो मैं नहीं समझती किसी भी अशरफुल मखलूकात को सुकून मुकम्मल तौर पे होगा, नहीं, टेंशन परेशानियां ये जिंदगी का हिस्सा है और ये आपकी जिंदगी के साथ ही चलती रहती है। अल्लाह ताला हर इंसान को सुकून दे, हर मुसलमान को सुकून दे और मैं ये सब बहन भाइयों से थैंक यू अदा करना चाहूंगी, शुक्रिया बोलूंगी कि जिन्होंने भी मेरे बच्चे के लिए दिल से दुआ की और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे सब बहन भाइयों ने मेरी इतनी इतनी ज्यादा मेरी इस चीज को महसूस किया और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ज्यादा शुक्रिया सब बहन भाइयों का,
0: आपका बहुत शुक्रिया।

0: शुक्रिया, बिल्कुल भी ना बोले
1: मिसेज अफजल, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में कॉल किया करें।
0: हाँ बिल्कुल, आप कॉल किया करें, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये कि शुक्रिया ना बोले, इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए दुआ गो हैं। और कतर में ना लिटरली मतलब मैं इस चीज़ पे, एक तो लोग बहुत अच्छे हैं, सीरियसली हमारे लिस्टनर्स बहुत अच्छे हैं, सब लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं। ये जो चीज़ है ना, वाकई मतलब शो करने का आपको एक मज़ा आता है, ये फील होता है कि माशाल्लाह से सब लोग ना एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे वाकई मतलब लिटरली देखा जाए ना अपने मुल्क में, मतलब रिश्तेदारों में कब नज़र आती है यार। मतलब यहाँ पे रहते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कदर शायद ऐसी जगह अल्लाह ताला की बड़ी कोई खास इस जगह के ऊपर जो है ना एक तरह का नजरे करम है कि अल्लाह ने सारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे बसा दिए।
1: ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। और इस वक्त जो है ना मेरी जो लाइफ में बहुत एक बहुत बड़ा हसन तो अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह ठीक कर देना, क्योंकि मेरे इतने बहन भाई दुआ कर रहे हैं और मुझे बड़ा यकीन हो गया कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरा सेकंड जो है ना हमारी लाइफ में जो एक प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है वो मिरेकल हो जाएगा अगर अल्लाह ताला ऐसा कर दे। और मुझे पूरा यकीन है कि रब की ज़ात करेगी वो इस वक्त है कि बस मैं ये चाहती हूँ मेरे शोहर की जॉब हो जाए
0: इंशाल्लाह ताला मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, सब चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह
1: आमीन।
0: बस अल्लाह पे भरोसा रखें, आप
1: अल्लाह पे बड़ा भरोसा, उसकी जात पे ही तो यकीन है, उसी अल्लाह ताला ने कभी किसी चीज का मोहताज नहीं किया। नौकरी जाने के बावजूद भी अल्लाह का इतना खास करम है, वही आपके वाली बात कि कतर में वाकई लोग बहुत पोलाइट और बहुत ही मददगार हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं। तो ये एक मिरेकल हो जाए मेरी लाइफ में तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला मेरे इसके हलाल दे और मेरे बच्चों का वसीला बन जाए। सब बहन भाई इसके लिए भी दुआ कीजिएगा। और महविश मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में कॉल करके,
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मिसेस अफजल, एक होता है ना कि कुछ लोग वही होता है कि अल्लाह ताला ने कहीं हमें पहले मिलाया हुआ होता है, फिर हम यहाँ पे आते हैं तो एकदम से कुछ अपना अपना सा लगता है। तो आपसे भी बात करके बिल्कुल इसी तरह से महसूस हुआ कि बहुत अपनी अपनी सी है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला जुड़ी रहिएगा, कॉल करती रहिएगा, आपसे बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला हम खुशखबरियां आपकी तरफ से सुनते रहेंगे।
1: ऐसा ही होगा,
0: ठीक है। और चले खुश रहा करें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे इंशाल्लाह ताला, ठीक है।
1: आमीन आमीन, आपको भी अल्लाह ताला भी आपको भी खुश रखे।
0: आमीन,
1: अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो हमारे साथ हैं थीम मिसेस अफजल और इसके साथ ही भाई है मेरे पास मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। और इसके साथ लिखा है, आज के मौजू के हवाले से इतना कहूँगा कि हालात हक में नहीं है लेकिन दिल और गुमान इज्जत पर हैं कि मेरे नसीब में मौजे बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरत होंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना, वसलाम। और अच्छा, दो जगह लिखा है ये और तीन जगह लिखा है, तीन दफा जफर ने जो ना हमें मैसेज किया है कि ये नहीं तो ये तो देखेंगी। मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, थैंक यू सो मच। तौफीक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो अलवकरा से। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल हैं। इरफान अली कहते हैं सलाम महविश, होप ऑल वेल। हम लोग डेली सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब अल्लाह के मौत से हैं। हमारे हसन बेटे के लिए मैं दुआ गो हूँ, रिगार्ड्स इरफान। थैंक यू इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का भी। सैयद खादिम हुसैन का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम सलाम भाई, कहाँ गायब हैं आजकल आप। और इसके साथ ही जी मेरे पास मैसेज है मोहम्मद यूसुफ खान का और ये कहते हैं, अच्छा चलें ठीक है, मैं ना ये वाला ऑफ एयर ही पढ़ती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जी मेरे पास है एक और मैसेज, अच्छा ठीक है भाई, ये किसका नाम मुझे देखना पड़ेगा कि क्या नाम है इनका, खा करके जो है आपका, मैं देखती हूँ जवाब देती हूँ आपको। और किसी का रह तो नहीं गया है मेरा ख्याल है सब लोगों के। हाँ, ये एक मैसेज आई है असमत आफरीदी और ये कहते हैं कि जिन लोगों पे तकलीफ़ें आती हैं या आजमाइशें आती हैं और हम माशरे में उनको ये ताने दे रहे होते हैं कि कोई भी इस तरह का मसला है, तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि हम लोगों ने अल्लाह का अजाब देखा हुआ है अपनी आंखों से कैसा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये दुनिया अमल की जगह है, जजा और सज़ा की जगह नहीं। उसके लिए हमें मौत का इंतज़ार करना चाहिए, ना कि इस दुनिया में हमें फतवे देने चाहिए, जज करना चाहिए। अंबिया और रसूलों पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई थी तो क्या मतलब वो मामला क्या था, हम अपने काम छोड़ के अल्लाह के काम देखना चाहते हैं, उसमें हम मुदाखलत करना चाहते हैं, तो किसको जन्नत मिलती है किसको जहन्नुम, इसका फ़ैसला अल्लाह ने करना है, हमने नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह से और वाकई ऐसे ही, और अल्लाह ताला का वाकई मतलब मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में ना ये बात रियलाइज़ हो गई बहुत अच्छी तरीके से। और ये इसमें कोई दूसरी तरह की बात ही नहीं, कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह ताला यकीनन जिसके ऊपर अपना ख़ास करम करता है ना उसकी ज़िंदगी में ही मुश्किलात देता है और अल्लाह ताला उसके साथ बहुत सारी आसानियाँ भी देता है। अच्छा, जी इसके साथ है मेरे पास मैसेज, बिग थैंक्स। और ये हाँ, एक ने मुझसे पूछा था कि उनको

पल्स ऑफ कुरान की जो वो है एक एपिसोड चाहिए थी, तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो वेबसाइट है www.urduradio.qa, इस पे हमारी सारी एपिसोड्स होती हैं अपलोड, तो आप उस पे आराम से ना सुन सकते हैं। अभी जब तक ये वाला चल रहा है स्लॉट, तो जब तक तो आप इजीली सुन सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही है शहजादा सलीम ने भी मैसेज किया हुआ है हसन के लिए, और इंशाल्लाह ताला चलें जी, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों की दुआएँ कबूल होंगी। और मोइर खान का मैसेज, अच्छा जी चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और इसके साथ ही जी हम आपसे लेते हैं इजाज़त, मेरे बाद आपको फजील ज्वाइन कर लेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे बात होती है इंशाल्लाह, मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: वही कर लो टाइम चेक कर लो हबीबी 5:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और क्या है हाल चाल ये शो आपके लिए जिसका नाम

0: खुलता है जब मेरा लैपटॉप खुल जाए, तो अभी ऑफिस खुला नहीं है, ये दफ्तर बंद ही है तो वो जब खुल जाएगा तब प्रॉपर शुरू होगा। तो फिलहाल आप सभी का इस्तकबाल, क्या है हालचाल, और अरे ये इस्तकबाल और हालचाल शायरी बन गई पूरी। क्या है वैसे हिसाब किताब, कैसा चल रहा है? आज तो मंगलवार का दिन है, परसों अपना वीकेंड आ गया, ऐसी तैयारी होती है, ऐसी दिन गुजरता है भाई साहब। देखो कल ऐसा लग रहा है कि अभी तो आए संडे, कल ही तो था यार, आज ट्यूजडे हो गया, और बड़ी तेज़ी से दिन जो है वो गुजर जाता है। और ईद भी आने वाली है, अब तो हमारे ऑफिस में भी ईद की हर तरफ तैयारी है, और हमारी तैयारी थोड़ी अलग होती है। लोगों की तैयारी क्या होती है, अरे यहाँ गए ये ख़रीदारी करी, अरे वहाँ गए वो ख़रीदारी करी, यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ अच्छे कपड़े। हमारे ऑफिस की तैयारी है, तुमने अभी ये काम नहीं किया, अरे कर दो मेरा भाई यार। हमारे में अलग तैयारी, क्या अभी तक तुमने वो शो नहीं किया, अरे भाई शो कर दो यार, मतलब भाई बहुत डांट पड़ेगी यार, अभी इस बार तुमको करना ही है, आज ऑलरेडी लेट हो गया, अरे यार अभी से क्यों मांगे चले जा रहे हो यार, ये सब चल रहा होता है। कह रहे दो हफ्ते बाकी हैं अभी, अभी कितनी जल्दी है, आज 18 ही तारीख तो ही है। हमारे शकीब भाई इस बार जो मेरे पीछे पड़े हैं कि भाई शो दे दो, अरे रुक जाओ मेरा भाई, हमको मतलब पहले से उनने एक्सेलरेट जो कर दिया है बड़ा दबा के किया है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, मैंने जून का शो दे दिया। फिर लो बे और बताओ, जॉक्स अपार्ट, लेकिन अमीन भाई तो अमीन नहीं, शकीब भाई तो पीछे पड़े ही हैं, बाकी चल रहा है अपना भी, कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और इसी तरह की क्या कहते हैं उसे, इरिटेटिंग जो बात हमारे कानों में पड़ती हम आपके कानों में पड़वाएंगे। दिल का दर्द कैसे ही मैं हल्का करूं, ऐसे ही करूंगा मैं तो। सुंदर एफएम 107, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शकीब भाई के बारे में और बात करेंगे कि यह क्या क्या करके आज इस बार इस हफ्ते इन्होंने बहुत परेशान किया मुझे।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: FM 107 पे वाइब्रू 5:16 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। अब जाके दफ्तर खुला है ये लैपटॉप खुल जाता है तो मेरा काम हो जाता है, ये जरूरी है खुलना। बाकी आज कुछ बेहतरीन इवेंट्स जो चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और वो है बुक फेयर, इंटरनेशनल बुक फेयर। ये 35वां बुक फेयर है जहां से अमिता हर रोज लाइव हमारे साथ जुड़ती हैं और इस वक्त लाइन पर भी हैं। जी हेलो, क्या हाल चाल चल रहा है अमिता जी?
1: यस फजील, यस मैं क्या ही बताऊं, आज मैंने सोचा कि किताबें तो डेफिनेटली, किताबों की हाइलाइट्स हम हर दिन आपको देते रहेंगे, बट यहां पर इसके अलावा क्या क्या चल रहा है थोड़ा आज उस पर भी गौर फरमाएंगे। तो मैं जैसी आई, दिस इज हॉल नंबर, गेट नंबर 5, और जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री मारते हो तो आपके राइट साइड में एक वर्कशॉप चल रही है, ठीक है, एंड इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट।
0: फ्री है, अरे फ्री तो हम धनिया ले लेते हैं, आप वर्कशॉप भी ले लेंगे।
1: यस, तो जब आप यहाँ पर आते हो तो ऑब्वियसली इट इज फॉर द प्रमोशन ऑफ कदरी कल्चर, और यहाँ पर जो साधु डिजाइन, साधु आर्ट है बेसिकली, उससे रिलेटेड बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं जो अवेलेबल है। तो जो भी वर्कशॉप करना चाहता है, दे कैन जस्ट कम एंड सी, एंड वो टैम्पलेट्स आपको मिलेंगे। तो बुक मार्क बनाने की वर्कशॉप है, प्लस एक मोज़ाइक आर्ट कहते हैं, ये मैंने खुद अभी समझा कि बेसिकली लाइक क्या होता है। ठीक है, आप ऐसे यू नो बुकिश नॉलेज ले लेते हो कई बार, बट प्रैक्टिकली वो क्या है। सो आई जस्ट वेंट देयर इनसाइड और मैंने जाके देखा, तो बेसिकली ये टाइल्स का आर्ट है, और जो टाइल्स होती हैं उसमें लाइक फ्लावर्स बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के, और जैसे अपने हिना में, अब और देसी स्टाइल में समझाओ तो जो अपन घर में मेहंदी या हिना लगाते हैं, तो जैसे नहीं है डिजाइन बनती है काफी लंबी लंबी बेलें और उस तरह से, तो उस तरह के डिजाइन लाइक पूरे अरब रीजन को फोकस करते हुए मोज़ाइक आर्ट में उसे पिरोया गया है। एंड इफ यू कैन कम देयर तो आप वो टाइल्स बना सकते हो। इट्स अ वर्कशॉप, लाइक यू चूज योर ओन टेम्पलेट और फिर आप बैठे और फिर आपको मार्बल्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्बल्स मिलेंगे, यू चूज दैट और फिर आप उसे ग्लू के जरिए या जो भी इनके ऑप्शंस होते हैं उस पर आप स्टिक कीजिए, एंड लास्ट में ये आपको फ्रेम करके दे रहे हैं।
0: अरे वाह, ये इससे बढ़िया क्या है कि आप सबूत ले जाए कि आपने जो खतरनाक एक्सपेरिमेंट करा उसका सबूत खुद लेकर जाओ, यहाँ रहना नीचे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कि ये जो आपने आफत मचाई है भाई साहब, आप ये वर्कशॉप की आफत यहाँ ना छोड़े, लेकर जाए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और लेकिन ये अच्छा भी है ना कितना कि आप यू नो अपना जो भी काम आपको करना है वो आप काम करिए, मोहब्बत दिखाइए, फिर उसके बाद आप लेकर जाइए, आप बाकायदा दिखा सकते हैं कि वर्कशॉप में आपने क्या किया है। 35वें इंटरनेशनल बुक फेयर की याद आप अपने घर पे रख सकते हैं।
1: Exactly,
0: और फिर ये फ्री है, इससे बढ़कर क्या चाहिए है
1: दी? ये फ्री है और आप जब अंदर जाते हैं तो आपको थोड़े से पैसे भी निकालने पड़ेंगे, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइज्ड छोटे छोटे आउटलेट्स यू कहें या स्टॉल्स बना के रखे हैं। तो एक मैं अभी स्टॉल पे गई जिसमें बड़े बड़े धागों के गत्थे रखे हुए थे, एंड ये नीडल वर्कशॉप है, सॉरी नीडल कस्टमाइज स्टॉल था, और मैंने जाके वहां पे देखा कि भाई नीडल वर्क, चलो हमारे जहन में क्या आता है कि सिलाई बुनाई थोड़ी बहुत यू नो उसके साथ और क्या हो सकता है। तो सिर्फ धागों से, नीडल से छोटे छोटे बैग्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे जो हम डिजाइनर बैचेस बनाते हैं कटर को हाईलाइट करते हुए, यहाँ की चीजों को दिखाते हुए, कहीं ऊंट कहीं घोड़े कहीं जो यहाँ के सोल्जर्स हैं, उस तरह के ना छोटे छोटे बैचेस बनाए
0: हुए, नीडल से बनाया हुआ, यानी कि सुई से, जो हमारी अम्मियां बनाया करती थी दोस्तों सर्दियों में ऊपर बैठ के छत में, है ना, याद है आपको, छत पे बैठ के वो सुइयों से बनाया करती थी। हालांकि वो हर वक्त बैग नहीं होता था, कई बार बच्चों के ऊनी कपड़े भी होते थे और वो गड़ रहे होते थे, पहनने का मन नहीं होता था, अम्मी थप्पड़ मार के कहती थी पहन, मैंने बनाया है पहन।
1: हाँ, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बट यहाँ बहुत खूबसूरत, मुझे मतलब बहुत पसंद आए। इनफैक्ट जैसे बड़ा ट्रेंड चला है आजकल जो बैग्स के साथ हम टैग्स लगाते हैं, ठीक है, बैग्स के टैग्स, फ्रिज मैग्नेट्स, इनफैक्ट फोन के पीछे लगाने वाले भी मैग्नेट्स है, एंड दैट दे आर ऑल हाईलाइटिंग कटर, और यहाँ के सिम्बल्स छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत प्यार से कस्टमाइज बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें ना यहाँ अवेलेबल है, और मैं अभी जस्ट उस स्टॉल में बंदी से बात करके आई कि भाई देखो मैं जब अपना अपना एंटायर कवरेज खत्म करूंगी, तो मैं आकर आपके पास से ना ये फोन वाले जो मैग्नेट से ही लेने वाली हूँ. दैट्स देयर रियली नाइस.
0: अच्छा, तुमने डीलिंग कर ली है. वाह भाई वाह,
1: डीलिंग मेरी हो चुकी है.
0: देख रहे लड़की को सेल्स मार्केटिंग पीआर सब समझ में आ रहा है. वहां जाके सारी किताबें पढ़ ली.
1: यस एग्जैक्टली, सीरियसली. तो फजील, अभी तक तो यही पहला मेरा स्टॉप था. और मैं फिर से दोहरा देती हूँ, इट्स गेट नंबर 5 जो कि अभी मुझे लोग सुन रहे हैं एंड इफ दे आर कमिंग टुवर्ड्स जेईसीसी, सो दे एंड अगर उनको वर्कशॉप करनी है दैट टू फ्री एंड थोड़ा सा वो फील लेना है सिलाई बुनाई का और या मोजाइक डिजाइन को डिजाइन करने का, यू नो ये टाइल्स वाला जो डिजाइन होता है, आर्ट होता है, इस पे भी थोड़ा सा आप अपना हाथ साफ

0: कर सकते हो. सो दे कैन जस्ट कम एट गेट नंबर 5 और आप सीधा अंदर आए एंड यू विल गेट राइट साइड. आप जस्ट जाकर यू कैन एक्सपीरियंस दिस वर्कशॉप.
1: क्या बात है. अच्छा, उसके अलावा अगर तुमसे कोई मिलना चाहे तो क्या तुमने पहना है, कैसे मिले या फिर कैसी किधर हिसाब क्या है, मतलब कहीं पर मिलोगी अगर हो पाए, या फिर ऐसा है कि नहीं हमने ये ड्रेस पहनी है, आप ढूंढिए क्योंकि मैं तो टहलती हुई मिलूंगी, मैं एक जगह नहीं रुकूंगी.
0: देखो, मैंने एक प्लेन ब्राउन कलर का गाउन पहना है विद कोट.
1: ओके,
0: एंड इट्स अ लाइट ब्राउन कोट एंड ऑब्वियसली आई एम वेयरिंग माय टैग.
1: हां, टैग से दिख जाएगी आपको.
0: या तो इजी है मुझे पहचानना क्योंकि मैं सिर्फ एक जगह पे नहीं दिखूंगी, मैं हर जगह घूम रही हूँ. तो एनीवे यू कैन कैप्चर मी.
1: बिल्कुल. तो या फिर अगर आप दोस्तों हर 10 मिनट में किसी महिला को देख रहे हैं, वो कॉल कर रही है, कोई लड़की कॉल कर रही है, बार बार बात कर रही है लंबे वक्त तक, तो समझ जाइएगा हाँ, ये FM 107 की अमिता है.
0: Yes, in fact, हमारे पास FM 107 का माइक भी है, तो बहुत इजी है
1: तब तो
0: हमें पहचानना. ठीक है,
1: हाँ, तब तो आसान है. अभी मुझे लग रहा था कि भूसे के ढेर में आपको सुई ढूंढनी पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है कि अब तो आपको आसानी से यू नो अमिता दिख जाएंगी क्योंकि आपके पास माइक है ना, अमिता के पास माइक है.
0: ओके,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमिता. और अभी कुछ देर में हम फिर कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की और जितनी भी डिटेल है सारी खींचेंगे. ठीक है,
0: डेफिनेटली.
1: चले फजील, फिर मुलाकात करते हैं. 35वां इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है. अगर किताबों की समझ नहीं भी है तब भी यहाँ पर ऐसी किताबें, ऐसी क्रिएटिव किताबें मिलेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा. कल एक किताब के बारे में बताया अमिता ने, जो अगर यू नो कोई बच्चा है जो देख नहीं सकता या फिर जिनको पढ़ने का शौक है, जिनको एक्सपीरियंस करने का शौक है कि ये जानवर कैसे होते हैं, तो वो किताब में ऐसा है कि अगर भालू बना है तो उसके रोए वगैरह लगे हैं, उनके बाल कैसे होते हैं वो आपको एहसास हो जाएगा, है ना. फिर एक ऐसी किताब है जिसमें चलती हुई चीज़ दिखाएगी, आपको हैरी पॉटर जैसा फील होगा. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई, आपको मजा आएगा. ये क्रिएटिव किताबें भी यहां पर मौजूद हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो अलग है ना. किताबें तो पढ़ के देखो मुझे हमेशा नींद ही आई है, क्रिएटिव कोई किताब है तो बताओ. कई बार बुक को देखकर पढ़ने का मन करता है, है ना, तो ये भी बड़ा जरूरी है. उसके अलावा आप कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, कतर का हालचाल क्या है. सबसे पहले वेदर अपडेट, माहौल क्या है, मौसम क्या है. गर्मी बहुत दबा की है, तो ऐसे में अगर आज के टेम्परेचर के बारे में बात करें, इस वक्त फिलहाल बहुत ही ज़्यादा तपती हुई धूप 36 डिग्री सेल्सियस की है, 41 का फील दे रही है और ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी है, तकरीबन 32% पे है. और QMD ने बताया है कुछ मरीन वार्निंग्स दी हैं, यानी कि 20 मई से, कल के दिन से वीकेंड तक, ये जो विंड है जिसे कहते हैं अल बरावी विंड, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं मरीन वालों को, जिनकी नाव है, जो यू नो समंदर में जाके जेट्स की नचाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वार्निंग है 3 से 6 फीट की और कभी कभी ओकेजनली 9 फीट की लहरें जो हैं वो उठ सकती हैं बिकॉज ऑफ अल बवारी विंड्स. ये मरीन वार्निंग दी गई है 20 मई से पूरे वीकेंड. और जब तेज़ तापमान बदलता है तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो पैदा होती हैं. उसके अलावा अगर हम कल के बारे में बात करें कि कितना टेम्परेचर होने वाला है, ये लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान, ये टेम्परेचर पहुंचने वाला है दिन के वक्त. अगर कोशिश हो, अगर आपको बाहर काम नहीं करना है तो बिल्कुल ना करें. ऐसा ना हो कि काम तो नहीं है लेकिन सोच रहा हूँ, प्लीज़ पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, अपने कार में पानी रखें लेकिन कार में इतनी देर तक ना रखें कि वो गर्म हो जाए उसके बाद पी रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है. उसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं. इवेंट्स जो अभी हमने आपको बताया, इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है और ये 35वां दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर है जो कि DECC में चल रहा है, दोहा एग्जीबिशन सेंटर में. सो इसका लुत्फ जो है वो ज़रूर आपको उठाना चाहिए. और फिर जो सबसे ज़बरदस्त इवेंट है वो आने वाला इवेंट है जब लाइव होंगे द वन एंड ओनली अली जी, है ना. तो उनको तो देखने वाले बहुत ही शौक से देखेंगे, अब तक टिकट खरीद भी ली होगी. 29 मई को लकी अली आ रहे हैं और ये आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर हैं जो लाइव दोहा में परफॉर्म करेंगे 29 मई को. विजिट कतर की वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. उसके अलावा परसों से यानी कि 21 तारीख से फ्लफी फैंटासिया शो भी शुरू होने वाला है मॉल ऑफ कतर के ओएसएस स्टेज पे. तो ये थी कुछ जानकारी FM 107 पे जो कतर में ट्रेंड होने वाली या फिर ट्रेंडिंग चल रही है. अब बात कर लेते हैं आज के सवाल के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, या फिर पहले सवाल ही कर लें, सवाल कर लेते हैं पहले, तब तक जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आप जवाब भी दे सकते हैं. आज का सवाल सबसे पहले,

0: ये सवाल मुझे आया है तब जब मैं अपने फैमिली में लोगों को जब देखता हूँ, नोट करता हूँ कि वो कितने एक्टिव हो जाते हैं जब उनके घर में कोई मेहमान आ रहा हो। आप देखिए, एक गोश्त का लोथड़ा जैसे पड़ा रहता है ना इंसान वैसे ही घर में पड़ा रहता है, कोई उसमें हिलावट नहीं होती है। रील चल रही है तो एक एक घंटे तक चल रही है, कोई काम नहीं है तो सोफे में गड्ढे बने चले जा रहे हैं, कुछ काम वाम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही अगर किसी को बता दो कि मेहमान आ रहे हैं, उसके अंदर ऐसा ऊर्जा दौड़ती है, ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है, प्रवाहित नहीं समझ में आया होगा लेकिन ऐसी ऊर्जा दौड़ती है, ये वाली लाइन सही है, कि उसके अंदर न जाने कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, उसके बॉडी में ताकत आ जाती है, वो गोश्त का लोथड़ा जो है वो उड़ जाता है। तो मैंने अपने घरों में देखी है कि मेहमान आ रहे हैं, सारी सफाई बाबा जो 10-10 दिन से घर में पड़ा हो किनारे कहीं, उसकी भी सफाई हो जाती है। मैंने तो अपना एक घर का नियम कर लिया है, अगर घर में जरा भी सफाई नहीं हुई, किसी मेहमान को बुला लो आप जितने भी लेजी हो, आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो मैं तो वैसे भी काम नहीं करता, मैंने तो ये सोच लिया घर में मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन घर में काम करवाना है इसलिए ये काम करता हूं। तो आज का सवाल इसी पर है कि लोग जब घर में कोई आता है गेस्ट, तो इतने एनर्जेटिक क्यों हो जाते हैं? क्या आप भी उनमें से हैं जिनके घर गेस्ट आते हैं तो वो एनर्जी से भर जाते हैं? जब उनके घर गेस्ट आते हैं तब वो सफाई खूब कर लेते हैं, जब उनके घर गेस्ट आते हैं तो डस्टिंग कर लेते हैं, हैं मतलब आप देखिए किस पर कपड़े नहीं पड़ते, जो टेबल रखी उस पर भी कपड़े, दस्तरखान जो गंदा था अभी 2 दिन से उस पर भी कपड़े पड़ रहे, गीला वाला वो भी, ओम फो, टीवी गंदी है तो टीवी पर जो गर्दा बैठी थी भाई वो भी साफ हो जाती है। किनारे एक टेबल को जरा भी इज्जत नहीं मिलती थी, उस इज्जत के लिए वो तड़पता था टेबल, अब क्योंकि मेहमान आ रहे हैं साफ। एक कमरा जिस कमरे में कोई नहीं जाता था, जिसकी सोसाइटी में इज्जत नहीं, घर में कोई इज्जत नहीं, उसका डबल बेड का जो चादर है वो 6 महीने से पड़ा हुआ, लेकिन मेहमान आ रहे हैं, नई चादरें चढ़ती हैं भाई उसके ऊपर, खिड़कियां साफ होती हैं, ये इससे बढ़कर क्या चाहिए, खिड़कियां साफ हो रही हैं। और ये तब होता है जब कोई मेहमान आने वाला होता है। तो आपका घर भी वैसे ही है या आप भी वैसे ही हैं लेजी वाले, लेकिन जब मेहमान आता है तो आप उड़ जाते हैं? अगर है तो बताइए, और क्यों ये भी बताइए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107-666-22-107। मेहमान आने पर आप घर की सफाई में जुट जाते हैं या फिर जैसा है वैसे ही रहते हैं, भैया हम हमें दिखावे का शौक नहीं, या वो वाले आप हैं, बताइए हमारे व्हाट्सएप पे 666-22-107। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो
1: हेलो फजील, विमलेश बोल रहा हूँ, कैसे आप?
0: अरे विमलेश भाई क्या हाल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और तुम्हारी ये तकिया कलाम आ रहे हैं ना बीच में कि सोफा दिलता हूँ मतलब दिल खुश हो जाता है मेरा मेरे पास ऐसे ही बातें रियलिटी में बताने, मैं भी ऐसा ही प्राणी हूँ।
0: अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है विमलेश भाई, क्योंकि मेरे ख्याल में आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। हाँ, गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी,
1: अभी मेरी आवाज आ रही है
0: एकदम परफेक्ट है।
1: तो मेरा यही कहना था कि मैं भी उसी टाइप का प्राणी हूँ।
0: अच्छा,
1: जो ना गेस्ट के आने पर जागता है। अब जो है ये पौधों का डिजाइन चेंज किया जाए, वॉशरूम में परफ्यूम लगाया जाए।
0: तेरी क्या बात है,
1: सच में कसम से कह रहा हूँ, मेरे पौधे और मतलब मेरी जो आदत है मेरी, मैं मतलब सुस्त प्राणी हूँ, मतलब इंग्लिश में आप लोगों को समझा तो लेजी मैन
0: लेजी सुस्त समझ गए होंगे, सुस्त तो ऐसा लफ्ज है जो सब समझ जाते हैं।
1: जिस तरह से आप अभी कर रहे हो ना सोच, मैं बीच में देख रहा हूँ ऐसे ऐसे शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते रहो कि कई लोगों की आत्मा जो होती है वो तृप्त हो जाती है। ये क्या बोल गया ये
0: इंडिया वालों को समझ में आ जाता होगा, इसलिए पाकिस्तान वाले भाइयों के लिए या बांग्लादेश वाले भाइयों के लिए थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड पे भी एक बार तलफ्फुज़ उसका या चेंज करके या उसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ मैं।
1: तो वही है, मैं भी ऐसा ही प्राणी हूँ। और मुझे मतलब बचपन की कुछ सीन याद है फजील, कि जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक्सरसाइज करने पे एक डोपामीन नाम का केमिकल निकलता है आपके अंदर जो आपको आपको खुश करता है। वैसे ये कोई केमिकल है जो गेस्टोमीन मेहमानोमीन बोल लो उसको, वो सुन के ना ऐसा दिल मेरा खुश होता है, चलो लगो सफाई पे,
0: सफाई पे
1: है ना। लेकिन बचपन में अब आज तुम्हारे तकिया कलाम से इतना खुश हुआ ना कि मुझे बस ऐसी बातें याद रही। बचपन में मम्मी पापा ऐसा किया करते थे कि अब वो घर वर ठीक किया करते थे। हमें किस चीज का डर होता था पता था? हमें डर होता था कि कब मार पड़ जाएगी चक्कर में कि उन्होंने जो सफाई करी है ना
0: उससे कुछ
1: इधर से तितर बितर ना हो जाए।
0: और कई बार उनकी सफाई में हमारी कुटाई हो जाती थी कि अरे ये किताब कहाँ मिली, तुम्हारा होमवर्क नहीं कम्प्लीट है, एक बार डायरी मिली।
1: बिल्कुल। और मैं तुम्हारे आज तकिया कलाम सुन सकते मुझे मतलब मैं हमारे पापा ना ये बहुत वर्ड यूज किया करते थे, डायरेक्ट नहीं बोलते थे, मतलब मास्टर आदमी ना समझदार कहते हैं को ऐसा है कि लातो फ्लाम और घुसो मीन लगेगा ना तो डर जाओगे।
0: टीचर होने के साथ क्रिएटिव थे, बच्चों को पढ़ाना होता था ना।
1: तो यही कहानी थी, ये है मेरे अंदर भी है। आप कभी हमारे गेस्ट बन के आओ हमारे घर में तब पता चलेगा, और बिना बताए हुए आओ तब पता चलेगा।
0: हाँ अरे एक बार मालूम है, मैं यहीं पर अभी शर्म ने ख्याल से 2 महीने या 1 महीने पहले की बात है, तो मैं किसी के घर गया और उन्होंने एक्चुअली बुलाया था और हम लोग घर के करीब थे उनके, तो हम लोग उसी अब उनको मौका नहीं मिला, उनको लगा कि अभी आधे घंटे लगेंगे इनको आने में, तब तक वो अपना काम करने लगे। तो जैसे ही हमने गेट से एंट्री ली ना, क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच गए, और जैसे ही गेट पे एंट्री ली तो वो स्प्रे कर रहे थे घर पे। और वो भाई उल्टे पैर इतनी तेज भागे हैं वहां से कि ओ इन्होंने तो पकड़ दिया। उनको लग रहा था ये पता चलेगा कि घर में नेचुरली इतनी खुशबू आती है, वाह। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। तो उन्होंने पकड़ लिया कि अरे
1: तो दोनों तरफ से सावधानी बरतने की जरूरत है, आपके तरफ से भी और जिन्होंने बुलाया है, अगली बार बता के जाना।
0: बता नहीं, हम तो वही करीब थे, उन्होंने बुलाया था, तुम करीब थे, हम जल्दी पहुंच गए, बस यही फर्क था। उनको लगा आधा घंटा तो लगेगा आने में,
1: लेकिन है बहुत अच्छा टास्क। और मुझे लगता है ना अगर आप लेजी हो ना और आपको घर की सफाई मतलब नहीं करना पसंद है तो हम महीने में एक बार एक दो गेस्ट बुला लिया करो।
0: नहीं तो मैंने यही अब सोचा है कि पहले तो जितना खुल के फैलाना हो फैला, एक तो मर्द आदमी यार कहाँ अब मेहनत करने का दिल नहीं करता, उसको अगर कोई मिल जाए ना कि हाँ ठीक है कोई करने वाला है तो फिर वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो अपने काम नहीं करता है। तो अब मैं वैसा ही हो गया हूँ कि अब मैं अपने काम नहीं करता हूँ।
1: नहीं मैं ऐसा टाइप का आदमी नहीं, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं डर से कर लेता हूँ।
0: डर से नहीं, मैंने इसीलिए अपने घर जो छुरी रखी है ना वो धारदार नहीं रखी है, ठीक है। उसके अलावा डंडे वंडे तो मेरे घर में खैर है ही नहीं, और गमला वाला मैं तो बहुत दूर रखता हूँ भाई, और ऐसे गमले रखता हूँ जो थोड़े भारी हो कि उठाने में भी मुश्किल हो, छोटे गमले लगते भी तेज हैं और दूर से फेंका जा सकता है, तो मैं तो इन सब से दूर रहता हूँ। देखो
1: आज तो पूरी ट्रेनिंग हो गई शादीशुदा मर्दों की, चलो अच्छा लगा मुझे ये टॉपिक।
0: और उसके अलावा मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो तुमने कहा ना कि महीने में एक बार गेस्ट को बुला लो, तो मैं कोई काम नहीं करता हूँ, यही अच्छा है कि तरीका, अगर कोई लगे कि घर आज ज्यादा गंदा है तो अगले दिन गेस्ट आता है तुरंत सफाई हो जाती पूरे घर में।
1: सच में
0: टैलेंट
1: अभी लगता है हमें गेस्टिंग करनी पड़ेगी, काफी गंदा हो गया घर हमारा।
0: चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके। तो अपना अपना टैलेंट है लोगों का भाई, देखो हर इंसान अपनी जिंदगी में आसानी ढूंढता है, मैंने भी आसानी ऐसी ढूंढी और विमलेश भाई ने भी ऐसी आसानी ढूंढी है ना। बाकी सलाम है हिशाम साहब का, वालेकुम अस्सलाम, क्या है हाल चाल। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरे गाड़ी गलत जगह पार्किंग की हुई थी, जब मैं वापस आया तो पुलिस सामने आईपैड लेकर घूम रही थी, उसने पिक्चर ले नहीं हुआ रहता कि एन मौके पर मैं आ गया, मैंने कहा सर मेरी तो बच गया, मामला बच गया। खान साहब पार्किंग में मैं मालूम है एक बार मेरा फाइन का हिसाब हो चुका है, तो और वो बड़ी अजीब बात पे हो गया था कि मतलब मैंने रोका और बस मैं बढ़ाने ही वाला था, तो तब तक सिक्योरिटी वाले उन्होंने कहा यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, मैं कहा ठीक है के बाद उन्होंने अपना छोड़ दिया, वो ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया कि लेकिन चलान हो चुका है, फाइन हो चुका है। मैंने कहा अरे भाई अब वो वापस भी नहीं हो सकता, तो मैं वहां से निकल गया। फिर बाद में पता चला कि 300 का फाइन नो पार्किंग जोन में खड़ा करने पर है, तो अब मैं बस 2 ही मिनट हुआ ही था वहां से निकलने ही वाला था, अब मैं क्या करता हूं भाई, मुझे 100 मीटर चलना पड़े मेरे को मंजूर है। मैं 100 मीटर के चक्कर में अपना 300 का चूना नहीं लगवाना चाहता। मैं तो इसलिए बच जाता हूँ अब मैं दूर खड़ी करके चल लूंगा पैदल, वो बर्दाश्त है। फजील शकीब भाई कर दिए, वो बेचारे तो इतने पोलाइट और काइंड पर्सन है। यूसुफ भाई, ये जो बाहर से दिखते हैं ना, ये सिर्फ दिखते हैं हमारे, मतलब ऐसे बात, आप इंसानी तौर पे अच्छा आदमी है, लेकिन काम के माहौल में जब आता है ना, तो वो उनको है हर चीज टाइम पे दो मेरे को, लेकिन अच्छे दोस्त हैं। सुन रहे शकीब भाई, आज अगर तारीफ कर दी है तो एक शौरमा तो चाहिए अब। बाकी एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम पजील भाई, कैसे हो भाई साहब?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने पजील कहा है कि फजील, पजील सुनाई दिया मुझे।
2: फजील भाई,
0: फजील भाई कैसे है मेरा भाई?
2: मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। क्यों फजील भाई, मैं आपका पुराना सुनने वाला हूँ, करीम शाह बात कर रहा हूँ मेरी जान।
0: अरे
2: वो काकी माकी सारे चली गई, बस हमें यतीम बना दिया यार।
0: अरे क्या बात कर रहे हैं मेरा भाई। देखिए, कुछ जो इंसान है वो लंबे वक्त तक गायब जरूर हो जाते हैं, जब आते हैं तो वो थोड़ा बूम बास्टिक करके आते हैं, आ जाएंगे। और देखिए, वो हमारे जिंदगी में तन्हाई अच्छी है, ये वाली तन्हाई अच्छी है जहाँ पर काकी नहीं है, बाकी जब आना होगा आ जाएंगे। और सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक
2: भाई? ये कोई खास सर, दो तीन दिन मैंने सोचा बात कर लूं।
0: हाँ बिल्कुल,
2: बस काम ये है ना, बंदा फारिग नहीं हो रहा सर, बस इसी वजह से। इधर गाड़ी में होते हैं तो पार्किंग का भी थोड़ा सा मसला होता है, और बात करने का भी, तो बस इसी वजह से। चलो ठीक है यार।
0: नहीं सही है बिल्कुल। अच्छा तो मैं आपसे भी सवाल कर लेता हूँ, वो ये कि आप भी वही वाले हैं जो घर जो है तभी साफ होता है जब कोई मेहमान आता है, या फिर आप वो वाले हैं कि नहीं हमारा तो साफ सुथरा रहता भाई, या फिर हम मेहमान की इतनी भी नहीं रखते हैं कि घर साफ करें?
2: क्या बात किया यार, क्या बात किया। ये चीज तो मेरे रोजमर्रा जिंदगी में ये चीजें हैं। मैं यहाँ पर भी जो रहता हूँ, मेरे मेहमान का एक बिस्तरा अलग होता है यहाँ पे।
0: अच्छा,
2: और अपने रूम में भी सारे जितनी चीजें हैं, मैंने आज भी वो एक लड़के ने सराना चेंज किया था, मैं दो तीन सरानों की वो कवर चेंज कहते ना, तो उसने वो अपना सराना छोड़ के उसके ऊपर, तो सुबह जैसे उठा मैंने कहा भाई खैर तो है, बोलता यार नहीं वो मैंने अपना सराना उठाया था अपने कवर, मैंने कहा देखा मेरे साथ मत खेलो एक सराना यूज करो यहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं, मैंने कहा देखो कमरा है उस हिसाब से ना, हम नीचे बैठते हैं ना, वही मिजलत वाली तरीके बस।
0: अच्छा, अच्छा,
2: पांच छह बेड पड़े हुए
0: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कवर मैंने सारे उसमें व्हाइट डाले हुए हैं, दो थोड़े से रंगीन है, तो इस सफाई के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि देखें आप जब बाहर निकलते हैं, लोग कहते हैं भाई अमिताभ बच्चन आ गया ना, मिसाल के तौर पे।
0: सही सही सही।
2: लेकिन खुदा के बंदे, अभी भी मैंने कहा यार ये कंबल दुलवा लो, हर दो महीने मैंने कहा अपना कंबल 20 रियाल में दुलवा करो यार।
0: नहीं, साफ सफाई तो पहला ईमान है, आपको साफ सफाई तो रखनी ही चाहिए।
2: बिल्कुल।
0: और फिर आप गल्फ कंट्री में थोड़ा आसान भी है आपके लिए, क्योंकि यू नो आप अपने मुल्क में, तो मैं किसी मुल्क के बारे में बात नहीं करूंगा, बट यहाँ पर मुझे ऐसा एहसास होता है कि बहुत ज्यादा गंदगी नहीं होती, जल्दी जल्दी नहीं होती है। देखिए हर जगह थोड़ी थोड़ी तो होती है, लेकिन बहुत जल्दी गंदगी नहीं होती है। तो ये एक तो वही है कि बस साफ सुथरा अगर रख लें, ये और अच्छी बात है कि अब ऐसा भी ना हो कि महीने महीने भर हो गए तो तकिए का गिलाफ ही नहीं चेंज किया है, चादरें नहीं चेंज कर रहे।
2: बिल्कुल, ये सफाई वैसे भी इंसान अपने आप को जब मशगूल रखेगा, मसरूफ रखेगा, यही लाइफ है ना। आप कमरे में आ गए, हर चीज को अपने जगह में रखना चाहिए, कहाँ शूज रखना है, कहाँ जूते रखने हैं, कपड़े कहाँ रखने, काम के, मतलब ये एक डिसिप्लिन है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये चीज थोड़ा इधर उधर से हो जाएगा, मेरे ख्याल में काफी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हे बच्चो, आर यू रेडी गेम्स मस्ती स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
3: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
4: ये शो कौन सा है?
2: द सुपर किड शो।
3: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी।
4: I love the Super Kid Show. Super

0: music station. Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट्स
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.

5:44 हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी अमिता से कनेक्ट किया जाएगा कुछ ही देर में, लेकिन सबसे पहले लोगों के मैसेज। हिशाम भाई का सलाम था, वालेकुम अस्सलाम हिशाम साहब कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल अजीज, एफएम 107 की पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम, सलाम आपको भी। और नसीम साहब का है मैसेज, फज्जू मियां ज़रा बताओ ईद कब है यार, 27, 28, 29, 30, ये तो मेरे ख्याल में पूरे गल्फ में ही चल रहा है, अब तक तो पता हो जाना चाहिए, ये तो हर जगह चल रहा है। बाकी सलाम अलैकुम लिखा है नसीम साहब ने, बेलन तो ज़रूर होगा फज्जू मियां, बेलन देखो बेलन का ना अपना अपना टाइम होता है, बेलन या तो सुबह निकलता है या शाम को निकलता है, नहीं आप समझे नहीं, बेलन रोटी बनाने के लिए या सुबह निकलता है या शाम निकलता है, मैं दोनों टाइम घर पे नहीं रहता दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मूव, क्या समझे, ऐसे समय पे आप घर पे रहिए जब बेलन का काम ही ना पड़े, बेलन ड्रॉअर के अंदर रख के फिर ड्रॉअर बंद हो जाता है, आप कहां ढूंढिएगा, गुस्से में इंसान का इतना दिमाग थोड़ी चलता है कि हथियार कहीं से लेकर आए, हथियार बस सामने नहीं होना चाहिए, समझे आप, देखिए मतलब समझ ही गए होंगे आप, तो हथियार सामने नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई चीज जो चोट पहुंचा सके वो हथियार सामने नहीं होना चाहिए,

0: ठीक है, तो वो वाली चीज है। और वैसे भी देखो मर्द ना एसी की तरह होता है, मतलब कितना ठंडा कितना कूल होता है। बस एक प्रॉब्लम होती है कि जो एसी का रिमोट है वो किसी और के हाथ में होता है घर में, बस इतना ही मसला है, बाकी तो लाइफ है चली रही है। फिर ये मैसेज है, खादिम साहब का सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ भाई लिखते हैं, फजील हमारे घर तो हर वीक होती रहती है। क्या होती रहती है? पार्टी? अच्छा, मेरी वाइफ करती हैं, मेहमान आने से पहले, सफाई की बात कर रहा, मेहमान आने से पहले तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, जैसे बेडशीट बिछाना, कारपेट के ऊपर की शीट चेंज करना एक्सेट्रा में, बस ईटीसी लगा के मैं समझ गया, आपने जो एक्सेट्रा लगाया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बस यही मैं भी करता हूँ, जैसे थोड़ा बर्तन धो दिया, कारपेट साफ कर दिया, वैक्यूम कर दिया, झाड़ू कर दिया, पोछा कर दिया, फिर टेबल साफ़ कर दिया, दस्तरखान साफ़ कर दिया, या करवा लिया गया, ये भी सही था ना, मतलब अलग अलग है भाई देखो। उसके अलावा ये मैसेज है एक और भाई का, इन्होंने कहा है कि क्या फैज़ल, इनका नाम ही शायद फैज़ल है, फजील जैसा लग रहा है, और अभी अमिता लाइन पर हैं, अमिता के लिए ही कहा है कि क्या सही एक्सप्लेनेशन दी है अमिता ने, मज़ा ही आ गया, बहुत ही उम्दा। तो अमिता ये बात सुन रही है कि उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, सारी जो महिलाएं हैं वो आज बुक फेयर में पहुंचेंगी। एक और ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, सवाल या टॉपिक क्या है, अभी अभी ट्यून इन किया है। ओके, मैं बताता हूँ अरबाज साहब, सवाल ये है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप जब घर में रहते हैं तब आप अपने आप को ऐसे ही सुकून से चाहते हैं कि बैठे रहें, लेकिन अंदर ऊर्जा तब बढ़ती है जब कोई मेहमान आ रहा होता है, तो आपका घर भी उसी तरह से है, जब कोई मेहमान आता है तब ऊर्जा बढ़ती है, तब घर की सफाई होती है ना, जब घर में मेहमान आता है तब घर की सफाई होती है, या फिर पहले से आपका घर है और आप ये जब मानते कि नहीं नहीं भाई साहब मेहमान आते हैं तो हम कुछ स्पेशल नहीं करते, वैसे ही रहता मेरा घर, हम तो वैसे ही रहते देखो, या फिर यह कि मेरे मेहमान ऐसे हैं कि भाई हम घर साफ ना भी करें तो वो जज नहीं करते। तो यह आज का सवाल, आप कैसे लोगों में से आते हैं ये बताएं 666-22-107 पे। फिलहाल अमिता हमारे साथ, जी हेलो अमिता, क्या हाल है, क्या हाल है वहाँ बुक फेयर में, क्या कुछ चल रहा है?
1: बहुत एक्चुअली मजे आ रहे हैं आज, थोड़ा सा मैं सीरियस मोड पे जा रही हूँ क्योंकि मैं इस सेक्शन में आई हूँ जो कि कम्प्लीटली मिनिस्ट्री का है।
0: अच्छा।
1: एंड और यहाँ पे अलग अलग तरह के बूथ्स हैं जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बुक्स हैं, एंड मतलब मैंने देखा यहाँ पर आम जनता भी जो है वो इस बूथ में जाकर दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि लाइक यू नो क्या खासियत है, एंड ज्यादातर ये अरेबिक में है, कुछ एक इसमें इंग्लिश भी है, और मतलब बेसिकली जो कि डिफेंस स्टडीज कर रहे हैं या उनके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं उनके लिए ये बूथ परफेक्ट है। मेरे सामने एक बूथ है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जहां मैं एक्चुअली जाने वाली हूँ, और यहाँ पर AI फोटो बूथ करके लिखा है तो वो काफी मुझको इंट्रीग कर रहा है कि यहाँ पर है क्या, तो आई विल बी गोइंग देयर। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ी हूँ दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, ये जो बूथ है, एंड जैसा कि नाम है ऑब्वियसली इट्स फॉर द किड्स, और यहाँ पर काफी सारी एकेडमिक बुक्स हैं। द बेस्ट पार्ट, जब आप इस बूथ में जाते हो ना तो स्टूडेंट्स हैं, मतलब छोटे बच्चे, एंड आई शुड टेल वजीर, जब मैं इनसे मिली ना मुझे लग रहा था कि इनकी उम्र में हम क्या कर रहे थे, like, इतने सोफिस्टिकेशन के साथ इन्होंने ग्रीट किया, एंड मैंने पूछा कि क्या वो इंग्लिश जानते हैं इस तरह से, एंड तो उन्होंने हमें बड़े प्यार से बताया, बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली सारे बुक्स जो है वो अरेबिक के हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास कुछ इंग्लिश बुक्स भी हैं, और ये जो पर्टिकुलर बूथ है इट्स डेडिकेटेड टू द चिल्ड्रन।
0: अच्छा।
1: तो जो भी बच्चे स्टोरी टेलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं और या तो सिर्फ स्टोरी सुनना चाहते हैं, यहाँ पर सेशंस होते हैं, तो व्हाइट एंड मरून कलर के छोटे छोटे से चेयर्स हैं उनके लिए बैठने के लिए, एंड दे कैन जस्ट कम, और जैसे स्कूल में टीचर स्टोरी टेलिंग क्लास नहीं होती है उस तरह का एक छोटा सा हॉल, ओपन हॉल बना हुआ है। तो मैं यहाँ आई एंड आई वाज जस्ट चेकिंग कि यहाँ पर क्या खास है, तो उसने बोला कि बस स्टोरी टेलिंग होती है और फिर हम बच्चों से सवाल जवाब करते हैं।
0: तो स्टोरी टेलिंग कौन सी लैंग्वेज में होती है, बस इतना सा एक सवाल है।
1: ये ज्यादातर अरबिक में होती है, बट उन्होंने कहा कि कई बार अंग्रेजी में भी हो जाती है, मतलब वैसे आज पांचवा दिन है बुक फेयर का, एंड इट्स लाइक रैंडम क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड हर कोई अभी समझ लेता है, बट ये हमारा जो मीना रीजन है उसका ये सबसे मैसिव बुक फेयर है, और 80% तक किताबें जो है वो अरबिक में है, बट इंग्लिश में भी ऑब्वियसली

0: हर किसी के लिए बुक्स है, इट्स नॉट जस्ट सिर्फ।
1: एक सवाल और ये है कि हर क्योंकि जो शॉप्स हैं छोटी छोटी या जो जगहें हैं वहां पर, क्योंकि तुमने कहा 80% बुक जो है वो अरेबिक है, तो उन शॉप्स में 80% बुक अरेबिक है और कुछ कुछ इंग्लिश की रखी है या अलग अलग लैंग्वेज की रखी है, या फिर पूरा ओवरऑल जो बुक फेयर है वहां के बारे में बात कर रहे हो कि 80% है, या हर जगह कहीं कहीं हर स्टॉल में थोड़ी एक एक बुक ऐसी होंगी जो अलग अलग लैंग्वेज में हो, ऐसी हो सकती है?
0: Yes, exactly, हो सकती है। देखिए मैसिव जो मैंने मेजॉरिटी वो मैंने आपको अरबी की बताई, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले मेंशन किया था कि 30 से भी ज्यादा कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। तो अभी अलग अलग स्टॉल्स हैं, जैसे हमने कल बात की थी यूएस एम्बेसी की, फिर उसके बाद फ्रेंच एम्बेसी भी है, तो उनके उनकी भाषाओं की भी किताबें हैं। एंड जैसे मैं डे वन में ऑस्ट्रेलियन मिनी लाइब्रेरी में गई थी, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में चीजें, लेकिन वो अरबिक और अंग्रेजी में थी।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से हाँ हमको किताबें मिल रही हैं, एंड रियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सजीद। मतलब मैंने जैसे बोला आज तो मेरा दिल ही जीत लिया, एक छोटे से बच्चे ने जैसे मैं एंटर हुई एंड द वे ही ग्रीटेड, और फिर जब मैंने उसको बोला कि मुझे अरबी समझ नहीं आती, आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, एंड द वे ही स्पोक इतना प्यारा लगा, बाबा रे बाबा, मुझे लगा कि वाह मजा आ गया।
1: ग्रेट, देखो बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जो बुक फेयर जाते हैं, ठीक है? तो आप भी बुक फेयर चले जाओ अगर आप फ्री हैं इस वक्त, वरना वीकेंड तो है ही आपके पास, आप परसों भी जा सकते हैं, लेकिन इस दौर में यानी कि आप वीकडे में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी भीड़ कम मिलेगी, रश थोड़ा कम होगा, तो सबसे बेस्ट जो डेज हैं बुक लवर्स के लिए वो वीकडेज के भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जुड़ने के लिए, और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दोबारा हम कॉल करेंगे और आपसे बाकी जो बुक फेयर की डिटेल है वो लेंगे, ठीक है?
0: बिल्कुल फजील, बिल्कुल, चलिए मुलाकात करते हैं, अल्लाह
1: हाफिज। तो दोस्तों मौका है, मैं तो कहता हूँ थोड़ा पेट्रोल खर्च करके निकल ही जाओ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके आंसर्स लेंगे जो आपने हमें भेजे 666-22-107 पे। एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। ए हमारे रब, या रब, ए दुनिया व आखिरत के मेहरबान रब, या रहमान दुनिया व आखिरत व रहीमहुमा, या अल्लाह, اسألك رحمة من عندك تعصمنا بها من الزلل। ए अल्लाह, ऐसी रहमत अता फरमा जो हमें लग्जिशों से बचा दे। समय कराम, इंसान गलती करता है, जबान फिसलती है, कदम बहकते हैं, लिहाजा सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अल्लाह हमें बचा ले। ونسألك رحمة من عندك تصلح بها حياتنا من كل خلل। ऐसी रहमत दे जो हमारी ज़िंदगी के हर बिगाड़ को दुरुस्त कर दे, क्योंकि अगर घर में परेशानी है, दिल में बेसुकूनी है, रिज़्क़ में तंगी और रिश्तों में दूरी है, तो अल्लाह की रहमत ये सब सवार सकती है। इसी तरह हमें अपने परवरदिगार की उस रहमत का सवाल भी है, نسألك رحمة من عندك تنقي بها قلوبنا من الحقد والدغل। ऐसी रहमत अता फरमा जो हमारे दिलों को हसद, कीना और मेल से पाक कर दे, क्योंकि दिल साफ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, कीना इंसान को चलाकर राख कर देता है, हसद सुकून छीन लेता है, बदगुमानी दिल को बीमार कर देती है। इसलिए दिल को कीना, हसद और मेल कुचेल से पाक करने की ये दुआ है। نسألك رحمة من عندك تكون لنا لطفا يحمينا من النصب والدجل। या अल्लाह, ऐसी रहमत दे जो हमारे लिए नरमी, हिफाजत और मेहरबानी बन जाए,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, टाइम फॉर टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:02 और आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है ड्राइव थ्रू।

107.3 और आज का सवाल था कि घर पे जब गेस्ट आते तभी घर की सफाई होती है या फिर आप वो वाले आदमी की नहीं यार अपने को क्या जरूरत है, कैसी बात कर रहे हो, या फिर आपके मेहमान जितने भी हैं यहाँ पर वो ये वाले हैं कि अरे वो जज ही नहीं करते आपको। वैसे हम मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और ये मैसेज है कि भाई का अरबाज है, ये कहते हैं मैं सफाई होती है भाई, सफाई होती है अगर कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तब, दोस्त लोग आने पर कुछ नहीं होता है। मेरे साथ तो उल्टा होता है, जब दोस्त आते हैं तो वो सफाई कर देते हैं कुछ नहीं कह रहे यार वो पानी के बॉटल उठाओ, एक काम करो भर दो, अच्छा भर दिया है पी लिया है इसको अब धो दो, या फिर वो बैचलर आते हैं खाना वाना होता है उसके बाद यार बर्तन धुल देते, और मेरे कुछ दोस्त अच्छे हैं भी वो धुल भी देते अगर उनको एक बार कह दो। ये वो ताज़े ताज़े दोस्त बनते हैं ना जो थोड़ी इमेज भी बनाना होता है दोस्तों के सामने, ये वो वाले दोस्त हैं। और मैं तो वो वाला आदमी हूँ कि मैं तो करवा लेता हूँ थोड़ा बेशरम होके कि अरे कर दो थोड़ा वो मेरे सामने इज्जत बना रहे होते हैं, लो भाई उनके चक्कर में वो फिर धुलवा लेता हूँ मैं। आगे लिखा है अब इंशाल्लाह ईद के लिए घर की सफाई होगी। हाँ क्या बात है, वैसे हमारे घर में भी होता था, अम्मी को ऐसा लगता था कि ईद में जब गेस्ट आएंगे तो हमारी जो औलादे हैं इनको मेड वाली ही क्यों ना बना दें, तो काम वाली हम ही थे अपने घर के। हाँ, और जिनकी सफाई पूरे साल नहीं होती थी उन चीज़ों की भी सफाई कराई जाती थी, जैसे कि फजील कुर्सी पर चढ़ जाओ, वज़न कम है तुम्हारा और पंखा साफ कर दो, चलो ठीक है पंखे भी ठीक है कोई मसला नहीं बड़ी बात थोड़ी है। अरे वो मीटर लगा होता था ना इलेक्ट्रिक मीटर, कहती थी उसके ऊपर से भी कपड़ा चला दो गीले कपड़े से, अरे अम्मी गीले कपड़े से इलेक्ट्रिक, अरे कुछ नहीं होता मैंने तो करा है। और सही में माँ जो है ना हमारी माँ वो एकदम वॉरियर है, वो कर भी वो उन्होंने किया होगा गीले कपड़े से और उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ है, बाद में हमारे जैसे बच्चे जो हैं फिर हमारे जैसे बच्चों की अखबार में न्यूज़ छपती है कि गीले कपड़ों से मीटर साफ करते हुए एक बच्चे की मौत ये तो फिर बाद में होता है, अरे मैंने तो ऐसे कहा था फिर तो ऐसे हो गया। और फिर उन चीजों की भी सफाई होती है जिनकी साल साल भर सफाई नहीं होती है, कोठरियों की सफाई करवा दे रही अम्मी, ऊपर जहां कूड़े रखे होते हैं ना अलमारी में, देखो एक तो अलमारी होती है जहां पर कपड़े रखे होते हैं, एक ऊपर की अलमारी होती है जहां पर आम इंसान नहीं पहुंच पाता है, वहां सिर्फ दो तरीके हैं पहुंचने के, एक बेड के ऊपर कुर्सी लगा के फिर फजील चढ़े, या फिर दूसरा कि सीढ़ी ही लगाना पड़े, तो अलमारी के ऊपर तक सफाई करवाती थी। अरे आपके घर मेहमान

जाएंगे, कौन अलमारी के ऊपर चढ़ रहा है भाई? माओ का एकदम अलग था, आजकल की माएं सही हैं। अब जिनको पता है किस मामले में बात कर रहा होता ना, ठीक है, बाकी हर एक चीज डिटेल में नहीं जाते। 6:06 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और फरद साहब ने कहा है, फज्जू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? आज का टॉपिक एकदम घरेलू है। हाँ, हमारे पास भी ऐसे ही होता था, वो साफ होता है ना, पता नहीं कहाँ खान खान से कहाँ कहाँ से कचरा निकल के आता है। मैं बताऊँ, मैं भाई, हम सब भुक्तभोगी हैं। हमारे घर में एक डॉग है, अगर इसके सामने किसी ने कचरा फेंका तो भी वो गुस्सा हो जाता है। अच्छा, मतलब आपके घर के सामने कि आपके घर में? मैं ये वाली समझ नहीं पाई। ये होगा कि आपके घर के सामने एक डॉग रहता होगा और उसको लगाया इस बात के लिए कि बेटा यहां से कोई भी गुजरे तो भौंक देना। अच्छा, घर में है, हमारे घर में एक डॉग है, अगर इसके सामने किसी ने कचरा फेंका तो भी वो गुस्सा हो जाता है। बड़ा ही घरेलू है यार ये तो डॉग फिर। आप देखे कितना ईमानदार आदमी है, कितना साफ सफाई वाला आदमी है फिर तो। ये असली आदमी तो यही है जो घर में साफ सफाई चाहता है। फरद साहब कहते हैं, आपको भी तो घर जाना है, इसलिए आजकल की माँ के बारे में नहीं बोल सकता। हाँ, मुझे भी घर जाना है और जिंदा वापस आना है। आगे तौफीक भाई का मैसेज है, अलवकरा से फजील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खादिम साहब कहते हैं, फोन पर बात करो तो भी गुस्सा हो जाता है। हैं, ये कौन सा डॉग है भाई? देखो, इलाज का भी ऑप्शन होगा फिर, अगर इस हर छोटी बात में गुस्सा हो जा रहा है तो कैसे चलेगा। वैसे एक भाई हैं फजील, मोहम्मद फजील कहते हैं, उर्दू लिटरेचर की बुक है या? लास्ट थर्सडे को मैं गया था लेकिन उस टाइम उर्दू का कोई भी बुक नहीं थी। यार उर्दू की बुक होगी, लाजमी होगी, बस ये क्या थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। जैसे अमिता ने बताया कि 80% जो बुक्स हैं वो अरेबिक में हैं, उसके अलावा हर स्टॉल में, हर बूथ पे आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश भी मिल जाएंगी वो बुक, है ना। तो जैसे इंग्लिश मिल रही है वैसे उर्दू भी मिलेगी, थोड़ा छानबीन करनी पड़ेगी। और देखो, इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि अपने फैमिली मेंबर के साथ जाए, वो छानबीन में आपकी थोड़ी मदद कर देंगे। अकेले हम लोगों से नहीं होता यार, हम लोग थोड़ा काहिल हो जाते हैं ना, तो ये वाला मामला है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकी मैसेज लेंगे। अभी फिलहाल एक पुराने ज़माने का हो जाए माहौल, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। अब आप सोच रहे हैं, अरे इतना पुराना, रुको यार रुको, तो अच्छा वाला ये, दिल खुश हो जाएगा। ये गाना आपको किसी ना किसी की याद दिला देगा। अब वो आप जानो किसकी आ रही है, ठीक है? हाँ, इससे समझ में आ गया होगा ना। ये म्यूजिक आने वाला जो है इससे तो पक्का ही आ जाएगा, अब है नहीं, मतलब ये वाला भी माहौल होना चाहिए, हर वक्त डिकचिक डिकचिक थोड़ी होता है। सुनो इस गाने को, एंजॉय करो, वापस आते हैं कुछ ही देर में, दिल से देसी।

दोस्तों हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पे वाइब ट्रू और एक बिल्कुल ट्रू वाइब मिल रही है डायरेक्टली बुक फेयर से, जहां से अमिता लाइव है और एक एक डिटेल आपको बताती हैं, वर्कशॉप से लेकर बेहतरीन किताबों तक और बच्चों से लेकर बड़ों के एंजॉयमेंट तक, डायरेक्टली फ्रॉम बुक फेयर। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर हैं जी। हेलो अमिता, कैसी हैं?
1: हाय हाय फजील, सच में एक्चुअली बड़ा मजा आ रहा है और आज हमें काफी लोगों से मिलने का मौका मिला है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ, जो हम मिनिस्ट्री के सेक्शन में थी मैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो थी वहां पे जब हम गए तो मैंने बोला था कि एक AI फोटो बूथ है, तो बड़ा मजेदार फोटो बूथ है, दैट इज ऑल्सो फॉर फ्री। और जब आप वहां जाते हैं तो आपकी तस्वीर खींचता है एंड आपको कभी वो जज बना देंगे, ठीक है, कभी लॉयर बना देंगे, मतलब उसके जो लिबास है वो आप तुरंत पहन लोगे, इस तरह से आपकी तस्वीर खींच के आएगी। तो वो बड़ा मजेदार लगा मुझे एंड ऑब्वियसली भीड़ बहुत ज्यादा थी। क्योंकि वो कहता ना कि जब फ्री की चीज होती है तो कोई पीछे नहीं हटता।
0: हाँ, सही।
1: तो वो एक सीन था, तो इसमें काफी लोगों ने तस्वीरें खिंचाई एंड आई जस्ट सॉ इट, तो मैंने कहा कि मैं जरूर बताऊं हमारे लिसनर्स को। एंड फिर मैं गई मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स, उनका बूथ भी बहुत प्यारा है एंड दे हैव VR जहाँ पर आप एंशियंट मक्का के बारे में जान सकते हैं किस तरह से वहाँ पे चीजें होती थी। और ये एक्सपीरियंस मैंने पहले लिया हुआ है।
0: अच्छा, कहाँ पे?
1: कई बार DCC में ही, बहुत पहले देयर वाज सम इवेंट, तो मैं आई हूँ और मैंने ये एक्सपीरियंस VR का लिया हुआ है, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। एंड ये जो, और यहाँ पर एक खास बात बताऊँ मैं आपको, क्या है, हम बातें कर रहे थे ना कि बुक्स क्या हमको सिर्फ इंग्लिश में या अरबिक में ही मिल रही है, यहाँ पर मुझे इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच, स्पैनिश, रशियन, तुगलक, हर तरह के लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड बुक्स मिली। एंड मैंने, मुझे बाय द वे फ्री बुक्स मिली है, मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा जला दूं।
0: तो एक बार ये जो जहाँ पर अलग अलग जबानों की ये बुक मिली है, तो एक बार थोड़ा सा क्लियरली बता दो किस जगह पे, लोकेशन कैसे ढूंढे अगर जो वहाँ पर जा रहे हैं तो।
1: You'll just find it like 3 or 4 जो गेट है उसके दौरान ही आपको मिल जाएगी। और स्पेशली जो अपने कतर की मिनिस्ट्री का पूरा बूथ है वो सब बूथ आस पास ही लगे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स, ठीक है।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ पर ये लोग कोई किताब, जैसे हम कहते हैं ना, सेल नहीं कर रहे एंड ये बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बुक।
0: ओके।

0: और कमाल की बुक्स हैं. मतलब एक तो डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हम कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो अलग अलग भाषा के भी लोग यहाँ आ रहे हैं. तो मुझे जो बुक्स मिली हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, मैंने ये ली है. फिर कतर की लाइफ हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड और हज से रिलेटेड. तो ये बुक्स इंग्लिश में है विच विल बी गुड. एंड मतलब आप और मैं भी ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं, स्पेशली जिन्हें इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है. आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स पीपल लाइक मी इटसेल्फ. सो यू नो वी कैन गेट इट, हम और ज्यादा नजदीक हो सकते हैं और ज्यादा क्लोज हो सकते हैं इस अमेजिंग कल्चर का. सो यस आई गॉट माई बुक्स एंड बस अब मुझे मेरा स्टडी मटेरियल मिल गया, मुझे स्टडी करना है.
1: तो अभी बिल्कुल अच्छा. मैं बस लोगों से यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही गेट नंबर आपने बता दिया, 3 से 4 के बीच में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये किताबें जो हैं वो मिल जाएंगी. तो अब आसान आपको फिल्टर आउट कर दिया है, अब आप इजीली पूरी जगह पे घूमने के बजाय आप उन लोकेशन पे जाएं, 3 से 4 गेट के बीच में आपको यहाँ पर ये किताबें जो है अलग अलग जबान की मिल जाएंगी.
0: Absolutely, absolutely फजील. और अभी मैं आगे फिर जा रही हूँ और देखते हैं कि मुझे यहाँ पर और क्या एक्साइटमेंट मिलता है. वैसे मैं आपको एक खास सी चीज बताना चाहती हूँ. मैंने एक तस्वीर खींची थी जो मुझे बहुत पसंद आई एंड दैट वॉज अ कोट. ओके, और ये कोट है बेसिकली मुझे कतर नेशनल लाइब्रेरी के बुक से मिला. दैट वॉज ड्रीम बिग द हीरो इज यू.
1: अच्छा, द हीरो इज विथ यू.
0: No, dream big, the hero is you.
1: Okay, तुम हीरो हो, बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, क्या बात है, बढ़िया.
0: Yes, exactly. और ये काफी बड़े अक्षरों में लिखा है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया कि एक मतलब ये सारी चीजें ना, ये सारे कोट्स हमने लगा ना कितनी जगह देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन जब आप इन बुकों के, इन किताबों के बीच में रह रहे हैं और जब आपको एक एक कोर्स के सामने पॉपअप हो रहे हैं ना, तो एक अलग तरह का मोटिवेशन है कि भाई मतलब कोई नहीं रोक सकता आपको जिंदगी में, अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है.
1: सही है, ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप किताब को पसंद करते हो ना करते हो, बस एक राउंड लगा कर आ जाओ, आपको एहसास होगा यार किताब एक्चुअली में बहुत अच्छी और सच्ची दोस्त है. ये मुझे किसी ने बहुत लंबे वक्त पहले बताया था कि किताब असल में जो अच्छी दोस्त होती है वो आपकी किताब होती है. अब वो फर्क इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी किताब दोस्त बन सकती है, आपका पढ़ने का तरीका क्या पसंद है, आपको कैसी स्टोरी या कैसे ऑथर को पढ़ना पसंद है ना. तो वो फ़र्क करता है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना चाहते हैं, वो भी एक फ़र्क है कि आपको कौन से दोस्त बनाना है, वो किताब आप कौन सी चुनेंगे, जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा. सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमिता. हम फिर से कनेक्ट होंगे आखिरी बार और आखिरी क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हम आपसे जायजा लेंगे. तो भाई 35वां बुक फेयर ये है, इंटरनेशनल बुक फेयर जो दोहा में हो रहा है DECC में. अगर आप यहाँ पर नए हैं किताबों के बीच जरूर जाए, मतलब आपको किताब एकदम भी नहीं पसंद है, बस एक राउंड लगा कर चले जाओ, आपको पता चलेगा यार एक किताब उठाओगे ना, फ्री में उठाने को तो दे ही रहे हैं. फिर आप एक लाइन पढ़ोगे, आपको लगेगा कि नहीं ये तो मुझे जानना है, इस किताब में और क्या लिखा है, इसके बारे में जानना है, कहानी के बारे में जानना है, आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा पूरी तरह से. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे व्हाट इफ के बारे में. व्हाट इफ आज हम बात करने वाले हैं, व्हाट इफ नो मैरिज कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट. अगर ये मैरिज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता तो क्या होता, हमारी और आपकी लाइफ क्या आसान होती, क्या जिंदगी में बच्चे और दुनिया जो चीज़ें हैं, लीगल केओस है ना, मोहब्बत प्यार, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज FM 107 पे. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे. लाइट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं है समझने के लिए. फिलहाल 6:30 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, दिल से देसी.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

36 मिनट स्टूडियो की घड़ी में, और आज हम बात करने वाले व्हाट इफ मैरिज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता तो क्या होता। सबसे बढ़िया बात होती कि ये जो मर्द समाज है, सोसाइटी में जितने भी मर्द है, ये सब के सब हिल्स में रह रहे होते, पहाड़ों में जाकर बस जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होती, ये कमाई के लिए कहीं ना निकलते। ये तो मैरिज है, इसके चक्कर में ये कमाई करने के लिए हर संडे गल्फ में हर संडे निकल रहे हैं सुबह सुबह तैयार होके। मुँह बना हुआ है, सुबह सुबह उठने का दिल नहीं है, लेकिन हर संडे तैयार हैं डीओ लगा के। वरना अगर ये मर्दों के पास नहीं होता, ये खेती कर रहे होते, खेती कर। इनका सिर्फ एक काम है कि खाना पेट में जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या कितने सिनेरियो होते, क्या कुछ होता, फैमिली का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट होता। आज सोसाइटी का जो बेस है वो फैमिली सिस्टम ही तो है, जिसमें अम्मी हैं, अबू हैं, चिल्ड्रंस बच्चे हैं। मैरिज यूजुअली फैमिली को स्टेबल स्ट्रक्चर देता है। बगैर मैरिज के रिलेशनशिप्स टेम्परेरी हो सकते थे, पेरेंटिंग कंफ्यूजिंग हो सकती थी, और चिल्ड्रन मल्टीपल होम्स में ग्रो कर सकते थे। सवाल एक ही होता कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इन बच्चों का, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही होती। उसके अलावा मोहब्बत ज़्यादा, यानी कि लव जो है वो पूरी तरह से फ्री होती, बट स्टेबिलिटी बिल्कुल कम होती। जब एक दूसरे को लोग पसंद करते है ना, चाहते, अब मैरिज के बारे में लोग सोचते हैं तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उसमें दो फैमिलीज भी साथ में आती हैं। लेकिन अगर ये मैरिज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता तो स्टेबिलिटी नहीं होती। एक दूसरे में झगड़ा हुआ, अरे हटाओ, हम जा रहे हैं हिल हम जा रहे हैं पहाड़, हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हम नहीं सबर कर पाएंगे। तो ये चीज़ होता, कोई प्रेशर नहीं होता इनिशियली, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और कंप्लीट फ्रीडम होती, कंप्लीट। लोग रिलेशनशिप इजिली स्टार्ट और एंड करते, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कम होता अगर ये मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कई लोग इमोशनली इनसिक्योर फील करते, ये खतरनाक चीज़ है कि अच्छा, एक तो इमोशनली इनसिक्योर फील करते अगर मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो मुझे लगता है कि 90% मर्दों को पता ही नहीं है कि करना क्या है जिंदगी में, आगे अब क्या करें। तो उनको तो पता नहीं, वो सिंगल ही रहते, फिर वो पहाड़ों पे ही रहते। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर ये मैरिज का कॉन्सेप्ट ना होता तो पहाड़ पे ही रहते, इनके पास कोई काम ही नहीं, ये फिर खेतीबाड़ी कर रहे होते उसके अलावा बच्चों पर एक इम्पैक्ट पड़ता। मैरिज का एक मेजर पर्पज है, हिस्टोरिकली रहा है चाइल्ड स्टेबिलिटी। बगैर मैरिज के सिंगल पेरेंटिंग इंक्रीज हो जाती, चाइल्ड सपोर्ट के डिस्प्यूट्स होते, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती। कुछ बच्चे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज में ग्रो करेंगे, लेकिन कुछ फील करेंगे लैक ऑफ परमानेंट होम, क्योंकि इंसान का जो सबसे पहला ये कह सकते हैं नेचर है, वो ये है कि शेल्टर उसे मिलना चाहिए, घर उसे मिलना चाहिए, मोहब्बत उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो बच्चा पैदा हो के ही, कई बार ऐसा होता कि कई फैमिली उनको साथ में रखती, कुछ फैमिली साथ में ना रहती हो, तो बच्चों को कम्युनिटीज़ में या फिर अलग अलग जगहों पर डाल दिया जाता, और वो वहीं पर पल रहे होते, बढ़ रहे होते, और उनको होम की यानी कि घर की एक कमी का महसूस हमेशा महसूस होती, और स्टेबल नहीं होते उनके इमोशनल, उनके इमोशन जो है स्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट कभी ऐसा मिला ही ना होता। सोसाइटी ज्यादातर इंडिविजुअल हो जाती, मैरिज यूजुअली फैमिलीज को कनेक्ट करती है। बगैर उसके सोसाइटी ज्यादा इंडिविजुअल बेस्ड हो सकती थी। मैं पहले का किस्सा जो है वो शुरू हो जाता। आजकल ये होने भी लगा है कि मैं पहले हूं, मे फर्स्ट, ये जो मेंटेलिटी है ये इंक्रीज हो सकती है। जॉइंट फैमिलीज ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो सकती हैं अगर ऐसा होता, मैरिज एग्जिस्ट ना करती तो। रिलीजन और कल्चर कम्प्लीटली चेंज हो जाते, ज़्यादातर कल्चर और रिलीजन्स में मैरिज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बगैर मैरिज के वेडिंग ट्रेडिशन नहीं होते, फैमिली के रिचुअल्स नहीं होते, कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाती। कई जगहों के बड़े खूबसूरत कल्चर हैं, जैसे मुझे ये यहाँ पर देखने को रौदातल खैल में मैंने एक बार देखा था, तो पार्क में कुछ पश्तो भाई साथ में ग्रुप बनाए हुए थे और वो अपनी तरह से डांस कर रहे थे, उनके कल्चर का डांस था, उनके ट्रेडिशन में ये इस तरह की चीज़ होती थी। तो अगर ये चीज़ नहीं होती कि दोस्त या यार मिलकर सब फैमिली मेंबर के साथ खड़े होकर कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, अगर ये चीज़ यानी कि मैरिज एग्जिस्ट ना करती तो ये बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगता।

ये तो कमिटमेंट भी अवॉइड करते लोग. आजकल आप यू नो कमिट करते हैं, अगर आप शादी करते हैं तो कमिटमेंट करते हैं, ज्यादा फ्रीडम होती. पॉपुलेशन का इफेक्ट भी पड़ता. मैरिज हिस्टोरिकली रिप्रोडक्शन और फैमिली प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करता है. बगैर मैरिज के बर्थ रेट्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाते, पेरेंटिंग सिस्टम चेंज हो जाता, सोसाइटी कम्युनल चाइल्ड रेजिंग अडॉप्ट कर सकती थी. कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती. विमेन और मेन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता. हिस्टोरिकली प्रोटेक्शन भी दिया है मैरिज ने, अगर देखा जाए रिस्ट्रिक्शंस भी क्रिएट किए हैं. विदाउट मैरिज कुछ लोग ज्यादा फ्रीडम फील करते, लेकिन इमोशनल इनसिक्योरिटी भी फील होती, ये भी इंक्रीज होती. और सोसाइटी पर डिपेंड करता, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी, रिलेशनशिप अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें भी होती. ह्यूमन के इमोशन पर भी भारी इफेक्ट पड़ता है. ह्यूमन नेचुरली इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करते हैं. बगैर मैरिज के लव यानी कि मोहब्बत एग्जिस्ट ही ना करते, जेलिसी एग्जिस्ट करती और लॉयल्टी एग्जिस्ट करती, क्योंकि इमोशन बायोलॉजिकल है. बस सोसाइटी इन इमोशंस को ऑफिशियली डिफाइन नहीं करेगी अगर मैरिज एग्जिस्ट ना करती. लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. बट कई सीन में ये भी देखने को मिला है कि आजकल लोग मैरिज के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे हैं. ये भी एक किस्सा है. इस पर भी एक बात है भाई, अब क्या कर सकते हैं, इस पर भी कुछ फैक्ट है.

0: FM 107 पे वाइब ट्रू। और ये तो देखिए कई आजकल की जो जनरेशन है, नई जनरेशंस ये आजकल इस पर भी आ गई कि अब मैं शादी के लिए नहीं सोच रहा हूँ, वो अकेले अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं, अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो अच्छी खासी परसेंटेज ऐसा चाहती है कि वो शादी ना करें, आसानी से ज़िंदगी गुजारे। वैसे अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था तो हम लोग को घर की सफाई नहीं करनी पड़ती ना, कोठरी की सफाई ना करनी पड़ती। आज के समय में भी अगर देखें तो बहुत से लोग शादी करने से बच रहे हैं, इसमें देरी कर रहे हैं या फिर काफ़ी लंबा वक्त लगा रहे हैं। इसका रीज़न भी है। खैर अगर रीज़न देखें तो करियर और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं कुछ लोग, आज़ादी और लाइफस्टाइल। बहुत से लोगों को अपनी आज़ादी यानी कि फ्रीडम खोने का डर रहता है, इसलिए अपनी मर्जी से जीना, घूमना और फैसले लेना पसंद करते हैं। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होने लगी है शादी के बाद, पार्टनर, उनके परिवार और फिर बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जिसे लेकर आजकल की जो नई जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है उनके ऊपर प्रेशर है, तो वो इससे पीछे हट रहे हैं, है ना। तो ये भी एक है। और फिर और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आ रही है। अगर हम फैक्ट और डेटा के बारे में बात करें तो इस पर भी बहुत से फैक्ट और डेटा मौजूद हैं जो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे कि लोग शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, मैरिज के कॉन्सेप्ट को वो मानते ही नहीं हैं। अब ये इस ज़माने के लड़के हैं, अब हमसे पूछो हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे वाले में नहीं था, क्या कर सकते भाई तो फिलहाल ये था, फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:45 हो रहा है। और एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें 25 साल के बाद लोगों में, आजकल के लोगों में ये सेंस आ रहा है कि शादी एकदम ही नहीं करो, उनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ये हो गया है कि शादी नहीं करेंगे। यार ये कैसे हो सकता है, हमारे साथ ही जुल्म हो तुम्हारे साथ ना हो, ऐसे कैसे हम करवाएंगे तुम्हारी। ओके फिलहाल 6:45 एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, या फिर ब्रेक लेने से पहले अमिता को कनेक्ट ही कर लिया जाए, कनेक्ट कर लेते हैं दोस्त, फिर हम फाइनल बात करते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज कर देंगे। कुछ ही देर में आपको न्यूज़ बुलेटिन FM 107 पे सुनाई देगी जिसमें दुनिया भर की खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अमिता इस वक्त बुक फेयर से लाइव हैं और लगातार हमसे बात करती रहती हैं, बताती हैं डिटेल में कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, माहौल क्या है। बाकी जब तक अमिता कॉल उठाएंगी हम जल्दी से कुछ मैसेज ले लेते हैं। लो कॉल उठा ली उन्होंने। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सदील, वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याद है हमने एक मूवी देखी थी बॉलीवुड की जहाँ पे एक बावला नाम का पपेट था।
0: हाँ
1: ओके, तो द पपेट एक्चुअली अपने हाथ में, मतलब हाथ में उसको हीरो लेता है। इट वाज अ साउथ इंडियन मूवी, मैं भी एकदम से रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ उस फिल्म का नाम, बट वहां पर इस तरह की चीज होती थी कि हाथ में लेकर

0: पपेट से वो बात करता था, ठीक है. एंड मैं अभी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन के सामने. थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि स्टोरी टेलिंग होती है, तो यहाँ पर अरबिक स्टोरी टेलिंग हो रही है, जहाँ पे सारे बच्चे मतलब इतने प्यार से यू नो कहानियां सुन रहे हैं, रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं. दो मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, बट आई एम एंजॉयिंग द वे, मतलब यू नो वो सेशन चल रहा है. एंड यहाँ पर एक शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई, बड़ी ही प्यारी सी लेडी है, उनके हाथ में हैंड पपेट था, ठीक है. एंड वो हमें बता रही थी कि भाई ये जो पर्टिकुलर जगह है ना, ये अपने सपनों को एक्सप्लोर करने की जगह है, दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर, और ये सारी बातें हमसे पपेट कर रहा था, ठीक है. उसका नाम सलेम है. यस, सलेम ने हमें बोला कि भाई देखो, अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो किताबों की दुनिया से दूरी करो, क्योंकि तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि किताबें आपको कभी भी गलत राह पर नहीं ले जाएगी. तो यस, सो दिस वाज रियली रियली नाइस एंड द पपेट इज सो क्यूट. तो हमने खैर कैप्चर किया है, और मे बी जब आखिरी दिन होगा तो इंटरनेशनल बुक फेयर का, तो ये सारी जो अपडेट्स हैं इसे हम एक वीडियो के जिस्ट में देख सकेंगे, तब हम इस पपेट के भी मुलाकात कर सकेंगे सालिम से.
1: अच्छा, ये वैसा होता है ना जो यू नो हाथ से पपेट से बात करवा रहे होते हैं.
0: यस यस, एग्जैक्टली.
1: उसे उसे वेंट्रिलोकिज्म ऐसे कुछ करके कहते हैं, आई गेस.
0: खैर, मैं इस चीज से उतना वो नहीं रखती हूँ, बट सच बताऊ तो मेरे लिए आसान भाषा में यही था कि बड़े प्यार से उन्होंने ना अपने हाथ में उस पपेट को लेकर पूरी बात करी, पूरा मैसेज दिया, एंड लास्ट में एक वर्ड भी बताया कि दोहा इंटरनेशनल को, दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर को वो एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करेगा, दैट पपेट सालिम. तो उसका था कि भाई इट्स अ क्यूरियस, और आपके दिल में जो सवाल उठते रहते हैं ना, दैट इंक्वायरी वो होती रहनी चाहिए, एंड इसी एक वर्ड से वो दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर को डिस्क्राइब करके गया है. सो अभी ही जस्ट लेफ्ट मां सलामा करते हुए, और मुझे लगता है कि ये जो क्यूरियोसिटी है जिंदगी के बारे में जानने की, ये हर शख्स के अंदर है और ये रहनी चाहिए. और जिनको भी लगता है कि जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना यू नो सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, कुछ और भी करना है, तो उन्हें किताबों की दुनिया में कदम रखना चाहिए. तो एवरी से कि दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर इज फॉर एवरीबॉडी, तो जरूर जरूर आए. एंड आई शुड से कि आज के लिए तो कुछ इतना ही था, और इंशाल्लाह अब कल जब मुलाकात होगी तो देखते हैं कि हम और क्या क्या नए पहलू इंटरनेशनल बुक फेयर के हम देखेंगे और हमारे सामने आएंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो कल क्या कुछ होगा ये सब आपको पता चलेगा अमिता के थ्रू, जब अगर कल अमिता पहुंचेंगी शाम को 5 बजे तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमिता.
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज.
1: तो यहाँ वक्त जो है दोस्तों हो चुका है 6:49. मोबाइल बड़ा दूर रखा था मेरा भाई. ओके, तो जल्दी से मैसेज ले लेते हैं. ये मैसेज है सलाम का, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, गुड इवनिंग. इकबाल साहब का ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मर्दों के मजे ले रहे हैं. आसिफ कह रहे हैं नहीं मेरा भाई, मैं कौन होता हूँ, मर्द समाज खुद अपने मजे लेता भाई. बाकी ये मैसेज है जुबैर खान का, अस्सलाम वालेकुम, अगर मैरिज कॉन्सेप्ट नहीं होता तो सिर्फ मर्द हजरात खुश होते, बाकी पूरे सिस्टम का, बाकी मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा. सिस्टम का चीचा होता. ये मैं कुछ पूरी अगर लाइन पढ़ दूंगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही हवा हवाई में. एक और ये मैसेज है, इफ द मैरिज कॉन्सेप्ट डजंट एग्जिस्ट, परहैप्स ऑल द ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड लाइक ताज महल ऑल्सो डू नॉट एग्जिस्ट एज वेल. हाँ बिल्कुल, कितनी सही बात है ना, फिर पैसे बच जाते यार. क्या मर्दों के कितने पैसे बच, मर्द ना कासल बनवा लेता भाई, इतने खूबसूरत बंगले होते उसके, वो राजशाही तरीके से रह रहा होता है ना. हर मर्द की जिंदगी बहुत सुकून से, वो एकदम बाहुबली टाइप जी रहा होता. अब वो क्योंकि मैरिज कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करती है तो उसकी जिंदगी में एक भल्लाल देव है. शिवगानवनी देवी ने ऐसी की तैसी कर रखी है, बाकी ठीक है, मतलब जी लेंगे. आपने नाम नहीं लिखा, नाम लिख देते. फिर एक और मैसेज है, शादी भी कर ली और सुकून भी चाहते हो, बड़े नादान हो, जहर भी पी लिया और जीना भी चाहते हो, क्या बात है.

0: दिल पे चलाई है छोरियां आके भाई मुंबई वाले ओके सलाम अली बाद में सलाम करते हैं पहले शायरी मार के वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों इसी के साथ निकलने का वक्त आ गया है, अब हमारा दफ्तर आज का बंद हुआ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल कल शाम 5 बजे। अभी आपको बेहतरीन से गाने के साथ छोड़े जाते हैं, श्रेया घोषाल की आवाज साद का साथ ये गाना
1: गुल्ली माता।
0: चलो आशिक भाई हमारा भी निकलने का टाइम आ गया, क्या कह रहे हो कोठरी साफ करनी है, छत क्यों साफ करनी यार, मेहमान तो आए छत पे थोड़ी जाएंगे।
1: कह रहा झाड़ू से नहीं पोछे से भी करनी है सफाई। ओए ओए ओए ओए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: मुलाकातों के जरिए भी दिए जा रहे हैं ताकि तमाम मनासिक दुरुस्त और आसान तरीके से अदा किए जा सकें। उन्होंने मजीद कहा कि शरिया यूनिट की जानिब से मसाजिद और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आगही प्रोग्राम्स और दीनी लेक्चर्स का इनेकाद किया गया है, जबकि हुज्जाज की रहनुमाई के लिए टेक्स्ट पैगाम भी इरसाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस्लाम वेब साइट के जरिए फतावा शरिया हिदायत और मुकद्दस मकाम के नक्शे समेत मुतादद तालीमी मवाद भी फराहम किया गया है। शेख जासिम अल अली ने आज़मीन हज को तलकीन की कि वह मनासिक हज सीखने में खुसूसी तवज्जो दें और शरई रहनुमाओं से भरपूर इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि हज एक अजीम रूहानी और ईमानी सफ़र है जिसके लिए इल्मी और रूहानी तैयारी बेहद ज़रूरी है। इख्तितामी गुफ्तगू में उन्होंने उन तमाम खुशनसीब अफराद के लिए खुसूसी पैगाम दिया जो बैतुल्लाह के मुबारक सफ़र का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि हज महज एक आम सफ़र नहीं बल्कि एक अजीम रूहानी और ईमानी सफ़र है जो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। इस मुकद्दस इबादत की अदायगी के लिए रूहानी इल्मी और फिक्री तैयारी बेहद ज़रूरी है ताकि मुसलमान हज को उसके सही तरीके और कामिल अंदाज में अदा कर सके और अल्लाह ताला की अजीम रहमतों और अजर का मुस्तहिक बने, क्योंकि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने हाजमीन हज को इस बात पर ज़ोर दिया कि वो मनासिक हज सीखने में खुसूसी तवज्जो दें और शरई रहनुमाओं आगही प्रोग्राम्स और तालीमी मवाद से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि इंसान जब किसी दुनियावी सफ़र की तैयारी करता है तो मालूमात हासिल करता है, सवालात करता है और मनसूबाबंदी करता है ताकि उसका सफ़र कामयाब हो, तो फिर बैतुल्लाह के इस बाबरकत सफ़र के लिए तैयारी कितनी ज़्यादा अहम होनी चाहिए जो दीन इस्लाम की अजीम तरीन इबादात में शुमार होता है। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम के हज इबादात और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, उन्हें हज मबरूर, साई मशकूर और गुनाहों की कामिल मगफिरत अता फरमाएं। इसी के साथ सामीन एक मरतबा फिर खबरों के अख्ताम से कबल समाप्त करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज दीवान अमीरी में साइंस, फ़नून और अदब के शोबों में स्टेट अप्रिसिएशन एंड इंकरेजमेंट अवार्ड्स के फातिहीन को एजाजात से नवाजा है। शुरा काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने आज जॉर्जिया के सफ़ीर वारलाम अफालियानी और फिनलैंड के सफ़ीर यूहा मुस्तोनन से अलग अलग मुलाकातें की हैं। कतर मीडिया कॉरपोरेशन के CEO शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज बिन जासिम अल सानी ने आज रियासत कतर में अमरीकी सफारत खाने के कायम मकाम नाजिम उमूर मो बरगोसी से मुलाकात की है। कतर लीडरशिप सेंटर ने ऐलान किया है कि इदारे की 13वीं ग्रेजुएशन तकरीब लीडर्स 2026 आइंदा इतवार के रोज मुनाकिद होगी। असिक सामीन आज का दूसरा मुफसल नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचता है। स्टूडियो से तकनीकी मुआविन असीला विंदारा और मुझे तलहा शफुज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मासलामा।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
2: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: Hello and welcome to the show called Together We Thrive, the show where we share real stories, real journeys and real inspiration from people who are making a difference in their lives and the lives of others. I'm your host, your dost, Nazia. And today we have a truly inspiring guest with us, someone who proves that with determination, positivity and continuous growth, anything is possible. Joining us today is Mr. Gopal Basyal,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026।

प्रूव कर रहा है दैट्स गोना बी अ मैसिव ईयर. और हमारी ये जो वाइब्रेंट पेनिनसुला है आजकल पूरी दुनिया में छाई हुई है. यस, तो आज का एपिसोड कतर पल्स यानी कि कतर की पल्स में क्या खास होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे कतर का माहौल है, यानी कि फास्ट, एक्साइटिंग और बहुत ही वेलकमिंग. आज हम बात करेंगे हॉर्स रेसिंग की शान की, किताबों की खुशबू की और कैसे दोहा हम सबको फिट रखने के लिए नए रास्ते निकाल रहा है. हाँ जनाब, तो आज इन सारी चीजों के बारे में बातें होने वाली हैं. तो आप चाहे कहीं पर भी हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेडियो सेट का वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए और कोई भी काम करते रहे लेकिन कानों का जो वायर है वो हमारी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाना चाहिए, है कि नहीं? बने रहिए हमारे साथ FM 107 पर. मैं हूँ अमिता आपके साथ. तो शुरुआत करते हैं थोड़ी हेरिटेज और ढेर सारी एनर्जी के साथ. द अल शकाब लीग सेकेंड सीजन ऑफिशियली वापस आ गया है. अगर आपने अभी तक एजुकेशन सिटी में मौजूद लॉन्जीन्स एरेना नहीं देखा तो सच मानिए आपने कतर की असली खूबसूरती को ना मिस कर दिया है. इट इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पोर्टिंग वेन्यूज है पूरी दुनिया का. जब आप वहाँ कदम रखते हैं तो वहाँ के आर्किटेक्चर और वो खुला मैदान आपका दिल जीत लेता है. ये लीग सिर्फ जीत हार के बारे में नहीं है बल्कि इसका मकसद है हमारी नई जनरेशन के कतरी राइडर्स को निखारना और उन्हें वर्ल्ड स्टेज के लिए तैयार करना. ये सेकेंड सीजन है और इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया है. लोकल टैलेंट को शो जंपिंग करते देखना अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जो आपको सीट पर बैठे रहने पर, हाँ क्योंकि आप उन्हें देखेंगे तो डेफिनेटली उठने का मन नहीं करेगा. चलिए थोड़ा हिस्ट्री के पन्नों को ना पलटाते हैं. अल शकाब सिर्फ एक स्टेबल्स या एरिना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक निशानी है. अब वक्त है कुछ ऐसी खास बातों पर गौर फरमाने का जिसे जानकर आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा. पर क्या आपको पता है कि अल शकाब उस जगह पर बना है जहां एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1893 की बैटल ऑफ शकाब की. ये कतर की आजादी और इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था. सोचिए जिस जमीन पर आज हम वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इवेंट्स देखते हैं वहां कभी कतर की तकदीर लिखी गई थी. आज वही मिट्टी दुनिया के सबसे एलीट प्योर ब्रेड अरेबियन हॉर्सेस को जन्म देती है. अरेबियन हॉर्सेस की जो नस्ल है उनका जो एंड्योरेंस है वो पूरी दुनिया में बेमिसाल है. अल शकाब का मकसद ही यही है कि हम अपनी इस सदियों पुरानी दास्तान और लेगेसी को आने वाली जनरेशन के लिए जिंदा रखें. अब आते हैं कि ऐसी बात पर जो आपके विजिट को यादगार बना देगी. अगर आप इस वीकेंड अल शकाब जाने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी ये प्रो टिप ध्यान से सुनिए. जब आप लॉन्जीन्स एरिना जाएं तो सिर्फ मेन सीट्स पर मत बैठिए, कोशिश करें कि आपको वार्म अप एरिना के पास जगह मिले. क्यों? क्योंकि वहां आपको राइडर और उनके घोड़े के बीच का वो गहरा रिश्ता दिखाई देगा जो आमतौर पर ना हमें नजर नहीं आता. वहाँ एक अजीब सी खामोशी होती है, एक फोकस होता है और आप देख पाएंगे कि कैसे एक राइडर अपने घोड़े से बिना बोले बात करता है. इट्स प्योर पोएट्री इन मोशन. तो जनाब वो पल इतना ग्रेसफुल हो जाता है कि आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि दो दिलों की एक पुरानी दोस्ती है. इट्स साइलेंट बट इट्स फोकस्ड और मैं कहूंगी कि ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है. तो जनाब अल शकाब लीग आपका इंतजार कर रही है. तो चाहे आप फैमिली के साथ जाएं या दोस्तों के साथ, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएगा. एंट्री की जानकारी के लिए आप alshakab.com या फिर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. वक्त कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा. पर अभी हमने हॉर्सेस या यूं कहें घोड़ों की शान की बात की, अल शकाब की मिट्टी की कहानी सुनी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आगे हम बात करने वाले हैं दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर की, जहां किताबों की खुशबू और इल्म का मेला लगा हुआ है. साथ ही बात होगी वन रन फॉर ऑल 2026 की, जिसने पूरे शहर को फिटनेस

वेलकम बैक जनाब, मैं हूँ अमिता, आपके साथ एफएम 107 सुन रहे हैं आप। और कतर 2026 में हम जानते हैं कि हमारे कतर में क्या खास हो रहा है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर क्या वो हमारे स्पिरिचुअल माइंड को और आगे लेके जा रहा है, या फिर हमारी लाइफ में कोई मोटिवेशन ला रहा है, या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में हमें कदम रखने का मौका मिलेगा। सो एवरीथिंग इज हियर कतर 2026 में। अभी हमने अल शकाब के मैदान की धूल और वो जो कहते हैं ना हाई एनर्जी की बात की, लेकिन अब वक्त है थोड़ा सुकून का, थोड़ा ख्यालों की दुनिया में खोने का। दोहा की हवा में आजकल एक अलग ही महक है, और ये महक आ रही है वेस्ट बे से। एग्जैक्टली, दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर इस वक्त DECC में हो रहा है, जहां पर किताबों का एक पूरा शहर बना हुआ है। अगर आपने अभी तक वहां विजिट नहीं किया तो आप एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस मिस कर रहे हैं। और मैं वहां गई थी, और जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा तो जो वो फ्रेश इंक, नए पेपर की खुशबू होती है ना, आई रियली फेल दैट, एंड इट वॉज इनफ कि आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि अरे हम तो वही दुनिया जी रहे हैं। मतलब स्कूल कॉलेज वाली जो रिफ्रेशिंग दुनिया थी वो एकदम से आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, एंड यू विल फील नॉस्टैल्जिक। वहाँ का माहौल बिल्कुल सो रियल है। हर तरफ किताबों के, मतलब जो छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, मिनी लाइब्रेरीज हैं, और लोगों की चहल पहल और एक ऐसी एनर्जी है जो आपको कुछ नया सीखने पर मजबूर कर देगी। ये जो बुक फेयर है ये 23 मई तक चलने वाला है। तो ये कोई आम बुक स्टोर विजिट नहीं है, ये एक कल्चरल सेलिब्रेशन है। और इस साल 30 से भी ज्यादा जो मुल्क है यहाँ शिरकत कर रहे हैं। सोचिए, एक ही छत के नीचे आपको जापान की पोएट्री, फ्रांस का लिटरेचर, अमेरिका के बेस्ट सेलर्स और हमारे अरब वर्ल्ड की रिच हिस्ट्री, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने वहां देखा कि सिर्फ किताबें ही नहीं बिक रही हैं, बल्कि कल्चर्स का एक्सचेंज भी हो रहा है। मैंने कल एक काउंटर पर देखा जहाँ एक लोकल कतरी राइटर एक यूरोपियन टूरिस्ट को अरबिक कैलीग्राफी के बारे में समझा रहा था। एंड लिटरली ये देखकर मुझे फील हुआ कि यही तो खूबसूरती है इस फेयर की, कि इट ब्रिंग्स द वर्ल्ड टुगेदर अंडर वन रूफ। फिर चाहे आपको हैवी हिस्ट्री पसंद हो, या आप मेरी तरह लाइट हार्टेड फिक्शन के शौकीन हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो जो रिसर्च मटेरियल ढूंढ रहे हो, DECC में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। इट्स लिटरली अ सिटी ऑफ बुक्स, जहाँ हर रास्ता एक नई कहानी की तरफ जाता है। चलिए, अब वक्त है हमारी लेगेसी की कुछ खास बातों के बारे में जानने का। यस, तो क्या आपको पता है कि दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर की शुरुआत कब हुई थी? एनी गेसेस? वेल, आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। उफ, मतलब मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। जी हाँ, 1972। ये पूरे GCC यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल रीजन में अपनी तरह का पहला इवेंट था। सोचिए, पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से कतर इल्म और लिटरेचर की इस शमा को जलाए हुए है। इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट, इट्स अ लेगेसी। यस, पहले ये छोटे पैमाने पर होता था, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट बुक फेयर्स में शुमार किया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि कतर अपनी रूट्स और एजुकेशन को कितनी अहमियत देता है। कतर 2030 विजन की जो हम बात करते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यही है, नॉलेज इकोनॉमी, जिसकी बुनियाद ये बुक फेयर रखता है। अब एक बहुत ही खास मशवरा मेरे सारे प्यारे प्यारे पेरेंट्स के लिए। यस, अक्सर हमें लगता है ना कि बुक फेयर बच्चों के लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर ने इसका बहुत ही सॉलिड सल्यूशन निकाला है। मेरी टिप ऑफ द डे ये है कि वहां जब आप जाएं तो सिर्फ अपने लिए नॉवेल्स या सेल्फ हेल्प बुक्स पर ना रुक जाएं, बल्कि चिल्ड्रंस कॉर्नर जरूर जाएं। ट्रस्ट मी, इट्स अ वंडरलैंड फॉर किड्स। वहां अरबिक और इंग्लिश में ऐसी इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग सेशंस हो रहे हैं जो बच्चों को उनके आईपैड स्क्रीन्स और गैजेट से ना हटकर इमेजिनेशन का एक नया रास्ता देंगे, और एक दुनिया उनके माइंड में बनेगी, ताकि वो भी जब पढ़े तो चीजों को बखूबी इमेजिन कर सके। वहाँ लाइव वर्कशॉप्स हैं, पपेट शोज हैं, और ऐसी इंटरैक्टिव जोन्स हैं जहाँ बच्चे खुद अपनी कहानियां लिख सकते हैं। इट्स द परफेक्ट वे टू स्पार्क क्यूरियोसिटी। हाँ जी, तो बच्चों को
बचपन से ही किताबों से दोस्ती करवाना उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देने जैसा है। हाँ, तो अक्सर होता है कि वीक डेज में कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो मैं कहूंगी कि वीकेंड में चले जाइए और उन्हें शॉपिंग मॉल की जगह DECC लेके जाइए इस बार, बिकॉज ये बुक फेयर वर्थ है। तो जनाब, किताबों का ये मेला सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, सो जस्ट डोंट मिस इट। चेकआउट करें dohabookfair.qa फॉर द फुल स्केड्यूल। वहाँ कई सारे राइटर्स के साथ बुक साइनिंग इवेंट्स और सेमिनार्स भी हो रहे हैं, जिन्हें आपको मिस नहीं करना है। बल किताबों की इस दुनिया से निकलकर अब हम वापस आएंगे मैदान में। और क्यों? क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं वन रन फॉर ऑल 2026 की। अगर आपको लगता है कि आप भाग नहीं सकते, तो ये बातें जो हम करने वाले हैं ना, वो आपकी सोच बदल देगी। हम बात करेंगे इंक्लूसिविटी की, कम्युनिटी की, और कैसे कतर हम सबको फिटनेस की तरफ मोटिवेट कर रहा है। मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ FM 107 पर। बने रहिए सुनते हुए कतर 2026। वेलकम बैक, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ कतर 2026 में। अब हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसके लिए हमको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और अपने जॉगिंग शूज निकालने होंगे, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा या पसीना बहाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, तो जनाब, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया होगा तो जो हमारा कॉर्निश एरिया है वो जॉगिंग करने वालों की तादाद से ना अचानक से बढ़ गया है। हाँ, तो चाहे वो सुबह सवेरे हो या शाम का वक्त हो, हर तरफ ना लोग अपने ट्रैक्स में नजर आ रहे हैं। हाँ, इसकी असली वजह क्या है? पहले कोई राज नहीं है, हमारा पूरा शहर तैयारी कर रहा है वन रन फॉर ऑल 2026 के लिए, कि सिर्फ एक रेस नहीं है, ये दोहा की स्पिरिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। एक ऐसी रेस है जो हमें बताती है कि दोहा सिर्फ एक शहर नहीं है, एक ऐसी कम्युनिटी है जो साथ में चलती है, साथ में भागती है और साथ में ग्रो करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता, मैं तो कोई एथलीट नहीं हूँ, तो मतलब मेरे लिए ये रेस तो नहीं हो सकती ना। तो मैं आपसे कहूंगी कि लिसन टू मी केयरफुली, ये कतर की सबसे इंक्लूसिव रेस है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक प्रोफेशनल मैराथनर है या एथलीट है जो हर साल मेडल्स जीतते हैं, या फिर आप मेरी तरह वो इंसान है जो फ्रिज तक चल के जब जाए ना तो लगेगा कि हाय मैंने बहुत बड़ा वर्कआउट कर लिया। जस्ट किडिंग, दिस रन इज लिटरली फॉर एवरीवन। इस रेस की खूबसूरती यही है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है कि आपको पहले आना है, आपको जीतना है। यहाँ मकसद पोडियम पर खड़े होना नहीं बल्कि बाहर निकलना है। यस, ताजी हवा में सांस लेना, अपनी हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट जो माना जाता है वो फील करना, फिर चाहे आप वॉक करें, जॉग करें, रन करें या फिर आप किसी स्ट्रॉलर को पुश ही क्यों ना कर लें, You are welcome here. तो हम अक्सर मैराथन की जब बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में यही आता है कि बहुत देर देर तक हमको चलते रहना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, लेकिन वन रन का मतलब है कि हम सब एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे। और जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं ना, तो मेरे जहन में एक तस्वीर आती है जो मैंने पिछले साल देखी थी। हाँ, मुझे आज भी याद है फिनिश लाइन के पास का वो मंजर। एक 70 साल के बुजुर्ग अपने 5 साल के पोते का हाथ पकड़कर धीरे धीरे फिनिश लाइन क्रॉस कर रहे थे। उनके चेहरे पर वो थकान नहीं थी बल्कि एक ऐसी खुशी और गर्व, या यूं कहे वो प्राउड मोमेंट था जो लफ्जों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। बच्चा अपने दादाजी को देखकर मुस्कुरा रहा था और दादा अपने पोते को ये सबक दे रहे थे कि लाइफ में हार नहीं माननी है। बस यही वन रन का असली मकसद है, जनरेशन गैप को खत्म करना और कम्युनिटी और हेल्थ को एक साथ लाना। जब आप वहाँ भागते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ पूरा कतर भाग रहा होता है। वहाँ कोई अजनबी नहीं होता, हर कोई एक दूसरे को चेयर कर रहा होता है। इट्स अबाउट द शेयर्ड एनर्जी एंड द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। लेकिन जनाब, 2026 का एडिशन

0: भेल और थुरैया तो और उनके नेचुरल हैबिटेट बहुत खूबी से बनाया गया है और बच्चों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है. उन्हें खेलते हुए देखना, उनकी मासूमियत आपका पूरा हफ्ता जो कहते हैं ना कि पूरे हफ्ते की थकान उसे मिटा देगा. वेल वहाँ ऐसे ही मत चले जाना, मैं आपको कहूँगी इसके लिए आपको हया ऐप या उनकी वेबसाइट से टिकट पहले ही बुक करनी पड़ेगी. सो डू दैट थिंग, ठीक है, क्योंकि ये जगह बहुत जल्दी फुल हो जाती है और स्पेशली वीकेंड्स जब होता है तो टिकट्स भी नहीं मिलती है. तो इसलिए टाइमली प्लान करके अपने आप को रजिस्टर करके टिकट्स वगैरह लेकर अपनी फैमिली के साथ जरूर जाए. आई शुड से एक परफेक्ट फैमिली डे ट्रिप ये बन सकती है. अब मेरा तीसरा स्पॉट जो है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज अलविदा पार्क. हाँ, तो जब मौसम हसीन हो जाए, यानी कि अभी तो गर्मियाँ आ रही हैं लेकिन अभी भी थोड़ा मैनेजेबल है क्योंकि जो अलविदा पार्क है वो डेंसली ग्रीन है. तो ये जगह ऐसी है जहाँ अक्सर लोग बारबेक्यू के लिए जाते हैं, ठीक है. वहाँ डेडिकेटेड बारबेक्यू स्टेशंस हैं जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर मज़े से खाना खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बच्चों को खुले मैदान में खेलने के लिए छोड़ सकते हैं. और एक दिलचस्प बात यह है कि अलविदा पार्क एक ऐसा रीजन है कि वो यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है. लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि पार्क के नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट है. हाँ, मतलब जो लोग जाते रहते हैं उनको पता है, जिन्हें जो नहीं गए हैं अभी तक उनके लिए कि इट्स अ ह्यूज अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट. और ये पार्किंग वर्ल्ड कप 2022 के दौरान बनाई गई थी ताकि हजारों लोगों को कोई परेशानी ना हो. और आज वही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एक सुकून भरा पार्क एक्सपीरियंस देता है. हाँ, ये हमारे कतर का वो कॉर्नर है जहाँ शहर के बीचों बीच आपको लगता है कि आप नेचर के कितने करीब हैं. और देखते ही देखते वक्त को जैसे पर लग गए हैं, वक्त उड़ गया है. और आज का हमारा कतर 2026 का ये जो वक्त है, यूं उड़ते उड़ते हमें कह रहा है कि भाई अब वक्त है जाने का. यस, हमने अल शकाब के मैदान में घोड़ों की रफ्तार देखी, बुक फेयर में किताबों के जरिए दुनिया भर का सफर किया, वन रन फॉर ऑल के साथ फिटनेस का जज्बा महसूस किया और एजुकेशन एक्सपो में अपने बच्चों के होलोग्राफिक फ्यूचर में जाकर किस तरह से उनका फ्यूचर होगा ये एक्सपीरियंस किया. कतर एक ऐसी जगह है जो कभी रुकती नहीं है. यहाँ हर दिन एक नया मौका है कुछ नया सीखने को और नए लोगों से मिलने का और यादें बनाने का मौका है. और सच कहूँ तो हमें रुकना भी नहीं चाहिए, यही तो इस पेनिनसुला की खूबसूरती है कि नहीं? ये हमेशा हमें सरप्राइज करती रहती है. मैं हूँ अमिता आपके साथ और ये था आज हमारे कतर 2026 का अमेजिंग सा ब्रांड न्यू सा एपिसोड. उम्मीद है कि आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डेफिनेटली FM 107 का हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 6622107 6622107 इस पर आप हमें जरूर जरूर मैसेज करें, अपने फीडबैक्स दें या कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं. और हमारे सोशल मीडिया यानी कि FM 107 के नाम से हम हर जगह पर अवेलेबल हैं, तो आप हमें वहां ढूंढ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं. आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. कल अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त और इसी जगह ताकि मैं आपको और भी अमेजिंग अमेजिंग इवेंट्स हैपनिंग्स जो हमारे कतर में होने वाली हैं, ऐसी कमाल की जगह जहां पर आप अपना वक्त बिताने जा सकते हैं, उन सब के बारे में बता सकूं. ठीक है, तभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत. अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते. हाँ, और जाने से पहले क्या कहूंगी मैं, मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
1: Qatar 2026, Qatar 2026.
2: Number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल
3: डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ
2: हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए। सब कुछ एक ही शो में, तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी नोटिस किया है जैसे जैसे मौसम बदलता है बॉडी का मूड भी थोड़ा बदलता जाता है. कभी ठंड में सुस्ती आ जाती है, कभी गर्मी में एनर्जी ड्रेन हो जाती है और कभी बारिश के साथ सर्दी खांसी फ्री में आ जाती है. वेल, आज हम बात कर रहे हैं सीजनल हेल्थ केयर टिप्स की. सच ये है कि हर सीजन अपनी एक पर्सनालिटी लेकर आती है और बॉडी को हर बार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. विंटर में बॉडी ज्यादा एनर्जी कंजर्व करती है, इसलिए थकान थोड़ी ज्यादा फील होती है, मूवमेंट कम हो जाते हैं और कंफर्ट फूड के करीब चले जाते हैं. इस सीजन में बॉडी को वार्म्थ, मूवमेंट और इम्यूनिटी सपोर्ट चाहिए होता है. थोड़ी धूप, थोड़ा स्ट्रेचिंग और बैलेंस्ड खाना विंटर का बेस्ट कॉम्बो है. फिर आता है समर. गर्मी में बॉडी का सबसे बड़ा काम होता है खुद को ठंडा रखना, खुद को कूल रखना. पसीना सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता है. इस सीजन में डिहाइड्रेशन क्वाइटली स्नीक इन करती है, इसलिए अपने पानी, फ्लूइड्स और लाइट फूड बहुत जरूरी हो जाते हैं. हेवी मील और डायरेक्ट सनलाइट बॉडी को थका देती है. और अगर बात करें मॉनसून की तो इसकी तो अपनी अलग ही कहानी है. मिट्टी की खुशबू के साथ इन्फेक्शन का रिस्क भी आता है. इस सीजन में डाइजेशन थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है और इम्यूनिटी का टेस्ट होने लगता है, इसलिए सफाई, फ्रेश फूड और प्रॉपर रेस्ट मॉनसून के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. सीजनल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हर सीजन में सब कुछ चेंज कर दिया जाए. वेल, इसका मतलब होता है छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस लाए जाए, जैसे कि कपड़ों का सिलेक्शन, स्लीप टाइमिंग, फूड चॉइसेस और हाइड्रेशन लेवल. बस थोड़ा सा ट्वीक करें और बाकी सब सेट है. इनफैक्ट एक और इम्पोर्टेंट बात, सीजन चेंज के टाइम बॉडी सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है.

0: अब अगर आप थकान, कोल्ड या लो एनर्जी फील करते हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ये बॉडी का तरीका होता है कहने का कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपकी बॉडी को। सीजनल केयर का सबसे सिंपल रूल है ऑब्जर्व एंड अडाप्ट। बॉडी को सुनो, मौसम को समझो और रूटीन को जेंटली एडजस्ट करो, क्योंकि जब आप बॉडी के साथ फ्लो में रहते हो ना तो सीजन चाहे कोई भी हो हेल्थ स्टेबल ही रहती है, और जब हेल्थ स्टेबल होती है तो जिंदगी थोड़ी लाइट लगती है, थोड़ी इजी और काफी ज्यादा सुकून देने वाली। इसलिए याद रखे, मौसम बदलते रहेंगे पर आपकी सेहत का ख्याल हर मौसम में बहुत जरूरी है। एंड योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.

असलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे दुनिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी पीट सैम्प्रास के बारे में। क्या दोस्तों, पीट सैम्प्रास और अमेरिकन टेनिस लेजेंड और इनकी इनफैक्ट दुनिया का अगर देखा जाए कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू हैव डोन्ड द US टेनिस टीम और इंडिविजुअल ATP में भी देखिए, सो ही वॉज ऑलवेज नंबर वन प्लेयर ड्यूरिंग इज एरा। उनकी पैदाइश 12 अगस्त 1971 को अमेरिका में हुआ था और सैम्प्रास ने अपने करियर में 14 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर टेनिस की तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका पावरफुल सर्व और काम टेम्परमेंट था और जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स उन्हें कहते थे पिस्टल पीट के नाम से वो बहुत मशहूर थे। उन्होंने खास तौर पर विंबलडन में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और 7 दफा ये प्रेस्टिजियस टाइटल जीता। उनका सर्व एंड वॉली गेम उस दौर में बहुत इफेक्टिव था दोस्तों और उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को अक्सर प्रेशर में रखा। 1990s के दौरान सैम्प्रास दुनिया के नंबर वन प्लेयर रहे और उन्होंने कई सालों तक अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी। हाँ, यहाँ पर उनके राइवलरी की बात करूँ तो आंद्रे अगासी के साथ ये जो राइवलरी अगेंस्ट अगासी टेनिस फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग होती थी। दोनों प्लेयर्स का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मैचेस को और भी दिलचस्प बना देता था। 2002 में US ओपन जीतकर सैम्प्रास ने अपना करियर खत्म किया और आज भी लेकिन दोस्तों उन्हें टेनिस हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में शुमार किया जाता है और उनकी लेगेसी न्यू जनरेशन के प्लेयर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज भी लोग पीट सैम्प्रास के एग्जांपल देते हैं कोचेस, एक्सपर्ट्स फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: के लिए पेमेंट करनी होगी। एक्साइटमेंट है गिफ्ट का और खौफ है फाइन का, बस इसी का उठाते हैं ये फायदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम है वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। इस तरह का स्कैम कहलाता है फेक कुरियर और कस्टम स्कैम। इस किस्म के स्कैम में लोगों को बोला जाता है कि कोई इंटरनेशनल पार्सल आया है, कभी गिफ्ट, कभी डॉक्यूमेंट या कभी प्राइस के फॉर्म में। फिर क्लियरेंस फीस मांगी जाती है, जब आप वो पे कर देते हैं तो कस्टम ड्यूटी और फिर उसके बाद पेनल्टी, एक के बाद एक ये सारे चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। पर सच तो ये है, ना पार्सल होता है और ना ही किसी तरह का कस्टम इशू। भाई सोचने वाली बात तो ये है कि अगर आपने पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया तो कस्टम का कॉल क्यों आया है। यहीं से आप समझ जाएंगे कि ये एक फेक कॉल है। कुरियर कंपनीज व्हाट्सएप पे पेमेंट नहीं लेती है, तो याद रखिए, जिसका पार्सल नहीं उसका कस्टम भी नहीं।
1: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं नाजिया आपके साथ, एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल आर वैल्यूज। आज के सेगमेंट में बात करने वाली हूं मैं वैलिडेशन की। भाई, वैलिडेशन होता क्या है और ये इतना क्यों जरूरी है? देखिए, इंसान जो है उसे सिर्फ रोटी कपड़ा या मकान सिर्फ यही नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए चाहिए फॉर श्योर चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर मैं कहूँ तो नहीं। इंसान को जज्बात, एहसास, गहरी सोच और समझ के लिए भी जाना जाता है। जब कोई हमारी बात सुनकर ये महसूस करवाए, हाँ मैं समझ रहा हूं तुम क्या महसूस कर रही हो, इसको कहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन एक कुव्वत है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफएम 107 कदर मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे खुशबाश होंगे और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे आज पर्ल्स ऑफ कुरान में मैं आपके लिए जो आयत लेकर आई हूं वो है सूरह अल इंसान या जिसे सूरह दहर भी कहते हैं की आयत नंबर 8 और 9 और वो अल्लाह की मोहब्बत में या उसकी रजा के लिए खाना खिलाते हैं मोहताज यतीम और कैदी को और कहते हैं हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया यह आयात सूरह अल इंसान की निहायत खूबसूरत और मौसर आयात में से हैं जो मुखलिस बंदों की आला सिफात को बयान करती हैं मुफसरीन के मुताबिक इन आयात के नुजूल का एक खास वाकया भी बयान किया जाता है अगरचे इनका पैगाम आम और हर जमाने के लिए है अगर हम इसके शान नज़ूल की बात करें तो रिवायात में आता है कि हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नजर मानी थी कि अगर उनके बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन सेहतियाब हो जाएं तो वो 3 दिन रोजा रखेंगे और जब दोनों सेहतियाब हो गए तो उन्होंने नजर पूरी करने के लिए रोजे रखे हर रोज अफ्तार के वक्त जब वो खाना खाने बैठते तो कोई ना कोई मोहताज दरवाजे पे आ जाता पहले दिन एक मिस्कीन आया दूसरे दिन एक यतीम आया और तीसरे दिन एक कैदी या असीर आया हर बार उन्होंने अपना सारा खाना उन लोगों को दे दिया और खुद पानी पर अफ्तार किया 3 दिन तक यही अमल जारी रहा उनके इस खुलूस इसार और कुर्बानी पर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई जिनमें उनके अमल को सराहा गया और उसे मोमिनों के लिए एक मिसाल बना दिया गया ये आयात सूरह अल इंसान की उन अजीम तालीमात में से हैं जो इंसानी अखलाक नियत की पाकीज़गी और समाजी हमदर्दी की बुनियादें मजबूत करती हैं इन आयात में अल्लाह ताला एक ऐसे ग्रोह मोमिनीन का जिक्र फरमा रहे हैं जो ना सिर्फ इबादत गुजार हैं बल्कि अमली जिंदगी में भी आला इखलाक का नमूना पेश करते हैं इन आयात का बुनियादी पैगाम यह है कि मोमिन वो है जो अपनी पसंदीदा चीज भी दूसरों को दे देता है और ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता है ना कि किसी दुनियावी फायदे या तारीफ के लिए यहाँ खाना खिलाना सिर्फ

एक अमल नहीं बल्कि एक अलामत है जो पूरी इंसानी रवैये और अखलाकी तरबियत को जाहिर करती है। आयत में खास तौर पर फरमाया गया, वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद। इसका मतलब यह है कि वो लोग ऐसी चीज देते हैं जो खुद उन्हें भी पसंद होती है या जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ये बात बहुत अहम है क्योंकि आम तौर पे इंसान वो चीज देता है जो उसके लिए इजाफी हो, लेकिन यहाँ मयार बदल दिया गया है। असल नेकी वो है जिसमें इंसान अपनी जरूरत को कुर्बान करे। यही वो मकाम है जहां ईमान सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल और अमल से जाहिर होता है। इन आयात में सबसे अहम उसूल इखलास है। वो मोमिनीन कहते हैं, हम तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। ये जुमला पूरी इबादत और नेकी के फलसफे को वाजे करता है कि अमल की कदर नीयत से है। अगर नीयत अल्लाह के लिए हो तो छोटा अमल भी अजीम बन जाता है, अगर नीयत दुनिया के लिए हो तो बड़ा अमल भी बेकीमत हो जाता है। यही वजह है कि इस्लाम में रिया को सख्ती से नापसंद किया गया है। इन आयात से ये भी समझ में आता है कि हकीकी नेकी करने वाले लोग अपनी नेकी को नुमाया नहीं करते, वो ना सिर्फ मदद करते हैं बल्कि साथ में ये भी कहते हैं, ना हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। ये जुमला इंसान को अंदर से आजाद कर देता है, यानी ना खुद तारीफ की ख्वाहिश, ना वापसी की उम्मीद, ना किसी किस्म का एहसान जताना। यही है वो मकाम जहां इंसान इंसानी अना से ऊपर उठ जाता है। इन आयात में सिर्फ रूहानी सबक नहीं बल्कि एक मुकम्मल समाजी निजाम भी दिया गया है। इस्लाम ये सिखाता है कि माशरा तब बेहतर बनता है जब अमीर गरीब का ख्याल रखे, ताकतवर कमजोर की मदद करे, हर शख्स दूसरे की जरूरत को समझे। यही वजह है कि यहाँ तीन तबकों का खास जिक्र किया गया, मोहताज, यतीम, कैदी। ये तीनों वो तबकात हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। मोहताज वो शख्स है जो जरूरतमंद तो है लेकिन सवाल नहीं करता। ये बहुत अहम नुक्ता है क्योंकि इस्लाम सिर्फ मांगने वालों की नहीं बल्कि खामोश जरूरतमंद की भी मदद का हुक्म देता है। ये माशरती हसासियत पैदा करता है कि हम सिर्फ जाहिर नहीं बल्कि छुपे हुए हालात को भी देखें। इन आयात का पहला बुनियादी पैगाम यह है कि नेकी का असल मयार इखलास है। कुर्बानी वो है जो अपनी पसंदीदा चीज में से हो। मदद बगैर किसी बदले की उम्मीद के होनी चाहिए। माशरा कमजोर अफराद के बगैर मुकम्मल नहीं होता। यह आयात सूरह इंसान में जिन तबकात का खास जिक्र करती हैं, इनमें दूसरा अहम तबका है यतीम। यतीम का जिक्र इस्लाम में बार बार आता है जिससे इसकी अहमियत वाजे होती है। यतीम उस बच्चे को कहा जाता है जिसका वालिद कम उम्र में वफात पा जाए। इस्लाम में यतीम सिर्फ एक समाजी इस्तलाह नहीं बल्कि एक इम्तिहान शुदा इंसान की अलामत है जो कमजोरी और सहारा ना होने की हालत में जिंदगी गुजार रहा होता है। यतीम की जिंदगी में सबसे बड़ा मसला यह होता है कि उसके पास बाप का सहारा नहीं होता। वो अक्सर माली कमजोरी का शिकार होता है। उसे जज्बाती तौर पर भी तहफ्फुज़ की जरूरत होती है। इसीलिए कुरान ने यतीम को खास तवज्जो दी है ताकि माशरा उसे नजरअंदाज ना करे। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर यतीम के हुकूक बयान किए गए हैं। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम एक ऐसा माशरा कायम करना चाहता है जहां कमजोर अफराद महफूज हों। इन आयात में यतीम को खाना खिलाने का जिक्र करके ये बताया गया है कि इसकी सबसे बुनियादी जरूरत यानी खुराक का ख्याल रखना जरूरी है। इस्लाम में यतीम की कफालत सिर्फ एक अखलाकी अमल नहीं

यही वो कैफियत है जिसे रूहानी सुकून कहा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। यह हदीस इखलास की बुनियाद है, यानी अगर नीयत साफ हो तो मामूली अमल भी अजीम बन जाता है। अगर माशरे में इखलास आ जाए तो लोग बेलोस मदद करने लगते हैं, हसद और मुकाबला कम हो जाता है, ताल्लुकात साफ हो जाते हैं, एतमाद बढ़ जाता है। यही वजह है कि कुरान सिर्फ फर्द नहीं बल्कि पूरे माशरे की इस्लाह करता है। निकी की असल रूह इखलास है। अल्लाह की रजा सबसे बड़ा मकसद है। बदला और तारीफ की ख्वाहिश निकी को कमजोर करती है। सच्चा मोमिन वो है जो सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करे। सूरह अल-इंसान की ये आयात हमें सिर्फ देने का हुक्म नहीं देती बल्कि कैसे देना है ये भी सिखाती हैं। इस खास सिफ्त को सही से समझते हैं जिसे इसार कहा जाता है, यानी दूसरों को खुद पर तरजीह देना। इसार का मतलब है अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों को देना, अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करना, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह देना। ये आम सखावत से एक कदम आगे की चीज है। सखावत में इंसान इजाफी चीज देता है जबकि इसहार में इंसान अपनी जरूरत की चीज भी दे देता है। इन आयत में एक निहायत अहम जुमला है, वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत के बावजूद। यही जुमला इसहार की असल बुनियाद है, यानी वो चीज उन्हें पसंद भी है, वो खुद भी उसके मोहताज हैं, मगर फिर भी वो दूसरों को तरजीह देते हैं। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने नफ्स पे काबू पाता है। इंसान का नफ्स इनर सेल्फ हमेशा ये चाहता है कि अच्छी चीज खुद रखे, दूसरों को कम दे, अपनी जरूरत को पहले रखे। लेकिन इसार इस सोच को बदल देता है। इंसान को सिखाता है कि दूसरों की जरूरत भी अहम है। असल कामयाबी कुर्बानी में है। दिल की वसत ईमान की अलामत है। इसार आसान नहीं होता क्योंकि इंसान फितरी तौर पर अपनी चीज से मोहब्बत करता है, कमी का खौफ होता है, मुस्तकबिल की फिक्र होती है। लेकिन ईमान इंसान को यकीन देता है कि अल्लाह बेहतर बदला देगा। कुर्बानी जाया नहीं होती, देने से कमी नहीं बल्कि बरकत आती है। जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था कि हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 3 दिन तक अपना खाना दूसरों को दे दिया। ये इसार की बेहतरीन मिसाल है क्योंकि वो खुद भूखे थे, खाना उनकी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने दूसरों को खुद पर तरजीह दी। यही वो अमल है जिस पे अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई। इसार इंसान के दिल को वसी करता है, वो खुद कर्जी से निकल आता है, दूसरे के दर्द को महसूस करता है, उसमें हमदर्दी पैदा होती है। यही सिफात एक मोमिन को आम इंसान से मुमताज करती हैं। अगर माशरे में इसार पैदा हो जाए तो गुर्बत कम हो जाती है, लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, हसद और मुकाबला कम हो जाता है, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। यही एक मजबूत और पुरअम माशरे की बुनियाद है। जब इंसान इसार करता है तो वो दरअसल अल्लाह पर भरोसा जाहिर करता है। वो ये मानता है कि अल्लाह उसे जाया नहीं करेगा। वो अल्लाह की रजा को अपनी जरूरत पर तरजीह देता है। यही ईमान की बुलंदी है। इसार सिर्फ बड़े मौके पर नहीं बल्कि रोजमर्रा

0: जिंदगी में भी हो सकता है। अपनी पसंदीदा चीज किसी जरूरतमंद को देना, किसी को अपनी जगह देना, अपने वक्त और आराम को दूसरों के लिए कुर्बान करना, छोटे छोटे अमल भी इसार की तरबियत करते हैं। इसार नेकी की आला तरीन शक्ल है। अपनी पसंदीदा चीज देना असल कुर्बानी है। ये नफ्स की तरबियत और ईमान की अलामत है। इसार से माशरा मजबूत और पुर अमन बनता है।
1: आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: सूरह अल-इंसान की ये आयत इंसान के बातिन यानी इनर सेल्फ की ऐसी तरबियत करती है जो ना सिर्फ अमल को पाक करती है बल्कि दिल को भी सुकून अदा करती है। अब हम इस जुमले की गहराई को समझते हैं। हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि वो चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसके अच्छे काम को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए, उसे बदले में कुछ मिले। ये ख्वाहिश फितरी है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो नेकी की रूह को मुतासिर करती है। इन आयात में कुरान हमें एक बुलंद मयार देता है। नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए हो, इंसानों से कुछ भी ना चाहा जाए, हत्ता कि शुक्रिया भी नहीं। ये मयार इंसान को रूहानी बुलंदी की तरफ ले जाता है। बदला ना जाने का मतलब ये नहीं कि इंसान को बदला मिल नहीं सकता, बल्कि ये है कि नियत में बदला शामिल ना हो, अमल किसी फायदे के लिए ना हो, मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो। इंसान को तिजारत की सोच से निकाल कर इबादत की तरफ ले आता है। शुक्रिया न चाहने का मतलब यह है कि इंसान तारीफ का मोहताज ना रहे, उसका दिल लोगों के रवैये से मुतासर ना हो, वो अपनी नेकी को अल्लाह के साथ जोड़ दे। इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। आम तौर पर जब इंसान को शुक्रिया नहीं मिलता तो मायूस हो जाता है, नाराज हो जाता है, आइंदा नेकी करने से रुक जाता है। लेकिन जो शख्स इन आयात के उसूल को समझ ले वो कभी मायूस नहीं होता, उसका ताल्लुक अल्लाह से होता है, वो मुस्तकिल नेकी करता रहना चाहता है। जब इंसान बदला और शुक्रिया नहीं चाहता तो उसे एक खास सुकून मिलता है, वो लोगों की राय से आजाद हो जाता है, उसका दिल मुतमीन रहता है, उसे अंदरूनी खुशी मिलती है। यही वो कैफियत है जिसे रूहानी इत्मीनान कहा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस उसूल की बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, लेकिन कभी बदले या तारीफ की ख्वाहिश नहीं रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा थी। अगर हम इस उसूल को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम दूसरों से शिकायत कम करेंगे, हम एहसान जताना छोड़ देंगे, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर झगड़े तवक्कात की वजह से होते हैं। जब लोग बदला और शुक्रिया ना चाहें तो माशरा ज्यादा मुखलिस हो जाता है, लोग एक दूसरे की मदद खालिस नियत से करते हैं, एतमाद और मोहब्बत बढ़ती है। यही एक मिसाली इस्लामी माशरा है। नेकी का असल हुस्न तब है जब उसमें कोई तवक्को ना हो। बदला और शुक्रिया ना चाहना इखलास की अलामत है, इंसान को अंदरूनी सुकून देता है, ये ताल्लुकात और माशरे को बेहतर बनाता है। सूरह अल-इंसान की ये आयात सिर्फ फर्द की इस्लाह नहीं करती बल्कि एक मुकम्मल माशरती निज़ाम यानी सोशल सिस्टम की बुनियाद भी फराहम करती हैं।

0: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
1: उसके लिए तो
0: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
0: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या है हाल चाल दोस्तों। कतर 101 एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जहां पर आपको कतर की कल्चर से लेकर कतर के ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल से लेकर कस्टम तक सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। और आज हम कतर के बारे में एक ऐसी ही खूबसूरत चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कतर की शान है, कतर के ट्रेडिशन को भी जो रखती है, कतर के कल्चर को भी जो संजो कर रखा हुआ है, कतर के उस ज़माने की बात से लेकर कतर के आज यानी कि मॉडर्न ज़माने तक की बात इसमें है। बिल्कुल स्काई स्क्रेपर्स और लग्जरी लाइफस्टाइल से पहले कतर एक ज़मीन था, सादगी और ताकत की ये मिसाल था। और सदियों पहले कतर के लोग जो है वो बिदाऊं के तौर पर रहते थे, और लोगों ने यहाँ पर पर्ल डाइविंग करी, हमने पर्ल डाइविंग की बात करी है, कैसे धाव बनाया है, धाव की खूबसूरती, ऊँट का कैसे इस्तेमाल किया है। और कतर जो है तरक्की लगातार करता रहा है, ट्रेड सेंटर एक ज़माने में था और आज मॉडर्न दुनिया का एक लौता मरकज़ बन गया है, जहाँ फैमिली के लिए, रेसिडेंट्स के लिए ये सबसे एक मुफीद जगह है। तो कतर 101 में जैसे कि हर बार हम बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक पर, और इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं कतर के म्यूजियम के बारे में। कतर का म्यूजियम ऐसा म्यूजियम है जहां पर आपको बहुत पुराने जमाने की चीजें मिलेंगी और इस जमाने के मॉडर्न आर्किटेक्ट मिलेंगे। एक ऐसी चीज मिलेगी जिसे आप करीब से देखेंगे और आपको लगेगा कि ये उस तारीख में हिस्ट्री में किसी के गले का हार था। और आपको कुछ ऐसे म्यूजियम्स के बारे में बताऊंगा जिस म्यूजियम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि मॉडर्न जमाने का आर्किटेक्ट क्या इतना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग भी बना सकता है। सारी बातें होंगी आज इस शो में, तो चलिए शुरू करते हैं जिसका नाम है शो कतर 101। दोस्तों सदियों पहले कतर के लोग बिदों के तौर पर रहते थे, रेगिस्तानों पर चला करते थे, सख्त हालात में जिंदा रहा करते थे और एक जिंदगी अपनी अलग बना रहे थे जो इत्तेहाद, हिम्मत और सब्र पर मबनी थी। मछली पकड़ना, मोती निकालना, मईशत की रीढ़ की हड्डी थे ये। और समंदर सिर्फ पानी नहीं था उस वक्त, ये जिंदा रहने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साधन कह सकते हैं वो था। मोती निकालना खास तौर पर सबसे अहम पेशों में से एक था, और गोताखोर अपनी जान का खतरा उठाते थे, गहरे समंदर में उतरते थे मोती जमा करने के लिए, जो फिर दुनिया भर में तिजारत होते थे। ये खतरनाक काम बहादुरी, मिलकर काम करना और बर्दाश्त मांगता था। ये सारी बातें हमने पिछली बार भी करी थी और सब कुछ ये बदल गया दोस्तों तब जब 20वीं सदी में तेल और गैस जो है वो कतर में मिला। कतर जल्दी तब्दील हो गया दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक। लेकिन जो वाकई काबिले हैरत वाली है और या कहें कि बड़ी चौंकाने वाली है वो ये कि मॉडर्न होने के बावजूद कतर ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। सफाकत और रिवायत, कतर में सफाकत गहराई से मुंतसिर है, इस्लामी कीमतों और अरब रिवायतों से। मेहमान नवाजी सबसे मजबूत कीमती चीज़ों में से एक है। अगर आप किसी कतरी घर का दौरा करें, और मैं कहता हूँ कतरी घर का ना भी करें, अगर आप कतर में रहने वाले 10 या 20 साल पुराने रेसिडेंट के घर में अगर जाएं, तो वो कतर का जो सखावत है, जो मोहब्बत है, वो सीख चुके होते हैं। कतर की जो रिहायशी तरीका है, कतर में जिस तरह से मेहमान नवाजी होती है, तो वो रेसिडेंट्स भी अब सीख चुके हैं। तो आप जब इन घरों में जाएंगे, आपका इस्तकबाल किया जाता है अरबी कॉफ़ी के साथ, गहवे के साथ और खजूर के साथ। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं है, ये इज्जत और सखावत की निशानी है। रिवायती लिबास भी सफाकती पहचान को दिखाता है, मर्द थोप पहनते हैं और देहबाई

हया पहनती हैं। ये सिर्फ कपड़े नहीं, ये हया, वकार और विरसा जाहिर करते हैं। और म्यूजियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये बताना जरूरी है कि कतर किस दौर से रहा है, कैसे अपने कल्चर को अब बचा रहा है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ये सारी बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि नए लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि डायरेक्ट अगर हम म्यूजियम के बारे में बात करना शुरू कर देंगे तो वो शायद इतना कनेक्ट ना कर पाए। लेकिन बड़ी जरूरी है कि ये सारी बातें शुरुआत में कैसे कतर रहा, कैसे मॉडर्न दुनिया में आया, कैसे अपने कल्चर को लेकिन बचाया। त्यौहार जैसे कि ईद उल फित्र और कतर नेशनल डे खानदानों को इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ इत्तेहाद, ईमान, कौमी फक्र का जश्न जो है वो मनाया जाता है। लेकिन ये म्यूजियम कैसे कतर की पहचान बना, ये म्यूजियम कैसे कतर के पुराने दिल को आज भी नया या जिंदा करे रखा है। तो अब चलिए चलते हैं आज के शो के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, कतर के म्यूजियम्स की तरफ। कतर में म्यूजियम्स सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये ऐसी इमारतें हैं जो कहानी सुनाती हैं, ये ऐसी इमारतें हैं जो कुछ बयां करती हैं, चाहे वो रेगिस्तान से डेजर्ट रोज के बारे में बात हो, चाहे वो जबरदस्त आर्किटेक्ट के बारे में हो। ये तारीख को महफूज रखते हैं, सफाकत का जश्न मनाते हैं और माजी को मुस्तकबिल से जोड़ते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम बात करने वाले हैं म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बारे में। ये म्यूजियम सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं है कि जो अंदर रखी चीजें हैं वो बड़ी यूनिक है, बल्कि इसलिए भी ये बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि इसे डिजाइन करने वाले शख्स बहुत लंबे अरसे बाद उन्होंने इसके आर्किटेक्ट को डिजाइन किया, और मशहूर आर्किटेक्ट आईएम पाई ने इसे आर्किटेक्ट किया, इसे डिजाइन में तब्दील किया, इसके यूनिकनेस के बारे में सोचा। एक आदमी जिसने पेरिस में पिरामिड डिजाइन किया, लोवेर पिरामिड डिजाइन किया, रिटायरमेंट से वापस आया सिर्फ इस शाहकार को डिजाइन करने के लिए, इस म्यूजियम को डिजाइन करने के लिए। बिल्कुल, अगर आपको इस म्यूजियम के बारे में नहीं पता, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बारे में, तो जो आईएम पाई थे वो एक्चुअली आर्किटेक्ट की दुनिया में बहुत ज्यादा नाम रखते थे, लेकिन फिर वो रिटायर हो गए। उनका ये था कि भाई अब जितना काम हमने करना था, जितना कमाना था वो कमा लिया, अब सिर्फ जो है हम रिटायर रहेंगे, सुकून से अपनी लाइफ जियेंगे। लेकिन फिर कतर ने अप्रोच किया और कतर ने कहा कि आपकी आर्किटेक्ट इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे म्यूज़ियम को एक बार फिर से डिज़ाइन करें, आप हमारे म्यूज़ियम के लिए रिटायरमेंट को छोड़ें। और वो अपने रिटायरमेंट से बाहर आए और म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट को डिज़ाइन किया। म्यूजियम एक बनाए गए जजीरा पर मौजूद है और मॉडर्न डिज़ाइन को मिलाता है रिवायती इस्लामी आर्किटेक्चर के साथ। इसकी जियोमेट्रिक शक्लें, गुंबद और सिमेट्री इस्लामी फन के उसूलों को दिखाती है। अंदर ये म्यूजियम आपको सफर पे ले जाता है 1400 साल की इस्लामी तारीख, बड़े पुराने जमाने के आपको छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें, खंजर मिलेंगे, आपको लोहे से बनाई हुई चीजें मिलेंगी, कदीम मखतूतों से लेकर साइंटिफिक आलात और खूबसूरत खताती तक हर चीज एक कहानी बताती है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, ये तहजीबों को जोड़ने वाला पुल है। दोस्तों, अब बात करेंगे नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के बारे में। ये भी एक बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त डिजाइन वाला ये म्यूजियम, इसे डिजाइन किया गया है मशहूर आर्किटेक्ट जीन नोवेल ने, और ये एक्चुअली प्रेरणा लेते हैं एक चीज से जो रेगिस्तान में मिलती है, डेजर्ट रोज क्रिस्टल। बड़ा ही अजीब और बड़ा ही खूबसूरत एक फेनोमेना है। इमारत ऐसी लगती है जैसे बहुत बड़े इंटरलॉकिंग डिस्क हों, बिल्कुल एक स्कल्पचर की तरह। यह कतर के रिश्ते को फितरत और रेगिस्तान के साथ दिखाती है। कतर के रेगिस्तान में या कहीं भी अगर रेगिस्तान में बारिश होती है और पानी रेगिस्तान के उस रेत पर पड़ती है जो सूखी होती है, दोबारा और इतिबारा और बार बार ये पानी जब रेगिस्तान पर पड़ता है और फिर दोबारा वो सूखती है, पानी जो सूखता है तो रेगिस्तान में एक अजीब सा पत्थर जो है वो बन जाता है, जिसे कहते हैं डेजर्ट।

इंटरलॉकिंग डिस्क के जैसे लगती है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक। बहुत ही कम मुल्क हैं जो इस तरह के डिजाइन के लिए सोच भी सकते हैं, और कतर ने तो ये करके दिखाया। अंदर से अगर आप इस म्यूजियम को देखेंगे, ये पूरी कहानी जो है वो कतर की बताता है, पुराने जमाने से लेकर मॉडर्न तरक्की तक। इसमें हर एक चीज शामिल है, कदीमी आसार, रिवायती लिबास, तारीखी तस्वीरें, मोती और जेवर। इसके सबसे मशहूर नुमाइशों में से एक है पर्ल कार्पेट ऑफ बड़ौदा, जो लाखों मोतियों और कीमती पत्थरों से सजा हुआ है। ये म्यूजियम सिर्फ तारीख के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बड़े खूबसूरत और लाजवाब समझे जाने वाले, लाजवाब दिखने वाले मथफ म्यूजियम के बारे में। अरब मॉडर्न आर्ट का ये म्यूजियम बड़ा ही लाजवाब और अपने आप में एक यूनिक म्यूजियम है, जिसे अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कहते हैं, या मथाफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। मथाफ तवज्जो देता है मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी अरब आर्ट को। ये नुमाइश करता है आर्टवर्क्स अरब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, जो सामाजिक मसाइल, पहचान और तब्दीली को दिखाते हैं। रिवायती म्यूजियम के अलावा मथाफ माजी को जोड़ता है, मॉडर्न फनकार का इजहार जो है वो करता है। ये दिखाता है कि अरब फनकार आज की दुनिया को कैसे देखते हैं, अरब के जो आर्टिस्ट हैं वो आज की दुनिया को कैसे देखते हैं। ये म्यूजियम प्रूव करता है कि कल्चर स्टैटिक नहीं है, ये वक्त के साथ बदलता रहता है, ये वक्त के साथ बदलने का कायल है। और अब दोस्तों हम बात करेंगे कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के बारे में। दोस्तों अभी हम बड़े मुख्तसर से लफ्ज में सारे म्यूजियम के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम थोड़े डिटेल में भी जाएंगे। 3-2-1 कतर ओलंपिक और स्पोर्ट्स म्यूजियम के बारे में भी बात करना उतनी ही जरूरी है जितना नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के बारे में बात करना है, जितना मतहफ के बारे में बात करना है। कतर सिर्फ तारीख और आर्ट या आर्टिस्ट के बारे में नहीं है, ये खेल के बारे में भी उतना ही है। और 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम भी एक्चुअली आपको खेल के बारे में सारी जानकारी भी बताता है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें या इस तरह के पुराने ज़माने के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं जो आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, जिनको असल में हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और एक्चुअली में मुझे हिस्टोरिक चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि फील होता है ना कि यार ये उस वक्त नवाब साहब ने पहना होगा, या फला जो है जवाहरात उन रानी के गले में होगा, फिर ये भी कि यार इस क्रिकेट बैट से उस ज़माने में फला ने शुरुआत करी थी खेलना, और ये बैडमिंटन, ये हॉकी, या ये चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। और इन म्यूज़ियम में जाने के बाद आपको दुनिया की कोई भी चीज़ अलग सी यूनिक नहीं लगती, क्योंकि वो पुरानी चीज़ जब आप देखते हैं तो आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो कतर सिर्फ तारीख और आर्ट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, ये खेल के बारे में भी है। और तारीखी खेल के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, देखना है, तो 1 & only 3-2-1 कतर ओलंपिक और स्पोर्ट्स म्यूजियम आपके लिए। दोस्तों ये म्यूजियम दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता स्पोर्ट्स म्यूजियम में से एक है। ये मनाता है ओलंपिक की तारीफ, मशहूर खिलाड़ी, कतर का ग्लोबल स्पोर्ट्स में किरदार, ये भी के कतर ने कैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 जैसे ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट किया और दुनिया के स्टेज पर खुद को, कतर को एक मरकज भी बनाया। और दूसरे अहम म्यूजियम के बारे में भी बात करना उतना ही जरूरी है। कतर में और भी बहुत से म्यूजियम हैं जो तवज्जो के लिए मुस्तहिक हैं, जैसे कि शेख फैसल बिन कासिम अल थानी म्यूजियम। उसके अलावा कई ऐसे और खूबसूरत अलग और इम्पॉर्टेंट म्यूजियम भी हैं जिसके बारे में बिल्कुल बात होनी चाहिए और उनको भी अटेंशन की ज़रूरत है, जैसे कि शेख फैसल बिन कासिम अल थानी म्यूजियम, जो कि रेयर आर्टिफैक्ट्स को शोकेस करता है। उसके अलावा मुशरिब म्यूजियम, जो कि पुराने और बड़े ही तारीख दोहा के बारे में, सोशल हिस्ट्री के बारे में आपको कहानी सुनाता है। न्यू इमर्जिंग म्यूजियम्स, जो कि ग्लोबल आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे म्यूजियम ये एक पावरफुल कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं। और फिर कतर में जो म्यूजियम के नेटवर्क हैं वो भी बड़े मजबूत हैं, इसके लिए अलग से आपको वेबसाइट भी जो है वो कतर में मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के बारे में तो वो भी बड़ा ही लाजवाब है, जहां फन और पहचान मिलती है। कतर के म्यूजियम्स का सबसे मुनफरिद पहलू उनकी इमारतों का डिज़ाइन है। दोस्तों ये थी कुछ म्यूजियम्स के बारे में ज़रूरी बातें जो हमने करी, कि कौन से म्यूजियम में आपको क्या कुछ मिलेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है बात

0: करने का म्यूजियम के कुछ डिटेल्स के बारे में भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मजीद इन पर बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Excuse me. अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
0: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
0: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे फजील के साथ दोस्तों, और ये शो आप सुन रहे हैं कतर 101, जहां पर हम म्यूजियम के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं और कैसे कितने प्यारे प्यारे यहां पर म्यूजियम हैं जो कतर की तारीख को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और सदियों पहले जो म्यूजियम का थॉट रखा गया था, धीरे धीरे एक एक करके म्यूजियम बनाया गया था, चाहे रिटायरमेंट से बाहर निकल के आ रहे हों, IMPI हो या फिर कोई और हो, है ना, हर इंसान ने कतर के म्यूजियम को खूबसूरत बनाया है, कतर के ट्रेडिशन और कतर के कल्चर को जिंदा रखा है। हमने अभी तक बात करी नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के बारे में, हमने बात करी मतहफ म्यूजियम के बारे में, उसके अलावा हमने बात करी 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के बारे में। उससे पहले हमने बात करी थी कतर के एक ऐसे म्यूजियम के बारे में जो कि इस्लामिक आर्ट को दर्शाता है, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बारे में, जिसकी जो कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन है वो बड़ा ही लाजवाब है। और अब थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि जब भी आप म्यूजियम में जाएं तो किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट की। जब आप म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में दाखिल होते हैं, माहौल पुरसकून है, लोग खामोशी से पुराने आर्ट को और पुराने मखतूत और चीज़ों को देख रहे हैं। अचानक कुछ टूरिस्ट जोर से बात करना और हंसना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोग बेचैन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि कतर में म्यूजियम्स को सोच और एहतराम की जगह समझा जाता है, ना कि आम तफरी की जगह। इसलिए जब भी आप इन जगहों पे जाएं तो खामोश गैलरी में जब एंट्री लें तो धीरे बात करें, करीब आकर बात करें और तेज बात ना करें। अगर आपकी बात या आपकी आपका अंदाज थोड़ा तेज बात करने का है तो म्यूजियम्स में जाकर थोड़ा धीरे बात करें, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि जब आप इन जगहों पे जाएं तो उस जगह की रिस्पेक्ट करें, उन चीजों की रिस्पेक्ट करें और वहां के लोकल जो ट्रेडिशन है उनकी रिस्पेक्ट करें। उसके अलावा अगर तस्वीरें की बात करें, आप एक खूबसूरत चीज़ देखते हैं और फौरन अपना फ़ोन निकालते हैं तस्वीर लेने के लिए, ये हमारी और आपकी आदतों में शुमार है। और बड़ा अच्छा भी लगता है कि आप जब इस खूबसूरत जगहों पे जाएं, आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पर तारीखी चीज़ रखी है, 1400 साल पुराने खत रखे हैं, खंजर रखे हैं, तो आपका बड़ा दिल करता है कि इनकी तस्वीरें ली जाएं। लेकिन इनकी तस्वीरें लेने से पहले बड़ा ज़रूरी है कि एक स्टाफ मेंबर से आप नरमी से बात करें, आप स्टाफ मेंबर से पूछें कि क्या आप तस्वीर ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों आइए अब जरा इन म्यूजियम्स के कुछ फैक्ट्स चैलेंजेस के बारे में पता करते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कितने लंबे वक्त के बाद ये तैयार हुआ, कब ये प्लान हुआ। तो सबसे पहले नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर। दोस्तों नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर को बनाने में लगभग 10 साल का टाइम लगा। इस प्रोजेक्ट का आइडिया पहले 2001 या 2000 के स्टार्ट में सोचा गया था, लेकिन प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम बाद में स्टार्ट हुआ और फाइनली 2019 में म्यूजियम ओपन हुआ। इस म्यूजियम को बनाने का मेन गोल कतर की हिस्ट्री, कल्चर और डेजर्ट लाइफ को मॉडर्न तरीके से दिखाना था। साथ ही नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के कुछ चैलेंजेस थे। इस म्यूजियम को बनाना बहुत आसान तो कभी नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज इसका यूनिक डिजाइन था। बिल्डिंग को डेजर्ट रोज यानी कि रेगिस्तान के फूल जैसा शेप दिया गया। इस डिजाइन में 600 से ज्यादा कर्व्ड डिस्क यूज हुए हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स था। और एक और चैलेंज इसके लिए वो ये था कि एक ओल्ड हिस्टोरिक पैलेस को प्रिजर्व करते हुए उसके अराउंड न्यू बिल्डिंग बनाना था। ओल्ड स्ट्रक्चर को डैमेज किए बिना मॉडर्न आर्किटेक्ट कनेक्ट करना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन बावजूद इस मुश्किल काम के इसे बिल्कुल खूबसूरती से अंजाम दिया गया। कतर का एक्सट्रीम वेदर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हीट और सैंड स्टॉर्म कंस्ट्रक्शन को अफेक्ट कर सकते थे। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ये डिजाइन डेजर्ट रोज क्रिस्टल से इंस्पायर्ड है। म्यूजियम के अंदर एक लॉन्ग वॉकिंग जर्नी है जो कतर की हिस्ट्री बताती है।

आर्किटेक्ट जीन नोवेल ने डिजाइन किया था। और एक फैक्ट और, बिल्डिंग के अंदर की जो लाइटिंग और मल्टीमीडिया इफेक्ट्स है वो हिस्ट्री को अलाइव बनाते हैं। आपको लगता है कि आप उस हिस्ट्री के हिस्से में हैं, आप उस हिस्ट्री के उस जंगल में मौजूद हैं, उस जगहों में मौजूद हैं या उन रेगिस्तान में मौजूद हैं जहां कतर ने सांस ली। ये म्यूजियम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बल्कि कतर की आइडेंटिटी और कल्चर का सिंबल है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों चीज़ों को कंबाइन करता है। और अब बात करते हैं दोस्तों म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के बारे में। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट को बनाने में तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त लगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2006 में स्टार्ट हुआ और 2008 में म्यूजियम ओपन हुआ। ये म्यूजियम कतर के सबसे पहले और मोस्ट फेमस कल्चर म्यूजियम्स में से एक है। दोस्तों इसके चैलेंजेस क्या रहे अगर हम इस पे नजर डालें तो इस म्यूजियम का सबसे बड़ा चैलेंज इसका लोकेशन था। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया है जो समंदर के बीच में है। इस वजह से फाउंडेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि समंदर को जो पानी है, जो सॉल्ट है, वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता था। दूसरा चैलेंज ये था कि इस्लामिक आर्किटेक्चर को मॉडर्न डिजाइन के साथ बैलेंस करना। ट्रेडिशनल इस्लामिक पैटर्न और मॉडर्न ज्योमेट्री को एक बिल्डिंग में कंबाइन करना ईजी बिल्कुल नहीं था। जिसके आर्किटेक्ट थे वो काफी लंबे वक्त बाद जो है रिटायरमेंट के बाद वापस आए और इस स्ट्रक्चर को बनाया। आर्किटेक्ट आई एम पाई ने डिजाइन बनाने से पहले इस्लामिक कंट्रीज की डिटेल्ड स्टडी और ट्रेवल रिसर्च भी की। साथ ही अगर इस फैक्ट्स के बारे में जाने तो म्यूजियम का शेप इस्लामिक ज्योमेट्रिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। इसमें 1400 साल पुरानी इस्लामिक आर्ट के कलेक्शन भरे पड़े हैं। म्यूजियम समंदर के ऊपर एक प्राइवेट आइलैंड पर बना है। ये फैक्ट है कि यहाँ पर बाकायदा समंदर के ऊपर स्टील की रॉड से लेकर हर उन चीजों का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये स्ट्रक्चर खड़ा रहे और समंदर के नमकीन पानी से बचा भी रहे। बिल्डिंग के अंदर नेचुरल लाइट ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल की गई है। ये म्यूजियम इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर को दुनिया के सामने एक मॉडर्न और एलिगेंट वे में प्रेजेंट करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 3-2-1 ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक स्टेडियम कह लें या ओलंपिक म्यूजियम कह लें, ये भी बड़ा यूनिक म्यूजियम है। इसके भी अपने चैलेंजेस रहे हैं, इसके भी अपने फैक्ट्स हैं। अगर हम ओलंपिक म्यूजियम के बारे में बात करें जो कि कतर में मौजूद है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स से मुतालिक चीज़ों को ही देखने का मौका मिलता है। 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम कतर का एक बहुत फेमस और मॉडर्न स्पोर्ट्स म्यूजियम है जो दोहा स्पोर्ट्स सिटी के अंदर लोकेटेड है। इस म्यूजियम का नाम 3-2-1 इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट, काउंटडाउन और एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस म्यूजियम को ऑफिशियली 2022 फीफा वर्ल्ड कप से पहले ओपन किया गया। इसका डिजाइन और प्लानिंग का काम कई सालों तक चला, लगभग 5 से 8 साल का वक्त लगा इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने, डिजाइन करने और बिल्ड करने में। इसके कुछ चैलेंजेस भी थे। इस म्यूजियम को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्पोर्ट्स हिस्ट्री को मॉडर्न और इंटरैक्टिव वे में प्रेजेंट करना ताकि यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े तक बड़ी ही इंटरेस्टिंगली इस म्यूजियम में एंट्री लें और जब बाहर निकलें तो कुछ सीख कर निकलें। सिर्फ ओल्ड आइटम्स डिस्प्ले करना इनफ नहीं था, इसलिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, वीआर स्क्रीन्स और डिजिटल एक्सपीरियंसेस ऐड किए गए। दूसरा चैलेंज ये था कि म्यूजियम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटीग्रेट करना जहाँ ऑलरेडी स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर मौजूद थे। स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन करना था कि स्पेस भी एफिशिएंट हो और विजिटर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। तीसरा चैलेंज कलेक्शन मैनेजमेंट था क्योंकि यहाँ दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जर्सीज, मेडल्स और हिस्टोरिकल आइटम आए हुए थे। साथ ही अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं 3-2-1 ओलंपिक स्टेडियम के बारे में या म्यूजियम के बारे में। दोस्तों म्यूजियम में ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री का कंप्लीट रिकॉर्ड है। यहाँ इंटरैक्टिव ज़ोन्स हैं जहाँ विजिटर्स स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। म्यूजियम कतर नेशनल ओलंपिक कमेटी से लिंक्ड है और मॉडर्न आर्किटेक्चर और ग्लास डिजाइन यूज हुआ है जहाँ स्पोर्ट्स एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है। एजुकेशन और यूथ इंस्पिरेशन के लिए बनाया गया ये खूबसूरत सा 3-2-1 स्पोर्ट्स म्यूजियम।
ये म्यूजियम सिर्फ

0: हिस्ट्री शो नहीं करता बल्कि लोगों को स्पोर्ट्स के लिए इंस्पायर भी करता है। दोस्तों अब बात करते हैं अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी कि मजाफ म्यूजियम के बारे में। अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कतर का एक फेमस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है जो दोहा एडुकेशन सिटी में लोकेटेड है। मताफ का मतलब है अरेबिक में म्यूजियम और ये म्यूजियम स्पेशली अरब दुनिया के मॉडर्न आर्ट को शो करता है। इस म्यूजियम को ऑफिशियली 2010 में ओपन किया गया लेकिन इसको बनाने और प्रिपेयर करने में लगभग 3 से 5 साल लगे। आइडिया ये था कि अरब आर्टिस्ट की मॉडर्न पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और क्रिएटिव आर्टवर्क को एक ही जगह में प्रिजर्व किया जाए, लेकिन इस जगह को बनाने का जो चैलेंज था वो भी अपनी जगह बहुत बड़ा था। जैसे कि मताफ को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मॉडर्न अरब आर्ट को ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज करना। अरब दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारी आर्टवर्क आई हुई थी, उनको प्रॉपर सिस्टम में अरेंज करना बड़ा मुश्किल था। दूसरा चैलेंज बिल्डिंग को आर्ट गैलरी सिस्टम और मॉडर्न डिजाइन के साथ कंफर्टेबल बनाना। म्यूजियम को ऐसे बनाना था कि विजिटर्स को आर्ट समझने में आसानी हो और स्पेस ओवर क्राउडेड बिल्कुल ना लगे। तीसरा चैलेंज आर्ट वर्क्स को प्रिजर्व करना था क्योंकि पेंटिंग्स और ओल्ड मॉडर्न आर्ट पीसेस को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से बचाना बड़ा जरूरी हो जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप इन कतर के म्यूजियम्स में जाएं, म्यूजियम का लुत्फ उठाएं, तो क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स। और जितने नए लोग हैं ये खास तौर पे उनके लिए, पुराने लोगों को तो पता चल गया है। तो दोस्तों डूज में अगर हम देखें कि आप क्या कर सकते हैं, गैलरीज के अंदर हल्की आवाज में बात बिल्कुल आप कर सकते हैं। आर्ट वर्क का एहतराम करना और एग्जिबिट्स को हाथ ना लगाना जब तक इजाजत ना हो। कई लोगों का बड़ा दिल करता है, इवन मेरा भी बड़ा दिल करता है कि इसको करीब से मैं देखूं और इसको छू कर देखूं, है ना। तो आप टच करना चाहते हैं यार, 1400 साल पुरानी, 1000 साल, 500 साल पुरानी ये चीज़ है भाई, 1200 की कोई चीज़ है, सन 1500 की कोई चीज़, आपका दिल करता है इसको छू कर देखे, इसको करीब से देखे, इसको हाथ लगा ले, लेकिन इजाज़त नहीं है। जब तक आपको इजाज़त ना हो तो ऐसे आर्टवर्क का एहतराम करें, उसे छुए नहीं। लेकिन ऐसे कई आर्टवर्क है जिन्हें आप छू सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद स्टाफ के इजाजत के बगैर ना करें। साथ ही अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो भी बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को समझें। दोस्तों पहला फैक्ट्स है कि म्यूजियम में 9000 से ज्यादा मॉडर्न अरब आर्टवर्क्स का कलेक्शन है। यहाँ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी और इंस्टॉलेशंस डिस्प्ले होती हैं। म्यूजियम एडुकेशन सिटी के अंदर लोकेटेड है जो कतर का नॉलेज हब है। इसका फोकस अरब आइडेंटिटी और मॉडर्न क्रिएटिविटी को कंबाइन करता है। यहाँ यंग आर्टिस्ट के लिए वर्कशॉप्स और एग्जीबिशन भी होती है। अगर हम सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो मताफ सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि ये अरब आर्टिस्ट के आइडियाज और क्रिएटिविटी का घर है। ये लोगों को बताता है कि मॉडर्न आर्ट भी कल्चर और आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों ये था आज का शो FM 107 पे जिसका नाम था कतर 101, जहां पर हमने म्यूजियम के बारे में बात करी, डिटेल्स में उनके फैक्ट्स के बारे में बात करी, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करी। उसके अलावा ये तीनों, खास तौर पे ये जो तीन म्यूजियम्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत मेरे दिल के करीब हैं। सबसे पहला 3-2-1 ओलंपिक म्यूजियम क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स से मोहब्बत है। उसके अलावा हिस्ट्री को अगर देखना हो तो भाई ये हिस्ट्री आप सिर्फ नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में देख पाएंगे जो कतर के सकाफत को, हिस्ट्री को, मोहब्बत को, डेजर्ट को दिखाता है। और फिर अगर आपको इस्लाम से मोहब्बत है तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर यू गाइज, जहाँ पर आपको बैलेंस चीजें देखने को मिलेंगी। आपको जमाने पहले 1400 साल पुरानी जो खूबसूरती है इस्लाम की वो देखने को मिलेगी, वहां की आर्ट देखने को मिलेगी। तो ये आज का शो पूरी तरह से मुकम्मल था और मुझे बड़ा मजा आया म्यूजियम के बारे में। एक्चुअली मैं जानकर भी कई चीजें नई थी मेरे लिए और मुझे इस बात की खुशी है कि ये चीजें मैं आप तक पहुंचा पाया। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड में। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का

0: वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी ऐसा हुआ है क्या कि बॉडी कुछ कहना चाहती हो और आपने कह दिया हो बाद में? कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हो और हमें लग रहा है ठीक है कॉफी पियेंगे तो नींद उड़ जाएगी। शोल्डर्स एकदम हैवी हो गए हो, नेक्स्ट स्टेप हो गई हो और हमने कह दिया वर्क प्रेशर है ना, मे बी दैट्स व्हाई। पर सच बताओ, बॉडी कभी बिना वजह कंप्लेन नहीं करती। आज हम बात कर रहे हैं लिसनिंग टू योर बॉडी, यानी अपने शरीर की सुनने के बारे में। हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो हर दिन हमें सिग्नल्स भेजती है, कभी थकान के थ्रू, कभी हेडेक के थ्रू, कभी मूड ऑफ होने के थ्रू, कभी नींद का डिस्टर्ब होना। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने थकान को हसल का सिंबल बना दिया है, जैसे कि कोई मेडल मिल रहा हो। जैसे अगर हम टायर्ड है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी लगता है कि हाँ कुछ तो किया है आज दिन में। पर ये आइडिया ना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता तो पहले सिग्नल्स आते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होता, उसके बाद कॉन्स्टेंट फटीग, इरिटेशन, फोकस का कम होना, बॉडी का हैवी लगना, ये सब बॉडी का तरीका होता है कहने का कि प्लीज रुक जाओ। लेकिन हम रुकते नहीं है, हम कॉफी बढ़ाते जाते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ाते जाते हैं, ऐसा लगता है जितनी मेहनत करेंगे उतने ही जल्दी सक्सेस मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, नींद कम कर देते हैं और फिर एक दिन बॉडी खुद रुक जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप इमोशनली ड्रेन्ड होते हो तब भी आप काफी लो फील करते हो, आपकी बॉडी हैवी लगती है, एग्जॉस्टेड हो जाते हो, माइंड नेगेटिव हो जाता है। सो ये जो बॉडी और माइंड का रिश्ता है ये काफी ज्यादा गहरा है। जो हम महसूस करते हैं वो सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहता, वो मसल्स, गट, स्लीप और इम्यूनिटी हर जगह तक पहुंचता है और यही पर लिसनिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि हर छोटी सी सेंसेशन से हम डर जाए, लिसनिंग का मतलब होता है अवेयरनेस, इत्मीनान के साथ ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को। अगर आप थके हुए हो और फिर भी लगातार काम कर रहे हो तो बॉडी आपसे फाइट नहीं कर रही, वो आपसे मदद मांग रही है। और जब हम बॉडी की बात सुनते हैं हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। बल्कि आप जानते हैं रिसर्च बताती है कि रेगुलर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और इमोशनल रिएक्शन स्टेबल हो जाता है। मतलब जब हम रुकते हैं तब बॉडी रिपेयर करती है। तो आज एक छोटी सी प्रैक्टिस ट्राई कीजिए, जब बॉडी बोले स्लो डाउन तो थोड़ा स्लो हो जाइए, जब बॉडी कहे रिलैक्स तो थोड़ा गिल्ट फ्री रेस्ट लीजिए, जब बॉडी कहे इनफ तो उस चीज की इज्जत कीजिए। ये लेजीनेस नहीं होता, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद पे थोड़ी मेहरबानी कीजिए, अपनी बॉडी की सुनिए क्योंकि आखिर में ये बॉडी ही है जो आपको रोज उठाती है, चलाती है और आपके सारे सपनों को कैरी करती है। और अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो आवाज धीरे धीरे जोर से बोलने लगेगी। तो आज एक वादा खुद से कीजिए कि अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं करेंगे आप, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करेंगे और सिग्नल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप बॉडी की सुनते हैं ना तो वो आपको हेल्थ, एनर्जी और सुकून के साथ जवाब देती है। तो याद रखिए, लिसनिंग टू योर बॉडी इज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स रियल हेल्थ एंड योर हेल्थ मैटर।
0: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: Yeah.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
4: फ्रॉड अवेयरनेस।
5: आपको ईमेल आता है, डियर कस्टमर, आपका KYC एक्सपायर हो रहा है, लिंक पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। KYC यानी नो योर कस्टमर। तो कई दफा आपकी डिटेल्स कुछ बची रह जाती हैं, जिसके चक्कर में कई सारे इदारे आपको KYC के लिए ईमेल करते हैं। मेनली ये बैंक या फिर सिम नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से आता है, लेकिन ये लिंक्स फेक होती हैं, बट आपको बिल्कुल भी फेक नहीं लगेंगी। ये रियल वेबसाइट्स की इतनी ज्यादा रेप्लिका होती हैं कि आप खुली आंखों से समझ नहीं पाएंगे। आपको काफी डिटेल में देखना पड़ता है, जैसे कि .qa की जगह qv हो सकता है। तो ऐसे स्कैम्स में क्या होता है, लिंक फेक होती है, आप डिटेल्स डाल और अकाउंट कंट्रोल स्कैमर के पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए बैंक लिंक्स पे क्लिक मत करो। KYC सिर्फ ऑफिशियल ऐप ब्रांच से जाके कीजिए। SMS में स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर है, जो भी आपको SMS आया है या जो भी आपको ईमेल आया है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक या उनकी राइटिंग में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल सकता है, तो समझ लो ये स्कैम का हिंट है। लेकिन आजकल स्कैमर भी समझदार हो गए, बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग AI चैटबॉट्स। तो दोस्तों, KYC अपडेट करो, पर दिमाग अपडेट रख के, ऑफिशियल एप्स का इस्तेमाल करके या फिर बैंक की ब्रांचेस में विजिट करके।
4: सतर्क रहे, सावधान रहे, फ्रॉड अवेयरनेस
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: आर यू रेडी? फ्राइडे शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं RJ फजील वो शो जिसका इंतजार होता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो,
2: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
1: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर, दिल से देसी।
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Dosto, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में जो बर्ड्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उन्हें पानी पिलाना इंसानी फर्ज है। देखिए, गर्मियों का मौसम आ चुका है, हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हम पानी वगैरह पी लेते हैं, अपना भरपूर इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जानवर, परिंदे, बेजुबान लोग, इन पर ये गर्मी बड़ी सख्त गुजरती है। तेज गर्मी, सूखी हवा और पानी की कमी की वजह से हर साल दुनिया भर में देखा जाए तो बहुत से परिंदे और जानवर परेशानी का शिकार होते हैं, हत्ता ये कि वो अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। शहरों और कई इलाकों में वैसे तो पानी रखने का रिवाज है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये रिवाज नहीं भी है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपकी और हमारी बनती है। आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिशें करें जिसके जरिए हम इन

गौरैया है या और भी कोई भी बर्ड हो सकती है, वो पानी के लिए धर-धर भटकते हैं। वहीं जानवरों की बात करें तो बिल्ली है, डॉग है, बकरी है, ऊंट है, ये भी प्यास के लिए धर-धर भटकते हैं। पानी ना मिलने की सूरत में इनकी सेहत खराब हो जाती है, और जैसे मैंने बताया कि कुछ जानवरों की तो जान भी चली जाती है। तो यानी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जब अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, खुद के लिए इंतजाम करते हैं, तो इनका भी ख्याल करें। पर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इनकी तकलीफ पर तवज्जो ही नहीं देते। देखिए, परिंदों और जानवरों को पानी पिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा बाउल, मिट्टी का प्याला, प्लास्टिक का कंटेनर, ये सारी चीजें बहुत सस्ते में अवेलेबल है। और पानी जो इतना अनमोल है, ये किसी को भी दिया जा सकता है। आपको करना ये है कि घर की छत पर, बालकनी है तो वहाँ, दीवार के किनारे या दरख्त के नीचे पानी रखें, परिंदों के लिए बहुत मददगार साबित होता है। इसी तरह शायद गली, कोना या कोई गेट के बाहर ऐसी कोई जगह जो थोड़ी सेफ सी है, वहाँ आप जानवरों के लिए भी पानी रख सकते हैं। इस काम का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इस पर कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, और शायद कंसिस्टेंसी, रोज सुबह या शाम। ये काम, ये ड्यूटी आपको जिम्मेदारी से करनी है। पानी चेक करना है, उसे नया साफ करके वापस से रखना है, जिससे कि परिंदे साफ सुथरा पानी पी सकें, इससे परिंदे बेखौफ आकर पानी पिए और जानवर भी खुद को महसूस समझे और उन्हें ये समझ में आ जाए कि अच्छा, यहाँ इस जगह पर जो है वो परमानेंटली हमें पानी मिलता है। देखिए, ये अमल जो है वो सिर्फ इंसानी फर्ज ही नहीं बल्कि इंसानियत और रहमत का भी इजहार करता है। मजहबी तौर पर भी परिंदों और जानवरों की मदद करना सवाब का काम समझा जाता है। कहा भी जाता है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ी नेकी है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या परिंदा। इस छोटी सी नेकी का अजर दिल को सुकून देता है। बच्चों को भी इस काम में शामिल कीजिए। जब बच्चे देखेंगे कि हम परिंदों और जानवरों का ख्याल रखते हैं, तो उनके अंदर भी रहमत और जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। बच्चे स्कूल या फिर कॉलोनी लेवल पर अवेयरनेस जो है उनके लिए पैदा की जा सकती है। बच्चे जो है ग्रुप्स में मिलकर एक छोटी सी टीम फॉर्म कर लें, यू नो, केयर टीम, बर्ड्स केयर टीम या फिर एनिमल्स केयर टीम, समथिंग। और इस तरह से इस ड्यूटी को रोटेट करते हुए बच्चे आसानी से ये काम हर रोज अंजाम दे सकते हैं। देखिए, आज के दौर में जब बिल्डिंग ज्यादा हैं, दरख्त कम हो गए हैं, परिंदों के लिए अपना पानी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, अपने लिए छाव ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए हर घर, हर शॉप, हर ऑफिस के बाहर पानी का इंतजाम बहुत जरूरी है। अगर हर शख्स अपना छोटा सा किरदार अदा करे तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि गर्मियों में परिंदों और जानवरों को पानी पिलाना एक छोटी लेकिन बहुत कीमती कोशिश है। ये अमल हमारे दिल को भी नर्म करता है और सोसाइटी में रहमत और हमदर्दी का पैगाम भी देता है। आइए कोशिश करते हैं कि इस गर्मी में मिलकर अपनी खामोश मखलूक के लिए पानी का एक प्याला जरूर रखेंगे, और हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ जब तक गर्मियां हैं इस पर अमल करते रहेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और मैं मिलकर इस काम को अंजाम देंगे, और मुझे बताइएगा भी आप मैसेज के थ्रू कि क्या आपने ऐसा किया या फिर आप ऐसा करते आ रहे हैं, तो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। नंबर है 666-22-107। फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से दी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी।
1: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।
2: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेव आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।
3: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
4: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

समूद ने रसूलों को छुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम उन सब चीजों के दरमियान जो यहां हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया उनमें इमारतें बनाते हो। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। उन बेलगाम लोगों की इताअत न करो जो जमीन में फसाद बरपा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू महज एक सहर ज़दा आदमी है, तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सालेह ने कहा, ये ऊंटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का। इसको हर गिज न छेड़ना वरना एक बड़े दिन का आजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कोंचे काट दी और आखिरकार पछताते रह गए। आजाब ने उन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी।